अरे मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम।

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: एक रात आई जब वो 29 साल की थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका दिमाग उनको बर्बाद कर रहा है। वो सोच रही थी, मैं अपने थॉट्स से थक गई हूँ। और उस वक्त उनके अंदर एक शिफ्ट आई। उन्होंने रियलाइज किया कि ये उनके अपने थॉट्स नहीं हैं, वो उन थॉट्स के पीछे की अवेयरनेस है। ये रियलाइजेशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वो खामोशी में रहने लगी और उन्होंने अपने अंदर एक पीस महसूस की जो पहले उन्होंने कभी भी महसूस नहीं की थी। और इसी तजुर्बे ने उनको ये किताब लिखने पर मजबूर किया, द पावर ऑफ नाउ। इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि हम अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा पास्ट के गम और फ्यूचर के डर में गुजार देते हैं, लेकिन असल जिंदगी सिर्फ अभी में है। जब हम अपने दिमाग के शोर को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं, तब हम असल आजादी महसूस करते हैं। सोचिए दोस्तों, आप कितनी दफा अपने दिमाग में फंसे रहते हैं, कल क्या होगा, वो काम पूरा होगा या नहीं होगा, भाई वो शख्स मुझे क्या समझता है, वगैरह वगैरह। और ये सोच हमसे जिंदगी का मजा छीन लेती है। टॉली कहती है, पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन, रियलिटी सिर्फ अभी है। किताब में कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, तो उन पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। बॉडी पेन के हवाले से, वो इमोशनल बैगेज जो हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जिसे पुराने गम, पुरानी नफरतें, जब हम प्रेजेंट में नहीं रहते, ये पेन बॉडी एक्टिवेट होती है। वहीं बात करें ईगो की, तो वो फासले आइडेंटिटी जो हम अपने थॉट्स और लेबल्स से बनाते हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब ईगो का लेबल्स हैं। और प्रेजेंस के हवाले से बात करें, तो वो हालत जहां हम अपने अंदर की खामोशी को महसूस करते हैं, जब हम अपनी सांस पर फोकस करते हैं, अपनी बॉडी सेंसेशंस को फील करते हैं, भाई तभी तो हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो इसी के हवाले से एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है दोस्तों, जो इस किताब का हवाला देती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग। भाई डीप ब्रेथ लीजिए और महसूस कीजिए कि आप जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप इनहेल करते हैं, महसूस कीजिए कि हवा आपके अंदर जा रही है। जब आप एक्सहेल करते हैं, महसूस कीजिए कि हवा बाहर जा रही है। सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए ये कीजिए और देखिए क्या महसूस हुआ आपको। शायद आप अपने अंदर थोड़ी सी कहते हैं ना कि खुशी, थोड़ी सी खामोशी महसूस कर सकें। और दोस्तों, यही है नाउ। टॉली कहती हैं कि जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना उनके साथ जुड़े, तब हम अपने अंदर की पीस को पा जाते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, आप गुस्से में हैं, टेंशन में हैं, लेकिन अगर आप एक गहरी सांस पर फोकस करते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो वो गुस्सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में आ गए हैं। आपने अपने माइंड के ड्रामा को छोड़ दिया है, जो आपके दिमाग में थिएटर चल रहा है ना, उससे आप बाहर आ गए हैं और आप अभी में आ गए हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, साइंस भी कहती है कि माइंडफुलनेस से स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, हम ज्यादा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, यूं गए यूं वापस आए, और आने के बाद जानेंगे कि आज की बुक का खास मैसेज

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ एक स्पिरिचुअल गाइड नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल मैनुअल है जो आपको जिंदगी का असल मजा सिखा सकती है। टॉली कहती हैं कि जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना उनके साथ जुड़े, तब हम अपने अंदर की पीस को ऑब्जर्व करते हैं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी देती है। जैसे आपने सांस पर फोकस किया और हमने देखा कि किस तरीके से वो चेंज आ जाता है, अपनी बॉडी सेंसेशंस को फील किया और हमारे दिमाग के अंदर जो भागा दौड़ी है ना, उसको हमने काम किया तो हमने सुकून पाया। दोस्तों, अभी के लिए अपनी सांस पर फोकस कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और महसूस कीजिए कि आप जिंदा हैं। यही है नाउ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब के असर की। द पावर ऑफ नाउ ने सिर्फ सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरी स्पिरिचुअल मूवमेंट को बदल दिया। आज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस हर जगह डिस्कस हो रही है, कॉर्पोरेट ऑफिस से लेकर स्कूल तक। इस किताब ने लोगों को ये समझाया कि हैप्पीनेस कोई चीज नहीं जो फ्यूचर में मिलेगी बल्कि ये अभी के लम्हे हैं। इसने एंजाइटी और स्ट्रेस से लड़ने का एक नया तरीका दिया जो साइंस भी सपोर्ट करती है। रिसर्च कहती है कि माइंडफुलनेस से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। दोस्तों, ऑर्फिन विनफेरी ने जब ये किताब पढ़ी तो उन्होंने टॉली के साथ एक लाइव वेबिनार किया जहां लाखों लोग जुड़े। ये किताब ने कॉर्पोरेट लीडर्स को भी इंस्पायर किया कि वो अपने एम्प्लॉइज के लिए माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स शुरू करें। आज के फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड में हम हर वक्त नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और सोशल मीडिया के प्रेशर में ही रहते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें ये याद दिलाती है कि असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है, अभी के लम्हे में है। सोचिए, आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असल रिलैक्सेशन तब आता है जब आप अपने माइंड को साइलेंस करते हैं या साइलेंस मोड पे डालते हैं। हम सब के पास एक चॉइस है, या तो हम अपने थॉट्स के स्लेव बन जाएं, गुलाम बन जाएं या बने रहें, या हम अपने अंदर की अवेयरनेस को जगाएं। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हैं, अपने काम को ज्यादा फोकस के साथ करते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, स्कूल्स माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स स्ट्रेस रिडक्शन के लिए मेडिटेशन रिकमेंड कर रहे हैं। ये सब टॉली के आइडिया से ही इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, अगर आप अपने हर दिन के 10 मिनट सिर्फ प्रेजेंट में रहने के लिए डेडिकेट कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि जिंदगी का असल राज सिर्फ एक चीज में है और वो है नाउ, अभी। पास्ट के गम और फ्यूचर के डर को छोड़कर जब आप अपने अंदर की खामोशी को महसूस करते हैं, तब हम असल आजादी पाते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस किताब को जरूर पढ़िए, शायद ये आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दे। और इसी के साथ अगले एपिसोड में हम एक और ऐसी किताब पर बात करेंगे जिसने दुनिया को बदल दिया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, प्रोग्राम कुरान के मोती की आज की इस नई किस्त का आगाज हम एक सवाल से करेंगे जो शायद हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बार बार हमारे सामने आता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी बहस में पूरी कुव्वत, पूरे जोश और पूरे जज्बे के साथ उतर गए हों, हालांकि दिल के किसी गोशे में आपको मालूम था कि इस बहस का कोई फायदा नहीं, मगर फिर भी आपने गुफ्तगू जारी रखी सिर्फ इसलिए कि सामने वाला ये न समझे कि आप कमजोर पड़ गए, जवाब नहीं है या मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इंसान कभी हक के लिए नहीं, अपनी अना की हिफाजत के लिए बहस जारी रखता है। सामने किराम, इस्लाम हमें बातिल के सामने खामोशी की तालीम नहीं देता। जहां हक वाज़े करना जरूरी है, जहां किसी गुमराह कुन फिक्र का जवाब देना लोगों की हिफाजत के लिए मतलूब हो, जहां खामोशी से नुकसान बढ़ने का अंदेशा हो, वहां इल्मी, अखलाकी और हकीमाना जवाब अपनी जगह अहम है। लेकिन मुकाबला अपनी जात में मकसद नहीं, यानी मुकाबला बजाते खुद ये मकसद नहीं, बहस एक वसीला है, उसकी कीमत उसके नतीजे से तय होती है। अगर गुफ्तगु खैर पैदा करे, किसी शुबहे को दूर करे, किसी बातिल को कमजोर करे, तो उसकी अपनी अहमियत अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन अगर बहस महज तमाशा बन जाए, बातिल को मजीद शोहरत दे और हक को एक बेमाना झगड़े में घसीट ले, तो सूरत बदल जाती है। कुरान कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ वअअरिज़ अनिल जाहिलीन, दरगुज़र इख्तियार करो, भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से एराज करो। यहाँ जाहिल से मुराद सिर्फ कम इल्म शख्स नहीं, ऐसा सफी, हट धर्म या बदजबान इंसान भी हो सकता है जिसके साथ बहस से किसी खैर की उम्मीद ना हो। यानी कुरान हमें यह भी बताता है कि कब आपने खामोश हो जाना है। कोई कह सकता है कि अगर मामला दीन का हो तो, अगर कोई अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाए, अगर कोई दीन का तमस्खुर करे, तो गैरत नहीं जागनी चाहिए? यकीनन हक की हुरमत दिल में जिंदा होनी चाहिए। लेकिन हैरत देखिए कि ऐसी सूरत में भी कुरान कभी जवाब के बजाय एराज का हुक्म देता है। इरशाद खुदावंदी है, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयात के बारे में बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनसे एराज करो यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में मशगूल हो जाएं। ये राज हक को मामूली समझ

0: ये तो जुल्म नहीं वो अदल का रवैया अख्तियार करता है ख्वाहिश उठे तो गुलामी नहीं वो ज़ब्त सीखता है इल्म मिले तो तकब्बुर नहीं जिम्मेदारी को अपनाता है और इंसान सामने आए तो नस्ल रंग ताकत और फायदे से पहले वो उसकी इंसानी हुर्मत को देखता है क्योंकि इंसान की कदर ये नहीं कि वो फितरी सिलेक्शन में कितना फिट है इंसान की कदर उससे कहीं बुलंद है वो अल्लाह की मखलूक है और उसका खून उसकी इज्जत और उसके हुकूक किसी दूसरे इंसान की ख्वाहिश के ताबे नहीं प्रोग्राम कुरान के मुताबिक आज के हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत मासलामा
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है उनकी कुर्बानियां सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां उनकी मेहनत उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
4: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
5: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ
2: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर दिल से देसी

0: FM 107. Time check.
1: Okay, everybody in the class. Okay, focus. 6:01 by the clock. सब अपनी अपनी किताबें निकालेंगे. Chapter 107. आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महान आर्य के बारे. ये कौन खा रहा है पीछे परांठा? कौन खा रहा है? मतलब टीचर ने खाया नहीं परांठा और आप परांठे खा रहे हैं. आप पीछे खड़े हो जाइए हाथ ऊपर करके प्लीज. नहीं मैं प्लीज बहुत हो गया. और साइन करा के लिख जाइएगा. क्या क्लास मिली है मुझे माशाल्लाह.

मैंने सुबह सुबह एक चीज नोटिस करी है, जब अपने घर से निकलता हूँ मंसूरा से और आप अगर होते हुए आ रहे हैं लहराते हुए गाड़ी को और जायदा ब्रिज के नीचे से एकदम तुर्रम खा बन के निकल के ऑफिस आना चाहेंगे मेरे, और 5:15 के पार चलेगी घड़ी, तो भाई लिटरली ऐसे फील आती है मैं दिल्ली के धौलाकुआं में गाड़ी चला रहा हूँ। इतनी बसेस भाई माशाल्लाह, तो मैं 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट का गेम, 5 मिनट ऊपर नीचे हो गया। आज मुझे एहसास हो गया डर के मारे कल मैं 5 बजे ही घर से निकल जाऊँगा, रिस्क लेने का ही नहीं भाई। बाकी 666-22107 नंबर है, 666-22107। और आज जो है ना, मैं आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिस किस्म की मैंने अभी तक कहानी नहीं सुनाई है। आज भाई साहब हम इतिहास लिखेंगे, आज ऐसी स्टोरी है ना मेरे पास, म्यूजिक रुको भाई, आज ऐसी कहानी है भाई, ऐसी कहानी है बस मैं क्या बताऊँ कैसी कहानी है। मैसेज पढ़ देता हूँ सबसे पहले तो मैं, तो मैसेज क्या है मुझे आसिफ आलम भाई ने, और इतना अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या हाल है आपके, और मोहसिन रोल नंबर क्या बेटा आपके, वालेकुम अस्सलाम, मैं बढ़िया हूँ। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग प्रेजेंट गुरुजी, कल का किस्सा बहुत ज़बरदस्त लगा, मैं तो लियोनार्डो दी कैप्रियो को विजुलाइज कर रहा था आर्थर की जगह, मेरे ख्याल से वही ऐसे रोल और कहानियों पर फिट होता है। करेक्ट भाई सुभाष भाई, मुझे भी ये लगता है, वो आई थी ना वो कैच मी इफ यू कैन, उसका ही, उसका भी पापा था भाई ये, सॉरी पापा भी नहीं फूफा था उसका ये। फरद भाई लिखते हैं, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, खैरियत से, गुड मॉर्निंग मेरा भाई, एकदम बढ़िया शानदार। और एक मैसेज है, हेलो कबीर अंकल, टुडे आई हैव मैथ्स टेस्ट, प्लीज प्रे फॉर मी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, तो आज जो है फायजा जो है वो स्कूल जा रही है, आज इनका मैथ्स का टेस्ट है बेटे। मैं डर गया हूँ, आपको पता है मैं डर चुका हूँ, लेकिन आपको नहीं डरना है, आपने हिम्मत रखनी है। वैसे आई होप कि आपकी मैथ्स अच्छी होगी फायजा, बहुत सारा ऑल द बेस्ट भाई, सारे के सारे फायजा के लिए दुआ करें, फायजा के पेपर इंतहाई इजी आए और बहुत अच्छा जाए। फायजा ऑल द बेस्ट टू यू बच्चे एंड डू वेल, ठीक है, सच्चे से बताना कल मेरे को, बात करेंगे इस बारे में हम। सुभाष भाई कह रहे हैं, आपके साथ होने पर सबका हाल होता है, अच्छा मियाँ मियाँ थैंक यू भाई। एक मैसेज प्रेजेंट सर, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सलमान भाई ने, सलमान जी क्या हाल है, कह रहे जी रोल नंबर 905, ये कैसा रोल नंबर है बेटे आपका। एक और मैसेज है, इन्होंने वीडियो भेजा, बट एनीवे तमाम बच्चों को अगर किसी का टेस्ट है आज तो उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। माँ बाप को भी उतनी ही टेंशन होती है पर वो बेचारे बच्चों को दिखाते नहीं है, तो उन माँ बाप को भी ऑल द बेस्ट जिनके घर में एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। एक लास्ट मैसेज पढ़ दूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, क्या मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर सर, कल की स्टोरी सेंड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, आपको बताते हैं किस तरफ आना है आपको स्टोरी के लिए, ठीक है, टेंशन को नहीं। तला भाई की आवाज़ में सुबह के अधिकार इंशाल्लाह, उसके बाद मुलाकात होगी, 10 मिनट 33 सेकंड के बाद मिल रहे हैं, जाना आपने है नहीं, मजे करा देंगे, ठीक है, हाँ जाना नहीं है बस ये शर्त है, स्टे ट्यून्ड।

इस वाले मुझे नहीं पता कितने नंबर के टेस्ट हो रहे हैं, पर तमाम बच्चों को ऑल द बेस्ट। सुमुल बहन लिखती हैं, अलीना बस अंकल घर के पास बुला के मोमो खिलाते हैं, कभी बुलाते नहीं। हेलो टीचर, टीचर आप स्कूल जाइए प्लीज, ठीक है। देखिए तो इनको, प्रोफेसर से पंगा नहीं लेते, ठीक है, प्रिंसिपल तो हम ही हैं। अच्छा तो अब मैं सवाल पूछ लेता हूँ। देखो मैं एक बच्चे से मैंने कल बात करी थी, हम लोग ना कुछ इंटरव्यू वगैरह के लिए प्लान कर रहे थे, तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि बच्चे जो हैं वो चुपके चुपके सेव कर रहे होते हैं। ये बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा हो नहीं पा रहा था। हम क्या करते थे, मेरी दादी भाई मुझे 5 रुपये देती थी, बहुत बड़ी करेंसी लगती थी वो 5 रुपये का, वो नोट भी नहीं, सॉरी मोटा मोटा सिक्का आता था भाई, पहले मोटा सा सिक्का होता था 5 रुपये का, और जो अमीर होने की फील आती थी वो जुड़ नहीं पाते थे पैसे, वो कई मरतबा जुड़ते थे कई मरतबा नहीं जुड़ते थे, मगर वो एक लगता था कि आज तो मैं रईस हूँ, आज तो मतलब मैं चलते फिरते लोगों से पंगा लूँगा, उस टाइप का अमीर हूँ मैं। बट अभी मैंने नोटिस किया कि बच्चे स्नीकिंगली चुपके चुपके सेव कर रहे होते हैं, और कल भी एक बच्चे ने मुझे कहा कि उसने पूरे के पूरे पता कितने सेव किए हैं, उसने 6 सालों के अंदर 7,000 रियाल सेव किए हैं 6 सालों में। और वो सुन के ना भाई मैं अंदर से इलेवन कर रहे, भाई डेडिकेशन है यार, डेडिकेशन है। आप समझ रहे हैं 7 साल में उस बच्चे को कितनी बार तो लालच आया होगा, कितनी दफा लालच आया होगा, लेकिन ठान ली उसने। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितने मिलते, तो मैं तो बोला कभी कभी कबीर अंकल कभी 10 रियाल कभी 20 रियाल कभी 50 कभी 100, बीच में ईद आ गई तो थोड़ा ऊपर हो गया, पर ऐसे कर करके 7,000 रियाल जोड़े भाई उसने 7 साल में। मैं सही बता रहा हूँ, इस डेडिकेशन का फैन हूँ मैं तो ना कर पाता भाई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप भी ऐसे चुपके चुपके सेव कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए? क्या आपको पता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो कुछ सेविंग कर रहे हैं? क्या आप चुपके चुपके सेविंग कर रहे हैं? जेब दिखाओ, हैं छुपा रहे हो ना, गाड़ी के अंदर रखे होंगे वैसे, सच्ची बताओ। इस वाले कैबिनेट में क्या, खोलो इस कैबिनेट को, कितने बड़े इसमें ये चिल्लर दिखा के मेन करेंसी छुपा रखी है, तेज हो रही हो तुम। एक मैसेज, आई डू कम बिकॉज दैट इज माई फेवरेट रेस्टोरेंट बट यू स्टॉप्ड इनवाइटिंग मी। अलीना बेटे ये बाकियों की बातों में नहीं आना है बच्चे, आपको सिर्फ एक मैसेज करना है मुझे। अलीना व्हाट इज दिस बच्चे, मैं आपकी साइड हूँ बेटा। और ये समूल बहन जो है खाली जेबो वाला मुझे GIF भेजा है, GIF बहन। मुझे शक है कि सुमुल बहन आपने कुछ छुपा रखा है, आपने ज़रूर सेविंग करी चुपके चुपके जो आप घर वालों को नहीं बता रही हैं, और आप मुझे तो ऑब्वियसली नहीं बताएं क्योंकि आप उनसे भी छुपाना चाहती हो। लिखते हैं अलीना बेटा, ही विल नेवर इनवाइट यू। आप टीचर हो के बच्चों को भड़का रही मेरे खिलाफ, मतलब ये, आप स्कूल जाइए प्लीज़। एक मैसेज है, आपने तो 65 रुपये सेव किए हैं भाई। मैंने पूरे 65 रियाल सेव किए, 65 रियाल इन माई कार, वो अभी तक वैसे के वैसे हैं, मैं उन्हें यूज़ भी नहीं करता, बिल्कुल रखे हुए वो। एक मैसेज है, टेस्ट के नाम से डर लगता है आज भी, इतना डर भाई, मैं बहुत डरता हूँ बच्चों का, अगर बच्चे कहते हैं ना उनके एग्जाम है तो डर मुझे लग जाता है, ऐसी रूह कांप जाती है। ये लिखते हैं, चलते फिरते लोग, हाँ और क्या, इतना राइज भाई, इतना राइज। मैं अगर 7,000 रियाल जमा करने की वो रखता ना हिम्मत, तो भाई साहब बात थोड़ी करता मैं किसी से, अकड़ में रहता है एक अलग ही चौड़ में। सुमुल बहन कहती हैं, अलीना हम साथ में क्या है धावा बोलेंगे, टीचर जी कंप्लेन करूँ क्या? नदीम भाई कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैंने 65 रियाल सेव किए हैं, वो भी आपकी गाड़ी में पड़े हैं, बहुत बढ़िया। नदीम वो मेरे हैं, मैं नहीं दूंगा। तेज हो रहे हो नदीम, मैं तो इतने सेव कर पाया, वो भी इत्तफाकन हो गए। तो एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, अच्छा क्या है, हमारी ये गर्मी जा क्यों नहीं रही है? ये सवाल मुझसे पूछ के गर्मी ना तो कम होगी, ना मेरे पास इसका जवाब है। पर इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह बोल के। सुमुल बहन लिखती है, कीप क्वाइट आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, सारे चुप हो जाओ, इनकी जाने की बात करेंगे हल्ला गुल्ला। सुमुल बहन जब आप स्कूल के अंदर चले जाएंगे ना तब कर रहे हैं हल्ला गुल्ला, पिन ड्रॉप साइलेंस। हमें डरा रही हैं। लास्ट बेंचर हूँ मैं, ठीक है लास्ट वाला। अस्सलाम वालेकुम, एक भाई ने और मैसेज किया है, और वो कह रहे हैं कि भाई मैंने
ये लिख रहे हैं मैंने बहुत कोशिश करके 715 रियाल जमा किए हैं, ये देख लो गाड़ी में पड़े हैं। और उन्होंने फोटो भेजा है इनकी गाड़ी में 715 रियाल पड़े हुए हैं, ये वो जो दोनों सीट के बीच में होता ना भाई, उसमें पड़े हुए। अरे इतनी चिल्लर

0: इम्तियाज भाई इतनी चिल्लर, ये क्या है ये 715 रियाल? ये इतनी प्रिसाइज अमाउंट को आपने क्यों सेव किया, मैं समझ नहीं पाया। और मुझे ये बताओ ये 715 से ऊपर क्यों नहीं जा रही ये बात? हो गई यार, मैं तो 65 रियाल ही जोड़ पाया हूँ, उससे ऊपर गया नहीं मेरा अभी तो, पता नहीं 65 रियाल लगता है। डेली देखता हूँ, डेली हैरान होता हूँ मैं अपने ही छोड़े हुए पैसों को देख के, गाड़ी में हैरान होता हूँ मैं। अरे भाई आज तो 65 रियाल है तेरे भाई के पास। फरहत भाई मैसेज क्या है, संबुल टीचर की गैंग बना रही है अब बच्चे, एक साथ अटैक होने वाला है। मुझे भी ऐसे लगता है, आई डाउट, मुझे लगता है कि संबुल बहन ने कोई टीचर का संगठन बनाया है और उसमें बच्चे समेत उन्होंने ये संगठन बनाया है जिसमें वो मेरे अगेंस्ट जाने वाली है इलेक्शन। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मुझे तो आज भी 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स के सपने आते हैं। भाई यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, आई कैन अंडरस्टैंड भाई, मुझे भी, मैं तो ऐसे चीख हुआ होती ना, सांस उखड़ जाती वैसे उठते हैं बीच नींद से। तो मैं तो एग्जाम हॉल के बारे में सोचते डर जाता हूँ भाई। एक मैसेज है, क्या डबल ना हो जाए 65 रियाल, मैं भी यही सोच के गाड़ी में छोड़े हुए मैंने कि एक दिन वो 65 रियाल डबल हो जाएंगे। वो वैसे के वैसे ही रखे हुए, वो नोट गल जाएंगे। बता रहा हूँ मेरी गाड़ी जब आज से 1000 साल बाद ज़मीन खोद के निकाली जाएगी ना, तब भी उसके अंदर ही 65 रियाल मिलेंगे। लोग बोलेंगे अच्छा उस जमाने के लोग जो है ऐसा ऐसे यूज़ करते होंगे। फराज भाई कह रहे हैं, इस्लाम भाई वालेकुम अस्सलाम, कतरे रियाल 1.5 कॉइन सेविंग। हम सब के साथ फराज भाई को स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। फराज भाई आप देख नहीं सकते लेकिन आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन, वेल डन फराज भाई, वी आर सो सो प्राउड। फराज भाई ने पूरे के पूरे 1.5 रियाल इन कॉइन्स सेव कराए। फराज भाई आई एम सो इंस्पायर्ड बाई यू, सो इंस्पायर्ड बाई यू, कैसे कर लेते हो यार। एक मैसेज है, और क्या है, मैंने ये सपना पिछले 15 साल से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रीएडमिशन का वक्त आ गया है। मैं आपको बताऊं ये रीएडमिशन का वक्त आ गया है। एक मैसेज, बाबा जी पैसे मैं जमा करता हूं लेकिन रख के भूल जाता हूं, हाथ मिलाइए। अरे भागी नहीं, हाथ मिलाइए, छीन नहीं रहा हूं पैसे आपके, इधर हाथ मिलाइए। हाँ वेरी गुड, मेरे साथ भी यही है, मैं जमा नहीं कर पाता, मैं रख के भूल जाता हूं। और वो एक काबिलियत है, वो हर किसी में नहीं है, आप समझ रहे हैं। दुनिया हमसे जलती है, वो समझ नहीं पाती कि लोग सेव कैसे कर रहे हैं। हमारा सेव करने का तरीका थोड़ा अलग है, हम पैसे रख के भूल जाते हैं। ये बड़ी बात है यार, हर कोई थोड़ी कर सकता है ये, पैसे कोई भूलने वाली चीज़ है लेकिन हम उसी को भूल जाते हैं। अरे ये मान लोग ही कर सकते हैं भाई। आसिफ भाई कह रहे हैं, भाई हमसे तो जमा ही नहीं होता, रख के भूल जाया करो, मुझे दे के भूल जाओ। आसिफ भाई आप एक काम करो, मुझे दिया करो हर रोज़ और भूल जाया करो। ये आप समझो, आप जो है मुझे, आप रिटायरमेंट प्लान की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे डेली देंगे रियाल, और आज से 50 साल बाद आपके रिटायरमेंट का जब आपको मन करे आप मेरे से कांटेक्ट करना। तो अगर मैं दुनिया में रहा तो आपको मिल जाएंगे पैसे, रिटायरमेंट प्लान सेट आपका। फरद भाई कह रहे हैं वो भी चाय लेकर ख़त्म हो जाने हैं 1.5 कतरे। भाई 1.5 कतरे रियाल जो फरद भाई ने जोड़े हैं ना, मुझे यकीन है कि वो ख़त्म नहीं होंगे, वो पड़े ही रहेंगे जब तक कोई उनसे ये नहीं बोलेगा कि फराज भाई थोड़े छुट्टी दे दो। सुमुल बहन लिखती हैं, कबीर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करो। मैडम मैं क्या क्या ज़रूरत पड़ती है आजकल एडमिशन के लिए मुझे बताइए, मैं आपके स्कूल में आना चाहूँगा। एक और मैसेज आया है भाई का। ये हुसैन अहमद भाई ने मुझे 4 सिक्के दिखाए हैं, और भाई ये कितने कितने रियाल के, कह रहे हैं सोच रहा हूँ FD करवा लूँ, 4.54 इनके पास। हुसैन भाई मेरे पास भी 65 रियाल पड़े हैं, मैं भी सोच रहा हूँ FD करा लूँ आज, मैं आज बैंक जाके पूछूंगा इस पर कितना मिलेगा। मेरे को शेयर खरीदने हैं आपके। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो कबीर भाई, मेरे पास एक तरीका है पैसे जमा करने का। अच्छा, अगर कोई अपना महीने का खर्चा निकालता है और उसे उसमें आखिर में जो भी पैसा बचता है उसको साइड कर लो या कोई भी तिजोरी बना लो, उसमें रख कर भूल जाओ, लेकिन उसे हाथ में लगाना, और जब सैलरी नहीं आएगी तो वही खर्चा उसी में से लेना। आपने कुछ ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस नहीं बता दिया मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर भाई ने तो बहुत मेरी बात को सीरियसली ले लिया। मुदस्सिर भाई नहीं हो पाएगा ये। वो कह रहे हैं इतना करो फिर ऐसा करो फिर वैसा करो। मुदस्सिर भाई इतना जो है टाइट शेड्यूल नहीं है मेरा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। पर मेरे पास 65 रियाल है मुदस्सिर भाई, चाहिए क्या? FD कराने की सोच रहा हूँ भाई आज, मैं इसको 12 साल के लॉकिंग पीरियड में लगाऊंगा, उसके बाद मुझे 12 साल के बाद 1 रियाल डेली मिलेंगे। आज ये शो जो फाइनेंस वाले सुन रहे होंगे ना, उन्हें मुझे मेरी आवाज सुन के इतना गुस्सा आएगा। तो मैं मैसेज करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं 50 रियाल से ऊपर सेव नहीं कर पाती क्योंकि मेरा सब कॉन्शियस माइंड को पता रहता है कि वैसे कुछ पैसे बचे, खर्च कर लो। मुझे वही लगता है कि स्पेशली खवातीन के साथ ही है ना, कि अगर वो 50 रियाल भी सेव कर लें तो जब वो अकेली बैठी होंगी ना, तो उनके कंधे पे आके कोई बैठता है और आवाज़ करता है, खर्च कर लो। और फिर दूसरे कंधे पे आके, सूट बहुत अच्छा है। फिर वापस कंधा चेंज करके, मेकअप बहुत अच्छा है, डिस्काउंट पर है, ले लो। इसलिए दुकान नहीं जाता। मेरे साथ भी यही है, पर मैं क्या बचा लेता हूँ। मेरे कंधे पे आके जब बैठता है तो ये बोलता है वो, चाय ले ले। पर मैं यूज़ नहीं करता उसको, मैं सोचता नहीं, मैं तो कार्ड पेमेंट करूँगा भाई। कॉल आ रही है, रुको भाई। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान?
0: बढ़िया भाईजान, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है।
0: जी जी भाई बताइए।
1: और क्या हो रहा है
0: भाई? एक तो पहले रेडियो के वॉल्यूम कम करो, क्या हो रहा है? क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपकी डबल ट्रिपल आवाज आ रही है।
1: रेडियो तो बंद है।
0: आवाज आ रही है मुझे अपनी, मेरे भाई, और आपकी भी आ रही है। ये क्या बात हुई, अब बताओ। हेलो कबड्डी, हेलो कोई है? है?
1: सुनाई दे रहा अभी?
0: हाँ सुनाई दे रहा है, बताओ भाई। बोलो भाई।
1: हेलो।
0: हाँ भाई बोलिए। मेरी भाई, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं कम बोल रहा हूँ।
0: हाँ कम भाई, बताओ भाई, क्या हाल है भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है।
0: जी कम भाई, सेविंग का कोई तरीका है, हो रही है कोई सेविंग? करिए आपने चुपके से।
1: सेविंग क्या, चुपके से सेविंग करेंगे भाई जान, आपको क्या बताएं?
0: नहीं देखो रोना नहीं, सुबह के शो में मुझे कोई उदासी नहीं चाहिए मेरा भाई, अगर कोई उदास बात है तो टॉपिक चेंज कर देते हैं।
1: नहीं, उदासी बात नहीं।
0: हाँ बताओ फिर, क्या कहना चाह रहे हो?
1: घर का जिम्मेदार आदमी सेविंग किधर से कर सकता है? जैसे जिम्मेदारी और कुछ।
0: अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा सेट नहीं होने का भाई, सभी जिम्मेदारी पर है मेरी जान।
1: अच्छा सेट नहीं होने का तो मैं जो बोलता हूँ।
0: हाँ बोलो।
1: जिंदगी में मेरे को पहली बार अफसोस कब हुआ था मालूम है?
0: अरे अच्छी बात बोलो ना, अफसोस की बात क्यों कर रहे हो?
1: कॉमेडी है।
0: अच्छा कॉमेडी, अच्छा ठीक है। कब हुआ था अफसोस बताओ?
1: जब मैं टेलर के दुकान में गया था तब।
0: अच्छा क्यों?
1: टेलर ने हालत देख के पूछा, जेब रखू कि नहीं रखू।
0: वेरी गुड, फाइनली आज कम भाई ने जोक सुनाया है भाई, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इतिहास में ये सोने के पंख से लिखा जाएगा भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कम भाई, ऐसे रहा करो ना। हैं?
1: ओके भाई, ओके।
0: हाँ चलो, ख्याल रखो, खुश रहा करो, टेक केयर।
1: ओके
0: भाई, वालेकुम सलाम भाई। किसी को ऐसे हार्ड बातें नहीं करनी है, ठीक है शो में? हाँ मुझे नहीं चाहिए कि आप ज्ञान बांटे लोगों को, देखो सेविंग करने के लिए तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे नहीं कर रही, हाँ नहीं तो 10-15 मिनट की बात है, वो भी ज्ञान वर्धक। आसिफ भाई कह रहे हैं, अरे भाई कितने को रोको भाई, सबको रोक दूंगा मैं, पता नहीं है आपको। मेरा मिडिल नेम चट्टान है भाई। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई के, क्या हाल हैं? और एक मैसेज है, सेविंग 4 इन्होंने मुझे सिक्के भेजे हैं, बहुत बढ़िया है, तो से इसकी FD कराइए आप। सुरजीत भाई वालेकुम अस्सलाम, तो उसमें लिखती हैं, ये सुबह सुबह बहुत ही डरावनी अंतरात्मा बोल रही है। तो बहन ये सच भी तो बता रहा हूँ आपको। सुमुल बहन लिखती हैं, सेविंग नहीं होती है। अच्छा आप हमसे सीखिए, हम तो रख के भूल जाते हैं। और भाई कह रहे, उससे भाई कह रहे, ये तो हकीकत है। कैसे मेरे भाई अब्दुल करीम भाई? वालेकुम अस्सलाम भाई, एकदम बढ़िया शानदार। फरद भाई कह रहे हैं, 1 साल तक तो सेविंग हो गई भाई। फरद भाई के लिए भी हम जोरदार ताली बजाना चाहेंगे। फरद भाई ये तो पुराने नोट लग रहे हैं मुझे। फरद भाई ने पूरे के पूरे सेव किए थे 70 रियाल, और ये किसी काम के नहीं है, ये नए वाले नोट। अच्छा ओके, इंडिया वाले हैं भाई, मैं कतर वाले नोट समझता था, डरा दिया आपने। 70 रुपये सेव किए फरद भाई, हमसे भी आगे निकले फरद भाई, पूरे 70 रुपये सेव किए हैं आपने। ये मतलब एयरपोर्ट से ऑटो का रिक्शा तो बना लिया फरद भाई आपने। एक कॉल आ रही है, इट्स रेनिंग सॉरी। हाँ तो कौन सी कॉल उठानी है, दो कॉल आ रही। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, चलो अगली कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, आपके नाम भाई, आपका नाम?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम हमानुल्लाह।
0: हमानुल्लाह बताइए भाई, क्या चल रहा है सवेरे सवेरे मेरा भाई?
1: बस ड्यूटी में है, और क्या चलेगा इधर।
0: अरे क्या हो गया, इतने काहे सैड हो रहे हो यार? ऐसा लग रहा है अभी सोफे बैठे हो, मन नहीं है बात करने का, लगा लिए कॉल बस।
1: ड्यूटी का मन नहीं होता है ना।
0: हाँ भाई यार, हाथ मिलाओ यार इसी बात पे यार, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात की है।
1: और क्या हाल है? ठीक है
0: बस भाई, भले चंगे हैं, आपकी दुआ भाई, आप सुनाइए क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: हाँ तो भाई, कभी थोड़े बहुत सेव करने की कोशिश करी है? 50-100 रियाल, हमने तो 65 रियाल तक ऊपर नहीं गए भाई, 65 पे रुक गए।
1: करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई काम निकलता है तो हाँ। वही सेविंग वाला अमाउंट निकालता है, फिर से खर्चा करता है।
0: अरे जे जे जे यार, क्यों कंट्रोल क्यों नहीं?
1: इसके बारे में मुझे एक बात याद आई, आपको बताना है कि हाँ। मेरा एक दोस्त था, तकरीबन 6-7 साल पहले, मैं दुबई में था पहले।
0: अच्छा ठीक है।
1: तो उसने अमाउंट सेव करने की, उसके लिए एक मिट्टी वाली तिजोरी ली थी।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसमें सेव कर रहा था, तकरीबन 3 साल उसने पैसे उसमें जमा किए।
0: ठीक है।
1: जब घर जाने के टाइम आया तो उसने बोला कि मेरे पास एक तिजोरी है, मैंने उसमें पैसा जमा किया है, तो वो लेके जाएगा, वो तोड़ेगा तो बहुत पैसा होगा।
0: हाँ।
1: तो किसी ने उसके साथ ऐसा किया कि सेम तिजोरी लेके उसी जगह पे रखी, और उसकी जो जमा कुंजी थी वो लेके भाग गया।
0: अरे रे रे रे, ये तो मनी हाइस्ट हो गया भाई, अरे बाप रे।
1: कम से कम उसके मुताबिक उसने बोला कि कम से कम 20,000 रियाल, 20,000 दरहम तक वो था।
0: अरे भाई यार, सुबह सुबह मेरा
1: लेकिन सेम टू सेम लेके आया, उसी जगह रखा और उसी वाला लेके गया।
0: ये इतना
1: कभी कभी सेविंग में ऐसा भी होता है।
0: मैं पता हैरान किस बात से हूँ, ये तो चलो उसने वो उसकी गुल्लक ले गया, वो मैं समझ में आ गया मेरे, पर दूसरी रखने की जरूरत क्या थी?
1: वो दूसरी इसलिए रखी कि उसको ज्यादा देर तक उसको पता ना चले।
0: शातिर हो रहे हैं लोग भाई, बहुत तेज हो रहे हैं यार, 20,000 दिरहम के करीब। अगर मेरा दिल हिल गया भाई। थैंक यू सो मच ये झटका देने के लिए।
1: खुश रहो,
0: आप भी खुश रहे मेरे भाई,
1: हंसी मुस्कुराते रहो।
0: यस मेरा भाई, यही चाहिए भाई, बहुत प्यार भाई को। थैंक यू सो मच भाई,
1: ओके भाई,
0: अल्लाह हाफिज। और यार क्या कर, लोग गुल्लक से खेल रहे हैं यार, बड़े। मैं तो खामखा बाहर की कहानी सुनाता हूँ, यही की सुना दो तो बहुत काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: अरे भाई साहब क्या हाल है आपके? हाय हाय वो
2: भाई, दुआ वाला कबीर मेरी जान, कैसे हैं आप? ठीक हैं
0: भाई? एकदम ठीक हूँ। जेबी साहब आपका क्या हाल है, कैसे हैं?
2: मैं बुफे करने जा रहा हूँ।
0: अच्छा क्यों बताओ?
2: मैं आपको छेड़ूंगा ना, आपकी छेड़ है ये।
0: अच्छा ओ मुझे फाइनली पता लगा, मुझे फाइनली लगा चलो कोई तो लड़ने के लिए आया मुझसे। मैं सुबह सुबह तैयार होके आता हूँ डेली, कोई लड़ नहीं रहा है।
2: हाँ
0: बताइए भाई।
2: 4 दिन बहुत मिस किया कबीर भाई आपको, मैंने बहुत मिस किया।
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यारा।
2: अभी नहीं सुन पाया मैं, लेकिन अभी मैंने रेडियो ऑन किया है तो भाई की प्यारी आवाज सुनने को मिली, मैंने कहा कॉल लगा देता हूँ अगर मौका मिल गया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपने जय भाई। लेकिन आपने सुना हम किस बारे, बड़ा पेचीदा मुद्दा है आज जिसके बारे में हम बात करें, बता आपको।
2: ये अभी मैंने एक भाई की जो कॉल आई थी वो जी कुछ जी। सेविंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं
0: जी। आज मैं कह रहा था, मैंने कहा देखो कल ना एक मेरे बच्चे से बात हुई, वो उसने 7 सालों में तकरीबन 6,800 रियाल के आसपास जोड़ लिए। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा। बड़ी बात है यार, हमारे बस की बात तो है नहीं। हम लोग जो जोड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने 65 रियाल जोड़े हैं, स्कोर बता रहा हूं आपको, गाड़ी में पड़े हुए हैं। हमारे फरद भाई हैं, उन्होंने इंडिया के 70 रुपये जोड़े हैं, और 4 आने जोड़े हैं हमारे हुसैन भाई ने। ये हमारा स्कोर चल रहा है अभी। आपने कितने जोड़ने की कोशिश करी
2: है? ये 4 आने वाले इनको तो मैं मतलब मैं इनको गोल्ड का मेडल दूंगा।
0: मुझे भी दीजिए भाई 65 रियाल, अच्छा खासा अमाउंट।
2: 4 आने तो कबीर भाई बड़ी अमाउंट हुई ना आपके। हाँ। तो 65 कुछ भी ना हुए।
0: बिल्कुल मैं खुद मानता
2: हूं जोड़ने की बात। हाँ। बिल्कुल जोड़ने के लिए जोड़ना भी जरूरी होता है। जब मतलब एक हर बंदे का अपना तर्ज जिंदगी है, अपनी सोच है। हमने मतलब शुरू से इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन बाद में वक्त के हालात के साथ सोचा कि नहीं यार आपके पास सेविंग करनी चाहिए, तो उसका जो इम्प्लीमेंट किया, फॉर एग्जांपल जो बेटी है या जो मेरा पोता है, अब माशाल्लाह पोता मेरा 3 साल का है, लेकिन जिस वक्त से मंथली मेरे बेटे की सैलरी या मेरी सैलरी, जिस तरह मैं 200 रियाल उसके डब्बे में डाल देता हूँ, तो करते करते 12-13 हज़ार उसका जमा हो गया है।
0: माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है। वैसे आप अपनी गाड़ी में कितना अपने लिए कितना रखते हैं आप? ये तो आपका मतलब है, ये तो फैमिली मैन है आप, हमें पता है, लेकिन अपने लिए क्या मतलब कुछ जोड़ा है आपने? गाड़ी वाड़ी में रखा है कुछ अमाउंट? कितने नोट पड़े होंगे गाड़ी में इस टाइम पे?
2: गाड़ी में मेरे तब तक गाड़ी चल रहा है तो कार्ड के अंदर है अमाउंट मेरी जमा है, लेकिन माशाल्लाह है ये। लेकिन ये कि जिस हद तक आप गए हैं उस हद तक मैं नहीं गया, मेरी अप्रोच वहां तक।
0: देखो ऐसा है जेबी भाई, 65 रियाल को जमा करना आसान बात नहीं है, ठीक है, करके देखो कभी पता लगेगा।
2: जमा करना नहीं फिर भाई, जमा तो किया लेकिन संभालना बड़ा मुश्किल है।
0: हाँ भाई, हम बहुत आगे की चीज है भाई, ऐसी थोड़ी तो
2: बहुत शुक्रिया
0: आपका, और जरूर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच भाई कॉल करने के लिए, जजाकल्ला।
2: चलो खुश
0: रहिए। मुझे जैस भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं भाई फिलहाल तो यही सेविंग है, बाकी कतरे रियाल अपने पास नहीं रखता, इधर उधर दे देता हूँ मंथ लास्ट में, और 28 से 29 तक सबसे दे देता हूँ, तकरीबन 200 या 300 रियाल होते हैं। अलग ही आपका वो चल रहा है, ये वो है ना कि 500 आगे बढ़ाओ उससे 500 लो, और इन्होंने इंडियन करेंसी में बताया 360 रुपये लिए इनके पास। वाह वाह बहुत बढ़िया। फराज भाई कह रहे हैं अपने 65 रियाल की सिक्योरिटी रखें, बड़ा अमाउंट है भाई। मैं फराज भाई मैं टेंशन में हूँ अब, इतना लोगों को मैंने बता दिया है 65 रियाल का, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अमाउंट, लॉट्स ऑफ जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: नदीम भाई मैं की करा क्या चल रहा है भाई?
3: तो आपका है ही नहीं, आप क्यों सिक्योरिटी करोगे, मैं कर लूंगा।
0: ये आपने मेरे पास अपनी FD रखवाई है, मतलब रिटायरमेंट प्लान क्या चल रहा है
3: मेरे पास? सेविंग ठीक है, एक ही चीज की है, वो जो नोट है ना वो चलता नहीं है, इसके लिए वो सेव है।
0: क्या बात कर रहे हो?
3: 2022 में जो 22 रियाल का वर्ल्ड कप होता है ना, वो सेव है मेरे पास, वो उसकी सेविंग होगी।
0: तो कितने का नोट है वो?
3: 22 रियाल का।
0: 22 रियाल का नोट,
3: वर्ल्ड कप का जो नोट। अरे वर्ल्ड कप।
0: अच्छा राइट।
3: वो
0: पहले वो नोट आते थे ना चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया चूरन के नोट देते थे,
3: वो वाले हो गए अभी भी इंडिया वाले घर पे।
0: वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई।
3: और नॉर्मल सेविंग अपनी सिर्फ इतनी होती है कि जब अपन घर जाते हैं छुट्टी पे, तो वापस आने के टाइम पे जो बच जाते हैं ना इंडियन करेंसी, वो 2,000, 2,500, 3,000, वो ये वाली छुट्टी में से बचा के लाते हैं, और फिर वो वाली छुट्टी में जाते जाते टैक्सी का पैसा दे
0: भाई, गाड़ी का पैसा दे। आपने एक नंबर बात कही है नदीम भाई, एक नंबर। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ भाई, वो वहां से जो इंडियन रुपीस बचते हैं वो यहाँ आते हैं और पड़े रहते हैं, फिर जब छुट्टी वापस जाते हैं तो वही किराए पे लग जाते हैं
3: वो एयरपोर्ट से घर जाने के लिए काम आते हैं।
0: एकदम सही यार नदीम भाई, क्या यार अभी कुछ गाड़ी वाड़ी में नहीं रखते आप? मतलब हमारी तरह नहीं, मतलब हम जो
3: मैं पहले रखता था बहुत, एक एक रियाल दो दो रियाल के ऐसे नोट पड़े रहते थे, कभी 15-20 रियाल ऐसे हो जाते थे। अभी तो होते ही नहीं है रखने के लिए
0: तो नहीं भाई, हमारा टैलेंट है भाई वो, हमारी हिम्मत है, जिगरा है हमारे पास, समझ रहे हैं आप? किसी के पास चार आने हैं
3: अभी आदत हो गई, चार आने आठ आने, तो वो मेरा बेटा जहाँ कॉइन देखता है ना तो वो उठा लेता है। उसके पास कल ही बता रहा था आई हैव 19 कॉइन, वो उससे खेलता है 19 कॉइन है उसके पास, आठ आने चार आने सऊदी का इंडिया के 10 रुपए का।
0: वो बड़े होके बोल सकता है बचपन में मैं सिक्कों से खेलता था
3: वो पूरा टाइम सिक्के से, वो एक डब्बा है उसके पास, वो डब्बे में डालेगा उसको निकालेगा, फिर उसको ऐसे मानो वो उंगली ऊपर रख के ऐसे मारते है तो गोल घूमता है
0: भाई,
3: उसको गोल गोल घुमाए।
0: अच्छा टैलेंट दिया है आपने, अच्छी बात है भाई, ये देसी टैलेंट होना चाहिए बच्चों, वेरी नाइस।
3: वो उससे वो कॉइन से वही खेलता है, वो जितने भी कॉइन होंगे ना, वो अगर मेरे पास बचे भी होंगे तो वो आ जाएगा कॉइन दो। वो मेरी आदत है कि वो मैं कॉइन इधर उधर रख देता हूँ कभी विंडो के पे इधर उधर, तो वो लेके अपने डब्बे में डाल के वो खेलता रहेगा।
0: तो आप मतलब ट्रेजर हंट खेलते रहते हैं कि मैं इधर सिक्का छुपा देता हूँ, ये खुद ढूंढ लेगा ये क्या चल रहा है भाई।
3: वो ले लेता है वो। अच्छा। फिर वो बताता कॉइन, अरे पिछली बार मैंने सोफा साफ किया, वो सोफे के पीछे कचरा था तो वो साफ किया, उधर से 8-10 कॉइन निकले है, वो खेल खेल के इधर उधर घुसाता है, फिर वो कॉइन वहां से 8-10 कॉइन निकले थे सोफे के पीछे
0: भाई। लेकिन खुशी तो होती है यार, खुशी तो होती है एकदम से, अगर सोफे के बीच में दो सीटों के बीच में फंसा हुआ कुछ मिल जाए सिक्के विक्के। ओए होए,
3: साफ करने नहीं दे रहा था, दे दो दे दो।
0: यार आपके आपकी फैमिली में ये स्किल है इसका मतलब सेव करने की? मेरा भाई ये स्किल है, आप में नहीं है बस, बाकी सब में है।
3: मेरा नहीं, माशाल्लाह मेरा बड़ा वाले बेटा भी हाँ। जो उसको मिलती है
0: हाँ।
3: तो वो पूरा साल साल भर तक भी वो जमा करके रखता है। अभी इंडिया से जो उसको ईदी मिली है आई थिंक कुछ 5-6 हजार रुपए होंगे
0: हाँ।
3: उसने अलग से मैंने उसको पर्स दिया, वो पर्स में उसके रखे हुए, उसने इंडिया में खर्च ही नहीं किए, वो यहाँ लेके आया है और अभी भी उसने बचा के रखे।
0: भाई मैं खुद हैरान था, कल जो एक एक बच्चा था उसने बताया मुझे तो मैं तो हिल गया, उन्होंने कहा बाप रे 7,000 रियाल उसने जमा किए पिछले 6-7 सालों। भाई
3: कभी कभी आपको पता है अपना काम ऐसा है कि कभी कभी एकदम ही हालत टाइट होती है, तो उसके पैसे जो रियाल में कभी सेव होंगे 200 रियाल 250 रियाल, तो उसमें से कभी 100 रियाल ले लिया कि चलो पेमेंट आएगी तो वापस डाल दूँ।
0: सांप पाल रहा था, सांप
3: याद रखता है वो कि मेरे 100 रियाल वापस दो।
0: हाँ ये यार, ये तो यार मतलब डकैती आपने अंदर ही घर में कर दी। वाह शाबाश नदीम भाई, शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा ही होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। ये आप उनको सिखा रहे हैं कि बेटा रॉबरी से कैसे डील किया जाए। तो नदीम भाई आपकी कहानी में सुनाता हूँ फिर। एक नदीम एक कौन आर्टिस्ट डेली घर से 100 रियाल चोरी हो रहे थे, किसी को कोई शक नहीं था। सही जा रहा
3: है, वो उसको आदत यही रखी है कि पूछ के लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मना तो नहीं करता है, लेकिन उसका दिल ऊपर नीचे होता है कि वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
0: ऑब्वियसली भाई धड़कन स्किप हो जाती है कि अरे यार ये ले तो रहे हैं, अब्बा मांगू कैसे। वेरी गुड यार नदीम भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई, और थैंक यू सो मच आपने कॉल करी। आज की कहानी नदीम भाई बहुत अलग है, आपको मजा आएगा आज की।
3: मैं तो रोज ही सुन रहा हूँ कभी, मैं बस बाद में कॉल नहीं कर पाता, तो कहानी तो रोज ही सुन रहा हूँ।
0: कोई भाई
3: सुनी है मैंने बैंक वाली कहानी, अब लग रहा है कि अपने को भी खोलनी पड़ेगी
0: सीधा बैंक खोलेंगे भाई, सेविंग तो होनी रही, बैंक ही खोलना पड़ेगा अब।
3: बैंक ही खुला, टप्पा तो ढूंढ ही लगे कहीं।
0: अरे बाप रे, मुझे अपने ही लोगों से डर लगता है नदीम भाई, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए भाई अपना।
3: ओके
0: ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और 2019 का नोट मुझे भेजा शाह भाई ने, स्टिल इन वॉलेट। भाई इसको इसको लेमिनेट करा लो ना फिर, अभी तो ये 100 रियाल का जो नोट है 2000, एक बात बोलूँ मैं ऑनेस्ट फीडबैक दूँ, मुझे वो जो 100 रियाल का नोट था ना पहले, वो 2019-18 वाला यार बड़ा खूबसूरत लगता था, मुझे बहुत खूबसूरत लगता वो, नो डाउट अबाउट इट। इसको लेमिनेट कराओ मेरे भाई पहली फुर्सत में। नहीं तो अरसलान भाई ने मुझे जो फोटो भेजा है 13 रियाल उनकी गाड़ी में पड़े हैं। अरसलान भाई 65 रियाल है मेरे पास, बस किए तो करके दिखाओ, 13 रियाल में क्या दिखा रहे हो। एक कॉल आ रही मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
4: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई।
0: अरे ये रेखा जी से बात कर रहा था मैं, आपकी कॉल आ गई बीच में। बताइए कैसे हैं आप?
4: जया जी को ना बताएं,
0: जया जी को तो मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप क्यों बताएंगे। तो प्रिंस भाई क्या ये सेविंग गाड़ी में कुछ सिक्के विक्के पड़े हैं आपके?
4: गाड़ी में तो अक्सर पड़े ही रहते हैं भाई।
0: अभी कितने होंगे?
4: एक्चुअल गाड़ी से ज्यादा घर में पड़े रहते हैं यूजुअली।
0: हाँ हाँ, पर घर वालों को क्या ना हिसाब नहीं रहता है गाड़ी।
4: तो बैरिन के हाँ, बैरिन के भी कुछ 10-15 दिनार वो पड़े हैं, कुवैत के 10 दिनार पड़े हैं, मतलब जहाँ ट्रेवल करता हूँ। रिसेंटली शायद $1 अमेरिकन भी पड़ा होगा।
0: अच्छा किधर पड़ा होगा ये जरा बताइए, नोट करो भाई किधर पड़ा बताइए।
4: भाई ये सारे मेरे क्या कहते हैं उसको, उसको सेफ को, समथिंग सेफ को कुछ कहते हैं ना,
0: कुछ भी कहते हो, पड़ा कहाँ ये बताइए।
4: हाँ पर वो सेफ में पड़े हैं सारे।
0: अच्छा उसका कोड क्या होगा? अगर आप बताना चाहें
4: उसका कोड, ना तुम जानो ना हम।
0: अच्छा बहुत तेज हो रही हो तुम प्रिंस, बहुत तेज हो रही हो। बने अच्छी बात
4: भाई, रखता हूँ ये सारी चीजें, मुझे नहीं क्या एक किस्म का, बस कभी अगर गए तो यूज कर लिया, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं पड़े हैं तो पड़े ही हैं।
0: बड़े लोगों की बात ही कुछ और होती है यार।
4: अरे
0: भाई
4: अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी चिल्लर थोड़ी सी रखनी पड़ती है गाड़ी में, कुछ काम करवा लिया somehow लेबर्स वो, यानी ग्रोसरी के लिए अगर कभी अगर वाइफ के साथ में निकल गए कुछ कहीं भी, तो इन चीजों के लिए तो काफी सारा रखना पड़ता है, नियर अबाउट 200-300 समथिंग फाइव टेंस के रखने ही पड़ते हैं गाड़ी में।
0: आपके साथ फिर वो वाला मसला नहीं है जिस मसले के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अलग चल रही है आपकी गाड़ी, आप हाईवे पे हैं, अभी हम एग्जिट ढूंढ रहे हैं।
4: अरे मेरे भाई
0: माशाल्लाह,
4: अब क्या ही बोले।
0: नहीं नहीं, आप बोलने के लिए बाकी नहीं है, आप तिजोरी का बस कोड याद रखिएगा, आपको जब हम पकड़ लेंगे तो पूछेंगे। ठीक है,
4: जरूर जरूर मेरे भाई, मतलब जहाँ ट्रैवल किया वहाँ के कुछ ना कुछ तो पड़े ही हैं।
0: वेरी नाइस, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत लोग करेंसी जमा करते हैं।
4: फिलीपीन का भी कुछ समथिंग 20 पैसो समथिंग कुछ पड़ा हुआ है।
0: अच्छा,
4: 20 का उनका पता नहीं कुछ नोट होता है।
0: वेरी नाइस यार,
4: है। और एनी हाउ इंडियन करेंसी भी थी और अभी भी होगी शायद।
0: आप क्या कीजिएगा इंडियन करेंसी का
4: भाई, जब ट्रैवल किया था तो हमने वो भी रख लिए।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है, वेरी नाइस प्रिंस भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
4: पाकिस्तानी करेंसी भी पड़ी है, इंडियन करेंसी भी पड़ी है, इवन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज की रखी हुई है।
0: अच्छा,
4: करेंगे कुछ नहीं कि हाँ, कभी कभी देख के मुस्कुरा लेते हैं यार। हमारा एक रियाल देखो और ये 100 की नोट देखो।
0: नहीं, मैं भी भाई 65 रियाल लेके मुस्कुराता हूँ, बहुत अच्छी, मुझे अच्छी फीलिंग आती है, मुझे लगता है वाओ।
4: क्वालिटी डिफरेंस देखो आप, पेपर क्वालिटी डिफरेंस देखो आप।
0: हाँ वो तो है भाई, ऑफ कोर्स। तो बांग्लादेश की भी करेंसी जमा कीजिए आप, बांग्लादेश नेपाल की तरफ भी जाना हो, करना पड़ेगा।
4: मैंने कभी वहाँ विजिट नहीं किया है, नहीं तो मेरे पास वो भी होते।
0: साइड मिशन कीजिए भाई आप, जैसे हम वीडियो गेम की इंडस्ट्री में कहते हैं साइड मिशन, तो साइड मिशन करने पड़ेंगे अभी आपको, मेन मिशन तो कम्प्लीट कर लिया आपने। पर थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, आज की स्टोरी जरूर सुनेगा, मौज आ जाएगी आज आपकी स्टोरी सुन के आपको।
4: इंशाल्लाह
0: प्रिंस भाई, बहुत प्यार भाई को भर भर के।
4: भाई सारे लिसनर्स अपना ख्याल रखें
0: जी भाई,
4: हमारे लिए भी दुआएं करें, हमारी दुआएं भी सबके साथ इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और प्रिंस भाई के बाद एक कॉल आ रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। मैं क्यों गा रहा हूँ, अरे कॉल कट गई, किसकी कॉल थी आप, रेडी सॉरी। इरफान भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, KBR 500 MG। और आगे लिखते हैं, मैंने कार में कॉइंस तो दूर की बात है, खाली बोतल, चाय का कप, टिश्यू, बनाना के छिलके, चिप्स की थैलियाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही है हमारे दोस्त, इनसे करनी है दोस्ती। ये प्रॉपर मिडिल क्लास भाई है अपना, हाथ मिलाइए। इरफान भाई कैसे हैं आप, एक कॉल आ रही है, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम
5: कबीर भाई,
0: मुझे जिस बात का डर था ना वही हुआ आज, पता, मैं बहुत डर रहा था, मैंने कहा ये ना कर दें कॉल ऐसा, मेरे
5: कबीर भाई
0: बस मैं जिंदा हूँ अभी तक, तो कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ भाई, एकदम बढ़िया। आवाज आ रही है अभी आपको,
5: तुम बचत बचत करो।
0: नहीं नहीं मैं कुछ, अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, अरे मैं हुई नहीं यहाँ पे भाई, आप बताइए।
5: बचत नहीं करेगा इधर क्या करने आया दुबई में, ये बताओ।
0: दुबई में, दुबई में कहाँ, ये दुबई थोड़ी है
5: भाई, रात में बचत करना मन है आपका, 1,000 मार के तो 500 रुपया बचाओ
0: ना। अच्छा फिर क्या करने का बचा के, क्या करने का बचा के पैसे, फिर
5: लादे बचा वही बचा के, ये यूसुफ भाई हमारा अंकल है, अगर उसने बचाया तो लुलु सेंटर बनाया है, बचाएगा तो कुछ बनाएगा ना, जमीन खरीदेगा, बच्चों का शादी करेगा, या पैसा नहीं होगा तो कैसा शादी किधर से करेगा, जमीन किधर से खरीदेगा,
0: घर
5: किधर से बनाएगा।
0: वाह वाह वाह, तो आपने कितनी जमा की ये बताओ।
5: मैंने जितना जमा किया आप सारा जिंदगी नहीं कर सकते।
0: आए बेटे यही तो सुनना था मुझे, कहाँ है तुम्हारे जायदाद के पेपर मुझे ये बता।
5: मेरा गाड़ी में जितना जाओ ये लेके जाओ, ये देखो ये।
0: अरे मेरा भाई यही तो सुनना था मुझे, यही तो फ्लैक्स चाहिए था सुबह से, कोई ऐसा कोई फ्लैक्स नहीं कर पा रहा था, क्या बात।
5: जब 5 साल का था, आदमी लोग मेरे को केमल में लेके जाता था, कोई 50 देता था, कोई 100 देता था, कोई 200 देता था, जुमारात का दिन मेरा बाबा आता था लेके जाता था।
0: माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, तो सारे जमा किए हुए हैं।
5: जब मैं जवान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र,
0: अरे
5: अभी शादी किया,
0: अभी भी जवान हुआ
5: शादी किया है, एक बात है वो पैसा है तो मैंने बेटियों को शादी किया, बेटे का शादी किया है।
0: माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई, आप ही सिखाएंगे दुनिया को, आप ही से सीखेगी इस पूरी दुनिया
5: भाई, भाई अभी देखो मेरा मास अगर 5,000 है, मेरा घर फैमिली को 2,00,000 मांगता है, मैं 2,00,000 जमा करता हूँ।
0: ये भाई 50 तोला, असली संजय दत्त मिले मुझे भाई कतर में, संजय दत्त तो आप ही भाई।
5: भाई तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं झूठ बोलूं तो अभी मेरे साथ केमल वाले काम करते हैं, मैं लेके जाता हूँ फैमिली में, उन को पैसा भेजने के लिए जिसका जरूरत है पैसा देते, 50,000 फैमिली को देते, 50,000 जमा करता है, अगर 20,000 फैमिली को देता है 20,000 जमा करता है।
0: भाई यार भाई यार, मतलब कहाँ का
5: शहर वाला आदमी कैसा आदमी है, मेरे ख्याल में इधर से पगार मिला इधर से खाया, खलास
0: वेरी गुड।
5: काम करो मेरा भाई, रात को 1 बजे उठता है, रात को 12 बजे उठता है, इधर नींद नहीं है।
0: तो तो नींद नींद तो पैसा तो है
5: तो अल्हम्दुलिल्लाह
0: क्या बात है।
5: प्रदेश में क्या करने नींद करने आए थे?
0: हाँ और क्या,
5: नींद मुल्क में करेगा ना,
0: और क्या नींद मुल्क में करेंगे, यहाँ थोड़ी कोई सोएगा। ये खामा खा लोग पूछते रहते हैं, 8 घंटे 6 घंटे से सोना नहीं है यहाँ पे।
5: बात नहीं, आप बहुत हंस रहा था, मैं देख रहा
0: कौन किधर
5: जो है ना यही बोलता है पैसा बचत नहीं होता।
0: मैं नहीं हंस रहा था, मैं नहीं हंस रहा था, प्रिंस भाई हंस रहे थे। मैं नहीं हंस रहा था, प्रिंस भाई ने कहा वो हंस रहे थे।
5: हाँ
0: क्या कॉल ही कट गई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और इनके बाद मैसेज क्या आसिफ भाई ने, भाई जैसे बंदे ने हेलो बोला मैंने बोला लवली काम हो गया। मुझे भी यही लगा था। नदीम भाई कह रहे क्लास लगी भाई बिल्कुल प्रॉपर। शायद उनकी वापस कॉल आ रही है, रुको। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा तो नहीं कर ली कॉल उन्होंने भाई साहब। पूरी क्लास लगाए गए वो छड़ी लेके आते हैं पूरी की पूरी। सेविंग करेगा, सेविंग करेगा।
5: मैं भी सोचा डंडा वंडा तो नहीं लेके आए
0: भाई, मुझे लगा वो बिल्कुल छड़ी लेके आया कि क्या कह रहा, क्या कह रहा, सेविंग करेगा इधर इधर इधर। अरे भाई
5: मासूम लोग होते हैं ना,
0: वो ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है।
5: अच्छी बात नहीं करते
0: भाई, लेकिन मैं मानना पड़ेगा भाई ने जिस हिसाब से बताया ना कि हार्ड वर्किंग नेचर, आप देख रहे हैं भाई ने कैमल की दुनिया में से बिल्कुल खिला खड़ा किया है आपने। क्या बात है यार, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन भाई। अब बताइए आप अपना बताइए। तो ये चुपके कुछ सेविंग हो रही है, नहीं हो रही?
5: हाँ सेविंग है ना। कल वो एक बंदा था, वो बोला मेरे पास 25,000 है सऊदी के, तो ला मैं बोला मुझे दे दो। 25,000 वो है और इंडिया के 100 रुपए पड़े हैं। और जैसे वो प्रिंस भाई ने बताया ना कि मैं इधर उधर ट्रैवल करता है तो थोड़े थोड़े करके रखता है, जैसे 1.5 दिनार इधर कुवैत का है, ओमान का है, ऐसे ऐसे है।
0: यार तो आप तो यार आप भी बड़े आदमी हो भाई।
5: नेपाल का है, सॉरी पाकिस्तान का है, 1.5 रुपया नेपाल का है, इजिप्ट का है, और लीबिया का है थोड़ा, वो 1/2 दिनार।
0: माशाल्लाह
5: तो
0: देखो दुनिया में भरोसेमंद लोग बहुत कम है, हमारे पास रखवा दो, भूल जाओ उसे, ठीक है।
5: नहीं मैं क्या वो रूम में ही रखता, ठीक है आपके पास जमा करा देंगे।
0: हाँ बिल्कुल FD करवाओ भाई इनकी, हम एकदम सेफ रखेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है।
5: जाने के टाइम बोले लाओ कबीर भाई हमारा लॉकर से निकाल दो।
0: बहुत समझदार। ठीक है मेरा भाई, बहुत बढ़िया यार आपके पास तो माशाल्लाह आप आगे निकल गए हमसे, हम तो बहुत सादगी से बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच मेरे भाई।
5: ओके आपसे आगे कबीर भाई
0: क्या क्या क्या क्या
5: मैं बोला आपसे आगे नहीं जाएंगे, 65 नहीं बनते।
0: अरे भाई जाओ यार आगे निकलो भाई, आप माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत दे आपके काम में, मेरी जान खुश रहो हमेशा, बहुत सारा प्यार भाई को भर भर के।
5: बाकी यार ऊन बना देते हैं सुबह सुबह सुबह ऊन बनने का मतलब है आदमी का दिन बराबर निकलने का अच्छे से।
0: थैंक यू मेरा भाई, बस यही सुनना था भाई, इसी के लिए सुबह आया था मैं भाई। थैंक यू मेरा भाई, ख्याल रखिए मेरी जान, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। एक हमारे जैस भाई कॉल है, रे जैस भाई ये जिंगल चला के बात करूंगा मैं आपसे। जैस भाई ये एक मिनट रुक जाओ, जैस भाई होल्ड योर हॉर्सेस। ओके किधर है ये जिंगल? हाँ ये रहे।

0: प्यार आप सभी को, एक कॉल आ रही है, उठा ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: क्या हाल है जैस भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया भाई
0: बढ़िया।
1: साहब। शुक्र मनाओ कि चाचा के मिनट खत्म हो गए, नहीं तो कोड़े पड़ते कोड़े।
0: चाचा ने पूछा था कि कोई बात करने वाला चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एक बंदा है मेरी नजर में, जैस नाम है वो, जैस भाई एकदम बढ़िया बात करते हैं, तो कह रहे ठीक है नंबर दे दो, तो आपका नंबर दे दिया मैंने।
1: शुक्र मिनट खत्म हो गया
0: नहीं तो टॉक टाइम नहीं जाता आज उनका, आज मूड में थे वो।
1: आज तुम्हारे 65 भी लेके चले जाते हैं कि लाओ दो तुम करोगे क्या
0: भाई, लेकिन पता है मैं उन, अब पता नहीं वो सुन रहे नहीं सुन रहे, लेकिन बंदा है बहुत मासूम, पता है मैं इनका एक्चुअली में फैन हूँ,
1: है
0: ना, जेनुइन बंदा है, जेनुइन बंदा है। हाँ ये बात तो है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एडवाइस दे गए, ये बताइए जमीन जमीन के लिए सेव करो, ये करो वो करो, और बताइए मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ, जमीन के कब्जा करने वाले लोगों से। जैस भाई कैसे? कहते मैं तो जी कब्जे पे यकीन रखता हूँ, ये पेपर भी तो नहीं सोच रहे
1: जमीन पे पहले इन्वेस्ट कर दिए, टेंशन मत लो।
0: क्या बात कर रहे हो, क्या बनाओगे जमीन पे?
1: अरे बना लेंगे छोटा सा,
0: मिट्टी में चेहरा बनाऊंगा अपना,
1: छोटा सा
0: जैस भाई बहुत सारे दुआ भाई, बढ़िया। वो नीचे नीचे दुकान ऊपर मकान वाला सीन है क्या?
1: ना ना ना ना ना, ना पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा एक घर ही बनाना है
0: भाई। नीचे एक परचूनी की दुकान खोलो यार, फील नहीं आती उसके बिना।
1: कौन भाई साहब, 2 रुपए की चीनी दे दो, 5 रुपए का तेल दे दो।
0: अरे कहाँ मिल रही है 2 रुपए की चीनी और 5 रुपए का तेल, क्या हो गया?
1: मुझे नहीं खोलनी दुकान
0: का। अच्छा तो जैस भाई ये बताओ कितने अपने पर्सनल कुछ सेविंग करी, गाड़ी वाड़ी में पड़ा है कुछ अमाउंट, कितना होगा अभी गाड़ी में छुपा छुपा?
1: देखा तो दिया मैंने, भेज तो दिया गाड़ी में जितना पड़ा था।
0: अच्छा हाँ, सॉरी, आपने मुझे भेजा, ये आपने 50-50 धीरम और 25 धीरम के पड़े हैं आपके पास, माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: पौने 4 रियाल है।
0: क्या बात है यार, ये तो आप ये एक कबीर बैंक है उसमें इन्वेस्ट करें आप। बहुत बड़े
1: भाई साहब, इन्वेस्ट कर लो
0: ठीक है, आप हमारे बैंक में खाता खोलिए, बिल्कुल बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा आपको, रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे, धरती हाल
1: भाई साहब ले लो आज, तब सब पता निकलवा लो किस किसके पास कितने हैं, फिर धावा बोलने चले।
0: प्रिंस भाई तो तिजोरी तक पहुंच चुके थे, बोल रहे मेरे पास तिजोरी है पर वो कोड नहीं बता रहे, मैं वहां तक तो चला गया।
1: मैं कह तो रहा हूँ कि प्रिंस भाई के पास चल रहे, उनके पास ज्यादा ही माल मटेरियल लेगा, पासपोर्ट
0: ले लो, चल रहा है नहीं सस्ती। और इरफान माने तो हाथ खड़े कर दिए, इरफान में कह रहे हैं भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं पड़ा, वो कह रहे हैं मत मुझसे दूर रहो, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, देख रहे खौफ मेरा। पहली
1: रियाल बता दो भाई, रियाल बता दो कितने रियाल पड़े।
0: कबीर कोऑपरेटिव बैंक में आपका स्वागत है, खाता खोलने के लिए 1 दबाए
1: और अपना पैसा हम घर से उठवाने के लिए 2 दबाए, हम खुद उठाने आ जाएंगे,
0: हम खुद उठाने आ जाएंगे, डोंट वरी, वो भी काली वैन में स्लाइडिंग डोर वाली। अरे जैस भाई
1: यार, मैं ले लूंगा।
0: हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं मुझे पता है कि लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको। पर जैस भाई बहुत बहुत प्यार भाई को, और जो आपने सोच रखा है जमीन पे मकान बनने का, इंशाल्लाह भाई आपकी आपका ये मकसद पूरा हो, और बहुत प्यार भाई को भर भर के भाई।
1: इंशाल्लाह भाई बस दुआ करो, इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में, 2 सालों में इंशाल्लाह,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई को बहुत बहुत सारा प्यार जैस भाई।
1: हाँ।
0: आज के गाने सुनना भाई, एकदम फाक तोड़ जाएंगे आपके, बढ़िया गानी आज की। इरफान भाई ने ये कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे कबीर, होप यू आर डूइंग। अमिताभ का डायलॉग याद आया, चाचा ने यूसुफ भाई वाला जबरदस्त था, और क्या कह रहे हैं, 1 FD इन KBR बैंक, इन्होंने हमारे कबीर कोऑपरेटिव बैंक के लिए 50 रियाल का भुगतान किया है। सादिक भाई कह रहे हैं कबीर बैंक में सेव करें, अपना पैसा गायब होता देखें। सादिक भाई हमें कुछ बढ़िया टैगलाइन चाहिए इसके लिए, बैंक के लिए, बैंक तो खुल गया है, टैगलाइन नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: ये इरफान भाई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ, मुझे आप पे क्यों शक हो रहा है कि आप हमें बताना नहीं चाह रहे कि आपकी गाड़ी में है?
2: नहीं मेरी गाड़ी में, या मैंने आपको बताया कि मेरी गाड़ी में सिवाय कचरे के कुछ नहीं मिलेगा, वॉलेट में थोड़े बहुत पड़े हैं और कॉइन्स तो दूर दूर की बात, मैं तो कॉइन्स होते ही नहीं मेरी गाड़ी में, पता नहीं मुझे मुझे अपने खुद अपने आप पे शक हो रहा है कि मेरी गाड़ी में कॉइन्स क्यों नहीं होते,
0: क्यों यार
2: मेरी गाड़ी में पैसे ही नहीं होते।
0: अरे यार इरफान भाई, आप क्या चाह रहे हैं, मैं आप पे तरस खाऊं इस बात के लिए? अरे जी इरफान भाई
2: नहीं तरस के साथ

0: साथ आपने मुझे कुछ देना भी है कि ये अच्छा। लो इरफान ये लो हमारी तरफ से,
1: मतलब हम दुनिया से लूट रहे हैं, हमें लूटने के लिए आ गए। वाह बहुत तेज हो रहे हो इरफान।
0: वो डायलॉग है ना कि हम तो सनम डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे, सनम ऐसा कुछ है ना।
1: तो मैं समझ गया कि मुझे
0: टॉपिक भी यही है क्या?
1: नहीं टॉपिक
0: कभी बैंक अकाउंट में पैसे डाले।
1: नहीं नहीं नहीं, दरअसल क्या था, कल एक ना एक बच्चा पता नहीं 12-13 साल का है, तो उसने क्या किया, उसके पास ना बचपन में जब उसे लोग सिक्के विक्के जो भी दे रहे थे अमाउंट ईदी उदी जमा करते करते करते उसने 6-7 सालों में तकरीबन 6,500 रियल जमा किए, तो खर्च करने का सेंस उसे जब नहीं था तब से उसे दे रहे थे वो लोग। 7,000 जमा कर लिए। मैंने कहा बड़ों से तो पूछूं अपने लिए कुछ छोटा मोटा जमा करते हो नहीं करते हो, तो ये सवाल था।
0: ये कौन सा साला भाई का बेटा?
1: नहीं नहीं नहीं, उसका इंटरव्यू आएगा पता लग जाएगा आपको। तो तो बहुत तेज,
0: मुझे तो लग रहा है बच्चा भी बड़ा शाना है।
1: बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। तो वही तो मैं तो खुद मेरी जान सूख गई। मैं यार बताओ, मैं 65 रियाल में फख्र कर रहा हूँ कि मैंने इतने टाइम से बचा के रखे, 7,000 रियाल तक पहुँच गया है वो।
0: नहीं आजकल के बच्चे ना बड़े तेज हो गए। अगर कभी मिसाल के तौर पर जब मैं भी अपने बच्चों को पॉकेट मनी देता हूँ, तो हम कभी किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, किसी कैफेटेरिया शाम में चाय पे जा रहे हैं, तो मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो मुझे अगर कोई इसको अपनी मर्जी का कोई सैंडविच मंगवाना है तो पहले पूछता है आई हैव टू पे और यू हैव टू पे।
1: क्या बात है यार,
0: वेरी नाइस। खाने से पहले मुझे पहले पूछ लेता, तो फिर मैं कहूंगा नहीं नहीं बिकॉज आप अपनी मर्जी से मंगवा रहे हो तो यू हैव टू पे। अगर मैं मिसाल के तौर पर एक चाय मंगवा रहा हूँ तो अक्सर उसने ऐसे भी किया है, नो प्रॉब्लम मैं एक चाय पी लूंगा मुझे मसला नहीं है, वो ये भी करता है।
1: यार आप बहुत तेज है यार, मतलब आप तो क्या बात है यार, अलग किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग तो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
0: देखिए ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने कहाँ पे वर्थ है और कैसे स्पेंड करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और जाहिर बात है कि हर बार अगर मैं उनको पॉकेट मनी दे भी रहा हूँ तो फिर जाहिर बात है कि जब मैं पॉकेट मनी दे रहा हूँ तो डेफिनेटली फिर मैं क्यों पे करूंगा सिवाय वीकेंड के। तो ये इस किस्म की ट्रेनिंग बच्चों में बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज मेरी तरह वो फजूल खर्च हो जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा।
1: चलो ये तो बहुत सीरियस बात कर दी, आपने अपने लिए कुछ बचाने की कोशिश नहीं करी, मतलब कुछ?
0: यार आई स्वेयर रियली मेरे से पैसे नहीं बचते हैं, मुझे ये अलग गुण आता ही नहीं है, और मैं बहुत फजूल खर्च हूँ। मेरे मरहूम वालिद भी मुझे यही कहते रहे, मेरी वालदा भी मुझे कहती है, मेरी वाइफ, मुझसे नहीं बचत होती है। आई डोंट नो व्हाई मुझसे होता ही नहीं है, आई डोंट नो।
1: आप भी कबीर कोऑपरेटिव बैंक में जो है खाता खोलिए।
0: हमारी और कोई ब्रांच नहीं, सही बोला था
1: क्या
0: के बी आर में अकाउंट पैसा डालने के लिए एक मिला है, प्रॉफिट के लिए दो मिले।
1: हमारे बैंक में खाता खोलने के लिए एक दबाएं,
0: एक मिला। हमारे नहीं, कबीर के बी आर में।
1: वो तो बेसिकली वो जो कॉल सेंटर वाली कॉल होती है उसमें तो हमारे ही बोलेंगे ना, इसलिए।
0: हाँ ये बात तो है, ये बात तो है।
1: क्या बात है, तो ठीक है इरफान भाई, अगले महीने शुरू कीजिए आप। थैंक यू सो मच,
0: ओके ब्रदर,
1: बहुत प्यार, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़,
0: थैंक यू, यू टू, बाय, अल्लाह
1: हाफिज़। और इरफान भाई के बाद जो है मुझे राबिया जी ने मैसेज किया है, मैं पढ़ना चाहूंगा। राबिया जी के मैसेज, राबिया जी गायब हो गए, हाँ ओके। राबिया कहती हैं कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम राबिया, यू शुड गिव अस टिप्स ऑन हाउ टू सेव। मैं बताऊं सेव करने के तरीके, मामला खराब हो जाएगा। और आगे लिखते हैं, आई हैव सेव्ड 20K, यू हैव सेव 20,000, और वो लिख रही हैं ये कम है, तो क्या क्या चाह रही हैं आप, मतलब कितने सेव करने। एक कॉल आ रही है मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। ₹2.50
1: आपके पास
2: कस में?
1: इतने पैसे का क्या कीजिएगा, इतनी धनराशि का? फवाद भाई इस धनराशि का क्या कीजिएगा?
2: 50 पैसे बैंक सेविंग अकाउंट में डाल दो, 50 म्यूचुअल फंड में डाल दो, 50 पैसों का कोई राशन ले लो, और 50 जहेज के लिए रख लो,
1: वेरी नाइस भाई, इतनी दौलत मेरे भाई, क्या करोगे मेरे भाई? फवाद भाई
2: यार, लोग कहते हैं तुम पैसा क्यों नहीं बचाते, हम सोचते हैं पैसा कहाँ जाता है।
1: वाह वाह वाह वाह, ये शेयर का मतलब था कि आगे भी कुछ आएगा। पर फवाद भाई आप भी हमारे बैंक में खाता खोलें कभी।
2: बिल्कुल खोलेंगे सर, बिल्कुल खोलेंगे, जहाँ पे 100 का 1 लाख होगा कि 100 का 100 ही रह जाएगा।
1: 21 दिन में पैसा डबल,
2: बस फिर बैंक में चल लेगा।
1: आप भी आके बोलेंगे ना पैसा निकालने के लिए, आपको भी बोलना पड़ेगा मेरी अनुराधा अनुराधा ले गई।
2: वो एक मूवी थी ना अक्षय की, जिसके अंदर वो नोट लगा के नीचे बैठता है, फिर आप वो ही दिखाएंगे सबको। पैसा डबल।
1: ये आप मेरा राज अभी क्यों खोल दे रहे हैं फवाद भाई, यार मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर?
2: सर इतने साल हो गए कतर में, लिटरली कुछ नहीं बनाया।
1: अच्छा पता नहीं है मुझे नहीं। तो एक बार की बात, एक बार की बात है, मैं यूके गया था
0: ये वहां उड़ गया सारा हमने कहा पैसे तो बच नहीं रहे, यूरोप ही घूम लो
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे अभी तक फोटोज नहीं मिले हैं फवाद भाई,
0: चलो मिल जाएंगी सर।
1: अब मेरे को जानना
0: आज है, मैं फोटोज को ही खत्म कर रहा हूँ सारा सेट कर।
1: अच्छा ये मुझे ये छांट के भेजेंगे कि आपके कौन से दिखानी है कौन सी
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। इतनी फोटोज के बाद ऑफिस की भी आई हुई है, मैं तो हैरान हूँ कि कितना ऑफिस सामान आया था फोटोज का।
1: अच्छा देखना चाहूंगा, मुझे पता नहीं क्यों आप पे बहुत सारा डाउट है, तो आप भेजो मुझे
0: फोन पकड़ा दूंगा, फोन पे सारी फोटो देख लेंगे।
1: हाँ हमें तो लॉक करना आता ही नहीं ना ऐप को, है ना, आज ही तो पैदा हुए हैं
0: बातें थे। सिक्योर फोल्डर क्या होता है?
1: मुझे मुझे कुछ नहीं पता सिक्योर फोल्डर क्या होता है। वाह वाह वाह, मेरा ही पाला पड़ा है तेज लोगों से।
0: कहते हैं जो भाई साहब बोल रहे थे ना कि कुछ नहीं बचाया, सही कह रहे हैं। कतर में रह के ना, यानी 2014 से अगर आप अभी गिनते हैं तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, और अगर आप बच्चों और फैमिलियों के साथ रहते हैं और अगर अच्छे तरीके से रहते हैं, मतलब अच्छे तरीके, तो फिर आप बचा ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुश्किल है।
1: मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा, मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा, सीरियस टोन में जो ये आदमी बोल रहा है, ये अभी यूरोप घूम के आया है दोस्तों के साथ, तो अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि आप इनकी बातों पे यकीन करना चाहते हैं तो कीजिए, मुझे तो 2 रुपए का भरोसा नहीं इस आदमी पे।
0: सर अब्बा जी ने जायदाद बनाई है ना, इसीलिए ना।
1: अच्छा ऐसा क्या,
0: एक ही बेटा हो तो इसीलिए कमा।
1: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये था पंचलाइन, आज की पंचलाइन थी फवाद भाई, वेल डन यार, सो प्राउड ऑफ यू।
0: आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो, आगे अपनी जायदाद खुद बनाएंगे।
1: मैं समझ गया, ये ऐसा मोटिवेशन, वो डेंजर मोटिवेशन है, वो हंसी बता रही है आपकी किस तरफ जा रहा है ये रास्ता। ठीक है,
0: तो भाई साहब जो कहते हैं ना चाय वाली, हाँ। तो मैंने कहा उनसे कहते हैं कि आई पे ले दे, मैंने भी अब आई पे ले दिया, इसीलिए अच्छा मैंने डालो उनके आई पे में बेटा, बस डाल दिए ना पैसे,
1: आपकी आवाज में भरोसा नहीं कर पा रहा, पता है आज मैं फवाद भाई आज अलग मूड में हूँ। ठीक है फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं पब्लिक पे छोड़ता हूँ, आप पे कितना यकीन करें, बट
0: ऐसी बातें करें सर आप,
1: हैं क्या चीज़,
0: रोड जो आज बिल्कुल कसम से उठा ले, ट्रैफिक कहीं नहीं है
1: ही नहीं ट्रैफिक आज,
0: आज मैं 2 एक्सप्रेस तक आ गया हूँ, सोचे मैं बच्चों को छोड़ के।
1: अच्छा तो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा मुझे लगा फिर से यूरोप जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा पूछ
0: लूं। तो है राजा वैसे, लेकिन बताते
1: हैं आप, बताइएगा मुझे अलग से सिक्योर फोल्डर।
0: नहीं सर, एक सेकंड सर, यूरोप से पहले सर पहले उमरा करेंगे,
1: हाँ
0: मीटर तो जीरो करें।
1: हाँ बिल्ली बिल्ली ने इतने चूहे खा लिए
0: अल्लाह के, अरे आप से पहले अल्लाह के कहेंगे कि सारा पैसा वहां उड़ाते हो, हमारे बनाने का टाइम नहीं है।
1: ठीक है ऑफिस जाओ ना, मंगवा जाएगी, ठीक है ऑफिस पहुंचो आप। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखे अपना, अल्लाह हाफिज। तो फवाद भाई ने जो किया है, इसके बाद मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा रुकता हूँ, एक गाना चलाने की जरूरत है। अरसलान भाई कह रहे हैं, अरसलान भाई ने हमें टैगलाइन दी है, कबीर इन्वेस्टमेंट बैंक टैगलाइन होगी, सेव करो सगीरा सगीरा, बन जाएगा कबीरा कबीरा। क्या बात है भाई, क्या बात है कदम से। 7:15 में 2 हवाला कभी रहे मनुष्य 7 पे।

आजी 7:19 बाय द क्लॉक मैं तू हवाला कबीर गुड मॉर्निंग Hey. तो राबिया जी ने जो मैसेज किया था, राबिया जी ने पहले मुझसे पूछा कि आप बताइए टिप्स दीजिए सेव करने की, और खुद वो 20,000 रियाल सेव करके बैठी हुई हैं। तो मैंने इनसे जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैडम मुझे ये बताइए कि आप मतलब मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो कह रही हैं कि यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग, नीड टू ऑलवेज थिंक दैट यू नीड टू सेव मोर, अदरवाइज यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग। पता नहीं आप कैसे करेंगे राबी जी, मुझे तो मतलब लग रहा है कि मेरे साथ सवेरे सवेरे स्कैम हो गया। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, और जमाल भाई वेट कीजिए मैं कॉल करता हूँ आपको। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा इस टैगलाइन को कोर्स करेक्शन करें, इससे भी ऐसे ही बोल सकते हैं, डिपॉजिट करो सगीरा सगीरा, विड्रॉल करो कबीरा कबीरा। विड्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं ना इस चेक भाई, मैं करने नहीं दूंगा, हमारे बैंक में सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग की फैसिलिटी नहीं है। आजी भाई कह रहे हैं, उनका क्या कह रहे हैं, आई नीड अ लोन फ्रॉम कबीर कॉरपोरेशन बैंक। बिल्कुल बिल्कुल आइए, पहले जमा करना, खाता खोलना पड़ता है पहले। राणा साहब कहते हैं, राणा जी मैं फिक्र क्या कह रहे हैं, कबीर बैंक आपके ख्वाबों का साथी नहीं। आपको हमारे बारे में भी पता नहीं है। और एक मैसेज आया है, ये हमारे आरिफ अंसारी भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, मैं अच्छा हूँ। आई अपने आप ही जवाब दी थी अपने, कबीर चिटफंड 20 दिन में पैसा डबल। और इनके बाद इरफान भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं ये जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को पैसे दे देते हैं सेविंग वाले, मेरे बच्चे क्यों नहीं देते। वी नीड टू रिसर्च इरफान भाई, सर्टन बिहेवियर्स, उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मुझे मैसेज किया है ये सैयद हमजा भाई, लिखते हैं गुड मॉर्निंग कबीर, यही साल कुछ बरीरा का है, हाल कुछ बरीरा का है, उनकी बेटी है माशाल्लाह, और कह रहे हैं कि उसके पास भी 2,000 रियाल हो गए थे। अब बेगम ने कहा कि अपनी चीज़ों के ज़रा खुद निकालो, अपनी चीज़ों के लिए खुद निकालो, तो बेचारी के 400 रियाल खर्च चुका है। रे रे रे रे, रे, रे। दुख हुआ होगा ना, ये थोड़ा एहसास करना कराना था कि बिला वजह खर्च करवाते हैं। तो सगीर से कबीर तक का सफ़र आप आएं और दूसरों को भी लेकर आएं। ये अच्छी टैगलाइन है, ये मुझे अच्छी लगी। इरशाद उल यूसुफ जई साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कतर में आने के टाइम 1,000 रियाल का उधारी था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 तक उधारी पहुंच गई है। बहुत बढ़िया, क्या शानदार बल्लेबाजी करी है आपने भाई, बहुत बढ़िया। और ये कह रहे हैं इब्बू हटेला बैंक। तला भाई कह रहे हैं इनको ट्रस्ट इश्यूज बोलते हैं, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपने बिल्कुल खुल के बोल दिया।

0: उसके लिए हम दूसरा होटल रखेंगे। खादिर अब्दुलादी भाई कहते हैं कबीर इंटरनेशनल बैंक नो विड्रॉल्स अलाउड। इरफान अली भाई मैसेज करते हैं फवाद भाई को सिक्योरिटी रखने का मशवरा वरना 2.50 रुपए पर हैं। आगे क्या लिखा है फरद भाई, क्या कह रहे हैं फरद भाई, कह रहे हैं कबीर भाई आई लाइक योर मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग वेरी मच, फर्स्ट मेक पीपल हैबिटेटेड टू डिपॉजिटिंग मनी देन योर बैंक। ये सही था गुरु फरद भाई, शुरुआत से मैं तेज हूँ माशाल्लाह। मोहसिन भाई कह रहे हैं वो चाह रहे हैं वीकली 1 लाख सेविंग हो, ये नहीं हो पाएगी। बहरीन का इन्होंने नोट जो है किताबों के बीच में बिल्कुल फांस के रखा है। कमाल भाई मैं कुछ देर में कॉल लगाऊंगा। गाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया चाय पी रहे हैं। शायद भाई कह रहे हैं इन्होंने 1500 रियाल सेव किए हैं। ताहिर भाई ने मैसेज किया है, ताहिर भाई बता रहे हैं ऑलरेडी फ्रेम द कॉइन्स। ताहिर भाई ने तो कॉइन जमा करके उन्हें फ्रेम करा के दीवार पर लगा रखा है। ताहिर भाई आप एडवांस मोड में खेल रहे हैं गेम। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ये हम सेराकी लोग ऐसे बहुत होते हैं, मेरे चाचू भी सेम हैं। कैसे हैं आसिम भाई, सेराकी लोगों के बारे में क्या क्वालिटी बता रहे थे आप? सॉरी उस टाइम पे कॉल भी था ना। एक मैसेज है, हम 10 कतरी रियाल क्या, हम 10 साल कतर में अभी तक सेविंग के नाम पर कुछ नहीं किया। हाथ मिलाइए, इसी बात है मुबारक भाई। एक मैसेज है, इनको शो में बुलाओ चाचा को ना, मुझे पता है एवरीबडी जस्ट वॉन्ट्स चाचा इन द शो। इरफान भाई कहते हैं डाका मतलब रॉबरी, अच्छा डाका, हाँ ओके नाउ आई गॉट इट। मेहर भाई ने मुझे अपना वॉलेट दिखाया है, 5 रियाल का नोट नज़र आ रहा है ये मेहर भाई मुझे। अदील भाई ने मैसेज किया है, क्या कह रहे हैं अदील भाई, प्लीज़ स्टोरी सेंड करना। नहीं करूँगा, सॉरी कर दूंगा। देखो आ जाइए आपके पास। एक मैसेज आसिफ भाई का, कबीर कॉरपोरेशन बैंक आपकी आस्था नहीं करने वाला बैंक। इतना भी मुंह पे नहीं होना है ना, मतलब कोई खाता ही ना खोले। एक मैसेज है सोनू भाई का, KBD है ये क्या है। अब्दुल रऊफ भाई ने मैसेज क्या है, पहले नहीं मेला मेला है, ढीला कर दे मेला मेला पे। मैं भाई मैं डिसाइफर नहीं कर पा रहा हूँ। एंड 666-22-107 पे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है। एक मैसेज है, यही है बस अगली सैलरी मिलने तक। अच्छा हाई फाइव मेरे भाई। एक मैसेज है, कबीर अली बाबा बैंक श्रीलंका का 10 रुपये का कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आज भाई कह रहे हैं कबीर दीना बैंक। सही जा रहे हो भाई, एकदम सही जा रहे हो। तो मैं जो हूँ ना, देखो अभी कॉल करने का ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं 2 कॉल कर लेता हूँ बैक टू बैक। जमाल भाई आपसे पहले ज़रा एक इनका नंबर था तो मैंने पहले कॉल कर लूँ, भाई को कॉल करना रह गया था, तो इनको पहले कॉल की जाएगी, बाकी कॉल्स एक ही करके मैसेज करेंगी। ये हम कॉल करेंगी, ये हमने उसामा भाई उस्मान भाई कॉल करी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है?
0: मैं बढ़िया भाई, आपके क्या हाल है भाई जान? जो लोग सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे बैंक में खाता खोल लें और भूल जाए। तो हम इस बारे में मजाक कर रहे थे भाई सुबह सुबह। ये है क्या हो गया?
1: आपने सुना ब्लड बैंक? सुना आपने ब्लड बैंक?
0: बिल्कुल सुना है भाई।
1: तो उसके हिसाब से आप रखें भूख बैंक।
0: भूख बैंक क्यों भाई?
1: भाई आप भूख की और खाने की बात करते रहते
0: आज मुझे लग रहा है कि आप आज अलग जोन में भाई, का आज मूड नहीं है काम करने का।
1: अच्छा मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी कह लें वही सुनाऊंगा, ये गाड़ी में कुछ रखने के हवाले से।
0: अच्छा बताइए।
1: तो भाई आप पैसे पूछ रहे ना क्या रखते हैं, पैसे तो नहीं, मुझे कहानी अपनी याद आ गई है। मैं बहुत पहले 2005-06 में काम पे जाया करता था, तो जिधर जाता था एक अंकल से मिलने, एक विल्ला था जैसे पुराने होते हैं, तो एक छोटी सी झाड़ से गुजर के जाना पड़ता था।
0: ठीक है।
1: तो ऐसे जल्दी होती थी सुबह सुबह, कुछ खाने में मतलब नाश्ता करने को नहीं मिलता था, जल्दी जल्दी बस नींद पूरी करके निकल। तो मैं अक्सर गाड़ी में वो रखता था ड्राई फ्रूट, ऐसे कुछ बादाम वादाम ये। तो भाई वो खाते जा रहा था, रोज मेरी आदत थी निकलता हाथ में रखता था, वो खाते जाता था। और मैं सिखाया गया था शुरू से ही कि जैसे ही कोई चीज नीचे गिर जाए खाते हुए, जैसे रोटी या कुछ भी, तो उठा के उसको साफ करके बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, उसको साफ होती है।
0: ठीक है।
1: तो उस दिन मेरे हाथ से ऐसे भाई बादाम गिरा मेरे खाते हुए ना, तो मैं इतनी जल्दी में था तो मेरे जेहन में वो बात भी थी कि उठाना, फिर मैंने कहा चल यार छोड़ अभी निकलते हैं, लेके जाएगी। तो मैं

0: चला गया, तो नेक्स्ट डे फिर उधर वही रूटीन में गुजर रहा था। तो मेरे जहन में ऐसे ख्याल आया यार कल बादाम गिरा था मेरे हाथ से, तो उधर क्या नीचे देखता हूँ तो भाई बादाम अंदर से खाली है और उसका कवर जो है ना छिलका जो ब्राउन रहता है और अंदर से कीड़ियां नजर आ रही है, छिलका वही है और बादाम खा लिया कीड़ियों ने।
1: अच्छा,
0: तो पॉइंट पे मेरे दिमाग में एक चीज आई, यार ये मेरे हाथ से बादाम गिरा नहीं था, ये गिरवाया गया था, इनका खाना था ये।
1: अरे भाई इतनी गहरी बात कर, मैं कहानी में इतना इन्वेस्टेड था, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ बादाम का क्या हुआ
0: भाई, बादाम कीड़ियां खा गई वो उनका खाना था, अल्लाह ने उनका रिज कैसे गिरवाया मुझसे।
1: बहुत बढ़िया भाई,
0: तो तब से वो मुझे बात क्लिक हो गई। आपने वो इसका कोई रिलेटेड तो नहीं था आपके मौजू से, लेकिन आपने जो पूछे थे गाड़ी में क्या कितने,
1: मुझे सच में लगा ये कहानी गाड़ी तक जाएगी लेकिन ये कहानी कहीं और ही चली गई,
0: नहीं ये कीड़ियों तक गई है भाई।
1: अच्छा भाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई बात करने के लिए भाई, जजाक अल्लाह।
0: आप जल्दी में अभी,
1: हाँ भाई कहानी सुनाना,
0: हाँ
1: ठीक है तो सुनिएगा भाई, डन मेरा भाई, ओके भाई ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो मैं बहुत इन्वेस्टेड था, मुझे लगा बादाम गाड़ी तक पहुंचेगा पर कीड़ियां खा गई उसे। तला भाई ने मैसेज किया है, KTB बैंक कबीर तला ब्रदर, आपकी अमानत हमारी इनकम आपकी अमानत हमारी इनकम इज अ वेरी ग्रेट टैग लाइन। लगते हैं कबीर भाई को कॉल, क्या भाई कबीर को कॉल की है, सर्वर भाई को नहीं, भूख बैंक मतलब भाई मैं भी वही सोच रहा था। हाँ तला भाई कर ही दो फिर, रियाज भाई ने मैसेज किया, भाई ये सेविंग का क्या मतलब होता है, मेरे पास जब कॉइन्स आते थे उस पर दो काम होते थे, कड़क चाय और एक कॉइन की च्युइंगम ले लेता, बट मैं तो च्युइंगम का भाई अभी रियाज भाई वो रखा हुआ है डब्बा बढ़िया वाला। नदीम भाई कह रहे हैं हम रिस्क भी हमारे बैंक में आएगा कबीर भाई बादाम की तरह, क्या भाई हमारा रिस्क भी हमारे बैंक में आएगा, क्या बात है क्या बात है। एक फ़ोटो भेजा भाई ने, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कार्ड ही भेज दिया, मुझे क्या करने का इसका, डराया मत करो यार मैं क्या करूँ इसका। आज मैंने मैसेज किया स्टोरी ओनली कबीर भाई, तो भाई मेरा सवाल है तो इसमें ग्रेविटी कहाँ गई, यहाँ पे इनसे पूछना चाहिए था आपको ग्रेविटी कहाँ गई। मलिक वकास साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग कबीर, लक्ष्मी चिटफंड और प्रिंस भाई कह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, बिल्कुल ब्रो आप अपने तिजोरी का कोड बताइए सब अवेलेबल है हमारे यहाँ। एक मैसेज है समीर बहन के, लिखते हैं कबीर भाई योर फ्यूचर इज क्लियर, ना पैसे जमा होंगे ना किसी को टेंशन होगी और ना मैं जमा करने दूंगा और एक मैसेज है बाकी सब मैंने पढ़ दिया ना, हाँ मैंने पढ़ दिया ऑलमोस्ट ये ओके। कोई नहीं रहना चाहिए, कोई नहीं रहना चाहिए भाई, कोई अगर गलती से मैसेज रह गया तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ, गुस्सा नहीं करना, दूसरे शोज में जाके फिर गुस्सा निकालते हैं लोग,
2: मेरा तो वो सुबह वाली थी वो सुनते ही नहीं है मेरा मैसेज
1: अस्सलाम वालेकुम भाई, जब मेरी सैलरी कम थी जब तब सेविंग्स नहीं होती थी, जब मेरी सैलरी बढ़ गई तब भी सेविंग्स नहीं होती, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम इनकम अमाउंट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे माइंड में है। हकीम साहब हाथ मिलाइए। और एक मैसेज है ये माज भाई का, सेविंग्स के नाम पर मेरे पास घर में मोनोपोली के नोट्स हैं, इतना गरीब हूँ कोई मदद करो। बहुत कैजुअल तरीका नहीं आपका मांगने। सुजीत भाई लिखते हैं कबीर भाई मेरी भी बिल्कुल सेविंग नहीं हो रही, मेरे पॉकेट में 110 रियाल हैं, मेरी पॉकेट में वॉलेट ही नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप। और एक मैसेज कबीर भाई मैंने 5 साल में, ओ भाई साहब सोनू भाई का सुनिए, सोनू भाई ने पिछले 5 सालों में 35,000 रियाल सेव किए हैं भाई, मेरा नहीं पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा मैंने सबका, एक सेकंड को। इश्तियाक उस्मानी साहब कह रहे हैं हमारा बैंक सबसे सेफ क्योंकि यहाँ से पैसा बाहर निकल ही नहीं सकता। इश्तियाक भाई मैं सोच रहा हूँ आपसे पार्टनरशिप करूँ, वेरी नाइस चॉइस, तो मैं आप और तला भाई मिलके खोल लेते हैं एक बैंक। इन्होंने लिखा है KSB कबीर सेविंग बैंक, रिश्ता भरोसे का नहीं माजिद भाई आप हमारे बैंक पे ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा रहे। एक मैसेज है यार इस बैंक में बेगम को लॉकर में रख सकते हैं, चाबी समंदर में फेंक देना ये जीशान भाई आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं, आप बहुत डेंजर हो रहे हैं आज, आज जीशान भाई कतई मूड में। एक मैसेज है कबीर भाई गरीबों का दुश्मन ये क्या बात है कबीर लेमर बैंक, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये उजैर इकबाल साहब का मैसेज है, फिर कबीर बैंक वेयर द वर्ल्ड कम्स टू सेव वेयर द वर्ल्ड लॉस्ट इस मनी 2006 में। अच्छा ये बता रहे हैं 2006 में इनकी सैलरी 650 रियाल थी भाई, सलूट सलूट सलूट। और दो मैसेज और पढ़ दूँ, फॉर मी 70 लैक सेव्ड, अरे भाई साहब छह सालों में 70 लाख, ये 70 लाख क्या रियाल है रुपी है ये बताओ मेरे को, क्योंकि अगर ये रियाल है तो फिर भाई आप मुझे मैसेज कर ही क्यों रहे हैं हायर कीजिए मुझे, तब तो उसमें मैसेज करते कल की स्टोरी ज्यादा असर हो गया कबीर भाई आप पे सीरियसली। अच्छा रुपी 70 लाख भाई 6 सालों में अ वेरी गुड अमाउंट। ऑलराइट, तो कुल मिला के समझ में आ गया देसी लोग सेव नहीं कर पा रहे, बस बातें कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ अगली अब कहानी आने वाली है, तो आज की कहानी के बारे में मैं कुछ इतना बता देना चाहता हूँ कि आज की स्टोरी डिफरेंट है, ऐसा इसको मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, और ये कहानी मेरे पास बहुत बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, और आज मैं ये कहानी जो है आपको सुनाने वाला हूँ। तो आई डोंट नो इससे पहले आपने सुनी है नहीं सुनी, बट आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ अलग लगेगी ये कहानी। सो रेडी ऑर नॉट, आज की कहानी आ रही है सिर्फ और सिर्फ एक गाने के बाद, और जो भी लाइव सुनने वाले हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा इन केस यू आर ट्यून्ड इन टू मी राइट नाउ। ऑलराइट शुरू करें। ओके नहीं पैसे वाला सॉन्ग नहीं चलाऊंगा अभी, मैं थोड़ी देर में चलाऊंगा वाला, क्योंकि दो लोगों को कॉल नहीं करी है वो पहले से गुस्से में बैठे। शुभ की आवाज स्टिल रोलिंग इसके उस पर, आज की कहानी मैसेज कर दे रहा भाई 7:33 by the clock.

ये हमारे इरफान भाई कह रहे हैं ये शुभ का ठंडा गाना है, तो अब एक काम करो दोनों हाथों को गुनगुने बकेट में भर के पानी उसमें डाल लो भाई इरफान भाई, यो ही तरीका है भाई। अच्छा अब जरा मैं कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ। सो जैसे मैंने कहा था इस कहानी को मैंने बचा के रखा था बहुत टाइम से, मैं सोच रहा था कब एंड फाइनली दिस इज द टाइम। तो अब पूरी रिसर्च करने के बाद ये मैं कहानी आपको सुनाऊंगा एंड आई एम प्रीटी श्योर ऐसी मैंने इससे पहले नहीं सुनाई है। सो सबसे पहले तो मैं ही रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। आज का किस्सा भी लेकिन एकदम असली है, तो तैयार हो जाइए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लेट्स बिगिन। तो जो आज का किस्सा है ना, इसे सुनाने के लिए मैं एक बहुत ही खास जगह पे इस कहानी को ले जाऊंगा और एक खास एयर में। तो ये साल जहां से कहानी शुरू होती है, दिस वॉज 1998, एक शख्स का जन्म हुआ था एक बहुत ही अजीब जगह पे। मैं इस जगह को अजीब बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया भी इसको अजीब ही बोलती है। तो री जोंग पैदा हुआ शहर में नॉर्थ ऑफ प्योंगयांग, यानी कि नॉर्थ कोरिया में। जिनको पता है नॉर्थ कोरिया के बारे में वो जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया कैसी जगह है, स्पेशली उसका जो कैपिटल है प्योंगयांग और उसका भी जो नॉर्थ है, इट्स अ ब्रूटल। आप जब पढ़ेंगे उसके बारे में तो आप हर सेकेंड अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे कि आप जिस जगह पर हैं उसके लिए। बहरहाल जब वो 7 साल का हुआ प्योंगयांग में, तो री जोंग अपने क्लासमेट्स से कहीं गुना आगे था। जहां उसके क्लासमेट्स मैथ्स की क्लास में सब्सट्रैक्शन और एडिशन जोड़ घटाव कर रहे थे, 7 साल की उम्र में री जोंग एलिमेंट्री करिकुलम पूरा का पूरा सफा चट कर चुका था। मतलब वो मैथ्स के सब्जेक्ट में बहुत आगे था। टीचर्स जो उसको पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो भी देखते थे कि यार ये तो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, किसी मशीन की तरह हिसाब किताब करता है। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। अब अगर ये टैलेंट कहीं और किसी मुल्क में होता तो शायद इसका ट्रीटमेंट अलग होता, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर किसी बच्चे में टैलेंट दिखता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। वहां इसको तारीफें नहीं मिलती, इसको एक किस्म का हथियार बना दिया जाता है। री जोंग के टैलेंट की वजह से उसे एडमिशन दिया गया प्योंगयांग इलीट स्कूल में, जो कि गिफ्टेड यूथ के लिए है। उसका नाम भी यही है, इलीट स्कूल फॉर गिफ्टेड यूथ। यानी कि बाहर से जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये एक एकेडमी, एक कॉलेज नजर आएगा, आपको लगेगा वाओ यहां पे बहुत किस्मत से एडमिशन मिलता होगा। लेकिन जब आप अंदर से देखेंगे तो ये बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ पे हर क्लास मॉनिटर्ड होती है, बहुत ही सख्ती के साथ सर्विलेंस है, बहुत सख्ती है, हर दोस्त पर नज़र रखी जाती है, हर बच्चे पे नज़र रखी जाती है, हर ख्याल को भांपा जाता है और हर अच्छे स्टूडेंट को अलग से देखा जाता है। अगर स्टूडेंट गुड है तो वो काम के लिए है, वो हमारे मुल्क के काम आएगा। और अगर वो बेस्ट है, मतलब बेस्ट है जैसे री जोंग था, तो वो कंट्री की प्रॉपर्टी बन जाता है नॉर्थ कोरिया में। जब री जोंग 15 का हुआ तो री जोंग लोकल कॉम्पिटिशन्स में सबसे आगे था, जितने भी मैथ्स कॉम्पिटिशन होते थे, और फुल डोमिनेशन, कब्जा। जब वो 16 का हुआ तो नेशनल टीम में उसे शामिल किया गया और ये था फॉर इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। अब आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अब 4 साल ये लड़का लगातार अपने मुल्क के लिए जीता, 4 साल, सबसे पहले थाईलैंड पे, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, हांगकांग, सब जगह से सिल्वर मेडल जीत के आए 2013, 14, 2015, 16 में। अब ये एक ऐसे नेशन से बिलोंग करता था नॉर्थ कोरिया से, जहां इज्जत का कबूतर भी उड़ता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, इज्जत नहीं मिलती। आप मेडल मर्जी जितने मर्जी ले आइए, री जोंग को ये बात पता नहीं थी, उसे ये चीजें नॉर्मल लगती थी क्योंकि री जोंग ने अपने मुल्क के बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। पर जब उसे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, जब वो बाहर निकला नॉर्थ कोरिया से, तो उसे एक अलग ही नजरिया दिखाई देने लगा।
एक उसका पर्सपेक्टिव बदल गया, क्योंकि अब उसने बाहर की दुनिया देख ली और नॉर्थ कोरिया को समझ में आया क्योंकि ये बाहर की दुनिया देख रहा है तो इस पर अब लगाम कसनी पड़ेगी। मगर तब तक ये थोड़े से लेट हो गए थे। जब तीसरे ओलंपियाड के लिए ये बाहर गया यानी 2015 में, तो री जोंग थाईलैंड से वापस आया नॉर्थ कोरिया की तरफ और सोचा उसने कि बहुत सारी तारीफें मिलेंगी। मगर इसका ठीक उल्टा हुआ। जब वो जीत के आया तो उससे सवाल जवाब हुए, उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, उसके टीचर्स से। मतलब एक ही था, नॉर्थ कोरिया को डर था कि इसने अब बाहर की दुनिया देख ली है, कहीं ये भागने का ना सोचे। तो उन्होंने उसको कहा कि अब से तुम हमारे लिए काम करोगे। हाई स्कूल से सीधा क्लासिफाइड यूनिट में उसे रख दिया, यानी कि अब उसे हैकिंग में यूज किया जाएगा, उसे एक बंकर में रख दिया जाएगा जहां उसका कोई भी फैसला उसका नहीं होगा, कोई चॉइस उसकी नहीं होगी, जिंदगी यही हो जाएगी। फॉरएवर मॉनिटर्ड, पूरी जिंदगी भर उसको मॉनिटर किया जाएगा, आइसोलेशन में फॉरएवर ट्रैप्ड रहेगा और दिन की रोशनी उसे बिना इजाजत के देखने को नहीं दी जाएगी, सारे के सारे फैसले दूसरे करेंगे। री जोंग इस वक्त 17 साल का था। जस्ट इमेजिन कि एक 17 साल का लड़का जिसने अब बाहर की दुनिया देख ली है, वो आज़ादी का एक घूंट पी लिया है, तो उसके लिए ये बहुत भारी था। वो अब एक्सेप्ट करने को राजी नहीं था। कॉम्पिटिशन्स के दौरान उसने कई सारी नई चीज़ें देख ली थी जो आपके और मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, मगर उसके लिए वो चीज़ें। अब ज़रा आपको ये जो कहानी है ये उस 17 साल के बच्चे के माइंड से सोचनी होगी। वो अपने फेलो स्टूडेंट्स को देखता था कि यार ये तो आपस में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ये बिल्कुल खुलेआम इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। वो अपने पड़ोसी मुल्क साउथ कोरियन के बच्चों से बात करता था सेम भाषा में, तो उसे लगता था यार ये तो अलग दुनिया से हैं। और जब वो वापस आता था अपने मुल्क प्योंगयांग में, तो उसे लगता था कि यार ये क्या जगह है। और इस वजह से उसके दिल में ये आ रहा था कि मैं भागूं तो भागूं कैसे। मगर माइंड में उसके एक मैपिंग चालू थी, वो गिन रहा था अपनी जिंदगी के दिन जहां बाकी बच्चे ओलंपियाड के दौरान एकदम फ्रीली घूम रहे थे, वहीं इसके बाथरूम ब्रेक्स को भी गिना जा रहा था। मगर उसने फैसला कर लिया था कि मैं भागूंगा। पर 17 साल के लड़के को अंदाजा तो नहीं था कि भागेगा कैसे, क्योंकि भागना आसान नहीं है। नॉर्थ कोरिया के जो बॉर्डर है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली सिक्योरिटी वाला बॉर्डर, DMZ, तो उसे क्रॉस करना आसान नहीं है। माइनफील्ड्स है, सर्वेलेंस है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भागता है तो उसके फैमिली वालों को सजा मिलती है और मिलती ही चली जाती है। मगर उसने ठान लिया था कि उसे भागना है। और 2016 वाला जो ओलंपियाड था हांगकांग में, यह उसका आखिरी मौका होने वाला था। उसे पता था कि हांगकांग में वहां पे साउथ कोरियन कॉन्सुलेट्स होंगे जो शायद उसे असाइलम दे दें, मतलब उसे बचा लें, उसे नया पासपोर्ट दे दें। मगर ये उसकी आखिरी ट्रिप होने वाली है, ये आखिरी चांस है, इसके बाद वो आज़ादी के सपने देख भी नहीं सकता है। री जोंग ने इसके बारे में पहले से ही अपने फादर से बात करने की सोची। वो अपने फादर के पास गया और उन्हें सब बताया कि मैं भाग जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। उसके प्लान को सुनने के बाद उसके फादर, जो खुद मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो सुन रहे थे। आंखों में डर था, आंखें नम थीं, मगर उन्हें फख्र भी था इस बात का कि उनका बेटा उनके सामने बात करने को तैयार है। क्योंकि नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल फादर सन कॉन्वर्सेशन नहीं है कि जैसे हम कह देते थे कि अपने अब्बा से कह दिया अब्बा मैं जा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों के साथ और बात वहाँ ख़त्म हो गई। यहाँ पे बात आप समझिए, री जोंग अपने फादर को कह रहा है कि वो कंट्री छोड़ के भाग जाना चाहता है और उसे ये पता है कि उसके भागने की सज़ा उसके फादर को मिलेगी और फादर भी जानते हैं कि सज़ा उनको मिलेगी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, मना नहीं किया। उन्होंने अपने पास से $200 जो उस करेंसी में थे वहाँ की, वो जमा किए थे, वो उसके हाथ में रख दिए, ये जानते हुए भी कि पूरी फैमिली को सजा मिलेगी क्योंकि वहां पे 3 generation को पनिश किया जाता है। उसके फादर तैयार थे ये सब झेलने के लिए। उन्होंने अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को गले लगाया और ये शायद आखिरी बार वो उसे गले लगा रहे थे। और री जोंग भी जानता था कि आखिरी बार अपने बाप को गले लगा रहा है, अपने बाप के दिल की धड़कन को आखिरी बार सुन रहा है। वो कभी नहीं देख पाएगा उन्हें, ना उसे पता चलेगा।
ना वो कॉल कर पाएगा। तो तैयारी में लग गया भागने की, उसने अब हिम्मत बना ली है तो बना ली है। हांगकांग के जाने की तैयारी के लिए उसने अपनी किताबें, $200 और अपना बस्ता पैक करके निकलने का फैसला किया। अब वो 18 साल का हो चुका था। जुलाई 2016 हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 6 मेंबर्स की टीम तैयार हो रही थी, उसमें सारे जीनियस बच्चे मौजूद थे। सामने से देख के लग रहा था कि रीजोंग बहुत खुश है, लेकिन उसके अंदर दिल में भागम दौड़ी चल रही थी। उसका प्लान बड़ा सिंपल था, उसे मेडल से ज्यादा भागने का ज्यादा बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, पर उसके लिए लॉकडाउन प्रोटोकॉल भी थे। हेड कोच ने सारे के सारे पासपोर्ट्स रख लिए थे, उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, उसकी हर कदम को मॉनिटर किया जा रहा था। और जब भी वो बाहर जाएगा उसके साथ 4-5 लोग साथ में चलेंगे जो हर एक चीज पर नजर रखेंगे। रीजोंग मुस्कुरा रहा था जगह जगह देख के और साथ में सबके रूटीन को नोटिस कर रहा था। कॉन्टेस्ट का दिन था, लोग ग्रुप एक्टिविटीज में थे, दिन में ग्रुप एक्टिविटीज और रात में कर्फ्यू। उसने डिसाइड किया कि बहुत जल्दी वो विंडो ढूंढनी पड़ेगी जहां से वो भाग सके, यानी वो वक्फा, वो टाइम। और से याद आया एक पेपर को देख के जिसमें फ्लाइट की डिटेल्स लिखी हुई थी। वो जानता था कि कंपटीशन एंड होगा और फ्लाइट वापस ले जाएगी नॉर्थ कोरिया, जहां वो जाना नहीं चाहता। तो फ्लाइट क्योंकि दिन की है तो सुबह का टाइम है उसके पास। ओलंपियाड के दौरान उसने टीचर्स और प्रोफेसर्स को फ्रीली घूमते हुए देखा। वो समझ गया कि ये महज नॉर्थ कोरिया के वो गार्ड्स हैं जिनके पास कुछ नहीं है, इनकी कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं है, इनके पास ना कोई हथियार है ना कुछ है, ये सिर्फ आंखों के डर से डराएंगे। तो यहां तो उसका डर निकल गया था। और उसे ये भी पता था कि हांगकांग नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं है, हांगकांग आइलैंड्स और डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, तो यहां अगर वो खो भी जाएगा तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा उसे। तो प्लान बड़ा सिंपल था, पहला स्टेप ये था कि वो अपने डोम से भागेगा बिना सबको जगाए। उसके बाद उसे जाना है निकल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हांगकांग के, और वहां पे भीड़ का हिस्सा बन के उसे कोई साउथ कोरियन ढूंढना है। फिर उसे ढूंढने के बाद बंदे या बंदी उससे साउथ कोरियन कॉन्सुलेट का रास्ता पूछना है, और फिर वहां जाने के बाद फिर आगे की देखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क एक 18 साल का बच्चा ले रहा है। अब उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है कि उसे रास्ता पता हो, तो इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और सही भी पता था कि एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचेगा तो एक किस्म का न्यूट्रल ग्राउंड है, वहां पे मैप्स हैं, वहां पे टिकट काउंटर्स हैं, और शायद वहां भीड़ में वो गुम हो जाएगा। वक्त आ गया है चेहरे पर से नकाब उतार देने का, और यही वो सोच रहा था। जुलाई की 16 तारीख थी, वो अपना 4th सिल्वर मेडल जीता। फोटो सेशन हुआ, रीजोंग को कहा गया मुस्कुराओ, वो मुस्कुराया क्योंकि उसे हुक्म की तामीर करने की आदत हो चुकी थी। मुस्कुराया वो, दिल उसका तेज धड़क रहा था। देर रात को ऑर्गेनाइजर्स ने पार्टी रखी थी क्योंकि आखिरी ओलंपियाड था, वहां पे पार्टी हुई, परफॉर्मेंसेस हुई, लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। और रीजोंग को पता था कि 17 जुलाई को दोपहर 2 की फ्लाइट है, जिसका मतलब कि सुबह का ही टाइम है उसके पास भागने के लिए, जब सारे हैंडलर्स थके हुए होंगे, गार्ड्स सो रहे होंगे। वो कर्फ्यू लगते ही डोम की तरफ गया, अपने डोम में जाकर रूममेट्स के साथ फिर बंक बेड पर जाके लेट गया। लेकिन बाकी जब लेटे हुए थे आराम से तो ये जूते पहन के लेटे हुए था, एक एक कदम गार्ड्स के सुन रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था। उसने अपने बैग को 10 दफा देखा, उस बैग में अपना सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रखा, क्योंकि उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, तो जो सर्टिफिकेट वो जीता है वही एक लौती उसकी आइडेंटिटी है। वो $200 जो उसके फादर ने दिए थे वो उसने अपने मोजों में रखे, और फिर रात के 2 दबे पांव हॉलवे की तरफ बढ़ा। जब वो हॉलवे की तरफ आया तो वहां पे कोई भी नहीं था, एग्जिट साइंस बने हुए थे। वो चुप कैसे निकला, लॉबी तक पहुंचा, लॉबी में एक गार्ड था जो सो रहा था। इसने अपनी सांस रोकी और फिर धीरे धीरे उसको क्रॉस करके बाहर निकला। और फिर जब ये बाहर निकला तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। अब इसने जैसे तैसे हिम्मत करी, बाहर आया और टैक्सी रुकवाई,
और फिर जब वो रुका टैक्सी वाला तो उसने बोला अपनी ब्रोकन इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में, और बोला कि हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो उन्होंने उस कैब वाले ने कहा ओके फाइन, और वो कैब में बैठा. दिल में तूफान था, वो अकेला था और वो जानता था कि दो घंटे के बाद जब सूरज निकलेगा तो उसे ढूंढा जाएगा, सबको पता लग जाएगा. लेकिन फिलहाल नोबडी नोज. वो बार बार पीछे देख रहा था जब कैब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. पीछे आ रही हर गाड़ी की हेडलाइट ऐसा लग रहा था कि जैसे उसी के लिए. ये पहली बार था जब वो कैदी जैसा महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आदत हो चुकी थी. समझने कितनी अजीब सिचुएशन है कि वो अभी कैदी भी नहीं है मगर उसे जीना भी नहीं आता. क्या हो गया एयरपोर्ट पे, कैसे बात करते हैं, किसके पास जाऊंगा. खैर वो सुबह के 4 बजे के करीब हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था. उतरते ही उसने देखा फ्लोरेसेंट लाइट, डिपार्चर एरिया में भीड़, रीजोंग वहां पर उतरा, अनाउंसमेंट हो रही है, डिजिटल सायरन्स बज रहे हैं. ये सब देख के उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था और वो खुश भी था कि फाइनली वो यहां तक तो पहुंच पाया जैसे तैसे. और वो आगे बढ़ता गया एयरपोर्ट के अंदर. वो ढूंढ रहा था कि कोई साउथ कोरियन दिख जाए, कोई दिख जाए. उस

कोई जगह एक लोगो बना हुआ दिखा एक टिकट काउंटर पे, वहाँ पे एक स्टाफ थी जो का अपना काम कर रही थी, और उसके पास गया और उसने फिर हिम्मत करके बोला अपनी कोरियन भाषा में, बोला कि मुझे साउथ कोरिया जाना है, आप मेरी मदद करेंगी? वो लड़की अपना काम छोड़ के उसने ब्लिंक किया, बोली यस। और फिर जब अगली बात इसने बोली तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई, इसने बोला कि मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ। उसकी आंखें लड़की की एकदम बड़ी हो गई, वो 3 मिनट के अंदर अपने स्टेशन मैनेजर को वहाँ पर लेकर आई, जिन्होंने री जोंग को साइड में किया और उसे एक जगह ले गए जहाँ पर उसे कोई ना देख पाए। उसने वहाँ पर सब बताया, एक एक डिटेल दी, अपना सारा डर बयां कर दिया। मैनेजर सुन के हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि कोई नॉर्थ कोरिया से भागने वाला एयरपोर्ट पे मिल जाए। और फिर एक जरूरी कॉल साउथ कोरियन कॉन्सुलेट को लगाई गई, वहां पे सारी की सारी डिटेल्स दी गई और चेक किया गया कि ये बंदा सच बोल भी रहा है कि नहीं, और पता लगा कि हाँ एक लड़का है जो ओलंपियाड के लिए आया है और वो भाग जाना चाहता है और वो मिसिंग है। जो मैनेजर थे उन्होंने बोला बेटा साउथ कोरियन कॉन्सर्ट वाले कह रहे हैं कि आपको अकेले जाना है, अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। उसने कागज पे एक एड्रेस लिख के दिया, फार ईस्ट फाइनेंस सेंटर नंबर 6 हेयरकोर्ट रोड हांगकांग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये एड्रेस लिख के दिया। और री जोंग ने थैंक यू बोला, एक अजनबी ने पहली मरतबा उसकी मदद करी थी। री जोंग फिर से बाहर निकला, फिर से टैक्सी बुलाई और फिर से इधर उधर देखने लगा। दूसरी ओर जहां से वो भागा था, ऑफकोर्स वहां पता लग चुका था कि एक लड़का वहां से भाग चुका है, वहां पे पैनिक का मोड हो चुका था। उन्होंने फोटोज रिलीज कर दिए थे। अब एक रेस जारी थी, वो लोग इसे पहले ढूंढ पाएंगे या ये साउथ कोरियन कॉन्सुलेट को, ये रेस चालू थी, कौन किसको पहले ढूंढेगा। क्योंकि अगर इन लोगों ने इसे पकड़ लिया तो फिर खेल खत्म है, इसे पकड़ने के बाद इसे वापस साउथ कोरिया भेज दिया जाएगा जहां पे खत्म है जिंदगी, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर हिम। अभी टैक्सी ड्राइवर जो इस बात से अनजान है कि उसकी बैक सीट में जो लड़का बैठा हुआ है वो कहाँ जा रहा है, वो आराम से अपने मस्त मगन टैक्सी चला रहा था और उसने एड्रेस फॉलो करते हुए एक जगह पे गाड़ी रोकी जहाँ पे शीशे की बिल्डिंग थी, वहाँ पे लड़का उतरा और बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। री जोंग ने खिड़की की तरफ जब पूरी बिल्डिंग को देखा तो समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर जाना कहाँ है, बिकॉज कहीं पर कोई साइन नहीं था, कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया। मगर फिर वो आगे बढ़ा और लॉबी के अंदर गया, जब लॉबी की तरफ गया तो उसने देखा वहां पे डायरेक्टरी बनी हुई थी और वहां पे लिखा हुआ था 5th फ्लोर साउथ कोरियन कॉन्सुलेट। वो एलिवेटर में गया, जिंदगी में कभी लिफ्ट में नहीं चढ़ा था इससे पहले, और चढ़ा भी था तो बटन नहीं दबाए थे तो उसके लिए बहुत नई चीज थी। वो एलिवेटर के अंदर गया, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड उसे देख रहा था, फिर उसने देखना बंद किया क्योंकि चलो बच्चा है खैर क्या ही करेगा, एंड ही इग्नोर्ड। पर गेट बंद हुआ, 5th फ्लोर पे खुला, वो बाहर आया तो उसने देखा कि 2 सिक्योरिटी वाले वहां पे खड़े हुए थे, उनकी तरफ बढ़ते हुए उसके पेट में बल पड़ रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया वाले भी इसे ढूंढ रहे थे। वहां पे जब वो पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया और बोला कि अभी विजिटिंग आवर्स नहीं है। और फिर इसने रोना शुरू किया और बोला मुझे असाइलम चाहिए, प्लीज प्लीज। और जब उसने ये बताया अपने बारे में तो सिक्योरिटी वालों ने भी कहा ठीक है जाओ। अंदर वेटिंग एरिया में उसे बिठाया, सामने से एक साउथ कोरियन ऑफिसर उसकी तरफ आया और बोला तुम अकेले हो? री जोंग ने बोला जी मैं अकेला हूं, मैं वापस नहीं जा सकता, प्लीज मुझे वापस मत भेजिएगा। वो रोने ही वाला था, क्लोज टू क्राइंग। उसे पानी पिलाया, उसकी सारी रियलिटी सुनी और उसे कहा कि तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, डोंट वरी। और वो सुकून की सांस ले रहा था कि चलो शुक्र है मैं बच गया। मगर ये सेफ्टी टेम्पररी थी, वो यहां तक तो आ गया है, यहां से निकल के कहीं तो जाना पड़ेगा। तो स्टेज 1 तो पार हो चुकी है, अब क्या करेगा? चंद घंटों में उसके भागने की खबर जो फैल चुकी है वो हाईएस्ट लेवल पे जा चुकी थी, हांगकांग बीजिंग सब जगह नॉर्थ कोरिया वाले उसे ढूंढ रहे थे। नॉर्मल कपड़ों में पुलिस वाले साउथ कोरियन कॉन्सुलेट की बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए थे।

वो अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि फिर वो कानून तोड़ने के बराबर होगा, लेकिन अंदर सिक्योरिटी वालों को बता दिया गया था कि बगैर आईडी किसी को भी दाखिल ना होने दिया जाए। ये सेम उसी बिल्डिंग में चल रहा था जहां पर अभी एंटर कर चुका था रीजोंग। हर किसी को डबल ट्रिपल चेक किया जा रहा था और रीजोंग को एक छोटे से कमरे में, एक स्टोरेज रूम के जैसा कमरा जहां पर खिड़कियां भी नहीं थी, वहां रख दिया गया था। अब वो यहां फंस चुका था। बाहर निकलने की कोशिश करी तो पिक्चर खत्म। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रूटीन बन गया, इस छोटे से कमरे में सुबह खाना दिया जाता था और उसके बाद बस यही कहा जाता था कि बेटा फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसकी फैमिली की भी खबर उसे नहीं मिल रही थी। वो जानता था कि उसकी पूरी खानदान को सजा मिल रही होगी उसके भागने की, या पता नहीं नहीं मिली होगी, उसे कुछ नहीं पता। उसे एक ऑफलाइन कंप्यूटर दे दिया गया था बगैर इंटरनेट का, जिसपे वो गेम्स खेल रहा था। एक ट्रेडमिल दे दिया गया था कि दौड़ता रहे। इनसाइड द ऑफिस बिल्डिंग स्टाफ हर दिन बस उसे दिलासे दे रहे थे और उसे कहा गया कि तुम साउथ कोरियन लैंग्वेज ढूंढो, सीखो बेटा, हमारा कल्चर सीखो, एक नई जिंदगी की तैयारियां करो। और इसी उम्मीद में हफ्ते चाहते चले गए और कॉन्फिडेंस उसका टूटता गया। नॉर्थ कोरिया में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। मीडिया तक में उसके चेहरे को वायरल कर दिया गया था, मगर वो ज्यादा फैला नहीं पाए क्योंकि दूसरी कंट्री थी। हर सुबह रीजोंग उठता था और सोचता था कि क्या होगा मेरे साथ। हर दरवाजे की दस्तक, हर फोन रिंग उसे डरा रही थी। बाय द लेट सितंबर और 70 दिन अभी तक हो चुके थे और एक अच्छी खबर, एक अच्छी दस्तक उसे दरवाजे पे आई। उसे खबर मिली कि बीजिंग वालों ने कह दिया है कि वो साउथ कोरिया जा सकता है। कामयाबी मिल गई है, एक ग्रीन लाइट मिल चुकी है। पेपर वर्क फौरन तैयार किया गया, उसका पासपोर्ट बनवाया गया, उसे एक अलग नाम दिया गया, टेम्प्रेरी वीजा तैयार किया गया एक टूरिस्ट के जैसा। ये था उसका गोल्डन टिकट। सितंबर की सुबह एक फ्लाइट में उसे रवाना कर दिया जाएगा। एक फ्रेश पासपोर्ट जिसपे नाम, नया नाम दिया गया ली जंग हो। ऑफिशियल जो उसे एयरपोर्ट की तरफ ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे वो मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। उसे अभी प्लेन बोर्ड करना था। जब तक जहाज उड़ नहीं जाएगा, डर भी नहीं उड़ेगा। एक अनमार्क्ड गाड़ी में जिसका नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो निकली वहां से। वो पीछे बैठा हुआ था अपने मुंह को ढके हुए और हांगकांग की स्काईलाइन को चुपके से देख रहा था। सुबह सुबह एयरपोर्ट पे पहुंचा, ऑफिसर्स ने उसे वहां ड्रॉप किया। ये वही एयरपोर्ट था जहां वो कुछ वक्त पहले मदद मांगने के लिए पहुंचा था। अब वहीं वो अंडर कंप्लीट सिक्योरिटी एक अलग दुनिया में जाने वाला था। वो इमिग्रेशन में पहुंचा, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसके पास नया पासपोर्ट था लेकिन स्टैंप, और उसके बाद वेलकम मिस्टर ली। कोई अलार्म नहीं बजा, किसी ने उसे रोका नहीं। विंडो सीट पे बैठा, सीट बेल्ट बांधी और आंखें बंद कर ली। जहाज के उड़ने का इंतजार। फिर जहाज उड़ा, नीचे की सिटी लाइट्स गवाही दे रही थी कि अब रीजोंग आजाद हो चुका है। 3 घंटे बाद वो सोल साउथ कोरिया में उतरेगा क्योंकि अब वो वहां का सिटीजन है। उसे स्पेशल अराइवल दिया गया, वेलकम किया गया उसके नए नाम के साथ, ली जंग हो। उसे इंटेंसिव प्रोग्राम में शामिल किया गया जहां पे वो आजादी से टीवी, इंटरनेट देख पा रहा था, चल पा रहा था बिना किसी सोशल नॉर्म्स के। एक अलग लैंग्वेज उसे सीखनी पड़ी बेशक, लेकिन उसके लिए सब कुछ नया था। उसे सीखना था कि मार्केट में कैसे चीजें खरीदते हैं, ग्रोसरी कैसे खरीदी जाती है, ग्रुप में कैसे बैठते हैं। ये सारा एक्सपीरियंस जो मेरे और आपके लिए बहुत आम होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। सोल साइंस स्कूल, हाई स्कूल में जब वो उसे दाखिला मिला तो उसके टैलेंट को पूरी दुनिया देख रही थी। 1 साल के अंदर उसने एंट्रेंस क्लियर किया और सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज है वहां का, वहां के मैथमेटिक्स की ब्रांच में उसे एडमिशन मिला। बहुत बड़ी बात थी।
री जोंग अपने माँ बाप के बारे में कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा। वो उन्हें कॉल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक कॉल बहुत भारी पड़ सकती है। वो आज भी सिर्फ दुआ ही करता है क्योंकि वो अपने माँ बाप के बारे में कभी नहीं जान पाएगा। एक इंटरव्यू में उसने बोला कि मैंने जो कुछ भी किया अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। एक बहुत भारी पर्सनल कीमत उसने चुकाई है इस आजादी के लिए जो बहुत बहुत भारी है। मतलब माजी का सौदा करना पड़ा उसे अपने मुस्तकबिल के लिए, पास्ट को पूरी तरह से बेचना पड़ा अपने फ्यूचर के लिए। प्रोफेसर्स को दिखने लगा उसका टैलेंट और वो बोलने लगा कि मुझे पढ़ाई करने अब अमेरिका जाना, क्योंकि वो खुश था। जिंदगी में पहली मर्तबा सुकून से कॉफी पी सकता था, लोगों से बात कर सकता था। अगले 2 साल नॉर्थ कोरिया में भी गुस्सा पनप रहा था। उन्होंने 2 साल तक ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने से कुरेज कर लिया था कि वो किसी को नहीं भेजेंगे। 2019 में नए प्रिकॉशन के साथ फाइनली प्योंगयांग से टीम निकाल के भेजी गई, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मगर री जोंग की कहानी फैल चुकी थी। अब मेरे और आपके लिए एकदम नॉर्मल है इंटरनेट चलाना, टीवी देखना, अपनी मन मर्जी से कहीं पे भी बैठ जाना। पर जब आप उसकी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करेंगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए थकेंगे नहीं, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है। दिस वॉज द स्टोरी और मैं चाहूँगा कि आप जो है इसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखें, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल, और ये बच्चों को भी दिखाएं। री जोंग की कहानी एक्चुअली में बहुत फैसिनेटिंग है और हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको थैंकफुल महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितना कुछ दिया है। सिंपल सिंपल चीज़ें जिसके लिए अलग दुनिया में लोग किस तरीके से सहते हैं। सो 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। डू लेट मी नो कि आज का किस्सा आपको कैसा लगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कुछ अलग सुनाने के लिए, बट आप भी बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं दो हवाला कबीर एफ एम 107 पे। आज की गानी मैंने सुना दी 8:06, आई होप आपको अच्छी लगी हो, बिकॉज ये थोड़ी अलग थी। मतलब ऑब्वियसली जो मिर्च मसाला चाहिए होता है आपको, वो कहानियाँ भी होती हैं, पर ये एक ऐसी कहानी है ना जो आपको बहुत ग्राउंडेड रखेगी, धरती पर रखेगी। जब भी आपको लगेगा ना कि यार ये तो नॉर्मल होता है, तब आपको ये कहानी याद आ जानी चाहिए कि नॉर्मल नहीं होता है भाई। टीवी चलाने से लेकर फ़ोन चलाना और खुल के कहीं पर बैठ जाना अपनों के बीच में नॉर्मल आपको लग रहा है, कुछ जगहों पर यह भी नॉर्मल नहीं है। इसलिए ये कहानी बेहद बेहद ज़रूरी थी। सो आई एम रियली हैप्पी कि इतने सारे मैसेज आए मेरे पास इस चीज़ के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी। यार मैंने मैसेज किया, स्टोरी तो भाई कतई बढ़िया थी, नेक्स्ट लेवल सर्वाइवल, जिस पे गुजरती है बस वही समझ सकता है। थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। ये मुझे मैसेज किया प्रिंस भाई ने, प्रिंस भाई जज़ाकअल्लाह, बहुत प्यार आपको। एक मैसेज है, वेरी गुड स्टोरी, थैंक यू। जमाल शेख साहब लिखते हैं, अमेजिंग भाई, कुदरत की नवाजिश पे सारी तस्लीम खाम करने की तलकीन है इस कहानी में। भाई साहब एकदम गाड़ी कहानी बता दी आपने तो, नाइस स्टोरी, करेजियस जज्बा है। जहाज़ में बैठने तक मुझे लगा कि आप इस बंदे को भी मारने वाले हो, पर बच गया। जी माजिद भाई, इसको बचाना बेहद ज़रूरी था भाई, नहीं तो फिर कहानी में वो मोड़ नहीं आता। मोहसिन भाई कहते हैं वेरी इमोशनल, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही मकसद था। तो आप कहानी के बारे में बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं 6662107 पर, और यू कैन गिव मी अ कॉल 4434377 पर, 4434377 पर भी कॉल की जा सकती है। तो ये है आज की कहानी का हिस्सा। एक मैसेज है, नीड टू शेयर इट। अरे भाई मैंने आपको ऊपर दिया तो है, वो चैनल देखो, ऊपर तो देखो वो चैनल है, उस पर जाना है। एक मैसेज है भाई, स्टोरी टेलिंग इज शानदार, थैंक यू सो मच भाई। भाई बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी पॉलिटिकल, हाँ तो वो है ही ना भाई, वो तो रहेगी मेरा भाई, थोड़ी नहीं पूरी की पूरी है। तला भाई कहते हैं बैंक ओपन कर लो अपना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई, इसी की उम्मीद थी मुझे आपसे। तब उस समय लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सच में हम लोग बस ज़रा सी इनकन्वीनियंस पे मूड ऑफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसी किसी अलग जगह पे जो लोग ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग भूल जाते हैं। एक्सट्रीमली बोन चिलिंग स्टोरी, आई वॉज जस्ट प्रेइंग ही डजन गेट कॉट अगेन। आई सर्च ऑन इंटरनेट एंड विल सी डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो, एंड कोरियर के नाम सुनते ही आई वॉज इवन मोर कंसर्न्ड। नहीं बहन, ये मैं बता रहा हूँ, ऐसी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं थोड़ी सी हैवी होती हैं, मगर दिखानी चाहिए, आफ्टर सर्टन एज बच्चों को भी देखनी चाहिए, बिकॉज ये जो एक अलग किस्म की क्या कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करने वाली कहानियाँ होती हैं, सुननी चाहिए, बहुत काम आती हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये स्टोरी का कुछ पार्ट इंडिया, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये जो आप कह रहे हैं वो अलग कहानी है भाई, ये प्लॉट इसका बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया होगा, पर ये असली कहानी है मेरी जान। 1998 में हुई है बेचारे के साथ। शेख इरफान अल खासमी साहब ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच, बड़ा गेट द पॉइंट, आप क्यों कह रहे हैं कि सिमिलर प्लॉट होगा एक टाइगर टाइप का, मगर वो है नहीं भाई। एक मैसेज, गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम बैक टू मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक टू यू कुरेशी साहब, अभी आए हैं आप। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, ये कहानी मैंने अभी आपके सुनाने के बाद पढ़ी, एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय योर स्टोरीज टेलिंग स्किल, द वे यू पेंटेड एवरी वर्ड सीम्स रियली विविड टू मी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच स्टोरीज, रियली मीनिंगफुल, एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद माई कजन्स एज वेल। अच्छा आप कैनेडा से हो, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ ये चार पांच लड़के हैं जो कैनेडा के क्या कहते हैं उसे, अरे यार वहाँ पे रहते हैं ये समझ लो, स्टूडेंट्स हैं ये, और वहाँ पे ये लोग कहानी सुनते हैं। तो थैंक यू सो मच आप चारों को, आपका नाम मैं भूल चुका, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मुझे वापस बता दीजिएगा, बट थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर से कहानी सुन रहे हैं, एंड यू काइंड ऑफ अप्रिशिएटेड इट, सो बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, कहानी को लेकर आप कुछ भी कहना चाहें तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा 6662107 पर, और मैं वेट कर रहा हूँ। एक भाई कह रहे कहानी मिस हो गई, अब तो चिड़िया उड़ गई, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा भाई साहब, अब थोड़ी फ़ायदा है, अब आप और सुनाइए, बाकी सब छोड़िए। और जैसे मैंने कहा आप कॉल भी कर सकते हैं 6662107 पर। एंड एक और मैसेज है, क्या कह रही हैं, अच्छा लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अब तक मैं गाना चला देता हूँ। बादशाह ने कहता गांधी 8:11 गुड मॉर्निंग, चाय पी लो जी।

0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 8:14 हो गए, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। ये वाले सुर नहीं लगते, बस बाकी तो आपको भाई गालित मजाक कर रहा हूँ। नॉट रियली एज गुड सिंगर। एक कॉल करने की, क्योंकि भाई ने मुझे बोला था कॉल करने के लिए और मैं कॉल नहीं कर पाया था। भाई साहब, आपका नंबर एक तो इतना VIP है ना जमाल भाई, टेंशन में आ जाता हूँ, मिलाऊँ कैसे मैं। तो मैंने कॉल कर दी है और उठा लो वीर जी, उठा लो चक्को फ़ोन। जमाल भाई को कॉल लगा दिया हमने, जमाल शेख साहब। जमाल भाई, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जमाल भाई सलाम अलैकुम, इन्हें उर्दू सुना दो। जमाल भाई परेशान कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मेरे भाई, कैसे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भाई।
0: जी मेरा भाई, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: कहानी तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन थी।
0: थैंक यू मेरा भाई।
1: कई एक लिहाज से बहुत अच्छी थी।
0: अच्छा, किस किस लिहाज से?
1: कभी कभार ऐसे मामले होते हैं, चाहे आप देखें, कि इंसान को ना हर पल ये होता है कि यार मेरे साथ अब आगे क्या होगा, ये लगता है कि यार कोई मुझे देख ना ले।
0: हाँ।
1: कुछ ऐसे मतलब छुपा के निकलने की कोशिश करता है वो।
0: हाँ।
1: जबकि वो उसको लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, है सही।
0: हाँ।
1: लेकिन कुछ लोगों की चीज नजरों में ये ऐसी चीज है कि अगर कहीं नजर आ गया, दिख गया, जरा सा भी वो हो गया तो बहुत बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा।
0: पर सोचो, ये बेचारे के साथ तो जो सीन है वो हम महसूस भी नहीं कर सकते, मतलब महसूस भी नहीं कर सकते आप कि किस सिचुएशन में भाग रहे हो।
1: कहानी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज तो खैर है ही वाला आपका, लेकिन होता नहीं कि एक आदमी कुछ ऐसी चीजें कहे कि जो उस वक्त इंसान ना सोचने पर भी वो सीन बिल्कुल महसूस सा करने लगे।
0: हाँ, अच्छा, ओके, थैंक यू।
1: और सबसे बड़ा लुब लबा मुझे इस कहानी का यही चीज समझ में आया कि हकीकत में अगर बहुत सारी चीजें जो बहुत आसानी से, बहुत इजिली, एकदम बिल्कुल हलवे की तरह जो हमें हमारे मतलब जिंदगियों में हमें दस्तयाब है, उन चीजों की कीमत ऐसे ही वक्त पर समझ में आती है कि ये चीजें मतलब
0: बिल्कुल भाई
1: कितनी वो है।
0: अब आप सोचिए, आपसे कहा जाए कि भाई आप किसी से बात भी करेंगे तो पूछ के करेंगे, तो आपको जो है कितनी चिड़ छूटेगी।
1: करेंगे जी जी है ना।
0: हाँ।
1: वो अगर होता है ना कि आप 24 घंटे समंदर के किनारे रहते हो, ऐसी जगह रहते हो जहां आपको मतलब कभी ये महसूस ना होता हो कि ये पानी क्या चीज है।
0: हाँ।
1: लेकिन आप किसी ऐसी सहरा में भटक रहे हो, गर्दिश कर रहे हो।
0: हाँ।
1: जहां आपको एक कचरा नजर पानी ना आए।
0: हाँ।
1: और आपका गला ऐसे सूखा हो कि बिना पानी के ऐसा महसूस हो रहा हो कि दम अब हलक से बाहर आ जाएगा, तो उस वक्त समुंदर के वो एक समंदर के सिर्फ एक दो चार कतरे की अहमियत समझ में आएगी। और तब आप इंसान को ये महसूस होगा कि यार वो जहां हम हमेशा पूरे जिस्म को डुबोकर तैराकी करते थे, आज अगर खाली उसका चंद कतरा ही मयसर हो जाए तो जिंदगी बच जाए।
0: क्या डिफाइन करते हो यार, मतलब आप तो क्या बताएं, मोनालिसा

0: पेंट कर देते हो यार अपने शब्दों से, क्या बात है भाई, मजा आ गया जमाल भाई, मजा
1: नहीं नहीं ऐसे हकीकत में हमारी जिंदगी में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसको हम एकदम आसानी से फरामोश भी कर चुके हैं कि इस जगह पर कम से कम भाई मैं तो इतनी बात कहूंगा जो भी लोग सुन रहे हो, मेरे भाई अगर हम मतलब खाना भी खा रहे हो ना पहले बीच में आखिर में कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया,
0: बेशक भाई,
1: ये तमाम चीजें उसी पे दलील करती हैं,
0: बेशक बेशक भाई, जब भी मैंने बोला ना
1: आसानी से अगर कोई चीज मैसर हो जाए ना तो उसको कभी ये मत समझिए कि यार नहीं यार ये तो नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल नहीं होती कोई चीज,
0: कोई भी
1: अगर वो आपकी आपके दस्त बर्दारी में ना हो कहीं, अगर आपसे क्या कहते हैं वो थोड़ी पहुंच से आपके बाहर की बात हो तब आपको ये महसूस होगा कि उस चीज की असल कीमत क्या होती है।
0: एकदम सही कहा भाई, जब भी तो मैंने कहा कंपेयर कर लेना इनके साथ, कभी भी अपने आप को पता लग जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हर एक चीज़ की इज्जत करेंगे आप, चलने से लेकर उठने बैठने तक की आपको लगेगा कि यार नहीं ये भी बड़ी चीज़ है। तो बेशक आपने बहुत खूब कहा जमाल भाई, और बहुत प्यारा
1: सही है भाई, अरबी का सच में अरबी का एक मकोला है
0: जी,
1: किसी भी चीज को जिंदगी में हकीर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, एक बात, और दूसरी बात हर चीज पर आप शुक्रगुजारी ऐसे करें कि वो खुश हो जाए।
0: नहीं बेशक भाई, ये जो कहानी थी मैंने इसलिए सुनाई भी, अमूमन हम थोड़ा मसालेदार कहानी होते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है ये भी सुना देते हैं क्योंकि इस तक कोई पहुंचेगा नहीं, हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह इतना है सहूलत कि हम अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो ये कहानी सुन के एटलीस्ट कुछ एक अलग मैसेज मिल जाएगा, सो कॉल्ड जो लोग मैसेज मांगते रहते हैं, मगर आपने बहुत अच्छा पुटिंग किया, मुझे
1: वो देखिए ना उसमें क्या कहते हैं परिंदे को जब कैद किया जाता है ना तो वो रोते रोते कैद खाने से ये बात कहती है कि मेरा मजहब कैद खाना नहीं है, अगर मुझे सोने के पिंजरे में भी ला के तुम बंद कर दो तभी मुझे यहाँ सुकून नहीं है, मेरा सुकून जो है मेरी जो खुशी है मेरी जो चाहत है मेरी जिंदगी का जो हासिल है वो ये कि मैं अपने परों को खोल कर हालांकि इस वसी तर सहरा में हर चहार जानिब चहकूं डाल पे चाहूं बैठूं और जहां चाहूं उसे
0: क्या एक्सप्लेन कर दो यार, मजा आया भाई जवान भाई बहुत बहुत प्यार भाई आपको, थैंक यू सो मच, एंड माजरत कि आपको इतनी लेट कॉल करी मैंने,
1: नहीं यार भाई माजरत की बात नहीं है यार, आप तो ऐसा कुछ दे जाते हो ना कि वो कभी कभी बहुत कुछ मिल जाता है उससे, एक भूला सबक इंसान के जहन में कभी कभी जो क्या कहते हैं जिसपे गर्द पड़ते होते हैं ना वो अचानक से उभर कर एकदम बिल्कुल सामने आ जाती है, बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह ताला आपको मतलब क्या कहते हैं इसका पूरा अजर दे, पूरा बदला दे, और सही बात है जिस मकसद से आप कर रहे हैं अगर वो मकसद हासिल हो जाए तो बड़ी बात है,
0: जजाकल्ला भाई बहुत बहुत प्यार जमाल भाई, अपना ख्याल रखिए,
1: बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका,
0: जजाकल्ला भाई, ओके
1: हर रोज हंसाते हैं आप लोग, आते ही लोगों के चहचहाने का एक अंदाज ऐसा लगता है जैसे अभी वो हुई है और परिंदे जो है ना चहचहा रहे हैं अपने बाग में, तो आपका ये जो बाग बहुत देर हो जाए
0: बरकरार रहे, बाग बरकरार रहे, शुक्रिया शुक्रिया जमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया भाई,
0: ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो जमाल भाई ने जो है माशाल्लाह जिस तरीके से कहा है मतलब ओ माय गॉड, रिशान भाई कहते हैं कि जमाल भाई की उर्दू, भाई मैं क्या बताऊँ, आई एम सुप्रीमली इम्प्रेस्ड भाई की उर्दू से, जमाल भाई कॉलेज लाइक एक्सपर्ट ओमिनियन विद उर्दू सब टाइटल्स नहीं भाई, कम्प्लीटली उर्दू सब टाइटल से लेकर लैंग्वेज भी, एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा अपने आपको सलाम, अपने आपको वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरा भाई,
1: आप बताइए भाई,
0: क्या क्या क्या,
1: अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए,
0: मैं बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार, जी भाई क्या कह रहे थे
1: भाई, कह रहा था यही कि मिल जाए तो पत्थर, सो जाए तो सोना,
0: हाँ
1: वही हाल चल रहा है कहानी का आपका आज का,
0: अच्छा
1: हम लोग को तो मिला है, हम लोग कुछ नहीं मतलब उसको समझते हैं, जिसको जिसके पास नहीं था वो उसको है ना पता चली उसको,
0: डेफिनेटली मेरा भाई ये आज मैंने इसलिए ही कहानी सुनाई, मैंने कहा चलो ठीक है लोगों को मिले आज कुछ अलग कहानी मिले, हमेशा हम कुछ ना कुछ अलग कहानी लेके आते हैं, कल भी कुछ बढ़िया लेके आएंगे भाई, कल भी मजे आ जाएंगे लोगों को, देखो मैं क्या करता हूँ
1: भाई, कहानी मैं तो सोच रहा था कहीं प्लेन आप फिर नॉर्थ कोरिया के साइड ना घुमा दो,
0: नहीं नहीं भाई लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है मुझे बिल्कुल भी
1: भाई, आप जो मारते हो ना लास्ट में कैरेक्टर को,
0: हाँ
1: मैं तो सोच रहा था शायद घुमा दोगे प्लेन पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया
0: यार क्या ऐसी बात है यार, किसी को मुझ पे यकीन ही नहीं है कि ये जहाज पक्का उधर घुमा देगा ये, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,

0: अच्छा
1: सर, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया अभी, अच्छा जिंदगी जी रहा होगा अभी तो, जिंदा है ना वो?
0: हाँ बिल्कुल जिंदा है भाई, बहुत बहुत अच्छी हाँ पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो, मतलब अब तो कामयाब इंसान है माशाल्लाह। सो थैंक यू मेरा भाई।
1: तो वही डर डर लग रहा था भाई, कब मोड़ोगे, कब उसको पकड़वाओगे, पर हाँ बच गया।
0: भरोसा किया करो, और जब आप मुझ पर भरोसा कर लोगे उस दिन मैं कहानी पलट दूंगा।
1: उनके फैमिली की दुआ लगी होगी उसको।
0: डेफिनेटली भाई, ऑफ कोर्स बिल्कुल।
1: और बस यही था।
0: थैंक यू सो मच भाई कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। थैंक यू सो मच। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और एक मैसेज आया है मुझे, भाई कह रहे हैं कि भाई सच में सोच रहा था कि रीजोंग कहीं नॉर्थ को इंस्पायर। मुझे पता था मुझ पे लोगों, जिस दिन मुझे पूरा भरोसा करेंगे ना उन कहानी को लेके, उसी दिन पलटूंगा मैं कहानी, अभी तो लोगों को यकीन ही नहीं है। मैसेज, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, लव यू, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई को, जहाँ से बाय, बहुत सारा प्यार। भाई क्या डीपी लगाई है भाई ने, लॉस्ट इन थॉट्स किताब पढ़ किया ऐसा। फोटो शोटो देखिए। एक मैसेज ईशान भाई का लिखते हैं, द शेयर गोज फॉर ऑल द लिसनर्स एंड 107 आरजेस। दिस शेयर, अच्छा दिस शेयर, मैं कहूँ शेयर क्या कह रहे हैं, मैं एक सेकंड शेयर पढ़ता हूँ आपका, एक कॉल उठा लो पहले मैं। अरे रे रे रे, बटन नहीं दबा मुझसे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वरकत। कबीर भाई क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, एक नंबर। आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
2: कबीर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कबीर भाई सैयद बोल रहा हूँ।
0: जी सैयद भाई बताइए।
2: जी बेहतरीन स्टोरी थी ना कबीर भाई, बस इससे एक दो तीन चीजें मालूम होते हैं, मैं बोला थोड़ा आपको बता दूंगा।
0: बताओ बताओ बताओ बताओ।
2: ये मतलब अपने को अल्लाह ताला ने जो जो दिया है कि अपने को मतलब रियलाइज नहीं होता जब अपने पास रहा तो, तब किसी चीज की ऐसे लोगों की स्टोरी जब सुनते हैं तो अपने को मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने कितना अपने को नवाजा है ना।
0: बेशक भाई,
2: और अपने पास क्या क्या आजादी, जैसे आजादी है पहली बात तो आजादी, तो फिर जिससे नेमत से नवाजा है, तो वो जो नए रहने पे जब अपने को एहसास होता है, पानी हो, रहना हो, खाना हो, तो उस पे जो जुल्म हुआ है तो वो बेचारे ने फिर चलो राहत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि शुक्र अदा करना चाहिए नेमतों का।
0: बेशक भाई, बेशक बेशक, इसीलिए सुनाए भाई, इसीलिए सुनाए भाई।
2: जी जी, और क्या है बोलते, सो जब सोचिए कि इंसान को बोल रहे जैसा नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है भाई, तो कटिंग में नहीं मना सकता भाई, कटिंग मना तो तेरे
0: बिल्कुल भाई, ये सब अलाउड नहीं है क्या? इतना भी नहीं चलेगा।
2: कटिंग बनाया तो फांसी चढ़ा देंगे वो तो, कितनी बुरी मतलब, ये तो हजार जिंदगी हो गई यार
0: भाई। वहाँ पे तो हेयर, वहाँ पे हेयर स्टाइल भी सिलेक्टेड होता है, उस वही हेयर स्टाइल रखना पड़ता है।
2: तो हम कितना शुक्र अदा करना कि हम जो मुल्क में पैदा हुए हैं और जो मुल्क हमारे को इतनी आजादी देते हैं दुनिया में हमको घूमने फिरने की,
0: इसीलिए भाई शुक्र अदा करना चाहिए। और
2: exactly.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल
2: किया। बाल इधर का उधर हो गया, हजम थोड़ा कट कर गया, तो
0: इसलिए भाई। तो आपने क्या लंबे बाल रखे, क्या क्या क्या हेयर स्टाइल के रखा भाई ने?
2: नहीं नॉर्मल है मेरा।
0: अच्छा नॉर्मल है, बच गए आप।
2: बट भाई जो न्यूज़ सुनता हूँ तो बस परेशान हो जाता हूँ, वही इतना जुल्म किया इंडिया, मतलब एक जैसा कंट्री का नाम नहीं लेना चाहिए आई थिंक रोड पे, जिस जो कंट्री का जिक्र हो रहा है मतलब वो एक कंट्री पूरी जेल है।
0: हाँ ऑफ कोर्स इट इज, ऑफ कोर्स इट इज,
2: एग्जैक्टली।
0: लेकिन थैंक यू सो मच भाई आपने कॉल किया।
2: हमको शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे कंट्री अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सौ गुना भाई
2: अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी वो और एक रिक्वेस्ट थी सर जी, वो जो डिसीज का सुनाया था वो मेरे से मिस हो गई स्टोरी,
0: क्या भेज दीजिए। क्या सुनाया था?
2: वो एक डिसीज था ना, वो जो डॉक्टर ने इजाद किया था तीन चार दिन पहले, बताया था आपने।
0: आप एक बार मैसेज करिए मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आप मुझे एक बार।
2: जी जी मैं करता हूँ। वो पागलपन होता है ना गाँव में, समझते हैं कि
0: पागल। मैसेज कीजिए मुझे, मैसेज कीजिए एक बार व्हाट्सएप मैसेज कीजिए।
2: ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।
0: ओके मेरा भाई, ख्याल रखिए।
2: थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।
0: और भाई की बात जो है, ईशान भाई की ने जो शेर लिखा है पढ़ देता हूँ। लिखा है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मेरा भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। क्या बात है, क्लाइमेक्स दे दिया आपने एकदम, मतलब मज़ा ही आ गया। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। क्या तलाबाद के साथ, तला भाई के साथ डुएट कर लें प्लीज, आप दोनों का अंदाज़े बयां लाजवाब है। तला भाई की है, तला भाई की टेलिंग में सुकून है, आपके में एक्साइटमेंट है माशाल्लाह। अल्लाह आप दोनों को बेहतर नवाजे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार। इस गाने के उस पर मिल रहे हैं।

اورپن کہ گانا ہے اینی خالد کی آواز ان ریمکس ورژن. السلام علیکم.

0: रूम कर शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप।
1: अजीब
0: दोहा वाला मैं कबीर,
2: यही कहूंगा सुबह सुबह
1: वेक अप। सेकंड शिफ्ट वालों, सेकंड शिफ्ट, मैं सेकंड शिफ्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी 6 बजे वालों की पहली शिफ्ट है, तो ये सेकंड शिफ्ट वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी सबसे पहले तो मैं खबर पढ़ दूँ, बहुत सारी खबरें हैं जिन्हें भी नज़र डालने की ज़रूरत है। हालांकि हमने पहले वेलकम कर दिया बाकी शोज़ में, लेकिन मैं फिर भी वेलकम कर देता हूँ। सो जो न्यूली अपॉइंटेड हमारे इंडियन एम्बेसडर है टू द स्टेट ऑफ कतर, डॉक्टर के श्रीकांत रेड्डी साहब, उन्होंने प्लेज ली है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इंडिया और कतर के बीच में, इस रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए, और जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके लिए काम करने के बारे में भी जिक्र किया, और साथ ही में वेलफेयर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन कतर ऑफकोर्स। इसके अलावा सबसे पहले तो उनको वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम सर, वेलकम टू कतर। इसके अलावा कतर का साइंटिफिक क्लब जो है उन्होंने लॉन्च किया अपना सेकेंड एडिशन ऑफ इट्स यंग इन्वेस्टर्स प्रोग्राम, जिसका मकसद है जो यंग माइंड्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनकी जो चीज़ें हैं जो वो करते आ रहे हैं या सीख रहे हैं, स्किल बेस्ड हैं, उसको एक प्रॉमिसिंग आइडिया में तब्दील किया जाए और एक प्रैक्टिकल अप्रोच देके उसे एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, ढांचा दिया जाए, ताकि वो अपने सिर्फ सोच तक ना रुकें, आगे भी बढ़ें और उनके इन सोल्यूशन से सोसाइटी को बेनिफिट हो सकता है। कि बहुत काम का कोई इनिशिएटिव, वो काम के कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचते आ रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उन्हें एक राह दिखाने की कोशिश है। और ये जो इनिशिएटिव है, दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ अ नेशनल प्रोग्राम विच वॉज अनवील्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ। ये वेब समिट कतर की बात है जब इस बारे में बातचीत हो रही थी कि ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा, एंड फाइनली इट्स हियर। इसके जो टारगेट ऑडियंस है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिसको इसका हिस्सा बनाया जा रहा है, वो 15 से 30 साल के हैं, एंड जिनका इंटरेस्ट साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है और इनोवेशन में है, वो इसका हिस्सा है। एंड मूविंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, कतर ने पार्टिसिपेट किया है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ सेरेमनी में ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ ओमान क्लाइमेट वीक 2026। ये 14 से 16 सितंबर के बीच में मस्कट में ये एडिशन रखा गया है और ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में। इसमें कतर की जो डेलीगेशन हैं वो पहुंचे हैं, दे वर रिप्रेजेंटेड बाय हिज एक्सीलेंसी द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल सुबई। एंड इसके अलावा एक और खबर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MCIT which is represented by Qatar Digital Academy, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मतलब करने वाले हैं सेकेंड एडिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि हम भी बहुत सारे इवेंट्स रिसेंटली कवर कर चुके हैं जो AI और डिजिटल वेब सिक्योरिटी को से रिलेटेड है, तो भी आप जरूर देखिएगा। और ये वाला जो होगा इसमें AI बिजनेस स्ट्रेटेजी और इनोवेशन के बारे में बात होगी, जो कि बहुत बड़े कोलैबोरेशन के साथ है। ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है और ये जो प्रोग्राम होगा ये रखा जाएगा इन सीड्स यूरोप कैंपस में फ्रांस में, और ये 14 से 16 ये भी है। बाय द वे एक और वीडियो जिसमें आपका भाई जो है ब्लैक कोट में कतई चमक रहा है, मतलब मैं तारीफ करनी पड़ती है, अब आप तो लाइक करेंगे तो मुझे करनी पड़ेगी। तो FM 107 Qatar उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगा। प्लीज़ पूरा फुल सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें, कमेंट करें। इरफान भाई कह रहे हैं माया को अच्छा किया भेज दिया, अब आप भी घर जाएं, बस के आओ मोमोज खाने चलें यार, कब फ्री हो, बट स्पाइसी। इरफान भाई मेरी स्पाइसी की लिमिट बहुत है भाई, पता को नहीं है, अब पता तो है वैसे आपको। तला भाई को ज़रा कॉल किया, तला भाई कह रहे हैं कि कॉल करें, ये मैंने कॉल लगा दी है। और एक मैसेज है मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम भाई कहानी बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। मुबीन बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर तला, हाउ आर यू डूइंग टुडे? हाँ जी, क्या चल रहा है तला भाई?
3: भाई अलहमदुल्ला करम मालिक, आप बताएं क्या है?
2: बस वो आपके साथ बैंक खोलने की तैयारी चल रही थी, उसके बारे में सोच रहा हूँ, फाइनल पेपर वर्क कर लेते हैं फिर क्या है।
3: लोकेशन तो मैंने फाइनल कर ली है।
2: अच्छा,
3: लोकेशन तो फाइनल कर ली है, वो चाचा के पहले से बराबर में मोहन बैंक खुलेगा, चाचा की सर्विंग सेंटर में रहूंगा।
2: अच्छा, वो अभी भी पता है लगातार कॉल कर रहे थे व्हाट्सएप पे, मैंने कहा नहीं चाचा,
3: नहीं
2: ना,
3: नहीं
2: ना,
3: हाँ। था वो वाले चाचा नहीं, वो वाले चाचा थोड़ी।
2: अच्छा, ओ सॉरी सॉरी,
3: के मुल्क का जिक्र कर रहे हैं ना वो वाले चाचा।
2: ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, वेरी नाइस, अच्छा खेला।
3: यस बेबी,
2: ठीक है, डन।
3: आपको आपको हम कतई बेहतरीन जगह भेजेंगे, आप ये तारीखों के पुलवा देना चाचा के घर के।
2: हाँ हाँ,
3: वो चाचा को पता चल गया ना, सोच लो तुम्हारा क्या
2: हाल
3: होगा। नहीं, मुझे लग रहा तुम्हारा हेयर कट होगा।
2: करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, बॉब द बिल्डी।
3: पहले आजमाए, फिर
2: पहले
3: इस्तेमाल करें, फिर
2: विश्वास करें। करेक्ट, ये है, ये है।
3: तू मेलोडी खा के मानेगा भाई, तू ऐसे नहीं मानेगा।
2: ये तो आपसे सीखा है भाई, वो आपने सब सिखाया है, या आप ही की वो था ना संगत का सर।
3: हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल भाई बिल्कुल। जहाँ वो होता है ना, कौन करेगा, वो जावेद जाफरी की तरह ना, पता नहीं क्यों मैं आगे आ जाता हूँ, सारे लोग मेरे से पीछे होते हैं।
2: ऐसी सिचुएशन में मैं आगे कैसे रह जाता हूँ। वैसे मुबीन भाई ने मैसेज किया है, मुबीन भाई कह रहे हैं कि आपके बैंक में 50 कतरीराल जमा कराने हैं, ये कह रहे हैं।
3: लाओ लाओ अभी भाई, जो आ रहा है ना, लाओ लाओ लाओ अभी, लाओ अभी फौरन।
2: भारी भारी नोट चाहिए मुबीन भाई, भारी भारी नोट लगे मुबीन
3: भाई। चुप हो जा भाई, मुबीन मुबीन इसकी बातों पे काम
2: क्यों, मुबीन भाई से डर गए क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, चुप बस चुप भाई, जो आ रहा है ना तो कॉइन तक एक्सेप्ट करेंगे हम।
2: मुबीन भाई कॉइन भी एक्सेप्टेड है, आप सिक्का भी ला सकते हैं।
3: सब एक्सेप्टेड है, सब सब कुछ, जो ले बैरियर चेक ले, मसला नहीं है, हम चेक भी एक्सेप्ट कर ले।
2: आज ये इस टाइम पे कैसे फ्री हैं आप, मतलब काम वाम नहीं है आपको, क्या क्या चक्कर है आज?
3: यार पब्लिक की मांग आई, पब्लिक का मांग आई ना।
2: अच्छा पब्लिक, हाँ ये बात तो है, पब्लिक डिमांड तो है,
3: जो क्या चाहती पब्लिक वो भाई करेगा। लेकिन पब्लिक इंसान के बच्चे बन के चाहना, कुछ फालतू मत चाह लेना।
2: ये एडवांसमेंट जो आप ऑफर कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है आप ही खा के मानेंगे।
3: मैं तो तुम्हारी नौकरी खा के मानूंगा। और वो जो उर्दू वाले भाई कह रहे थे ना, जो कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जिस मकसद से आप कर रहे हैं, भाई मकसद पैसा, पैसा मकसद है भाई। क्लियर कट बात करो ना,
2: पैसे
3: के चक्कर में आदमी बहुत कुछ कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं बताऊँ ना क्या कर रहा पैसे के खाते।
2: लेकिन जमाल भाई की उर्दू बहुत तगड़ी भाई, ये तो माननी पड़ेगी आपको।
3: जमाल भाई को अगर पता चल गया ना तुम क्या कर रहे हो पैसे के खाते, रोटी के खाते जो तुम कर रहे हो ना हर घर, जमाल भाई को उर्दू भूल के ना फ्रेंच बोलना शुरू कर देंगे।
2: नहीं नहीं नहीं जमाल भाई, थैंक यू सो मच, शाउट आउट टू यू भाई। एक आपको मैसेज आया है कि कैसे हो, बहुत टाइम बाद आपकी आवाज सुनी, थैंक यू सो मच इमरान भाई। और आपके लिए एक मैसेज आया है, ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा पर ये कह रहे हैं कि तला भाई को सुन के मेरा भी मूड फ्रेश हो जाता है, आप कॉल किया करें तला भाई, ये मैसेज आया आपके लिए।
3: भाई आप हुकुम करो, मैं देखो तुम कबीर का शार्ट पत्ता शार्ट मैं प्रोडक्शन डायरेक्टर से कॉन्टेक्ट कर दो, जो है मैं हूँ बस।
2: का पैसा लगा हुआ है, पीजे बता नहीं रहे, आज हम खुलासा कर देते हैं। ठीक है,
3: तुम्हारा चैनल मेरी वजह से चल रहा, तुम्हारा चैनल बता रहा हूँ।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कॉल कीजिएगा और बाकी शोज में भी आपकी आवाज सुनेंगे हम इंशाल्लाह। देखते हैं आप कितने शरीफ बनते हैं, वो अलग लुक देखने को मिलता
3: है।
2: ध्यान रखना, मैं सुन रहा हूँ उस टाइम पे, सो नोटिस करूंगा।
3: बुक पेन खोला था ना सरो भाई के बैंक में, बोलूंगा बुक पेन
2: डल
3: लगी कसम।
2: मैं तैयार हूँ सुनने के लिए आज 1:30 बजे वाला शो।
3: क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो सिचुएशन क्या दे रहे हैं।
2: थैंक यू सो मच तला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना। और मुझे एक भाई ने एक चीज भेजी, वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, पता है अभी एक वो चल रहा है, वीडियो चल रहा है जिसमें टाइगर और लायन के बीच में बहस चल रही है। सो टाइगर ये कह रहा है कि भाई तूने ऐसा क्या किया है कि तू जंगल का राजा कहलाता है, तो उस पर लायन उसको सुना रहा है, बैक टू बैक चल रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बैक टू बैक कॉन्वर्सेशन चल रही है, मैं आपको सुनाऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, मैं कभी ना कभी इस पर बात करूँगा, कल परसों ज़रा कवर करते हैं। और कल से शो में एक चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, किस्म का हूटर लेके आऊँगा मैं, वो हूटर बजेगा जब कोई पंच लाइन मारेगा, और जब कोई ज़्यादा ही उदास बात करेगा तो उसके लिए भी अलग से हूटर हमारे लिए मौजूद रहेगा। तैयार हो जाइए, बहुत सारी चीजें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत बहुत जरूरी हो चुका है फिलहाल तो। हाय अनीश सरकार, 666-2107 पे गुड मॉर्निंग।

0: यार क्या बांसुरी बजाई है इसमें भाई, आहा हा सरकार अनीश के वैज में उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी होय होय होय होय होय 8:44 बजे का गुड मॉर्निंग। आज तो आज कुछ इंटरनेशनली दिन मार्क्ड किए गए हैं उनके बारे में बात कर ली जाए। आज पता क्या आज है, डबल चीज बर्गर डे। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। मैंने तब पॉज इसलिए भी लिया क्योंकि मुझे याद आ गया, मैंने शोशेबाजी के चक्कर में होता नहीं, आप कई मरतबा शोबाजी के चक्कर में ग्रुप का हिस्सा बनने के चक्कर में आप ऐसी चीज़ खाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बनी नहीं है, तो उनमें से है ये डबल चीज़ बर्गर। ये मेरे बस की बस का रोग नहीं है भाई, मेरे बस का रोग नहीं है। जो लोग खा लेते हैं आप इंटरनेशनल लेवल के हैं, आपको मेरा सलूट सलाम। इसके बाद है आज चीज़ टोस्ट डे, और इसके अलावा आज है नेशनल कौन सा दिन है, नहीं हमारे मतलब का नहीं, ये फिरंगी लोग बना रहे हैं। आज है इंटरनेशनल डॉट डे, तो आज डॉट डे मनाया जाता है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये मनाया जाता ताकि लोगों को है ये कहा जाए कि वो आप लिमिट ना रखें। वाह वाह वाह वाह, किस समझदार ने सोचा होगा। तो इंटरनेशनल डॉट डे का मतलब जानते हैं हम क्या है? इस दिन का मतलब है कि लोगों को इंस्पायर किया जाए कि अपनी सोच को रोको टोको मत, बढ़ते ही चले जाओ। There should be no dot, no full stop in your thinking. और इसके लिए इन्होंने रखा है इंटरनेशनल डॉट डे। थैंक यू, मैंने पढ़ लिया, अपने आप को थैंक यू बोल रहा हूँ, वरना पता नहीं मुझे लगता है इंटरनेशनल डॉट डे होता क्या है। इसके अलावा है शेफ्स अप्रिसिएशन वीक, तो आपके अराउंड जितने बहुत खूबसूरत खाना बनाने वाले लोग हैं, भाई कल मैंने दाल बाटी चूरमा खाया भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं खो गया, ऐसा लगा कि मैं कहीं और मैं ट्रांजिट कर गया, ट्रांजिशन आ गया जिंदगी में। होते हैं ना लोग सोशल मीडिया पे एक स्मूथ ट्रांजिशन बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसा वाला था कि मैं साइकिल लेके चला और जहाज़ में बैठ गया। तो दाल बाटी चूरमा खा के जो मज़ा आया है ना, तो इसलिए उनका नाम नहीं ले सकता मैं, बट शेफ्स अप्रिसिएशन वीक है, आई होप वो उनको भी सुनाई दे, सो मच अप्रिशिएटेड, बहुत बढ़िया था भाई। एंड आज एक और है, आज है ऑनलाइन लर्निंग डे। मैं हमेशा हमारी टेक अपडेट में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ें सीख सकते हैं, ध्यान दिया करें, बहुत काम की चीज़ें हैं, हल्के में ले रहे हैं आप। एक कॉल आ रही है, रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कबीर भाई कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं भाई?
1: मैं जनाब ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी भाई।
1: भाई किधर खाई थी आपने दाल बाटी? आपने शायद बोला कि नाम नहीं बता सकते, बट हाँ। प्लीज अगर आप बता दें,
0: आप अगर मैसेज करेंगे तो मैं ये खजाना आपको दे सकता हूँ। आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है हमारा?
1: जी जी ऑफ कोर्स।
0: आप प्लीज मैसेज कीजिए, आप प्लीज मैसेज कीजिए, फिर मैं अभी आपको दे देता हूं, कोई मसला नहीं।
1: जरूर
0: जरूर। ठीक है भाई, और बताइए क्या चल रहा है?
1: कबीर भाई सुबह मैं सुन रहा था एक्चुअली, बट कुछ काम में थोड़ा सा मसरूफ था तो कॉल किया भी मैं, बट थोड़ा बीच में अटक गया।
0: आप वैसे हैं कहां से? कहां से हैं
1: उसके ऊपर? मैं बैंगलोर से।
0: बैंगलोर से, तो आपका दाल बाटी से क्या रिश्ता है मुझे बताइए, मैं कंफ्यूज हो गया।
1: अरे मेरा पूरा जितना भी मैं कॉलेज में जो पढ़ा हूँ ना, मेरे 100% दोस्त सारे नॉर्थ इंडियन से, तो मैंने मेरा मतलब बहुत गहरा रिश्ता है, दाल बाटी चूरमा हो गया, फिर वो खाकरा फाफड़ा सब।
0: हाँ अच्छा, वेरी नाइस। मैं वही सोच रहा हूँ बैंगलोर के बंदे का क्या मतलब है। ये तो कमाल हो गया। अच्छा वेरी नाइस।
1: मेरे दोस्त सारे इंदौर से, फिर राजस्थान से, बिहार से, फिर मध्य प्रदेश से। हाँ। इंदौर मध्य प्रदेश ही हो गया, यही के हैं सारे।
0: अच्छा,
1: तो मैं उनमें कैसे फिट हो गया पता नहीं, शायद मेरी हिंदी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बहुत साफ है, तो इस वजह से। तो हम लोग ना, हम लोग ने भाई अपने वो क्या बोलते हैं, झंडे गाड़े।
0: नहीं मैं समझ, मैं हैरान हूँ क्योंकि एक तो आपने पता नहीं, आपका पूरा कल्चर जो है साउथ और नॉर्थ वाला दोनों मिला हुआ है ना, बहुत राइट अमाउंट में मिला हुआ है, तो वो अच्छा बैलेंस है। वेरी नाइस, ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
1: जरूर जरूर।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत

0: प्रक्रिया भाई। ओके
1: वो ये हाँ, आपका हाँ, सुबह इसका वो चल रहा था ना क्या सेविंग्स में कुछ
0: हाँ हाँ हाँ मैं कह रहा था, मैंने कहा क्या होता है ना, देखिए मैंने एक बच्चे का जिक्र किया जिसने 7,000 रियाल जमा कर लिए पिछले 6-7 सालों में, और मैंने कहा हमारे बस की नहीं है करना, तो हमारी गाड़ी में ऐसी पड़े रहते हैं, भूल गए तो अच्छी बात है, नहीं भूले तो खर्च हो जाएंगे, तो ये पूछ रहा था मैं सुबह को।
1: तो ये एक्चुअली आपने बहुत लाइटर नोट में तो ये
0: हल्के में
1: निकाल दिया मॉर्निंग शुरू करने के लिए बोला, बट भाई मैं एक चीज बता देता हूँ, मतलब थोड़ा सा सीरियस भी साउंड करूँ बट माफ कर देना,
0: नहीं नहीं प्लीज बताओ।
1: सेविंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, स्पेशली जो भी बच्चे अभी छोटे हैं ना, जिनका अभी आप मान लो 15 साल बाद जो एजुकेशन फील्ड में जाने वाले हैं, बट 12% ईयर ऑन ईयर आपका इन्फ्लेशन पकड़ के समझ जाओ कि आज अगर जो सीट आपको 50,000 या 1,00,000 में जो मिल रही होगी ना, मतलब मेरिट वाली सीट मैं बता रहा हूँ, वो भाई 10-15 साल बाद डायरेक्ट 2.5 से 3 करोड़ की होगी।
0: हाँ वो देखिए, अब ये आपने बता तो दिया है, इसका तो इम्प्लीमेंटेशन है ना, एग्जीक्यूशन में आदमी फील हो रहा है।
1: मैं आपको बताता हूँ भाई, सेविंग्स का मैं आपको बताता हूँ, एकदम बहुत इजी है सेविंग्स, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, आप 500 रुपए का भी सेविंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट, ठीक है, फिर आपके जैसे गोल्ड ETFs हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसमें ना 500 रुपए से भी शुरू होती है सेविंग्स। फिर दूसरी चीज, जब आपके पास लमसम पैसा हो ना तो ज्वेलरी दिला दो बीवी को, मजाल है कि बीवी बेचने दे रहे।
0: ये दूसरा वाला सुन के बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ हाँ ये तो होता रहता है मेरे साथ।
1: बोनस बेसिकली समझ जाओ कि ये बीवी को ज्वेलरी दिलवा दो, रिजर्व हो जाता है लाइफ टाइम के लिए,
0: ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड,
1: दो ढाई साल पहले जब गोल्ड $2,000 पर औंस चल रहा था, $2,200 या कुछ पर औंस चल रहा था, तब मैंने ली थी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी। आज की डेट में $4,300 चल रहा है
0: भाई,
1: तो भाई मेरे पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए।
0: जो आपने जो टेलीस्कोप लिया था वो यहीं से लिया था क्या फिर? बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा क्या आपने याद किया, क्योंकि आपको माज भाई ढूंढ रहे थे, तो इंशाल्लाह जो है आपको उनसे भी कनेक्ट किया जाएगा, पर आप मैसेज कीजिए जल्दी से, ठीक है
1: जी। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट चीज एक बताता हूँ, अपना जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स जो अपना है इंडियन मार्केट का, वो भाई एक चीज गारंटीड है जो हमेशा बढ़ेगी, वो चीज है महंगाई। तो भाई कोई भी इंडेक्स अगर आप बाय करोगे ना, 12% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे आपका बढ़ेगा ही।
0: ये भाई पता है मेरे लिए ये बहुत मुश्किल नंबर्स है, पर जो आप कह रहे हैं मुझे, घर वाले भी सुन रही है तो वो मुझे बता देगी आपने क्या कहा, उसने ऑलरेडी मैसेज कर दिया सही बोल रहे हैं।
1: फ्री टाइम अगर आपको मिलेगा ना तो कभी आप निफ्टी इंडेक्स उठा के देख लेना, निफ्टी 50 का 10 साल पहले क्या था, कुछ 3,000-3,500 रहा होगा, आज 23,000 है।
0: आज मुझे पढ़ा लिखा, आज मुझे पढ़ा लिखा महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा आपकी वजह से। थैंक यू सो मच भाई, आप मुझे मैसेज कर दो जल्दी से, क्योंकि अभी साइन आउट का वक्त हो गया, लेकिन थैंक यू सो मच भाई, कॉल कर। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, 8:51 बाय द क्लॉक, और कई सारी बात हो गई, मैं लास्ट मैसेज जल्दी से पढ़ देता हूँ। तो एक मैसेज क्या है, यूसुफ भाई ने, वो लिखते हैं अच्छा माशाल्लाह दाल बाटी चूरमा कहाँ भी खाए, मैं बताता हूँ उनको, और कहते हैं कि चीज़ मुझसे बिल्कुल खाया नहीं जाता, ये डबल चीज़ भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, स्टाइल के चक्कर में डबल चीज़ बर्गर खा लिया था, दिमाग ख़राब हो गया था। मैसेज, सर्वर भाई कल से गायब है, कहाँ है ज़रा पता लगाओ। नहीं आज मिल जाएंगे आपको, कल बेचारों को थोड़ा काम था, आज इंशाल्लाह ही विल बी अवेलेबल। बट फॉर नाउ दिस इज मी साइनिंग ऑफ, बट उससे पहले सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, वही अपने फवेरे 6 बजे, अभी 9 बजे न्यूज बुलेटिन। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मा सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो, जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
3: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। Don't miss it. It's the Goal Show with Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107. Dil se desi.
4: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन। नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। कमीन, आज की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है जब उन्होंने अल्लाह ताला से नेक और साले औलाद की दरख्वास्त की। कुरान करीम में उनकी दुआ इस तरह आई है, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, रब्बि हबली, ए मेरे रब अता फरमा, बख्श दे। यानी औलाद अल्लाह की अता है, इंसान की मेहनत और कोशिश के बावजूद ये महज उसका फजल है। मिनस्सालिहीन, नेक लोगों में से, यानी ऐसी औलाद अता फरमा जो ईमान, इताअत और तक्वा में साले हो, महज दुनियावी नेमत ना हो बल्कि दीन की रोशनी बने। समीन, इस दुआ के कई अहम पहलू हैं, उनमें से एक ये है कि औलाद अल्लाह की नेमत है, औलाद की नेकी असल मकसद है। मजीद, औलाद के लिए दुआ अंबिया की सुन्नत है और गोया के इस दुआ का खुलासा ये बना कि नस्ल की इस्लाह उम्मत की इस्लाह है। औलाद की असल कामयाबी दुनियावी जाह माल में नहीं बल्कि नेकी और सालहियत में है। आइए हम सब आजिजी से ये दुआ पढ़ें, रब्बि हबली मिनस सालिहीन।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107Qatar। दिल से देसी।
3: दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है। विदारत दाखला अपने इरादों का वाजे तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग न सिर्फ जिंदगियों को खतरे में

0: डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाईलाइट में आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उन महान और मारूफ खिलाड़ी की जिनका नाम क्रिकेट की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा और एक ऐसा क्रिकेटर जो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता था और एक ऐसा नाम जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कई यादगार लम्हे दिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे रोशन सितारों में शुमार होता है। वो सिर्फ एक बेहतरीन बैट्समैन नहीं थे बल्कि उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनका जज्बाए मुकाबला। मियांदाद क्रिस पर आते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे वो सिर्फ बॉलर का सामना नहीं कर रहे बल्कि पूरे मुकाबले को चैलेंज कर रहे हों। उनका क्रिकेटिंग करियर 1970 में शुरू हुआ और बहुत जल्द उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपनी पहले ही टेस्ट सीरीज में दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान को एक नया स्टार मिल गया है। मियांदाद की बैटिंग में एक अजीब सी रवानी थी। वो टेक्स्ट बुक बैट्समैन जरूर थे लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने अंदाज को फौरन बदल सकते थे। तेज गेंदबाज के खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस और स्पिन बॉलर्स के सामने उनका कंट्रोल देखने का काबिल होता था। लेकिन जावेद मियांदाद की कहानी सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं दोस्तों, उनकी पहचान थी प्रेशर में परफॉर्मेंस, यानी दबाव में। जब पाकिस्तान टीम दबाव में होता था तब जावेद मियांदाद को आउट करना नामुमकिन था और इसलिए उनका नाम 1986 के शारजा के उस यादगार मुकाबले के साथ हमेशा लिया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ओडीआई फाइनल, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, आखिरी ओवर, पाकिस्तान को जीत के लिए 6 रन्स की जरूरत। बॉलिंग कर रहे थे इंडिया के फास्ट बॉलर चेतन शर्मा और सामने थे कराची के फाइटर जावेद मियांदाद। आखिरी बॉल पर 6 रन्स की जरूरत थी, फिर वो लम्हा आया जो क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन गया। चेतन शर्मा ने गेंद डाली, मियांदाद ने शॉट खेला और बॉल बाउंड्री के पार, और ये बाउंड्री यानी 4 रन्स नहीं थे बल्कि ओवर बाउंड्री 6 रन्स, और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। शारजा का वो लम्हा जावेद मियांदाद के करियर का सबसे मशहूर मोमेंट बन गया था। लेकिन मियांदाद की असल खूबी सिर्फ वो एक सिक्सर नहीं थी, उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान के लिए हजारों रन्स बनाए, मुश्किल हालात में इनिंग्स खेली और टीम को कई मर्तबा मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाला। अगर ओडीआई की बात करूं तो उन्होंने 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जो अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड था। 1992 का वर्ल्ड कप भी उनके करियर का अहम हिस्सा था। इट वॉज द एंड ऑफ हिज करियर अगर कहने, अगर वो आखिरी पड़ाव पे थे, लेकिन जावेद मियांदाद

थोड़ा स्लो तो हो गए थे लेकिन रन बनाने में चूकते नहीं थे, स्पेशली द चीकी सिंगल्स। आपको समझ आया होगा चीकी सिंगल्स का मतलब ये होता है कि शॉट खेलकर दौड़ना, और इस तरह दौड़ना कि जैसे कि आगे कुछ है नहीं। यूज टू रन फॉर हिज लाइफ, यूज टू रन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इमरान खान की क्यादत में वर्ल्ड कप जीता और मियांदाद उस टीम के तजुर्बेकार और अहम बल्लेबाज थे। और यहाँ पे एक अहम बात यह भी है कि उस वर्ल्ड कप कैंपेन के पीछे अगर किसी का दिमाग चला तो वो था जावेद मियांदाद का। यानी इमरान खान कप्तान तो थे लेकिन इमरान खान ने जावेद मियांदाद को इग्नोर नहीं किया, बिकॉज जावेद मियांदाद का एक्सपीरियंस भी वॉज समथिंग दैट वॉज एक्सेप्टेबल एट दैट मोमेंट। और वहां पर इमरान खान ने जावेद मियांदाद के साथ कोलैबोरेट करके एक तरह से साथ मिलकर काम करके स्ट्रैटेजी बना, एंड स्ट्रैटेजी के साथ साथ पाकिस्तान को दिया अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप, बीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल 1992 आईसीसी वर्ल्ड कप। और उनकी बैटिंग की बात करूं तो उनकी बैटिंग ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट में कई अहम मौकों पर सहारा दिया। अगर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे फॉलो करते हैं तो मियांदाद ने टेस्ट क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन्स और ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 से ज्यादा रन्स बनाए। लेकिन अगर आप किसी क्रिकेट फैन से पूछे कि जावेद मियांदाद की सबसे बड़ी पहचान क्या थी तो शायद जवाब होगा उनका फाइटिंग स्पिरिट। ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। वो मैदान पर कभी आसानी से हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं थे, वॉज अ स्ट्रीट फाइटर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस और बॉलर को जवाब देने का अंदाज उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से अलग करता था। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ रन्स नहीं दिए, उन्होंने एक सोच दी कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। इसीलिए जावेद मियांदाद का नाम आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के मारूफ सितारों में लिया जाता है। उनका करियर हमें ये सबक देता है कि क्रिकेट हो या जिंदगी, असल चैंपियन वो होता है जो प्रेशर के सामने झुकता नहीं। जावेद मियांदाद एक नाम, एक जज्बा और पाकिस्तान क्रिकेट की एक अजीम दास्तान। दोस्तों आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आज इतना ही। आप सुन रहे थे जावेद मियांदाद की कहानी। अगली बार एक और जबरदस्त स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे निमामद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, Dil Se Desi.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
3: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main hoon Duha wala Kabir FM 107 pe, and time for another tech update. So, sabse pehle aapko bataunga bahut hi kamal ki aur zaruri websites, and then hum move on karenge khabron ki taraf. To bahut zaruri website number 1. To number 1 jo website hai on the list, ye aapke bahut kaam aayegi, jo aapko batayegi ki kaun si photo jo hai wo asli hai ya phir nakli hai. Ha, website ka naam hai bitmind.ai. ठीक है, bitmind.ai. इस पे आप कोई भी इमेज जब अपलोड करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई साहब ये तो AI है, या आप किसने दिया आपको ये, ऐसे नहीं बताएगा, लेकिन आपको बता देगा कि वो फोटो असली है कि नहीं है. एंड इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल आज की तारीख में, जहां पर कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी. और AI की फोटोज के जरिए कुछ भी बनाया जा रहा है, कुछ भी स्प्रेड आउट किया जा रहा है, तो और रूमर्स से और बचें, और अपने ह्यूमर के लिए रूमर्स पे बिलीव ना करें, इसलिए वेबसाइट मैंने आपको बताई. ओके, नाउ वेबसाइट नंबर

0: तो ये जो वेबसाइट है ये उन लोगों के लिए है जो ड्राइंग करना चाहते हैं और अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, या फिर बच्चे जो ड्राइंग करना चाहते हैं एंड यू कैन सी द स्किल्स। तो वेबसाइट का नाम है animeoutline.com, ANIME, एनिमे आउटलाइन, OUTLINE.com, animeoutline.com। ये प्रिसाइसली एक एक स्टेप बाय स्टेप चल चल के सिखा सकती है कि एनिमे को कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली वेबसाइट, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल और काफी प्रोडक्टिव है और बहुत अच्छी है। तो सिर्फ बच्चों के लिए क्या, जो बड़े हैं भाई, जो बनाना चाहते हैं कोई एनिमे, आपने देख लिया और आपको लगता है यार काश मैं भी ड्रॉ कर सकता, पर आपकी मगर स्किल कम से कम 50% से अबव हो तो आपके लिए ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किल मेरे जैसी है तो ट्राई कर सकते हो भाई, कोई गारंटी नहीं दे रहा मैं मगर हाँ जो ड्रॉ करना चाहते हैं, देखते हैं कि एनिमे का स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई, यू कैन ब्रश अप ऑन योर ड्रॉइंग स्किल्स एंड आपके डेफिनेटली काम आ सकती है। अब थर्ड चीज जो बहुत काम आएगी और सबके काम आएगी, तीसरी वेबसाइट का नाम है फोटोस्कोप या photoscope.com। वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगी। फोटोज PHOTOS फोटोज KOP photoscope.com। इस वेबसाइट पे जाके आप लिटरली फ्री में फोटोग्राफी सीख सकते हैं, लाइटिंग क्या होती है, अपर्चर कैसे इस्तेमाल करते हैं, iOS कैसे, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप, इनफैक्ट आपको एग्जांपल देगा, आपको बताएगा कि भाई कोई भी फोटो आपने अपलोड कर ली मान लीजिए और आपने पूछा कि भाई इस फोटो में मैं कैसे ऐसे कैसे फोटो खींच सकता हूँ, इसमें क्या यूज किया गया है, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न फोटोग्राफी। इतनी बढ़िया चीज है एंड इट इज नॉट ओनली बढ़िया चीज जो मैंने कह दी वो बताने के लिए सेंसेशन के लिए, मगर ये डेफिनेटली प्रोडक्टिव है। तो अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं और कुछ चीजों को ब्रशअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत काम आएगा और बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो photoscope.com, यूज इट एंड लेट मी नो कि आपके काम आई कि नहीं आई, आई एम प्रीटी श्योर आएगी तो जरूर। ठीक है, अब जरा खबरों की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो आप जानते हैं कि एप्पल ने जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन सैमसंग की तरफ से भी सैमसंग गैलेक्सी S27 की जो लीक्स हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, जगह जगह फैल रही हैं और अर्ली लुक दिखाने की कोशिश है कि नेक्स्ट फ्लैगशिप फोन ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे एक शिकायत है दोनों ही से, मतलब एक तो सैमसंग से भी और एप्पल से भी, एप्पल से थोड़ी ज्यादा है क्योंकि डिजाइन पे मेहनत करना अभी छोड़ दिया है, पर सैमसंग से अभी जो उम्मीद है वो बनी हुई है। सो लेट्स सी के S27 के जो लीक्स हैं वो कितने सच्चे होंगे कितने नहीं होंगे। और इसके अलावा एक और खबर है जो कि गूगल की तरफ से आ रही है। सो गूगल अपने जेमिनी मॉडल्स को अब बहुत ही ज्यादा डीपली इंटीग्रेट करने जा रहा है एंड्रॉयड के साथ। वो चाहते हैं कि हर एक चीज जो फीचर्स हैं उनके वो जेमिनी पावर्ड आइटम्स बने, ट्रैकिंग से लेकर मोशन असिस्ट, चैट की थीम्स। तो गूगल AI हर किसी के फोन का ऐसा हिस्सा बन जाए के लगे कि ये स्किन पहनी हुई है, ऐसा कोई अलग से सॉफ्टवेयर ना लगे, विच इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स कि एप्पल जब भी AI मॉडल पे काम करता है भाई मैं आंख मूंद के उनपे भरोसा करता हूँ। दिस टाइम ऑल्सो आई एम होपिंग दैट दे डू समथिंग रियली रियली गुड। सो ऑल द बेस्ट टू गूगल एंड ऑल द बेस्ट टू मी, आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली अपडेट में, दिल से देसी। कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ, छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, मेरा नाम है फजील और ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज नए जमाने के नए फ्रॉड से आपको रूबरू कराता हूं। और आज भी एक ऐसा ही फ्रॉड है जो इमरजेंसी फ्रॉड के नाम से जाना जाता है, और आमतौर पे इस फ्रॉड में फंसाने के लिए ज्यादातर या तो बिल्कुल छोटे लोगों को या फिर बेहद जो बुजुर्ग होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। क्या है ये फ्रॉड, चलिए जानते हैं दोस्तों। ये फ्रॉड है फेक फ्रेंड इमरजेंसी

0: स्कैम या कहें फ्रॉड। ये स्कैम आजकल के डिजिटल जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इस स्कैम का तरीका बहुत ही शातिराना होता है। सबसे पहले एक साइबर क्रिमिनल या हैकर आपके किसी सच्चे और असली दोस्त का सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया, पूरी तरह से हैक कर लेता है। हैक करने के बाद वो हैकर उस प्रोफाइल का पूरा एक्सेस अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद का स्टेप होता है आपको टारगेट करना, यानी कि उसके जितने दोस्त हैं वो उसको टारगेट करता है, जिसमें आप भी शामिल होते हैं। वो हैकर आपके उस दोस्त के अकाउंट से आपको एक प्राइवेट या डायरेक्ट मैसेज भेजता है। मैसेज की शुरुआत बहुत ही आम लगती है, लेकिन तुरंत फौरन ही वो एक बहुत बड़ी और मुसीबत, मेजर क्राइसिस जैसा जिक्र करने लगता है। हैकर आपको बताता है कि आपका दोस्त किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है। मतलब अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए कि वो लिखता है कि वो कभी हॉस्पिटल में है या एयरपोर्ट पे खड़ा है, उसको पैसे की जरूरत है, या उसका फोन टूट गया है, उसका वॉलेट चोरी हो गया, या फिर उसकी किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन उसकी दोस्त की हो गई है, या फिर वो ऐसा कुछ सीन बनाएगा जिसमें इमरजेंसी उसको बताना होता है। क्योंकि ये पूरा मैसेज आपके दोस्त के बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रोफाइल से आ रहा होता है, इसलिए आपका दिमाग किसी भी तरह के फ्रॉड पर शक नहीं करता है। ऐसे में आपको लगता है कि आपका अपना दोस्त सच में किसी बड़ी मुसीबत में है, और आप एक सच्चे दोस्त के नाते इमोशनल होकर तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्कैमर इसी इमोशनल स्टेट का फायदा उठाता है और आपसे कहता है कि बिना वक्त बर्बाद किए किसी डिजिटल पेमेंट पे ऐप कर दो, चाहे वो फोन पे हो, यूपीआई हो, अलग अलग तरीके होते हैं पेमेंट के जरिए। वो कहता है कि इस पे कैश आप पेमेंट कर दो, अगर आप बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं तो वो पैसा सीधा क्रिमिनल के अकाउंट में जाता है और फिर उसे रिकवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ हैकर्स ऐसा भी करते हैं कि वो किसी अकाउंट को हैक नहीं करते, लेकिन आपके दोस्त की अगर कोई प्रोफाइल फोटो या कोई नॉर्मल फोटो भी पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, तो उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको एआई से डिस्टॉर्ट करते हैं। एआई का इस्तेमाल करके उसे हॉस्पिटल में कहीं दिखा दिया, कहीं एयरपोर्ट पे दिखा दिया, तो ऐसे में आप और ज्यादा यकीन कर लेते हैं, क्योंकि एआई पर भरोसा करना भी, या कहें एआई का पता लगाना भी आसान नहीं है। उस पर इंसान भरोसा कर लेता है, उसको लोगों को पता नहीं होता कि ये एआई से वीडियो या फोटो बनाई गई है। तो ऐसे में उससे बचने के कुछ सॉल्यूशन भी हैं। क्या कुछ सॉल्यूशन है, जरा उन सॉल्यूशंस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है डायरेक्ट वेरिफिकेशन कॉल। दोस्तों, जब भी आपको सोशल मीडिया पर किसी दोस्त या रिश्तेदार का ऐसा अर्जेंट मनी रिक्वेस्ट मैसेज आए, तो सबसे पहले उन्हें उनके पुराने और पर्सनल मोबाइल पर कॉल करके कंफर्म करें। दूसरा तरीका है क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर उनका नंबर नहीं लग रहा है तो चैट पर उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछे जो सिर्फ आप दोनों को पता हो, आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव को, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को पता हो सिर्फ और सिर्फ। और एक अनजान हैकर इस सवाल का जब जवाब नहीं दे पाएगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। तीसरा है जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्कैमर्स हमेशा आपको डराएंगे कि वक्त नहीं है, जल्दी करो, उनके इस प्रेशर में बिल्कुल ना आए। ऐसे यानी कि इस तरह के प्रेशर से ही ज्यादातर स्कैम होते हैं। और चौथा तरीका है अकाउंट को रिपोर्ट करें। अगर आपको कंफर्म हो जाए कि आपके दोस्त का अकाउंट हैक हो गया है ना, या फिर किसी नए अकाउंट से आपके पास मैसेज आया है, तो उस अकाउंट को रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट में हमेशा हैक्ड या फेक के नाम पर ही रिपोर्ट करें, ताकि उस प्रोफाइल का और ज्यादा गलत इस्तेमाल वो हैकर ना कर सके। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स बच सकते हैं, और इस तरह के स्कैम जो मैं हर रोज लेकर आता हूं और आपको बताता हूं, इस तरह के स्कैम को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहा करिए। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। कल मुलाकात होगी एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए, या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम। पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।

0: शायद लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
4: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया और आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो अक्सर लोग अपनी सैलरी इनकम और सेविंग्स पर फोकस करते हैं लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो कैश फ्लो का मतलब है हर महीने आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितने पैसे जा रहे हैं अगर आप अपना कैश फ्लो समझ लें तो आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं देखिए बहुत से लोग अच्छी सैलरी अर्न करते हैं लेकिन फिर भी महीने के एंड में कमी पैसों की महसूस करते हैं जो हमने बात की इसकी बहुत सारी वजह है और उन्हें अपने कैश फ्लो को सही तरीके से जज करने का आइडिया भी नहीं होता वो जानते हैं कि उनकी इनकम आ रही है लेकिन ये नहीं जानते कि पैसे जा कहाँ रहे हैं मैं अब आपको समझाती हूँ कि कैश फ्लो समझना क्यों इम्पोर्टेंट है वैसे कैश फ्लो के ना दो बेसिक पार्ट्स होते हैं मनी इन मनी आउट यानी इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस इनकम यानी वो पैसा जो आपको सैलरी बिजनेस फ्रीलांस वर्क बोनस या किसी और सोर्स से मिलता है वहीं मनी आउट यानी एक्सपेंसेस यानी वो पैसे जो आप रेंट ग्रोसरीज यूटिलिटीज एजुकेशन ट्रांसपोर्ट शॉपिंग एंटरटेनमेंट और बिल्स में खर्च करते हैं अगर आपकी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है तो कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसी शख्स की सैलरी 10,000 कतरी रियाल है उसके मंथली एक्सपेंसेस इस तरह से हैं, फॉर एग्जाम्पल के रेंट 3,000 ग्रोसरी 1,500 ट्रांसपोर्ट 500 बिल 800 और शॉपिंग और एंटरटेनमेंट 1,200 यानी टोटल एक्सपेंसेस 7,000 कतरी रियाल इसका मतलब है कि उनके पास हर महीने 300 कतरी रियाल बच रहे हैं और ये पॉजिटिव कैश फ्लो है जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होता है वहीं दूसरी तरफ फिर मान लेते हैं किसी की सैलरी है 10,000 लेकिन उनके एक्सपेंसेस 10,500 हैं और वो क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन शॉपिंग या फिर अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हैं तो इस सूरत में उनका कैश फ्लो नेगेटिव है और हर महीने ये जो 500 का ये छोटा छोटा जो कर्ज है वो बढ़ता जाता है देखिए कैश फ्लो समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने पैसे पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं जब आप हर एक्सपेंस को ट्रैक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से गैर जरूरी बहुत से लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस इसलिए फेस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है जबकि असल मसला इनकम नहीं पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट है रोज की कॉफी फ्रिक्वेंटली फूड डिलीवरी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस इंपल्सिव शॉपिंग ये धीरे धीरे बड़े एक्सपेंसेस बन जाते हैं कैश फ्लो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ मैं आपको कुछ स्टेप्स भी बताऊंगी सबसे पहले हर महीने मैंडेटरी बजट बनाएं हर एक्सपेंस को लिखते जाएं अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करें सैलरी मिलते ही सेविंग्स अमाउंट अलग कर दें क्रेडिट कार्ड को लिमिटेड और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करें वहीं पर इमरजेंसी फंड क्रिएट करें ये भी याद रखें कि वेल्थ सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है वेल्थ तब बनती है जब आपके पास आने वाले पैसे समझदारी से मैनेज हो रहे हैं कई लोगों की इनकम एवरेज है लेकिन उनका कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए वो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि कैश फ्लो को अपने फाइनेंशियल हेल्थ

0: ब्लड सर्कुलेशन समझिए। जिस तरह हेल्दी बॉडी के लिए ब्लड फ्लो जरूरी है, उसी तरह हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों पे इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक

0: रहमत अल्लाह व बरकातहू साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ी बजा रही है 10:02 और आप सुन रहे हैं सफा और महावेश के साथ। शो का नाम है यू मैटर और हमारा साथ कब तक रहेगा महावेश?
1: 11 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को मेरी तरफ से भी। और मुझे कुछ आवाज आ रही है नहीं आ रही, मैं कुछ इस कशमकश में मुब्तला हूं, पता नहीं मतलब आवाज मुझे नहीं आ रही या सही आ रही है। और बैकग्राउंड ठीक है?
0: आज मेरे सारे कान, मैं सारे नहीं, मैं दो ही हैं और कितने कान होंगे, दोनों कान मेरे खुले में
1: होने चाहिए थे। मुझे लग रहा है या तो मेरा म्यूट हुआ है ना,
0: यहाँ से चक्कर रही है। भाई देखो मुझे तो बिल्कुल सही आ रही है आवाज, मैं तो शो बड़ा मजे।
1: चलिए आप एक काम करें कि आप इंट्रो वगैरह करवाएं जब तक मैं अपना कुछ मामला सेट करती हूं।
0: तो भाई साथियों आ जाओ जरा खुशबू लगा के, गोभी नया फूल लो। देखो ये एक इंटरैक्टिव शो है, एक घंटे के अंदर हम आपसे मजे मजे की बातें करते हैं, आपसे तफसरे करते हैं। तो आपने हमें करना ये है कि हमें कॉल करके पार्टिसिपेट करना है। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377, नंबर फॉर कॉलिंग इज 4434377। और चाहें तो हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, मैसेज भेजने के लिए नंबर है 6662107। इस एक घंटे में बातें कम और काम ज़्यादा, ठीक है? काम मतलब वो वाला कि आपने सोचकर हमें बताना है कि जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो आपकी राय उसके बारे में।

0: बारे में क्या है. तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई में ज़िंदगी में बिजी चल रहे हैं या हम बस मामला कुछ ऐसा है कि हमने प्रायोरिटाइज गलत चीज़ों को किया हुआ है. मतलब ये कि आपने कभी ये वर्ड सुना है, अमूमन आप सुनते होंगे, हम यूजली बोलते हैं, हम हर दिन बोलते हैं ये बात कि भाई वक्त कहाँ गया पता ही नहीं चला, और इतना ढेर सारा काम था, अभी भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई. इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हम मैनेज नहीं कर पाते या वाकई में वक्त जो है वो बिजी चल रहा है.
1: राइट. तो अब हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे कुछ अभी भी इशू है, तो अब इसी पे गुजारा करना पड़ेगा. मतलब मुझे आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही है, वो कुछ हेडफोन का इशू है या कुछ ना कुछ है, मैंने वॉल्यूम भी बढ़ा के देख लिया, सब कुछ है. लेकिन चले खैर, इसी पे गुजारा करते हैं और इसी पे निकालते हैं मामला. और हाँ, सब्र शुक्र करके और देखते हैं कुछ ना कुछ, अगर कुछ मिल सकी हमें बाद में हेल्प जब हम ब्रेक लेंगे उस वक्त देखेंगे. खैर, तो सवाल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है.
0: अच्छा,
1: वक्त नहीं है या फिर हम हमारी हरकतों की वजह से वक्त नहीं है बेसिकली.
0: और एक अगर इसको और भी ज्यादा सिंपलीफाई कर ले तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बिजी होना और प्रोडक्टिव होना सेम नहीं होता. क्या कहते हैं?
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है.
0: बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है.
1: आप बिला वजह की चीज़ों में मसरूफ रहते हो. और आजकल तो जो सबसे ज़्यादा आपका जो टाइम है ना, वो टीवी, सोशल मीडिया और ये सब कुछ ले गया. यार, हम लोगों ने 90s में अपना बचपन गुजारा है, और मतलब मैं हमेशा वो वक्त सोचती हूँ कि जिस वक्त हम लोग जो है ना, मतलब ये मोबाइल फ़ोन नाम की चीज़ नहीं थी हमारे पास, यूनिवर्सिटी के वक्त तक नहीं थी, बल्कि मैं तो जॉब की है, जॉब के दौरान भी मेरे पास मोबाइल नहीं था. तो काफ़ी अरसे के बाद लिया, ये नहीं कि आया नहीं था, आ गया था, लेकिन हमने ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई थी कि हम मोबाइल वगैरह लेते, तो नहीं लिया. तो खैर, वो जो वक्त था ना यार, वो इतना वक्त था, इतना वक्त था. मैं सोचती हूँ कि यार ये हाथ में एक चीज है, ये उसके बाद वक्त कैसे उड़ गया, मतलब ये समझ में नहीं आता. जबकि अगर देखा जाए तो मेरा तो मोबाइल फोन का अभी भी, जो तुम्हारा भी यही मामला है, मेरा भी यही मामला है कि हमारा घर पे हो या काम ना हो तो मोबाइल नहीं होता. मोबाइल
0: मतलब इतना बेसिक यूज है मोबाइल का कि अगर मेरे मोबाइल की बेल बजती है ना, मतलब रिंग होता है मोबाइल, तो मैं आपको बता सकती हूँ किसी कॉल आ रही है. मैं मजाक के अलावा, आई वुड नो, मेरा मोबाइल अननेसेसरी आपको मेरे हाथ में नजर नहीं आएगा. लोगों को ऐसे पता चलता है कि मैं या उदास हूँ, नहीं उदास नहीं, या उनसे नाराज हूँ, या मैं उन्हें इग्नोर कर रही हूँ, या मैं किसी चीज को एंजॉय नहीं कर रही. लोगों को इस चीज से पता चलता है कि अगर उनको मेरे हाथ में मोबाइल दिख जाए तो. वरना मैं किसी गैदरिंग में ही बैठी होंगी ना, मैं आपको मोबाइल यूज करती भी नहीं नजर आऊंगी. क्योंकि आई एंजॉय टॉकिंग विद पीपल, आई एंजॉय बीइंग अटेंटिव एट द टेबल. जब मैं बैठी हुई हूँ, खाना खाने में बैठी हूँ, तो मुझे सामने वालों से भी खारा नहीं लगती है कि भाई रिस्क पड़ा हुआ है सामने, इस चीज के पीछे तो भाग रहे हो.
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, और ऐसे ही होना चाहिए. लेकिन इसके बावजूद भी यार, मतलब उस वक्त से जब ये, मतलब 90s से 2000 का ट्रांजिशन हुआ है, उसके फौरन बाद मतलब दुनिया को पर लग गए, वक्त को पर लग गए.
0: यही चीज है ना, हमें ये चीज पता नहीं चलती कि प्रायोरिटाइज किस चीज को करें. फॉर एग्जांपल, आप कमा रहे हो, ठीक है, आप कमा रहे हो, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, खून पसीने की कमाई कमा रहे हो. प्रायोरिटी क्या है आपकी? आप किस चीज़ के लिए कमा रहे हो? अक्सर औकात लोगों का ये होता है कि प्रायोरिटी क्या है, एक बड़ी नॉर्मल सी बात करते हैं. मैं कल परसों ये बात सोच रही थी और मुझे बहुत झटके से लगी ये बात कि इंसान किसके लिए कमाता है. फॉर एग्जांपल, खाने के अलावा किसके लिए? अपना फ्यूचर मेंटेन करने के लिए. फ्यूचर में कौन होता है? बच्चे होते हैं, बेगम होती है, मियाँ होता है, ठीक है. ये आपका फ्यूचर, ये आपका प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है. आप इनके लिए कमा रहे हो, आप इनके लिए कर रहे हो. और फिर आप एक साइड पर देखते हो कि जब आप घर में एंटर होते हो, तो क्योंकि आपने अपनी चीजें, अपनी लिस्ट प्रायोरिटाइज नहीं की हुई ना, तो आप ये भी काम करोगे, आप वो भी काम करोगे, आप फलानी चीज समेटोगे, आप फलाना बैग पकड़ोगे, आप फलानी चीज करोगे. लेकिन होगा क्या, आपकी प्रायोरिटी कौन थे, कौन होने चाहिए थे? आप जब घर में एंटर होते, तो आपकी प्रायोरिटी कौन होने चाहिए थे? घर वाले होने चाहिए थे. यू आर बिजी इन द ईमेल्स, यू आर बिजी इन द अदर स्टफ यू आर डूइंग, यू आर बिजी इन एवरीथिंग. लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए थी ना, इस वक्त आप उनसे अलग कट ऑफ हुए. और जैसे ही वो बेचारे पास आएंगे ना आपके, आपसे टाइम मांगेंगे, आपसे बात करेंगे, आप चिड़चिड़े होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बर्न आउट मोड पे चले, क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया चीज को. आपने ऑफिस
1: मैंने किया है, मेरे साथ ऐसा नहीं है.
0: मेरा अपने साथ ऐसा है, जब कभी कभी होता है, ऐसा होता है ना, मैं एग्जॉस्ट जाती हूँ बहुत ज्यादा, और मैं घर वालों से चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तो मैं 5 से 10 मिनट अपने आप के ऊपर फोकस करती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ, मैं कहती सफा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई. अपनी लिस्ट मैनेज करो, अपनी लिस्ट मैनेज. मैं अक्सर औकात रैंडमली ये बात बोल जाती हूँ कि अपनी प्रायोरिटीज मार्क करो, अपनी प्रायोरिटीज मार्क.
1: एग्जैक्टली.
0: तो डेली लाइफ में भी ये होता है कि एक होता है लुक बिजी. हमारे अब्बा वो आर्मी टाइप बंदे थे ना, तो हमेशा कहते ये लुक बिजी वाले काम नहीं किया करो, लुक बिजी वाले काम नहीं किया करो. अब जाके मुझे उनकी बात समझ में आती है कि लुक बिजी क्या चीज है. मजे की बात ये, इंसान इस लुक बिजी में अपने आप को भी धोखा दे सकता है।

0: एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आपको प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए और दूसरे उसके साथ जो है ना आपकी जो रूटीन जिसके हवाले से हम कल बात कर रहे थे वो आपकी मतलब वही चीज है कि आपको पता हो कि आज के दिन आपने क्या कुछ करना है।
1: बिल्कुल।
0: अब अमूमन क्या होता है, लोग बैठ के सुबह उठे, मतलब अगर जल्दी भी उठ गए इनकेस, तो अब मतलब पूरा दिन इस उसमें निकल जाता है क्या पकेगा।
1: हाँ,
0: ये सवाल चल रहा होता है अक्सर घरों में, और फिर क्या पकेगा कि बाद शाम तक फैसला होता है, और उसके बाद फिर सामान नहीं होता, फिर सामान इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद
1: बच जाता है ना दोपहर
0: का खाना। असल जो चीज है ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज के दिन आपने क्या करना है। अगर आपको पहले हफ्ते के शुरू में आपको पता है ना कि आपने ये पकाना है, ये लिस्ट में आपके काम है, ये आपने इस हफ्ते में निपटाने, कौन से किस दिन निपटाने, तो फिर चीजें बहुत ईजी हो जाती है और वक्त मतलब आपका काफी हद तक बच सकता है। लेकिन फिर भी यार मैं कहूंगी बरकत वाकई खत्म हो गई है, मतलब वो एहसास खत्म हो गया है सारे काम करने के बावजूद।
1: ये होता है ना हमारी ना एक कॉमन प्रॉब्लम, पता है क्या हमारे कॉमन प्रॉब्लम, ये है कि हम हर चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई ऑफिस का काम है ना, ऑफिस का काम इंपॉर्टेंट है, वर्क इंपॉर्टेंट है, फोन कॉल्स इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैसेजेस इंपॉर्टेंट है, ईमेल्स इंपॉर्टेंट है, घर के काम भी हैं, और फिर सोशल मीडिया भी इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे काम हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। लेकिन जो चीज हमें नहीं इंपॉर्टेंट लगती ना हमारे, पता है क्या है, अक्सर औकात लोगों को नहीं लगती, मानो नहीं मानो, पता है क्या, मैं कितना थक गया हूँ ये उसको इंपॉर्टेंट नहीं लगता। या आप कह लें कि कोई और प्रॉब्लम लाइफ में चल रही होती है ना, तो उसके बारे में सिर्फ सोच रहे होते हैं। आपने कहा ना फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल सी प्रॉब्लम है, खाने में क्या बनाएं, तो ये सब हर घर में होता है, लेकिन उसको प्रॉपरली प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा, उसके बारे में सिर्फ सोचा जा रहा होता है, सिर्फ सोचा जा रहा है कि भाई क्या पकाएं। भाई आपको पता है ये कुछ तो करना है ना आपने, अगर आपसे थोड़ी सी और प्रायोरिटी दे दे तो सिर्फ सोचने के बजाय आप उसके ऊपर अमल करते, कैबिनेट खोलते, देखते, कुछ करते, फ्रीजर खोलते, भाई ये पका लेता हूँ चलो। लेकिन लोग वो नहीं करते, वो सिर्फ सोचते रहते हैं, वो लुक बिजी वाला हिसाब हो जाता है ना, और फिर आखिर पता क्या होता है, इन द एंड ऑफ द डे मैं एग्जॉस्ट हो गया, मैं टायर्ड हो गया, कि आपने कुछ नहीं होता, 12 घंटे आप सिर्फ सोच रहे होते हो उस चीज के बारे में, और आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपने अभी तक फिजिकल एफर्ट उस चीज के लिए किया ही नहीं होता, और आप एग्जॉस्टेड होते हो, और इन द एंड ऑफ द डे आप करते हो, मैंने लोग कहते हैं ना तुमने किया या तुम तो पूरा दिन बैठे रहे। अक्सर औकात ऐसा होता है, फ्राइडे सैटरडे वाले दिन भी हमारे साथ ऐसा होता है, हम कहते हैं भाई हमने किया क्या, पूरा दिन बैठे रहे और फिर भी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है।
0: जी जी बिल्कुल ऐसे ही, और हम ऐसा करते हैं कि कॉल्स ले लेते हैं क्योंकि कॉल्स आ के जा रही हैं, तो नंबर एक दफा बता देते हैं कॉल करने के लिए।
1: कॉल करने के लिए नंबर है 4434377, 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और मैसेज करने के लिए नंबर
0: 6622107, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, जल्दी से आप कर लीजिए क्योंकि 2-3 कॉल्स आई और गई, तो आप कीजिए ताकि हम आपको ले लें।
1: मैसेज वाले नंबर पे कॉल नहीं करनी भाई शहजादों,
0: जल्दी से कॉल कीजिए, जो भी कॉल कर रहे थे अब आप जल्दी से कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल ले लेते हैं, वरना फिर अपनी बात फिर दोबारा।
1: मुबीन भाई कॉल कर रहे हैं हमें मैसेज के नंबर पर,
0: कॉल कर रहे हैं मुबीन भाई को क्या हो गया, मतलब वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ कॉल करनी है। खैर आप कॉल कीजिए 4434377 पे, और हम जो है वो आज आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको भी वक्त की कमी का सामना है, आपको क्या लगता है कि क्यों आपके पास वक्त कम है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि वक्त जो है वो यूं उड़ जाता है, और ये सारे मसले जो ना। अच्छा ये मज़े की बात ये है सफ़ा कि हम ये सोचें कि यार मतलब हम जो है ना अभी इस फेज में खड़े हैं लाइफ के कि हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़ गई हैं ये वो, लेकिन उससे हटकर देखा जाए भाई आजकल के बच्चों के पास भी वक्त नहीं है, जब हम इसमें इस एज में हुआ करते थे तो हमारे पास बहुत वक्त था, वक्त ही वक्त था हमारे पास। वक्त ही वक्त था, हम रोज खेलते थे,
1: क्रिएटिव होते थे,
0: और नहीं रोज खेलते थे, बाहर खेलने जाते थे, मतलब 2-3-4 घंटे तो ऐसे गुजर जाते थे, होमवर्क भी हो जाता था हमारा,
1: सब कुछ हम सब लाइन चलते थे,
0: होमवर्क भी हो जाता था, हम ऐनक वाला जिंग भी देख लेते थे, और
1: वो मुझे कहता था ना अंकल सरगम
0: को भी देख लेते थे, वो भी देख लेते थे, थंडर कैट भी देख लेते थे, सब चीजें देखते थे हम,
1: और यहाँ पे कार्टून चलता था कैप्टन माजिद का, मुझे बहुत पसंद था, वो अरबी था लेकिन समझ में कुछ नहीं आता लेकिन समझ में आता था।
0: ये मेरे साथ भी था, मैंने भी इसी तरह से कुवैत में मतलब इसी तरह ख्वाब देखे, ये कार्टून देखे,
1: अभी तो स्मर्फ वाले
0: ड्रामे भी देखे हैं,
1: ताश और यो हम लोग यहाँ पे देखते थे, समझ में नहीं आता लेकिन समझ में आता था,
0: समझ में आ रहे होते थे, वो आपस में बातें हो रही हैं लेकिन समझ में आती थी कहानी किसी।
1: तो भाई आज हम आपको एक दफा फिर से टॉपिक रिपीट कर देते हैं कि टॉपिक ये है हमारा आज का, मुद्दा ये है कि क्या हम वाकई बहुत मसरूफ हैं या सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज तय करने में कमजोर हैं। हमारा वक्त दिन भर का कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा। किस तरह हम चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये पूरा दिन जो हमारा गुजरता है ये इसी के ऊपर गुजरता है कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा काम बाद में। अच्छा आज एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देती हूँ ना, कल मेरे भाई ने खाना ऑर्डर किया अपने ऑफिस की बजाय मेरे घर पे कर दिया गलती से उसने। तो कहने लगा बाजी आप जो हो ना अगर बाहर जा रही हो ना तो मुझे खाना पहुँचा देना। मैंने कहा ठीक है। अब मामला ये था कि मुझे ऑफिस में भी कुछ काम था शाम को, तो मैंने कहा एक चक्कर मारती हुई, मेरा प्लान ये था कि मैंने वैसे ही निकलना था बच्चों के स्कूल का कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा ये स्कूल का सामान लेते हुए फिर ऑफिस का काम करते फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन जो मेरे भाई का ऑफिस था ना बिल्कुल ऑफ रोड था,
0: अच्छा
1: बिल्कुल अलग साउथ में चल रहा था वो। फिर मैंने ये डिसाइड किया, मैंने अपनी प्रायोरिटी मार्क की, ये होता है प्रायोरिटी मार्क करना। मैंने कहा नहीं बेचारा भूखा बैठा होगा, मैंने उल्टा फिर सामान लिया क्योंकि वो घर के पास से लेना था बच्चों के स्कूल का। फिर मैं गई उसके ऑफिस और फिर मैं आई अपने ऑफिस। तो वो प्रायोरिटी की बात होती है कि जब आपको जब आप प्रायोरिटी पे रखते हो ना, अगर वैसे अगर मैं करती ना तो उसको खाना भी नहीं मिलता, मेरा ऑफिस काम भी नहीं होता।
0: सही, अब हम वेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी क्योंकि ये अली रजा की कॉल है सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, यानी ये हर चीज टाइम इतना कम होता है और इतना जल्दी गुजरता है ना कि पता नहीं चलता है। आप कोई भी काम ले लें, लेट सपोज अभी मेरी फैमिली आई हुई थी, कल ही की बात है, मेरी फैमिली जो है ना पाकिस्तान गई है, बच्चे और मिसेज आई हुई थी विजिटिंग वीजा पे। तो मैं उनको सुबह को कह के आया था कि क्योंकि मेरे घर से और एयरपोर्ट जो है ना ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का रास्ता है।
0: सही।
2: तो मैं उनको कह के आया था कि आप लोग रेडी रहना, हम इतने बजे निकलेंगे।
0: हाँ।
2: और जब हम लोग निकले तो इतनी जल्दी फास्ट टाइम गुजरा है, और वहाँ जाके भी सब खबर तबर मर गई कि सामान थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा इसको चेंज करें ये करें। तो बताने का मकसद ये कि टाइम इतना फास्ट हो गया है कि बहुत जल्दी जल्दी गुजरते हैं और एक्टिविटीज जो है ना कम्प्लीट नहीं हो पाती।
0: ऐसा है मतलब ना, आप ये नहीं है कि आप अपना अपने तौर पे थोड़ा सा मार्जिन रख के भी निकलोगे, आप सब कुछ कर लोगे, आप सुबह सवेरे भी उठोगे, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब या तो पता नहीं वाकई ये फील हमें आ रही है, लेकिन मेरे बच्चे भी यही कहते हैं। हाँ बच्चे भी यही कहते हैं, दिन सुबह होती है रात हो जाती है, सुबह होती है रात हो जाती है,
2: टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे ना, लेट सपोज कोई कुकिंग करनी है या कोई ऑफिस का कोई ड्राफ्ट लिखना है, तो हम सोचते हैं यार हम ये वाला काम छोड़ के ना तो ये कर लेते, फिर हम उसको जल्दी से दूसरा भी कर लेंगे, लेकिन वो
1: नहीं हो पाता
2: जल्दी फास्ट। हाँ। करता है ना, नहीं हो पाता।
1: बिल्कुल सही
2: जी, इनफैक्ट यही वजह होती है।
1: तो आपका अगर कोई ऐसा मामला होता है तो आप अपना दिन पूरा तय करके निकलते हैं कि आपने क्या क्या करना है?
2: हाँ, मैं सुबह से डिसाइड करता हूँ, यानी कि सुबह मैं प्लान करता हूँ कि मैंने ये करना है ये करना है ये करना
1: है। अच्छी चीज़ है।
2: तो सम टाइम तो हो जाता है कंप्लीट, लेकिन सम टाइम जल्दी गुजरता है ना, नहीं हो पाता फिर वो।
1: सही। लेकिन ये आपको आपने कभी दोनों तरफ से दिन गुजारा है कि भाई एक दिन ऐसे ही मुंह उठा के चल लिया कि भाई जो होगा देखूंगा दिन में, जो आता जाएगा, और एक होता है अपनी प्रायोरिटीज को मार्क करके चलना दिन में, अच्छा ये काम हो गया, एक चेकलिस्ट होती है ना हमारी, ये काम हो गया ये काम, तो आपको कौन सा दिन ज्यादा सहूलत वाला लगता है, जो अनप्लान्ड होता है या जो प्लान्ड होता है?
2: जो प्लान वाला होता है वो जरा सही लगता है, क्योंकि उसमें प्लान होता है ना कि इतने बजे मुझे ये करना है उसके बाद ये करना है उसके बाद।
0: अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, राइट। तो अली रजा हमारे साथ है, और अच्छा मेरे तो भाई अपने ही काम चल रहे हैं, मेरे काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं काम नहीं होते, काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, मेरे गम अलग है।
1: अच्छा ये मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है या आप लोगों में से किसी को पता चल रहा है कि ये सितंबर को किसी ने नॉस लगा दी है?
0: अच्छा,
1: मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर को नॉस लगा हुआ है।
0: सीरियस्ली?
1: और मेरा जो पिछला महीना था वो खत्म नहीं हो रहा था, मैं कहती हूँ खत्म क्यों नहीं हो रहा, अगस्त का महीना खत्म क्यों नहीं हो रहा,
0: यही जिंदगी जीनी है मैंने भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: जी कौन कौन है हमारे साथ?
3: सुभान।
0: सुभान कैसे हैं? सुभान
3: ठीक ठाक, अपना सुना है आप लोग ठीक
1: बिल्कुल ठीक ठाक सुहान भाई, आपकी आवाज़ ऐसा आ रहा है कि आप जो है ना,
0: अच्छा मुझे लगा मुझे ही आ रही है, मैंने कहा मैं तो कंप्लेन ही ना करूँ क्योंकि मेरे साथ वैसे ही
1: सुहान भाई की आवाज़ ऐसा लग रहा है पाकिस्तान से बात कर रहे हैं इतनी दूर से आवाज़ आ रही है आपकी सुहान भाई,
0: खुश भी हो रहे सही।
1: तो बताएं सुभान भाई आपका टाइम कैसे गुजर रहा है?
3: मजेदार टॉपिक सुना है आप लोगों ने, तो टाइम तो हर किसी का अलग होता है, सेम नहीं होता, हर किसी का जल्दी नहीं गुजरता, अगर कोई बीमार हो तो उसका टाइम नहीं गुजरता।
1: हाँ ये सिचुएशन के बाद
3: सही कह रहे, इस तरह अगर कोई बेरोजगार हो तो उससे पूछे तो उस पर भी टाइम बड़ा लंबा होता है।
1: अच्छा आज जो हम बात कर रहे हैं ना, आज बात ये कर रहे हैं कि क्या हम वाकई में बहुत मसरूफ हैं या हम चीज़ों को जो है ना वो प्रायोरिटाइज सही तरीके से वक्त नहीं दे पा रहे, तभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना मसरूफ़ रहते हैं और फिर भी काम नहीं हो पाता।
3: जी मैम मसरूफ तो है भी, लेकिन ज़्यादा मसरूफ इस मोबाइल की वजह से भी है, क्योंकि अगर आपको 5 मिनट फिर कुछ तो फ्री नहीं करना चाहते हो, स्क्रोलिंग से जाते हो सीधा, तो ज़्यादा किरदार तो मेरे ख्याल में इसमें मोबाइल का है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मेरा टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया। मेरी जो वालदा है ना, उसका दादा था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए, उसका 104 साल एज था, 104 साल
1: सही।
0: अच्छा
1: माशाल्लाह
3: 104 साल की एज में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा दादाजी टाइम कैसे गुजरा, तो मेरे तरफ देख के मुस्कुराया, बोला बेटा कैसे गुजरा, एक सपना देखा और चला गया, यानी सपना देखा। तो मैं हैरान था कि 104 साल इसको सपना दिख रहा
0: है, 104 साल का सपना देखा, 104 साल का सपना देखा, सही
1: ये अच्छा था।
0: अच्छा वैसे इससे ना समझ में आता है कि जो रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला पूछेंगे लोगों से कि कितना वक्त गुजारा, तो लोग कहेंगे कि शायद मतलब एक पहर या आधा पहर इस तरह से, तो समझ में आता है वाकई मतलब ये वाली कैफियत पहले मुझे नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब तो दुनिया में ही लगने लगी
1: है। कहते हैं ना दुनिया जो है दुनिया से आपका सिर्फ गुजरना है, ये सिर्फ गुजरना है।
0: एग्जैक्टली, और आप पीछे मुड़ के देखो मतलब ये आप 90s का टाइम देखो सब कुछ, तो आपको लगता है यार अभी की तो बात थी, अभी तो चल रहा था
1: कोविड का, याद करें या हम लोग जो फुटबॉल वगैरह exactly, कतर में 2022 को याद करें,
0: वही लगता नहीं है 4 साल हो गए
1: चलें ये भी होता है। तो आप अपने दिन को जो है वो पूरा दिन दिमाग में प्लान करके निकलते हैं या बस आप कहते हैं बस
3: प्लान तो हमारा कुछ भी नहीं, हम तो दल्ला ड्राइव स्कूल में ड्यूटी चलते हैं, बस सुबह 7 बजे निकलते हैं और रात को 8 बजे खत्म होते हैं ड्यूटी,
1: सही
3: 8 बजे के बाद सही एक्सरसाइज के लिए निकल जाते हैं, बाकी सीधा सोना है,
1: चले जी
0: सही चले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का सुभान, थैंक यू जी। रीड तो भाई ये वाला सीन है, मतलब ज्यादातर लोग हमारे पास आए कि मोबाइल की वजह से वक्त नहीं है हमारे पास।
1: हाँ और मैसेजेस हमें आए हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, माविश मैम सफा जी गुड मॉर्निंग कतर, आप और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं,
0: वालेकुम सलाम।
1: और भाई और कौन है हमारे साथ, ये कौन है, मुबीन भाई हैं, मुबीन भाई ने ये मैसेज भेजा है, और कौन है, और कौन है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल बात ये है कि ज़माना जितना सरम के ज़माने से दूर, अच्छा असल बात ये है कि ये ज़माना जितना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूर है, ज़माने से दूर चली जाती है, उस तरह हर चीज़ से बरकत निकल जाती है।
0: दिखाओ
1: कुछ कुछ तो है, कुछ तो है जो ती और ता में फर्क जो है ना,
0: है कि जितना ठीक है दूर चली जाए, हाँ वो ही है ती ता का ही फर्क है।
1: तो वो जो है ना वो असल में इनका कहने का मतलब ये कि इंसान जितना दीनी तौर पर जो है ना वो दूर होता चला जाता है, तो उसका वक्त पता नहीं चलता,
0: जितना जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से, और कयामत का वक्त आ रहा है, तो मे बी उनका कहने का मकसद ये है कयामत का वक्त करीब आ रहा है,
1: हमें
0: आ रहा है। अच्छा जी कॉल थी हमारे पास ड्रॉप हो गई,
1: मोहम्मद भाई ने मैसेज भेजा,
0: 1 मिनट इंतजार कर लिया करें, कर लें कॉल।
1: रियाज भाई ने क्या मैसेज भेजा है, स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है,
0: स्लो आ रहा है, हाँ सबको आ रहा है, क्या चक्कर?
1: तौफीक भाई क्या कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल सही आ रहा है, मुझे शायद माइग्रेन हो रहा है तो मुझे आवाज और ज्यादा ऊंची आ रही है,
0: तो मैं अपनी भी आवाज ऊंची आ रही है और कॉलर्स की भी आवाज ऊंची आ रही है। वाह यार ये कौन सा माइग्रेन है, मतलब

0: भाई थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं आज, पता नहीं मुझे तो आवाज नहीं आ रही है।
1: जी मैं सैयद बोल रहा
2: हूँ। जी सैयद भाई कैसे हैं?
1: कैसे हैं आप? दोनों खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह,
2: अल्लाह का करम है। तो भाई सैयद भाई बताएं आपका दिन कैसा गुजरता है, ऑर्गेनाइज्ड प्रायोरिटाइज्ड या बस गुजर गया भागते दौड़ते?
1: ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। ऑर्गेनाइज गुजरता है, कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो फिर चेंज हो जाती है ना, समझ रहे हैं? तो ऑर्गेनाइज तो होना चाहिए। अगर आज का टॉपिक आई थी कल के टॉपिक से रिलेटेड है आपका, अगर मॉर्निंग में अगर उठ के फजर पढ़ लिए और सुबह उठे तो सारे काम टाइम पे हो जाएंगे, इससे रिलेटेड है ये। अगर आप सुबह सही नहीं हुई, फजर नहीं पढ़ेंगे, अगर मिस कर देंगे, उठने में लेट होगा तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा।
0: नहीं, कल का हमारा था बेसिकली मॉर्निंग रूटीन पे, और आज हम ये पूछ रहे हैं कि वक्त का एहसास, मतलब एक होता है ना कि जल्दी गुजर रहा है, या हमें मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि वक्त जल्दी गुजर रहा है, या फिर हम बिला वजह के कामों में मसरूफ हैं।
2: हाँ, हाँ,
0: ऐसा कुछ है?
1: नहीं नहीं वक्त नहीं, ऐसा नहीं, वक्त जल्दी जल्दी गुजर रहा है, क्योंकि आप लोग सोचिए आपके बचपन को आप खुद सोच सकते हैं और आप फील कर रहे होंगे, जो मैं फील कर रहा हूँ मैं बता दूंगा आपको। तो बचपन में जो फील करते थे और उसके बाद जब बड़े हुए तो जो फील करते थे और अब जो दौर चल रहा है जैसा, तो आप देखिए कि बरकत तो काफी, किसी ने सही कहा है, बरकत तो चीजों से उठ गई है। पहले सामान भी कम था, पैसे भी कम थे, मगर बरकत थी और टाइम में भी बरकत थी वैसा लगता है। ऐसा दिखता था कि टाइम थोड़ा आहिस्ता जा रहा है, अभी गौर कर लीजिए टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, तो ये भी क़यामत की निशानी है, टाइम बहुत फास्ट जाएगा। तो आप खुद कंपेयर करिए कि आपके बचपन में जो फील करते थे अभी वो फील नहीं कर रहे, अभी बहुत फास्ट जा रहा है।
2: हमारी प्रायोरिटीज ना, वो कभी आप, ये मेरे साथ भी होता है कभी, अगर मोबाइल के अंदर मुंह देकर बैठ जाओ तो अभी आपको ऐसा लगेगा आपने 5 मिनट गुजारे हैं, जैसे सर ऊपर करो एक डेढ़ घंटा गुजर चुका होता है और सर में दर्द अलग हो रहा होता है।
1: जी जी, देखिए अपन अभी भी ये जमाने में भी कर सकते, बट आप यकीन मानिए, आप दोनों को बोलो मैं, चीजों से बरकत उठ गई है। क्योंकि जैसा आपने किसी ने मैसेज किया तो आप पढ़ रहे थे, जितने नेक लोग थे, जितने नेकियां होते थे, जितनी बरकत थी, वो सब उठ जा रही है ना अभी तो। आपको मालूम है क्या बोलो हालात, तो उस चीज में बरकत से भी फर्क आएगा, पैसे से हो, खाने से हो, दिखने को आपको क्वांटिटी ज्यादा दिखेगी, बरकत नहीं रहेगी।
2: सही सही सही सही,
1: देखने को देखने
2: को
1: बिल्कुल 100 रियाल रहते थे यार, अभी तो 1000 रियाल यार, 1000 भी फंसने हो रहे हैं, तो क्यों कभी सोचिए बैठ के।
0: ऐसे ही ऐसे ही, बिल्कुल सही भाई सही कह रहे हैं आप, कि इसी तरह का मामला है कि वक्त जो है ना वाकई बहुत तेजी से निकलता चला जा रहा है।
2: चलिए जी,
0: अच्छा सैयद भाई क्या हो गया, डाउन डाउन लग रहे हैं, मुझे तो बहुत देर बाद समझ में आया कि आप सैयद भाई हैं।
1: जी नहीं, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चलिए गुड, जबरदस्त। फैमिली ठीक है, सब लोग ठीक है घर पे?
1: जी जी फैमिली ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह,
0: जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट।
1: ये मैं बोलूंगा कि अब ये जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविटीज हो गए हैं भाई, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो गया है चीजों का, इससे दूर रहे, ऐसा सिस्टम ही ऐसा बना दिए कि इंसान इससे दूर हट ही नहीं सके, बना दिए ऐसा सिस्टम
2: सही
1: है भाई, इसी में मशगूल होके रह जाओ बस तुम लोग।
2: सही
0: ऐसे ही, ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले जी सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा जी, तो फिर सैयद भाई हमारे साथ थे और आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है आज ना, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ही चल रही थी मुझे कि कौन है, शुरू में नहीं समझ में आ पा रहा था। खैर जी, तो सिचुएशन ये है, खाने आ गए हैं,
2: खाने
0: वाने आ गए, मैं तो नाश्ता करके आई हूँ सुबह सुबह। अच्छा अभी छुट्टियाँ थी ना जिन दिनों, तो उन दिनों थोड़ा सा ये चल रहा था मेरे साथ मामला कि मेरा मोबाइल, मतलब मैं करती थी, मतलब कुछ है नहीं ना करने को, फ्री है तो यूज करती थी, लेकिन मुझे ना यार थोड़ी देर के बाद घबराहट होने लगी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आखिर में ये जिंदगी क्यों गुजार रही हूँ वाली। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब वो एक ये वाला जो है ना अपने अंदर आपको सेट करना पड़ेगा कि वो आपको अंदर से बोले भाई मतलब नहीं यार, मतलब क्या रखा है सोशल मीडिया पे, उन चीजों पे
2: यकीन जाने, इतनी बड़ी एक कम्युनिटी है। मैं नेट पे कभी सर्च कीजिएगा, आई वुडंट टेक नेम्स ऑफ कम्युनिटीज, लेकिन इतनी बड़ी एक कम्युनिटी है जिसका दुनिया में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाते, बैंकिंग सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है लेकिन उनके एक भी बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा आपके पास। खाने पीने के मामले में वो इतना लिमिटेड खाते हैं, जितनी हम कहते हैं ना हमारे पास हदीस है कि आधा पेट भर कर खाओ, बस पेट भर के नहीं खाओ, आधा पेट खाओ, वैसे ही वो खाना पीना रखते हैं।

0: पहनना उनका देखो तो वो दूर से पता चलता है
1: जरूरी है पता है मतलब अपने आप को कट ऑफ करना मतलब आजकल खैर मैं
0: काबू करना
1: मेरा क्या होता है मेरा बड़ा काबू करना वही और मेरा क्या होता है कि एक फेज आता है कि जहाँ पे वक्त ज्यादा हो ये वैसे वेकेशंस पे ही होता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत होता है लेकिन फिर मैं बहुत मतलब मुझे अंदर से कुछ होने लगता है मैं इतना कर देती हूँ कि वो जो नॉर्मल रूटीन होती है ना उससे भी ज्यादा मेरा कम हो जाता है तो आजकल तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उस जोन में चल रही हूँ कि मेरा बिल्कुल भी यूसेज नहीं है आजकल। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कौन है हमारे साथ?
2: जी मैं अस्मत बोल रहा हूँ। देखिए आप दोनों खैरियत
1: से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं भाई क्या हाल चाल है?
2: जी अल्लाह का करम है जबरदस्त अल्लाह का शुक्र है। तो टॉपिक आज बहुत अच्छा था मैंने कहा चलो आज हम भी कॉल कर लेते हैं।
1: जबरदस्त।
0: तो आप क्या कहना चाहेंगे वक्त से रिलेटेड?
2: जी वक्त ये सारी रियलिटीज तो है जो बाकी सारे लोगों ने बताई और आप लोगों ने भी बयान की है लेकिन इसकी एक साइंटिफिक रीजन भी है जिसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। ये अभी ये महवेश आप ही जानती होंगी डॉक्टर सुफियान ठीक है तो उनका मैं सुन रहा था ये वक्त पे ही तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी शायद आपने सुना हो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शायद कहा था कि उन्होंने कहा कि उस यूनिवर्सिटी में ये वक्त एक रिसर्च हुई थी।
0: मुझे पता है क्या बात कर रहे हैं। सही सही सही
2: जी। तो उन्होंने कहा कि एक दो घड़ियां रखी गई थी दो घड़ियां एक घड़ी थी 100 साल पहले की घड़ी और एक घड़ी आजकल के दौर की घड़ी थी ठीक है घड़ियाल जो होते हैं तो उन्होंने कहा कि जब वो वक्त अपना एक मिनट जब पूरा हुआ तो जो आजकल की घड़ी है जो आजकल आजकल के दौर में चल रही है वो 100 साल पुरानी घड़ी से तकरीबन 10 सेकंड आगे थी ठीक है एक ही घड़ियाल एक ही वक्त एक ही यूनिवर्सिटी में दो घड़ियां रखी गई थी तो जो 100 साल पुरानी घड़ी थी वो 10 सेकंड पीछे थी या 15 सेकंड मैं भूल गया हूँ वो करेक्ट एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया था। तो ये भी एक हकीकत है कि वक्त वाकई में तेज जा रहा है। पिछले 100 साल की अगर आप वक्त देखें तो उससे आजकल का दौर तेज जा रहा है ये एक साइंटिफिकली प्रूव बात है।
1: बिल्कुल वो अर्थ जो है वो स्पिन जो है वो ज्यादा फास्ट करने लग गए बिल्कुल ऐसे ही।
2: जी जी। तो और ये हकीकत है कुछ ये जो सोशल मीडिया और ये चीजें हैं और लेकिन वक्त भी एक है कि बिल्कुल वक्त भी तेज दौड़ रहा है जो पिछले जमाने थे उससे। और इस पे मैंने ये खुद भी मैंने वो एक नॉवल पढ़ा था ये अभी हाल ही में ठीक है तो वो भी वक्त के कॉन्सेप्ट पे ही था कि जब वो तीनों जाते हैं ना 600 साल पहले के जमाने में कदीम मलाका में जब वो लोग जाते हैं तो वो 4 महीने वहाँ वो लोग जो वहाँ पे गुजारते हैं कदीम मलाका में वहाँ उनकी जिंदगी टोटली डिफरेंट थी ठीक है क्यों क्योंकि उस जिंदगी में और आजकल की जिंदगी में ये फर्क है क्योंकि आप जब जाते हैं रास्ते में जब आप रोड पे जाते हैं ठीक है तो आपको क्या क्या सामने आता है गाड़ियां नजर आती हैं। अब आप देखें ना आप दोनों आ रही हैं दोनों ऑफिस आ रही हैं सुबह सुबह दोनों आप लोग ऑफिस आ रही हैं तो अब कोई अनयूजुअल वाकया नहीं हो रहा आप लोगों के साथ मेरे साथ भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोहा जा रहा हूँ रोज आना जाना मेरा होता है तो मेरे साथ कोई अनयूजुअल वाकया नहीं होता क्यों क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज फिक्स हो चुकी है कि 20 मिनट लगने हैं आपके घर से ऑफिस तक ठीक है और उस रूट पे हम जा रहे हैं वो हमारे दिमाग में वो चीज फिक्स हो चुकी है कि मैंने यहाँ जाना है इतनी ट्रैफिक है ये रोड है इतने सिग्नल है ठीक है ये एक चीज हमारे जहन में फिक्स है। लेकिन अगर आपके जहन में कोई अनयूजुअल वाक्य आपके साथ हो जाए उसी रूट पे मतलब आपका दिमाग ऑटो पे चल रहा है आपका दिमाग ठीक है लेकिन उसी रूट पे अगर आपका एक्सीडेंट हुआ खुदा ना खास्ता ठीक है तो सडनली आपको झटका लगता है कि ये क्या हुआ ये तो मतलब साला साल में इस रोड पे आ रहा हूँ जा रहा हूँ कि अचानक मेरे साथ क्या हुआ ठीक है तो आप सडनली एक दूसरे जो है फेज में चले जाते हैं ठीक है उसी रूट पे उसी गाड़ी में। तो ये वक्त का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है कि जब वो लोग 400-600 साल पहले के मलाका में गए ये इसमें कुआलालंपुर में इसमें मलेशिया में तो वो वहां पे एक तो ये था कि वहां पे ट्रैफिक नहीं थी आलूदगी नहीं थी ये जो कारखाने और ये जो दुनिया जितनी तेजी से आ गई सोशल मीडिया नहीं था तो उनकी वो जो उन्होंने 4 महीने वहां पे गुजारे थे ना तो वो उनकी सारी जिंदगी का ऐसे समझे कि एक निचोड़ था ठीक है, वो जो मैंने उसमें जो मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाऊं, वो चार महीने और उनकी बाकी पूरी जिंदगी इस दुनिया में घूमी थी। वो तो खैर एक ख्याली एक तसव्वुर था, निमर अहमद ने लिखा था, लेकिन ये जो वक्त का कॉन्सेप्ट है वो हकीकत में समझ आ जाता है उससे। अगर आप वो नॉवल पढ़े हालिम नाम का, तो आपको हकीकत में वो चीज समझ आ जाती है कि अच्छा वक्त का ये कॉन्सेप्ट है कि अब आप देखे ना ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं, ब्रेक लगाओ, ये करो वो करो, जिंदगी इसी में गुजर जाती है। अगर आप 100 साल पुरानी जिंदगी गुजारे तो वहां पे क्या था उस वक्त, घुड़सवारी थी, घोड़ा रेड़ी थी, ज्यादा से ज्यादा लग्जरी यही थी, गाड़ियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक रीजन है, एक वक्त वाकई में तेजी से दौड़ रहा है, साइंटिफिक प्रूफ बात है। और दूसरा ये भी अहदीस में, अहदीस भी इसके ऊपर है कि क़यामत के करीब जितना भी जमाना जाएगा वक्त में बरकत खत्म होती जाएगी,
1: ठीक है, सही।
2: तो ये सारी रीजन हैं, बस हमें ये है कि जो भी वक्त हमें मिले बस कोशिश करें कि उसको उसको कारामत करें और उसको फजूल चीजों में खर्च ना करें, तो बस यही है मेरी तरफ से।
1: चलें जी, गुड, जबरदस्त, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। राइट, तो हमारे साथ कॉलर और इसके साथ ही मेरा खाले मूव करना है हमें एक सॉन्ग की तरफ, राइट।
0: चलिए जी, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: राइट, वेलकम बैक. हम एक दफ़ा फिर से आ गए यू मैटर्स में और अब हमारे पास वक्त बहुत ही कम है और एक भाई हमें मुसलसल कॉल कर रहे हैं. बेचारे जो है वो लगे बड़े मुस्तकिल मिजाजी से कहते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: सरताज खान
0: भाई, आपकी हिम्मत को दाद. मैं कब से देख रही हूँ ये नंबर आ रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा था. खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
1: दुआएं आपकी शुक्र. मैं जरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं कह रहा था कि चलो मैं कॉल का इंतजार कर लेता हूँ. हाँ. तो तकरीबन ये 20वीं दफा मैंने डायल किया.
0: अच्छा जी जी जी जी जी.
1: तो वो ये हुआ कि बरकत की बात हो रही है. तो मैं जब आया था.
0: हाँ.
1: तो आप उससे बरकत निकालने क्या कैसे निकलेगी? उस वक्त एक रियाल इज इक्वल टू पाकिस्तानी 2 रुपए और 46 पैसे थे.
0: अच्छा.
1: भेजता था माशाल्लाह, घर के 10 अफराद थे, बड़ा इजी गुजारा होता था. इस वक्त घर में 2 अफराद है, 3 बच्चे, 1 लाख का पता नहीं चलता है. इससे आप हिसाब लगा लें.
2: ये सही है, डेप्रिसिएटिंग मनी. ओ माय गॉड.
1: बरकत नहीं है किसी चीज में भी, ना उम्र में, ना रिस्क में, किसी ना वक्त में, किसी चीज में बरकत नहीं है.
0: सही है, सही बात है, बिल्कुल सही जी.
1: तो ये हमारी करेंसी कहाँ चली गई, कितनी थी और क्या बरकत थी?
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
1: ये 74 की बात है.
0: 74 की बात है. अच्छा, 74 में 1 रियाल के बदले में 2 रुपए मिल जाते थे.
1: फरवरी 74 में मैं आया था, अब ये देखो.
0: अच्छा, तो फिर आप लोगों को कैसे लगता होगा कि आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मतलब कहीं और जाके?
1: नहीं, वो पैसे तो बरकत नहीं, वहाँ पे भी चीजें महंगी हो रही है ना.

0: बात तो वहीं पे है।
1: हाँ, नहीं नहीं, मतलब जैसे आप 1974 में आए होंगे यहाँ पे ना, तो
0: देखो मेरे पास में मेरे अपने हिसाब से पैसे की वैल्यू वही है। उस वक्त मैं जब आया था तो 800 रुपए का वीजा था, 800 पाकिस्तानी, ठीक है, उस वक्त 800 रुपए नहीं थे, बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए। अब वो हो गए तो हजारों भी नहीं है, बात वही है।
1: ये सही है, हाँ ये सही है, बिल्कुल।
0: पैसे की वैल्यू कभी कम नहीं हुई, पैसे की वैल्यू वही रही है मेरे अपने हिसाब से।
1: बात सही है
0: जी,
1: ठीक हो गया
0: जी,
1: सही हुई है। चलें जी सरताज साहब, और कुछ कहना चाहेंगे?
0: इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारा क्या रेट था, क्या बरकत थी, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ये?
1: हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो मतलब इस वक्त हैरत हो रही है, इस बात पे हैरत हो रही है कि उस वक्त फिर लोग निकलते क्यों थे भाई बाहर, इसलिए कम निकलते थे।
0: मैं देखें, मैं कॉलेज खत्म किया था तो मैं बाहर आ गया हूँ, क्यों, मेरी 10 बहने थी, वालिद साहब ने सुना कि यार निकलना ही चाहिए।
1: सही,
0: ये चक्कर था।
1: सही सही, ये चक्कर था। सही है जी, चलें जी, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा मुझे वाकई ये सवाल, मैं सोच रही हूँ कि फिर जब वहाँ पे इतने पैसे थे, लेकिन मैंने सुना है, मतलब ये बातें जो ना दादी वगैरह से भी सुनी है कि वो 2 रुपए में पूरे घर वालों के कपड़े बन गए, इस किस्म का भी कोई वक्त गया है भाई जिसमें जो ना घर वालों के कपड़े पूरे पूरे 2-2 रुपए में, 5 रुपए में ऐसे बढ़ जाते।
2: बस का किराया कितना, कोई 54 कोई पता नहीं कितना होता था, मतलब 25 सेंट।
1: सही सही, लेकिन फिर भी चलो वो तो बस का किराया है, ये 2 या 5 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 5 रुपए ऐसे उसमें कपड़े बन गए भाई, पूरे पूरे घर वालों के कपड़े बन गए ईद के, ये मुझे बड़ी हैरत होती है सुनकर, दादी ने बताया था ये मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हैं महवेश भैया?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
1: मुदस्सिर भाई कल से ना मैं आपको बार बार याद कर रही हूँ।
2: मेरा मजाक उड़ा रही हूँ मुदस्सिर भाई।
1: मैं ना अभी आते हुए भी मैं सुबह में मुझे याद आया, मैंने कहा यार सफाई की बड़ी अच्छी डांट पड़ी थी कल।
2: मैं अभी भी रो रही हूँ मुदस्सिर भाई।
3: क्यों, क्या हो गया था?
1: अच्छा ये उन्होंने बेचारे डांटा ही नहीं,
2: सफा
1: के साथ वो किया जो हम में से कोई नहीं कर पाया आज तक।
3: क्यों, मैंने कुछ किया?
1: आपने सफा को चुप करा दिया,
2: मैं बात कर रहा
1: हूँ, उनको पता ही नहीं
3: है,
1: मासूमियत।
2: मैं भी कटोरा लेकर आती हूँ, ये मासूमियत मुझे भी चाहिए।
3: मुझे पता नहीं है, आप बोलो मैंने क्या किया।
1: मुदस्सिर भाई सही कह रहे थे, मैं मासूम हूँ।
2: मुदस्सिर भाई बात करने का तरीका ऐसा, डांटा नहीं था, मुदस्सिर बात करने का तरीका ऐसा है, मस्त बंदे।
3: जी, मैं तो मासूम नहीं हूँ, अभी तो हम बड़े हो गए, अभी तो शरारत ही नहीं करते। स्कूल में जो शरारतों का टॉप में नाम आता था ना, वो मेरा नाम था।
1: सही है,
3: मैंने ज्यादा मार कर वो शरारत की वजह से
1: निकल। पता क्या हुआ था, आप ना कुछ बता रहे थे और सफा ने 2-3 दफा आपको इंटरप्ट किया, फिर आपने कहा मेरी सुनो ना, सफा चुप हो गई।
2: नहीं मुदस्सिर, इंटरप्ट नहीं किया, मुदस्सिर भाई कह रहे थे मैं, मेरी कोई रूटीन नहीं है। मैंने कहा मुदस्सिर भाई कोई रूटीन नहीं है? कहते नहीं मेरी कोई रूटीन नहीं है। मैंने कहा मतलब वाकई में कोई रूटीन नहीं? कहते सुनो ना, मैं बोल बता रहा हूं ना, अच्छा वाकई में कोई रूटीन नहीं है, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात
1: ये वाली बात
2: कि रूटीन नहीं है।
3: अच्छा अगर आपने माइंड किया है,
1: नहीं माइंड से तो हंस रहे होते इस बात पे, हमने तो शुगल किया है,
2: आपको अंदाजा नहीं कितना शुगल लगाया उन्होंने कल से, माइंड
1: कल से मैं सबको बता रही हूँ, सफा को डांट पड़ी आज।
2: मैं बस सही है भाई, तुम मजे ले लो, चस ले लो, तुम ले लो मजे।
3: नहीं साफ
2: आपने ऐसे लोगों को मौका दे दिया मुदस्सिर भाई,
1: तौबा तौबा, मतलब देखो जरा
3: तो मासूम है ना,
1: मेरे ऊपर तो मतलब कतल की जायज है ना आप। मैं तो कर सकती हूँ भाई, मैं मासूम हूँ ऑफिशियली।
3: सफा मैम जो है ना, मैंने इसका जो पहले प्रोग्राम सुना था वो बच्चों के साथ, इसका प्रोग्राम वाला, मेरे इतना दिल करता कि हम इसके साथ कब बात करेंगे।
1: हाँ चले, मौका मिल गया।
3: बात करते दूसरों को भी हंसाते, अपने आप को भी हंसाते, इसका बात करने का बात मतलब बहुत ज्यादा आती है हम लोग।
2: अरे मुदस्सिर भाई कोई बात नहीं है, ये जलने वाले ऐसे ही बोलते हैं, जलने वाले लोग मुदस्सिर भाई, जलने वाले लोग
1: क्या बोल रहे
3: हैं।
2: हाँ ये जलने वाले जलने रहे ऐसे ही बोलते रहते हैं।
1: माफी मिला वजह, मतलब एंजॉय करी यार, मुझे बड़ा मजा आया कल से।
3: मजा आया कल, नाजिया बेन बोल रही थी, सारा मेजर नहीं था, उसको ऐसे एंजॉय।

0: मोबाइल ना रखे मुझे मजा आ रहा है कि सारा मेजा में आज नहीं
1: आया। झूठे लोग ऐसे झूठ बोलते रहते हैं।
2: थे कल तो थे, मैं मुझे
1: हाँ थे लेकिन उनको कहीं काम से जाना पड़ गया था इमरजेंसी। अच्छा, में अच्छा, तो सही, सही। शो में नहीं थे, मेरे
2: शो में नहीं थे। अच्छा
0: अच्छा हां, वो नाजन कितना खुश थी आप
2: लोगों को। ये चल रहा है, चले जी, गुड गुड।
1: अच्छा भाई ये बताएं वक्त के बारे में आपका क्या कहना है कि हम जो है आजकल का वक्त ऐसे ही गुजार रहे हैं गुजारने को, या कुछ कुछ अच्छा भी कर रहे हैं उसके अंदर?
0: वक्त तो इसलिए जल्दी गुजर जाती है ना हमारी, कि हम तो सिर्फ कामों में लगे हैं ना। अगर जब हमारी मॉर्निंग जब स्टार्ट होती है ना, तो हर कोई अपने काम में जाता है। कोई किसी का भी काम, किस तरह भी काम होता है, तो जब काम से घर आता है तो फिर दूसरे काम होते हैं, घरों में काम होते हैं, तो वही काम होते हैं। जो आदमी काम शाम नहीं करते है, घर में बैठे रहते, तो फिर उससे पूछो कि वक्त कैसे गुजरती है, फिर तुमको वो बोलेगा तो वक्त नहीं गुजर रही है। लेकिन हमारी ये काम की ये वक्त तेज नहीं चल रहा है हमारी काम, हम काम काम काम काम काम काम की वजह से हमारा वक्त निकलता है। आप एक हफ्ता घर में बैठो काम नहीं करो, फिर आप सोचो कि यार आज तो बात ना दिन लंबा हो गया, घंटा लंबा हो गया। जैसे सर्दी का मौसम आता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि दिन छोटे होते हैं रात लंबी होती है, फिर वही हिसाब फिर स्टार्ट हो जाएगा।
1: सही।
0: देखो हम, मैं पाकिस्तान में, मेरा एक दोस्त है, मैं इसको फोन करता हूँ कैसे हो, ठीक है कैसे, और बोलता है टाइम नहीं निकलता। मैंने कहा टाइम तुम्हारे ऊपर कैसे निकलेगा कि तुम सारा दिन सोते रहोगे और सारी रात तुम जागते रहोगे, ना तुम कोई काम करते हो, ना घर में टमाटर लेके आते हो, ना आलू लेके आते हो, ना सब्जी का काम करते हो, सिर्फ खाते हो पीते हो सोते हो, हमारे ऊपर टाइम कैसे निकलता है? हमसे पूछो, हम टाइम के बारे में हमको मालूम भी नहीं होता है कि कब 10 बज रहे, कभी 12 बज रहे, कभी हमारा ड्यूटी का टाइम भी खलास हो गया। टाइम के और दूसरा बात ये, जो लोग बोलते हैं कि बरकत बरकत है, ऐसा नहीं है कि बरकत नहीं है, लेकिन बरकत हम लोगों ने खुद निकाला है। जो हमने अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने रास्ता दिखाया वो हम फॉलो नहीं करता है, तो हम इसे बरकत नहीं है। बरकत पहले भी था, आज भी है। जो लोग अच्छी तरह कमाते और अच्छी तरह इसको समझाते हैं, नमाज टाइम पे पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उनके घर में भी बरकत है। उनके पास बरकत नहीं होता है जो इनको फॉलो नहीं करता है। तो बरकत भी है और टाइम जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन हम कामों में इसे हमको टाइम का पता, जो काम नहीं करते उसे पूछो ऊपर से टाइम नहीं निकल रहे।
2: सही सही सही।
0: इंशाल्लाह आप भी इस बात पे एग्री होगी।
2: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जी। चलें गुड, जबरदस्त मुदस्सर भाई, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
2: थैंक यू जी।
0: अच्छा सफा, मैं आपको एक गिफ्ट भेजता हूँ, मेरे पास आपका गिफ्ट है, मैं वो भेजेगा आपको।
1: क्या है, क्या है?
2: व्हाट्सएप पे भेजेंगे?
1: हाँ कुछ आएगा मेरे लिए भी।
0: हाँ नहीं व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे।
2: अच्छा वैसे भेजेंगे
0: व्हाट्सएप पे? रहल, रहल मैं इसको भेजूंगा।
2: क्या भेजेंगे?
1: रहल पढ़ने वाली किताब, रहल।
2: सही सही सही सही।
0: हाँ किताब, किताब में साथ है कुछ।
2: अच्छा अच्छा सही सही, क्या बात है भाई। ओए होए होए क्या बात है,
0: सफा में हमारा हीरो है, हीरो।
2: नाराज हो गई थी, अब जरा मना ले। चले जी मुदस्सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। इनको क्या पता सफा नाराज हो ही नहीं सकती, नाराज होने के लिए कोई हिस चाहिए होती है भाई, वो है ही नहीं।
1: अगर आप कभी मुझे जिंदगी में किसी से नाराज देखें, समझ जाएगा इसने बहुत, ये कोई बहुत ही
2: हद ही कर दी इसने,
1: हद की भी हद कर दी,
2: हद की हद कर दी,
1: नाराज ना होते। अच्छा जी,
2: तौफीक जो है वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मावशन सफा कैसे हैं आप लोग, और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में चैन सुकून की ऐसी बहार लाए जो कभी खत्म ना हो। और इसके साथ ही जी भाई ये है हमारे साथ कौन, ये दस्तीस पे इन्होंने मैसेज किया था, मैसेज किया इन्होंने लेकिन वॉइस तो वो तो हम पढ़ नहीं सकेंगे। और इसके साथ आपके मौजू के जवाब से एक हदीस भेजी है, ओके। और क़यामत जब तक कायम नहीं होगी, जब तक ज़माना करीब हो जाएगा, और साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, और दिन एक घड़ी के बराबर, और घड़ी एक आग की चिंगारी के बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एहसन का मैसेज भी, इन्होंने भी वॉइस नोट किया, वो वॉइस हम नहीं चला सकते। अस्सलाम वालेकुम, नबी पाक की हदीस के मुताबिक इंसान की सबसे कीमती चीज़ वक्त है। जासिम, जासिम है ये। और इसके अलावा जो हमारे पास हैं, एक संगम, संगम कह रहे हैं प्लीज चेंज टॉपिक, अब तो नहीं हो सकता, अब तो हमारा मतलब शो ही एंड हो गया। और इसके साथ तौफीक को भेजे हैं मुबीन बुखारी ने पराठे, या उन्होंने पराठे उनके वाले हमें भेज दिए हैं। और मैं आपके टॉपिक का जवाब शायरी में देना चाहता हूँ। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए, सुभान। ओए होए क्या बात कर।

0: लगता है आज का जो टॉपिक है ना वो लोगों को ना ट्रिगर कर गया है, याद दिला गया है कि वक्त करीब है.
1: हाँ, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग मोहम्मद यूसुफ. नहीं, मैं ऑर्गेनाइज नहीं करता हूँ भाई, ऑफिस आने के बाद आई गो विद द फ्लो. और हाँ, वीकेंड पे कहीं जाना होता है तो बना लेता हूँ. ये हमें किया तो हमें. और सर्वर भाई कल शो में नहीं थे ना, तो नाज़िर जी के साथ, तो नाज़िर जी इतनी खुश थी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था. बट नाज़िर जी और सर्वर भाई की जोड़ी जो है अच्छी है, ज़बरदस्त. दोनों की नोक झोंक पे हंसी आती है. नहीं, हमारे साथ तो ऐसा वाला सीन नहीं है. हाँ सफ़ा, तुम मेरे जाने से खुश तो नहीं होगी?
0: बोर हो जाऊंगी मावेश. कोई कोई कोई क्लास लेने वाला नहीं होता तो मजा नहीं आता.
1: सफा को आदत है, मतलब सफा जो है वो एडजस्ट कर चुकी है इस चीज के साथ.
0: बोर जाते हैं अब हम.
1: राइट, और गुड मॉर्निंग और हा शो खत्म, टाटा बाय बाय. ये कितने खुश हो रहे हैं हमारे जाने पे. आसिफ, आसिफ, आसिफ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे. मतलब एक घंटा हमारा भारी लग रहा है आपको. मेरा नंबर कब आएगा? वो शहजादा सलीम ने कहा था कॉल करने को. सफा शर्म करो,
0: वैसे हो रहा है.
1: मैं मेरी क्या गलती है, तुमने मुझे फोन दिया कि मैं कॉल करती. शहजादा सलीम, ये सारा का सारा कसूर सफा का है.
0: ये इनका इनका इनका
1: आप सफा का ही मतलब पकड़े आप सफा को. सफा ने मुझे फोन ही नहीं दिया, मैं कैसे कॉल मिलाती.
0: मेरे चश्मे का नंबर चेंज होने वाला हुआ तो मैं तो वैसे भी अभी अंधी घूम रही हूँ.
1: तो इससे क्या ताल्लुक है इस बात का? फोन दे दी मुझे. चलो जी भाई, इसके साथ ही शहजादा सलीम, आप कल सफा को पकड़िएगा. और सफा की आप भी मुदस्सिर भाई के साथ क्लास ले सकते हैं, आपके लिए खुसूसी ऑफर है ये. कल तक हम देखते हैं.
0: देखो ये ऐसे नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. चलो अल्लाह हाफिज करो. चलो अल्लाह
1: हाफिज. चलो जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे. थैंक यू जी.
0: सारा ख्याल रखें और याद रखें कि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता. इसी के साथ सुनते रहे FM 107 दिल से देसी.

यूनुस चाहेगा वही होगा, तब नफ्स सवार हो जाता है और इंसान सवारी। फिर जिंदगी का रास्ता अकल, वही और किरदार नहीं बनाते, ख्वाहिश बनाती है। दुनिया की लज्जतें भी उसी मकाम पर इम्तिहान बनती हैं। हर लज्जत हराम नहीं, बहुत सी चीजें मुबाह और जायज हैं, लेकिन जायज चीज भी जब हद से बढ़ जाए तो इंसान को असीर बना सकती है, यानी कैदी बना देती है। तफरी, खाना, खरीदारी, सोशल मीडिया, गेम्स, शोहरत, दिखावा, हर वक्त कुछ नया देखने की तलब, हर वक्त कुछ नया खरीदने की ख्वाहिश। इंसान पहले एक चीज इस्तेमाल करता है, फिर वही चीज उसकी तवज्जो इस्तेमाल करने लगती है। पहले फोन आपके हाथ में होता है, फिर आपका वक्त फोन के हाथ में आ जाता है। तो ये एडिक्शन सिर्फ हराम चीजों की नहीं, मुबाह चीजों की भी तो एडिक्शन हो सकती है। जदीद कंज्यूमर कल्चर की एक बड़ी ताकत यही है कि वो ख्वाहिश को जरूरत का नाम दे देती है। आपको मुसलसल बताया जाता है कि तुम उस चीज के मुस्ताहिक हो, तुम्हें ये खरीदना चाहिए, ये तजुर्बा न किया तो जिंदगी अधूरी है, अपनी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारी आजादी है। जबकि इस सिलसिले में मसरी मुफक्किर अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने जदीद सारफियत की सी ज़हनियत की तरफ तवज्जो दिलाई कि इंसान को ये बावर कराया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन और लज्जत की तकमील ही इंफरादी आजादी का बुलंदतरीन इजहार है। सवाल ये कि अगर मैं किसी ख्वाहिश को नहीं ही न कह सकूं तो क्या वाकई में आजाद हूं? अगर इश्तिहार मेरी ख्वाहिश बनाए, एल्गोरिदम मेरी तवज्जो तय करे, मार्केट मेरी जरूरत बनाए और नफ्स मेरे फैसले करे तो आजादी कहाँ है? हकीकी आजादी शायद उसके बिल्कुल बरक्स है। आपके अंदर ख्वाहिश हो, फिर भी आप उसे नहीं कहने की ताकत रखते हो। इसलिए इंसान की रूह उसकी हिम्मत के साथ ऊपर और नीचे जाती है। जिसकी पूरी फिक्र सिर्फ क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या खरीदूं, क्या देखूं, लोग मुझे कैसा देखते हैं, मेरा अगला प्लेजर क्या है, उसकी जिंदगी का उफुक भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं चीजों तक सिकुड़ जाता है। और जिसका दिल इल्म, इबादत, खिदमत, अखलाक, जिम्मेदारी और अल्लाह की रजा के लिए बुलंद हो, उसका नफ्स भी बुलंद होना शुरू हो जाता है। जबकि रिवायत में आता है कि अल्लाह बुलंद और शरीफ उमूर को पसंद फरमाता है और घटिया व हकीर उमूर को नापसंद करता है, यानी मोमिन की हिम्मत भी बुलंद हो, उसकी गुफ्तगु बुलंद, मकासद बुलंद, उसकी पसंद बुलंद हो और उसके ख्वाब भी सिर्फ दुनियावी कंजम्पशन के गिर्द न घूमें। अलबत्ता हवाए नफ्स का सबसे खतरनाक मरहला उस वक्त शुरू होता है जब इंसान सिर्फ गुनाह नहीं करता बल्कि अपनी ख्वाहिश को शरीयत पर हाकिम बनाने लगता है। एक बात यह है कि इंसान कहे, मैं जानता हूँ ये हराम है मगर मुझसे कमजोरी हो गई, ये गुनाह है मगर कम अज कम हक अपनी जगह बाकी है और तौबा का दरवाजा खुला है। लेकिन दूसरी बात यह कि इंसान कहे, चूंकि मुझे ये पसंद है इसलिए ये हराम नहीं होना चाहिए, यहाँ मसला कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मसलन कोई शख्स अपने माली मफाद की वजह से सूद के वाज़ह शरीय हुक्म को बदलना चाहे और कहे आज की मईशत में ये तो नागुजीर है इसलिए असल हुक्म ही माना नहीं रखता, माज़ल्लाह। कोई हिजाब के वाज़ह शरीय असल को सिर्फ सकाफती आदत कहकर उसकी दीनी हैसियत ही खत्म करना चाहे, कोई नाजायज ताल्लुक को मोहब्बत का नाम देकर यह समझ ले कि जज्बात शरीय हदूद से वालातर हैं, या कोई नमाज छोड़ दे और दलील ये बनाए कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। हालांकि अल्लाह की रहमत ये नहीं कि उसके नाम पर अल्लाह ही के फराइज छोड़ दिए जाएं, तो कमजोरी और तहरीफ एक चीज नहीं है। मोमिन से गुनाह हो सकता है मगर वो कहता है या अल्लाह मैं गलत हूं, मुझे माफ कर दे। हवाए नफ्स का गुलाम कहता है मैं गलत नहीं, हुक्म ही बदलना चाहिए, माज़अल्लाह। और कभी बात यहां तक भी पहुंचती है कि जो चीज ख्वाहिश के मुताबिक हो उसे जदीद कहकर कबूल किया जाता है और जो ख्वाहिश के खिलाफ हो उसे पुराना कहकर रद्द कर दिया जाता है। फिर अगर वाज़ह शरीन सामने आ जाए तो सिर्फ इस वजह से फौरन मुतालबा किया जाता है कि उसकी ऐसी नई तफसीर होनी चाहिए जो पहले से तयशुदा ख्वाहिश के मुताबिक निकल आए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस्लामी इल्मी रिवायत में नुसूस की तफसीर, इश्तिहाद, मकासिद शरीयत और नए हालात के इतलाक के हकीकी इल्मी मबाहिस मौजूद हैं। हर नई ताबीर ख्वाहिश परस्ती नहीं, लेकिन फर्क वहां पैदा होता है जहाँ नतीजा पहले ख्वाहिश तय करे और दलील बाद में तलाश की जाए। यही वो कैफियत है जिस पर कुरान का सख्त तंबीह आता है, अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया, यानी वो ख्वाहिश के सामने सजदा शायद न करे लेकिन हुक्म उसी का मानता है। और अगर हक में इंसानी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे तो फिर कोई मुस्तकिल मीज़ान बाकी नहीं रहता। इसलिए अल्लाह फरमाता है وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, अगर हक उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता

0: होता तो आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है सबका निजाम बिगड़ जाता। हक की अजमत यही है कि वो हमारे मूड के साथ नहीं बदलता है, हमें उसके सामने अपने आप को दुरुस्त करना पड़ता है, उसे अपने नफ्स के मुताबिक नहीं ढालना। कुरान इस पूरी बहस का खुलासा यूं बयान करता है, वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिह वनह النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। अब कुरान ने यह नहीं कहा कि उस शख्स के अंदर ख्वाहिश नहीं थी, ख्वाहिश थी लेकिन उसने उसे रोक लिया, यही बंदगी है। दिल चाहा मगर अल्लाह ज्यादा महबूब था, नफ्स ने खींचा मगर आखिरत ज्यादा अहम थी। फिर इज्जत के उस मरकजी उसूल की तरफ लौटते हैं कि मोमिन अपने हाजत के सामने पस्त नहीं होता, शिद्दत में टूट नहीं जाता, रिज़्क और अजल के खौफ से अपनी इज्जत फरोख्त नहीं करता। एक मरतबा उसी आयत को दोहराते हैं, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। तो मतलब क्या बना? खुलासा ये निकला कि इज्जत सिर्फ लोगों के सामने सीना तानने का नाम नहीं, असल इज्जत यह है कि आपका नफ्स भी आपको गुलाम न बना सके। क्या फायदा कि इंसान बादशाह के सामने न झुके मगर अपनी शहवत के सामने झुका हुआ हो, लोगों से न डरे मगर पैसे का गुलाम हो, किसी आमिर के सामने सर न झुकाए मगर अपने फोन शोहरत लज्जत या ख्वाहिश के बगैर एक दिन न गुजार सके।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: सबनी किराम, अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अक्सर हमारी जिंदगी एक ख्वाब से दूसरे ख्वाब तक चलती है, पहले इम्तिहान में कामयाबी, फिर अच्छी मुलाजमत, फिर ज्यादा तनख्वाह, फिर शादी, फिर घर गाड़ी, अगली प्रमोशन, एक ख्वाब पूरा होता है, जहन फौरन दूसरे की तरफ चला जाता है, साल गुजरते हैं और इन्हीं अहदाफ के बीच हमारी जिंदगी की सतरें लिखी जाती हैं। इसमें बज़ाते खुद कोई बुराई नहीं, जायज ख्वाब इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, वो कोशिश को हरकत देते हैं, बस खतरा यह है कि हम वसीले को मंजिल समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं बस वो नौकरी मिल जाए फिर मैं मुतमैन हो जाऊंगा, शादी हो जाए फिर जिंदगी मुकम्मल, इस तरह गाड़ी मिल जाए फिर खुशी, फिर वो चीज मिल भी जाती है, चंद लम्हों के लिए लगता है कि मैं पहुंच गया, मैं मैच खत्म, नतीजा मेरे हक में, लेकिन कुछ वक्त गुजरता है और तस्वीर बदलने लगती है। जिस मुलाजमत को ख्वाब समझा था, जिम्मेदारियों और मुश्किल साथियों की वजह से वही कैद महसूस होने लगती है। जिस इज़दवाजी रिश्ते से सुकून की तवक्को थी, वहाँ इंसानी इख्तलाफात, जिम्मेदारियाँ और आजमाइशें सामने आ जाती हैं। जिस गाड़ी के लिए अरसे तक ख्वाहिश थी, वो मुसलसल खराबी और खर्चात का सबब बन सकती है। फिर इंसान अपने आप से पूछता है, ये क्या हो गया? जिन चीज़ों को मैं अपनी खुशी समझ रहा था, वही चीज़ें कभी मेरी परेशानी क्यों बन जाती हैं? इस हैरत का एक जवाब यह है कि जिन चीज़ों को हम मंजिल समझते हैं, वो दरअसल अल्लाह की तदबीर में सिर्फ वसाइल और इसबाब होती हैं। हम कहते हैं ये चीज़ मुझे खुश करेगी, वो चीज़ मुझे सुकून देगी, ये शख्स मेरी ज़िंदगी सवार देगा, लेकिन हकीकत यह है कि चीज़ें अपनी ज़ात में न सआदत की मालिक है न शकावत की, वो असबाब हैं और इन असबाब के असरात उस रब के हुक्म में हैं जिसके हाथ में पूरी कायनात की तदबीर है। ज़रा इंसान ही को देखिए, एक महदूद कुदरत रखने वाला इंसान भी एक ही चीज़ को बिल्कुल मुतजाद कामों में इस्तेमाल कर सकता है। एक ही प्याले में कोई दूध पीता है और कोई हराम मशरूब, एक ही छुरी से फल भी काटा जा सकता है और किसी को जख्मी भी किया जा सकता है, एक ही माइक्रोफोन से खुशी की खबरें भी सुनाई जा सकती हैं, इसी तरह बुरी खबरें भी। जब एक महदूद इंसान अपने एक ही वसीले को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर उस रब की कुदरत का क्या तसव्वुर किया जाए जिसके कब्जा इख्तियार में पूरी कायनात है। कुरान कहता है, वअन्नहु हुवा अधहक वअबका, और वही है जो हंसाता भी है और रुलाता भी है। गौर कीजिए, आप अपने नन्हे बच्चे को पहली मर्तबा गोद में लेते हैं, दिल खुशी से भर जाता है, और फिर बरसों बाद वही बच्चा अगर नाफरमानी करे, आवाज बुलंद करे, दिल तोड़ दे, तो वही ताल्लुक आपको रुला भी सकता है। जरूरी नहीं कि जिस जरिए ने आपको हंसाया, अल्लाह आपको किसी और जरिए से रुलाए, वो चाहे तो उसी जरिए से दोनों कैफियतें दिखा दे। जिस चीज को आपने जन्नत समझा, वही आजमाइश बन सकती है, और जिस चीज से आप भाग रहे थे, वही कभी नियमत का दरवाजा बन सकती है। अल्लाह अपने बंदे को जिंदगी के वाकयात के जरिए बार बार ये सबक सिखाता है कि असबाब को माबूद मत बनाओ। कोई शख्स उसी चीज से परेशान हो गया जिसमें वो खुशी तलाश कर रहा था, और कोई शख्स उसी चीज से खैर पा गया जिससे बरसों बचता रहा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ممكن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یہ آیت دراصل خواہشات کو خدا بنانے سے روکتی ہے. یعنی ملازمت حاصل کرو, شادی کرو, گھر بار بناؤ, رزق تلاش کرو, کوشش کرو, مگر یہ نہ سمجھو کہ انہی چیزوں کے اندر سکون بند ہے, یعنی سکون محصور ہے. سکون ان چیزوں کا مالک نہیں, سکون کا مالک اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ اسی حقیقت کو ہمارے سامنے انتہائی حیرت انگیز انداز میں رکھتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کے قتل سے خوف زدہ ہے, بالکل فطری خوف ہے. ہر ماں یہی کرے گی کہ بچے کو اپنے سینے سے لگائے, اسے محفوظ جگہ پر چھپائے, خطرے سے دور کرے. لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اسے دریا میں ڈال دو. ظاہری عقل کیا کہتی ہے, خطرے سے بچانا ہے تو پانی میں کیوں ڈالنا. لیکن اللہ کی تقدیر کے نقشے میں وہی دریا حفاظت کا راستہ بن گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اسے فرعون کے گھر پہنچتے ہیں جو بنی اسرائیل کے بچوں سے خوف زدہ تھا. جس طاغوت نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کروایا, اللہ نے چاہا کہ اس کے گھر میں وہ بچہ پرورش پائے جو آگے چل کر اس کے باطل نظام کے خاتمے کا ذریعہ بنے. یہ ہے اللہ کی تدبیر. ہم سبب دیکھتے ہیں, اللہ انجام دیکھتا ہے. سورہ یوسفی کو دیکھیے, اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص, ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں. اور واقعی یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر انسانی حساب سے پڑھا جائے تو ہر موڑ پر ہماری عقل الجھتی ہے. فرض کیجئے آپ یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوں, کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے والد آپ سے محبت کریں؟ یقیناً. لیکن یعقوب علیہ السلام کی محبت پر بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اسی حسد نے یوسف علیہ السلام کو کنویں تک پہنچا دیا. تو کیا کنویں میں پھینکا جانا اچھا تھا؟ ظاہر میں ہرگز نہیں. لیکن وہی کنواں یوسف علیہ السلام کو مصر تک لے گیا. وہاں عزیز مصر کا گھر ملا, عزت, آسائش, رہائش, جوانی, حسن, مقام, بظاہر سب اچھا. لیکن پھر وہی ماحول فتنہ نفس کا میدان بنا, الزام آیا اور یوسف علیہ السلام جیل پہنچے. اب سوال, کیا کوئی جیل جانا پسند کرے گا؟ یقیناً نہیں. لیکن وہی جیل ان واقعات کا دروازہ بنی جو آخر کار انہیں اقتدار تک لے گئی. ہوا محل کا راستہ بنا, محل جیل کا راستہ بنا, جیل تخت کا راستہ بن گئی. یہ اللہ کی تدبیر ہے. اسی لیے قرآن کی یہ حقیقت انسان کو ہلا دیتی ہے, وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہ وہاں سے ہنسا بھی سکتا ہے جہاں آپ نے رونے کا اندیشہ کیا تھا.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। और दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अमीन, आज की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है जब उन्होंने अल्लाह ताला से नेक और सालेह औलाद की दरख्वास्त की। कुरान करीम में उनकी दुआ इस तरह आई है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली, ए मेरे रब अता फरमा, बख्श दे। यानी औलाद अल्लाह की अता है इंसान की मेहनत और कोशिश के बावजूद, ये महज उसका फजल है। मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से, यानी ऐसी औलाद अता फरमा जो ईमान, इताअत और तक्वा में सालेह हो, महज दुनियावी नेमत ना हो बल्कि दीन की रोशनी बने। समीन, इस दुआ के कई अहम पहलू हैं, उनमें से एक ये है कि औलाद अल्लाह की नेमत है, औलाद की नेकी असल मकसद है, मजीद औलाद के लिए दुआ अंबिया की सुन्नत है। और गोया के इस दुआ का खुलासा ये बना कि नस्ल की इस्लाह उम्मत की इस्लाह है, औलाद की असल कामयाबी दुनियावी जाहो माल में नहीं बल्कि नेकी और सालहियत में है। आइए हम सब आजिजी से ये दुआ पढ़ें, رب هب لي من الصالحين।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
3: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी, ये हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात

0: सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: FM 107।
3: दिल से देसी।
4: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। अजान हो गई, इकामत शुरू होने वाली है या मस्जिद पहुंचते पहुंचते मालूम हुआ कि जमात खड़ी हो चुकी है। अब दिल में एक ही ख्याल आता है, जल्दी करो कहीं रकात न निकल जाए। फिर कदम तेज हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, दिल घबराहट में आ जाता है। कभी मस्जिद के अंदर भी जल्दी जल्दी सफ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक मुख्तलिफ तरबियत देते हैं कि नमाज की तरफ भाग कर नहीं, सुकून और वकार के साथ आओ। चूंकि नमाज सिर्फ चंद हरकात का नाम नहीं, ये तो अपने रब के सामने खड़े होने का नाम है और इस मुलाकात की तैयारी भी सुकून के साथ होनी चाहिए। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मुझे न देखो नमाज के लिए खड़े न हो और तुम पर सुकून और इत्मीनान लाजिम है। मकसद ये है कि इमाम को देखकर लोग घबराहट और जल्दबाजी से न उठें, बल्कि रिफ्क, ठहराव और वक़ार के साथ नमाज के लिए खड़े हों। मज़ीद एक दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब नमाज की इकामत हो जाए तो उसकी तरफ दौड़ते हुए ना आओ बल्कि चलते हुए आओ और सुकून इख्तियार करो। फिर जितनी नमाज तुम पा लो वो पढ़ लो और जो रह जाए उसे बाद में मुकम्मल कर लो। तो हदीस में जो लफ्ज आया है वो है अस्सकीना, यानी सुकून के साथ ठहराओ, बेजा जल्दबाजी से बचना, इधर उधर की हरकतें कम करना, दिल और जिस्म दोनों को जमा करना। कोई नमाज की तरफ जाते हुए भी आप अपने नफ्स को ये पैगाम दे रहे हैं, अब मैं दुनिया की दौड़ से निकल कर अपने रब के सामने जाने वाला हूँ। सबराम, नबवी तरबियत हमें ये बताती है कि नमाज की तैयारी मस्जिद पहुँचने से पहले शुरू हो जाती है। वजू करना, पाकिजगी इख्तियार करना, वक्त का ख्याल रखना, मस्जिद की तरफ चलना और चलते हुए सुकून इख्तियार करना, ये सब दिल को नमाज के लिए तैयार करते हैं। हदीस में यह नहीं कहा गया कि रकात हासिल करने के लिए अपने वक़ार और सुकून को छोड़ दो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका साफ जवाब दिया है कि अगर रकात निकल गई तो फमा दरकतुम फसल्लू, जो हिस्सा मिल जाए उसे पढ़ लो। कि नमाज से पहले चंद मिनट जहनी रफ्तार कम की जाए, फ़ोन खामोश, निगाह नीची, जिक्र, इस्तग़फ़ार, मस्जिद की तरफ सुकून से चलना, ताकि अपने जिस्म नमाज तक पहुँचते पहुँचते दिल भी वहाँ पहुँच जाए, हाजिर हो जाए। फिर सामने कराम, इस दौड़ने के पीछे एक दूसरा मसला भी है और वो है देर से निकलना। कभी हमें अपनी आदत भी देखनी चाहिए कि हर रोज़ देर से निकलते हैं, फिर कहते हैं कि जमात ही बहुत जल्द खड़ी हो गई, तो शायद मसला हमारी तैयारी में ताखीर भी हो सकती है। अगर नमाज की कदर दिल में होगी तो हम कोशिश करेंगे कि पहले निकलें, इतना वक्त रखें कि सुकून से वजू हो, सुकून से मस्जिद पहुँचें, सफ़ में खड़े होने से पहले सांस भी नॉर्मल हो और जहन भी। यानी सुन्नत हमें सिर्फ ये नहीं कहती कि मत दौड़ो, बल्कि ये तो इशारतन बिलवास्ता में ये बता रही है कि अपनी ज़िंदगी ऐसे मुनज़्ज़म करो कि तुम्हें दौड़ना ही ना पड़े। तो सुकून का मतलब गलत मत समझिए, सुकून का मतलब सुस्ती नहीं, ये नहीं कि नमाज की परवाह ही ना हो, आराम से घर में बैठे रहें और जमात निकल जाए, नहीं। सुन्नत तो यह कि नमाज की तरफ एहतमाम के साथ जाया जाए, वक्त की पाबंदी हो, अफरा तफरी ना हो, यही नबवी तवाज़ुन है, हिर्स भी और सुकून भी। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगियों में انہیں نافذ کرنے کی توفیق

0: और हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो सही तरह से अपना काम करना शुरू कर देंगे। ये भी याद रखिए कि प्यास लगने का मतलब ये है कि आपका जिस्म पहले ही पानी की कमी महसूस कर रहा है। इसलिए इंतजार ना कीजिए कि आपको प्यास लगे, बल्कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। गर्मियों में खास तौर पर पानी की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग के ज़रिए जिस्म से नमकियात भी खारिज हो जाते हैं। इसलिए पानी के साथ साथ लीमू पानी या फिर हल्के जो मशरूबात हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। एक और बहुत ही अहम बात यह है कि पानी हमेशा आहिस्ता आहिस्ता पिएं, एकदम ज़्यादा पानी ना पी लें, क्योंकि इस तरह जिस्म को पानी को जज्ब करने में आसानी हो जाती है। और याद रखिए कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिर मीठे मशरूबात पानी का मुतबादल बिल्कुल नहीं हो सकते, असल पानी ही असल गिज़ा है। तो लिसनर्स, पानी कोई आम चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी की बुनियाद है। तो आइए आज से ये अहद करें कि रोज़ाना बाकायदगी से पानी पियेंगे और दूसरों को, अपने प्यारों को भी इसकी अहमियत ज़रूर बताएंगे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
2: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
4: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
5: चले तो कट ही जाएगा सफर,
4: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 से 7:15 FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
6: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड टाइम फॉर अनदर टेक अपडेट। सबसे पहले आपको बताऊंगा बहुत ही कमाल की और जरूरी वेबसाइट्स एंड देन हम मूव ऑन करेंगे खबरों की तरफ। तो बहुत जरूरी वेबसाइट नंबर वन, तो नंबर वन जो वेबसाइट है ऑन द लिस्ट, ये आपके बहुत काम आएगी, जो आपको बताएगी कि कौन सी फोटो जो है वो असली है या फिर नकली है। हाँ, वेबसाइट का नाम है bitmind.ai, ठीक है, bitmind.ai। इस पे आप कोई भी इमेज जब अपलोड करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई साहब ये तो AI है, आप किसने दिया आपको ये, ऐसे नहीं बताएगा लेकिन आपको बता देगा कि वो फोटो असली है कि नहीं है। एंड इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल आज की तारीख में जहां पर कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, और AI के फोटोज के जरिए कुछ भी बनाया जा रहा है, कुछ भी स्प्रेड आउट किया जाता है। तो और रूमर्स से और बचें और अपने ह्यूमर के लिए रूमर्स पे बिलीव ना करें, इसलिए वेबसाइट मैंने आपको बताई। ओके, नाउ वेबसाइट नंबर टू, तो ये जो वेबसाइट है ये उन लोगों के लिए है जो ड्राइंग करना चाहते हैं और अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, या फिर बच्चे जो ड्राइंग करना चाहते हैं एंड यू कैन सी द स्किल्स। तो वेबसाइट का नाम है animeoutline.com, A-N-I-M-E, animeoutline, O-U-T-L-I-N-E

0: नहीं दे रहा मैं मगर हाँ जो ड्रॉ करना चाहते हैं देखते हैं कि एनिमे का स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ किया जा सकता है. तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई, यू कैन ब्रश अप ऑन योर ड्रॉइंग स्किल्स एंड आपके डेफिनेटली काम आ सकती है. अब थर्ड चीज जो बहुत काम आएगी और सबके काम आएगी, तीसरी वेबसाइट का नाम है फोटोस्कोप या photoscope.com. वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगी. फोटोज photos फोटोज KOP photoscope.com. इस वेबसाइट पे जाके आप लिटरली फ्री में फोटोग्राफी सीख सकते हैं. लाइटिंग क्या होती है, अपर्चर कैसे इस्तेमाल करते हैं, iOS कैसे, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप, इनफैक्ट आपको एग्जांपल देगा, आपको बताएगा कि भाई कोई भी फोटो आपने अपलोड कर ली, मान लीजिए और आपने पूछा कि भाई इस फोटो में मैं कैसे ऐसे कैसे फोटो खींच सकता हूँ, इसमें क्या यूज किया गया है, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न फोटोग्राफी. इतनी बढ़िया चीज है एंड इट इज नॉट ओनली बढ़िया चीज जो मैंने कह दी वो बताने के लिए, सेंसेशन के लिए, मगर ये डेफिनेटली प्रोडक्टिव है. तो अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं और कुछ चीजों को ब्रशअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत काम आएगा और बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है. तो photoscope.com, यूज इट एंड लेट मी नो कि आपके काम आई कि नहीं आई. आई एम प्रीटी श्योर आएगी तो जरूर. ठीक है, अब जरा खबरों की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं. ओके, तो आप जानते हैं कि एप्पल ने जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन सैमसंग की तरफ से भी सैमसंग गैलेक्सी S27 की जो लीक्स हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, जगह जगह फैल रही हैं और अर्ली लुक दिखाने की कोशिश है कि नेक्स्ट फ्लैगशिप फोन ऐसा होगा वैसा होगा. मुझे एक शिकायत है दोनों ही से, मतलब एक तो सैमसंग से भी और एप्पल से भी, एप्पल से थोड़ी ज्यादा है क्योंकि डिजाइन पे मेहनत करना अभी छोड़ दिया है, पर सैमसंग से अभी जो उम्मीद है वो बनी हुई है. सो लेट्स सी कि S27 के जो लीक्स हैं वो कितने सच्चे होंगे कितने नहीं होंगे. और इसके अलावा एक और खबर है जो कि गूगल की तरफ से आ रही है. सो गूगल अपने जेमिनी मॉडल्स को अब बहुत ही ज्यादा डीपली इंटीग्रेट करने जा रहा है एंड्रॉयड के साथ. वो चाहते हैं कि हर एक चीज जो फीचर्स हैं उनके वो जेमिनी पावर्ड आइटम्स बने, ट्रैकिंग से लेकर मोशन असिस्ट, चैट की थीम्स. तो गूगल AI हर किसी के फोन का ऐसा हिस्सा बन जाए के लगे कि ये स्किन पहनी हुई है, ऐसा कोई अलग से सॉफ्टवेयर ना लगे, विच इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स कि एप्पल जब भी AI मॉडल पे काम करता है भाई मैं आंख मूंद के उनमें भरोसा करता हूँ. दिस टाइम ऑल्सो आई एम होपिंग दैट दे डू समथिंग रियली रियली गुड. सो ऑल द बेस्ट टू गूगल एंड ऑल द बेस्ट टू मी. आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली अपडेट में. दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.
2: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं.
1: हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर, RJ सफा और RJ महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है. ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी. म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है. कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है,
3: मुस्कुराना, नजर यूं झुकाना मेरे लिए है, बस मेरे लिए है.
1: तो कभी नए सपने दिखाता है. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो. चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज. डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज नए जमाने के नए फ्रॉड से आपको रूबरू कराता हूं। और आज भी एक ऐसा ही फ्रॉड है जो इमरजेंसी फ्रॉड के नाम से जाना जाता है। और आमतौर पे इस फ्रॉड में फंसाने के लिए ज्यादातर या तो बिल्कुल छोटे लोगों को या फिर बेहद जो बुजुर्ग होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। क्या है ये फ्रॉड, चलिए जानते हैं दोस्तों। ये फ्रॉड है फेक फ्रेंड इमरजेंसी स्कैम, या कहें फ्रॉड। ये स्कैम आजकल के डिजिटल जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इस स्कैम का तरीका बहुत ही शातिराना होता है। सबसे पहले एक साइबर क्रिमिनल या हैकर आपके किसी सच्चे और असली दोस्त का सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया, पूरी तरह से हैक कर लेता है। हैक करने के बाद वो हैकर उस प्रोफाइल का पूरा एक्सेस अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद का स्टेप होता है आपको टारगेट करना, यानी कि उसके जितने दोस्त है वो उसको टारगेट करता है, जिसमें आप भी शामिल होते हैं। वो हैकर आपके उस दोस्त के अकाउंट से आपको एक प्राइवेट या डायरेक्ट मैसेज भेजता है। मैसेज की शुरुआत बहुत ही आम लगती है, लेकिन तुरंत फौरन ही वो एक बहुत बड़ी और मुसीबत, मेजर क्राइसिस जैसा जिक्र करने लगता है। हैकर आपको बताता है कि आपका दोस्त किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है। मतलब अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए कि वो लिखता है कि वो कभी हॉस्पिटल में है या एयरपोर्ट पे खड़ा है, उसको पैसे की जरूरत है, या उसका फोन टूट गया है, उसका वॉलेट चोरी हो गया, या फिर उसकी किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन उसकी दोस्त की हो गई है, या फिर वो ऐसा कुछ सीन बनाएगा जिसमें इमरजेंसी उसको बताना होता है। क्योंकि ये पूरा मैसेज आपके दोस्त के बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रोफाइल से आ रहा होता है, इसलिए आपका दिमाग किसी भी तरह के फ्रॉड पर शक नहीं करता है। ऐसे में आपको लगता है कि आपका अपना दोस्त सच में किसी बड़ी मुसीबत में है और आप एक सच्चे दोस्त के नाते इमोशनल होकर तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्कैमर इसी इमोशनल स्टेट का फायदा उठाता है और आपसे कहता है कि बिना वक्त बर्बाद किए किसी डिजिटल पेमेंट पे ऐप कर दो, चाहे वो फोन पे हो, UPI हो, अलग अलग तरीके होते हैं पेमेंट के जरिए। वो कहता है कि इस पे कैश आप पेमेंट कर दो, अगर आप बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं तो वो पैसा सीधा क्रिमिनल के अकाउंट में जाता है और फिर उसे रिकवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ हैकर्स ऐसा भी करते हैं कि वो किसी अकाउंट को हैक नहीं करते, लेकिन आपके दोस्त की अगर कोई प्रोफाइल फोटो या कोई नॉर्मल फोटो भी पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, तो उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको AI से डिस्टॉर्ट करते हैं। AI का इस्तेमाल करके उसे हॉस्पिटल में कहीं दिखा दिया, कहीं एयरपोर्ट पे दिखा दिया, तो ऐसे में आप और ज्यादा यकीन कर लेते हैं, क्योंकि AI पर भरोसा करना भी, या कहें AI का पता लगाना भी आसान नहीं है। उस पर इंसान भरोसा कर लेता है, उसको लोगों को पता नहीं होता कि ये AI से वीडियो या फोटो बनाई गई है। तो ऐसे में उससे बचने के लिए कुछ सॉल्यूशन भी हैं। क्या कुछ सॉल्यूशन है, जरा उन सॉल्यूशंस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है डायरेक्ट वेरिफिकेशन कॉल। दोस्तों, जब भी आपको सोशल मीडिया पर किसी दोस्त या रिश्तेदार का ऐसा अर्जेंट मनी रिक्वेस्ट मैसेज आए, तो सबसे पहले उन्हें उनके पुराने और पर्सनल मोबाइल पर कॉल करके कंफर्म करें। दूसरा तरीका है क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर उनका नंबर नहीं लग रहा है तो चैट पर उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछे जो सिर्फ आप दोनों को पता हो, आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव को, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को पता हो सिर्फ और सिर्फ। और एक अनजान हैकर इस सवाल का जब जवाब नहीं दे पाएगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। तीसरा है जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्कैमर्स हमेशा आपको डराएंगे कि वक्त नहीं है, जल्दी करो, उनके इस प्रेशर में बिल्कुल ना आए। ऐसे यानी कि इस तरह के प्रेशर से ही ज्यादातर स्कैम होते हैं। और चौथा तरीका है अकाउंट को रिपोर्ट करें। अगर आपको कंफर्म हो जाए कि आपके दोस्त का अकाउंट हैक हो गया है ना, या फिर किसी नए अकाउंट से आपके पास मैसेज आया है, तो उस अकाउंट को रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट में हमेशा हैक या फेक के नाम पर ही रिपोर्ट करें, ताकि उस प्रोफाइल का और ज्यादा गलत इस्तेमाल वो हैकर ना कर सके। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स बच सकते हैं, और इस तरह के स्कैम जो मैं हर

0: न्यूज लेकर आता हूँ और आपको बताता हूँ। इस तरह के स्कैम को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहा करिए। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, कल मुलाकात होगी एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाईलाइट में आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उन महान और मारूफ खिलाड़ी की जिनका नाम क्रिकेट की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा और एक ऐसा क्रिकेटर जो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता था और एक ऐसा नाम जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कई यादगार लम्हे दिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे रोशन सितारों में शुमार होता है। वो सिर्फ एक बेहतरीन बैट्समैन नहीं थे बल्कि उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनका जज्बाए मुकाबला। मियांदाद क्रिस पर आते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे वो सिर्फ बॉलर का सामना नहीं कर रहे बल्कि पूरे मुकाबले को चैलेंज कर रहे हों। उनका क्रिकेटिंग करियर 1970 में शुरू हुआ और बहुत जल्द उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपनी पहले ही टेस्ट सीरीज में दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान को एक नया स्टार मिल गया है। मियांदाद की बैटिंग में एक अजीब सी रवानी थी। वो टेक्स्ट बुक बैट्समैन जरूर थे लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने अंदाज को फौरन बदल सकते थे। तेज गेंदबाज के खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस और स्पिन बॉलर्स के सामने उनका कंट्रोल देखने का काबिल होता था। लेकिन जावेद मियांदाद की कहानी सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं दोस्तों, उनकी पहचान थी प्रेशर में परफॉर्मेंस, यानी दबाव में। जब पाकिस्तान टीम दबाव में होता था तब जावेद मियांदाद को आउट करना नामुमकिन था और इसीलिए उनका नाम 1986 के शारजा के उस यादगार मुकाबले के साथ हमेशा लिया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ओडीआई फाइनल, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, आखिरी ओवर, पाकिस्तान को जीत के लिए 6 रन्स की जरूरत। बॉलिंग कर रहे थे इंडिया के फास्ट बॉलर चेतन शर्मा और सामने थे कराची के फाइटर जावेद मियांदाद। आखिरी बॉल पर 6 रन्स की जरूरत थी, फिर वो लम्हा आया जो क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन गया। चेतन शर्मा ने गेंद डाली, मियांदाद ने शॉट खेला और बॉल बाउंड्री के पार, और ये बाउंड्री यानी 4 रन्स नहीं थे बल्कि ओवर बाउंड्री 6 रन्स, और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। शारजा का वो लम्हा जावेद मियांदाद के करियर का सबसे मशहूर मोमेंट बन गया था। लेकिन मियांदाद की असल खूबी सिर्फ वो एक सिक्सर नहीं थी, उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान के लिए हजारों रन्स बनाए, मुश्किल हालात में इनिंग्स खेली और टीम को कई मर्तबा मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाला। अगर ओडीआई की बात करूं तो उन्होंने 6 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जो अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड था। 1992 का वर्ल्ड कप भी उनके करियर का अहम हिस्सा था। इट वॉज अ एंड ऑफ हिज करियर अगर कहने, अगर वो आखिरी पड़ाव पे थे। लेकिन जावेद मियांदाद थोड़ा स्लो तो हो गए थे लेकिन रन बनाने में चूकते नहीं थे, स्पेशली द चीकी सिंगल्स। आपको समझ आया होगा चीकी सिंगल्स का मतलब ये होता है कि शॉट खेलकर दौड़ना, और इस तरह दौड़ना कि जैसे कि आगे कुछ है नहीं। Used to run for his life, used to run for Pakistan. पाकिस्तान ने इमरान खान की क्यादत में वर्ल्ड कप जीता और मियांदाद उस टीम के तजुर्बेकार और अहम बल्लेबाज थे। और यहाँ पे एक अहम बात यह भी है कि उस वर्ल्ड कप कैंपेन के पीछे अगर किसी का दिमाग चला तो वो था जावेद मियांदाद का। यानी इमरान खान कप्तान तो थे लेकिन इमरान खान ने जावेद मियांदाद को इग्नोर नहीं किया, बिकॉज जावेद मियांदाद का एक्सपीरियंस भी वॉज समथिंग दैट वॉज एक्सेप्टेबल एट दैट मोमेंट। और वहाँ पर इमरान खान ने जावेद मियांदाद के साथ कोलैबोरेट करके, एक तरह से साथ मिलकर काम करके स्ट्रैटेजी बना, एंड स्ट्रैटेजी के साथ साथ पाकिस्तान को दिया अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप, बीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल 1992 आईसीसी वर्ल्ड कप। और उनकी बैटिंग की बात करूँ तो उनकी बैटिंग ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट में कई अहम मौक़ों पर सहारा दिया। अगर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे फॉलो करते हैं तो मियांदाद ने टेस्ट क्रिकेट में 8,000 से ज्यादा रन्स और ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में 7,000 से ज्यादा रन्स बनाए। लेकिन अगर आप किसी क्रिकेट फैन से पूछे कि जावेद मियांदाद की सबसे बड़ी पहचान क्या थी तो शायद जवाब होगा
उनका फाइटिंग स्पिरिट, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। वो मैदान पर कभी आसानी से हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं थे, ही वाज अ स्ट्रीट फाइटर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस और बॉलर को जवाब देने का अंदाज उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से अलग करता था। जावेद मियां ने पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ रन नहीं दिए, उन्होंने एक सोच दी कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। इसीलिए जावेद मियांदाद का नाम आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के मारूफ सितारों में लिया जाता है। उनका करियर हमें ये सबक देता है कि क्रिकेट हो या जिंदगी, असल चैंपियन वो होता है जो प्रेशर के सामने झुकता नहीं। जावेद मियांदाद एक नाम, एक जज्बा और पाकिस्तान क्रिकेट की एक अजीम दास्तान। दोस्तों आज के स्पोर्ट्स हाइडलाइट्स में आज इतना ही। आप सुन रहे थे जावेद मियांदाद की कहानी। अगली बार एक और जबरदस्त स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे निमा मदमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महावश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतर की सकाफत में अरबी कहवे को खास मकाम हासिल है. ये सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि मेहमान नवाजी, मुलाकात और अपनायत की खूबसूरत अलामत है. जब किसी मेहमान के लिए कहवा तैयार किया जाता है तो उसमें मेजबान की मोहब्बत, तवज्जो और खुलूस भी शामिल होता है. रिवायती तौर पे कहवे को खास तरीके से तैयार किया जाता है. इसमें आम तौर पर कॉफी और पानी के साथ इलायची जैसी चीजें शामिल की जाती हैं. कुछ लोग जायके को बेहतर बनाने के लिए जाफरान या दूसरी खुशबूदार अशिया भी इस्तेमाल करते हैं. हर घर में तैयारी का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन कहवे की खुशबू और उससे जुड़ी अपनायत सब जगह महसूस होती है. कहवा तैयार करने के लिए रिवायती बर्तनों का इस्तेमाल भी किया जाता है. कॉफी को खास बर्तन में उबाला और फिर आम तौर पर उसको प्याले में डाल के पेश किया जाता है. ये अपनी खूबसूरत शक्ल की वजह से आसानी से पहचाना जाता है. जब कहवा इसमें पेश किया जाता है तो मेहमान नवाजी के रिवायती अंदाज को नुमाया करता है. कहवे के साथ खजूर पेश करना कतर में बहुत पसंदीदा रिवायत है. खजूर की मिठास और कहवे की खुशबू एक दूसरे को मुकम्मल करती है. मेहमान को कहवा और खजूर की पेशकश ये एहसास दिलाती है कि उसका इस्तकबाल इज्जत और खुशी के साथ किया जा रहा है. मजलिस में कहवा पेश करने का भी अपना सलीका होता है. मेहमान को अदब से कहवा दिया जाता है और आम तौर पर पहले बुजुर्गों और खास मेहमानों को तवज्जो दी जाती है. कहवा देने वाला शख्स मेहमान के पास जाकर प्याला पेश करता है और जरूरत के मुताबिक मजीद कहवा भी देता है. प्याला अक्सर छोटा होता है इसलिए इसमें थोड़ी मिकदार में कहवा रखा जाता है. मकसद ये नहीं होता कि एक ही बार में बहुत ज्यादा कहवा दिया जाए बल्कि मेहमान को आराम से पेशकश की जाती है. अगर मेहमान मजीद कहवा लेना चाहे तो प्याला दिया जाता है और अगर ना लेना चाहे तो अदब से मना कर सकता है. कहवा पेश करना और लेना दोनों अपने साथ अदाब रखते हैं. देने वाले के लिए मुस्कुराहट, नरमी और तवज्जो जरूरी है और लेने वाले के लिए शुक्रिया का एहसास और इस पेशकश की कदर करना अच्छे रवैये का हिस्सा है. कहवे की महफिल एक दूसरे के करीब आने का जरिया भी होती है. जब लोग कहवे के गिर्द जमा होते हैं तो गुफ्तगू, मशवरे और यादगार लम्हात जन्म लेते हैं. कभी खानदान के अफराद, कभी दोस्त और कभी मेहमान कहवे के साथ अपने तजुर्बे और खुशियां शेयर करते हैं. कतर की कहवे की रिवायत हमें ये भी बताती है कि खातिर तवाज़ो सिर्फ बड़ी दावत का नाम नहीं, कभी एक प्याला कहवा भी मेहमान के लिए बहुत अहमियत रखता है. असल अहमियत उस खुलूस की होती है जिसके साथ छोटी सी पेशकश की जाती है. कहवे का ताल्लुक कहवा बनाने वाले और उसे पेश करने वाले के हुनर से भी है. प्याले को संभालना, मुनज्जम रखना और मेहमानों की जरूरत को समझना एक सलीका तलब काम है. ये हुनर अक्सर घर और महफिल के माहौल में सीखे जाते हैं. कतर में कहवा सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, सकाफती मराकज, वर्से के प्रोग्राम और मेहमानों के इस्तकबाल के मौके पर भी इस तरह का एहतमाम किया जाता है. इस तरह कहवा नई नस्ल और नए मेहमानों को कतर की सकाफत और मेहमान नवाजी से रोशनास कराने का जरिया बनता है. कहवे का एक पहलू सादगी भी है. इसे पेश करने के लिए जरूरी नहीं कि माहौल बहुत

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: स्पोर्ट्स राउंड अप,
2: स्पोर्ट्स राउंड अप
1: विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का इस्तकबाल। स्पोर्ट्स हर जगह पर है, स्पोर्ट्स हर जगह पर हो रहा है एंड मौसम के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि अब पकड़ जो है धीरे धीरे बनाए रहा है एंड स्पोर्ट्स के बिना देखिए ज़िंदगी अधूरा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा एक टैग लाइन है, स्पोर्ट्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ। सो वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंड अप शो, और ये शो जो है अभी जो है शुरू है और हम इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स के अपडेट देंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। फ़ोन उठा लीजिए, फ़ोन अगर आप लोग यू नो ऑलरेडी आप लोग व्हाट्सएप में मौजूद हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 666-221-107 नंबर पहले बता रहा हूँ और उसके बाद अभी सवाल आप लोगों से पूछूंगा। और सवाल ये है, क्रिकेट से ही है और क्रिकेट से ही आप लोगों का मैं रूबरू कराऊंगा स्पोर्ट्स राउंड अप। और आज का सवाल यह है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट खेलते ही हैं और आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के शौकीन हैं, हम सब लोग क्रिकेट के शौकीन हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए किस बल्लेबाज ने पहला टेस्ट सेंचुरी स्कोर किया था, आपको बताना है फटाफट। 666-221-107 पर टाइप करना शुरू कर दीजिए। और तौफिक साहब पहले ही बैठ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आप सवाल सुन लीजिए और जवाब भी दे दीजिए प्लीज़। और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ममालिक हैं टेस्ट क्रिकेट में, और इनके लिए किन बल्लेबाजों ने अपना पहला सेंचुरी शतक स्कोर किया, आपको बताना है और बताइएगा ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 666-221-107 पर। अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, नाम के बिना कुछ भी नहीं होता है। व्हाट्स इन अ नेम, वो कह के गए हैं विलियम शेक्सपियर, लेकिन नाम यानी नेम इज इम्पॉर्टेंट, सो अपना नाम जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे स्पोर्ट्स हाईलाइट के साथ, और स्पोर्ट्स हाईलाइट में काफ़ी कुछ है। देखिए आज एशियन गेम्स जो है जापान के नागोया शहर में होने जा रहा है और आज फुटबॉल का मैच है। फुटबॉल के मैच से हालांकि 19 सितंबर को ओपनिंग सेरेमनी है, कुछ इवेंट्स पहले से शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि फुटबॉल है और आज कतर का सामना है साउथ कोरिया से, यानी जनूबी कोरिया से आज कतर का फर्स्ट मैच होगा और ये मैच ग्रुप डी का है। और ये मैच 1:30 बजे कतर टाइम, 1:30 बजे यानी रात नहीं दिन, दोपहर की बात कर रहा हूँ, 1:30 पर आप लोग अपना स्क्रीन पर हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर हो सकते हैं टू फॉलो द रिजल्ट्स। बहुत ही अच्छा मैच होने जा रहा है एंड आई बिलीव दैट कतर टीम कैन डू वेल इन दिस गेम। ग्रुप डी में साउथ कोरिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टीम। और यार कल एक मैच हुआ था और ये मैच जो है AFC चैंपियंस लीग, जैसे कि UEFA चैंपियंस लीग है, यूरोपीय चैंपियंस लीग आपने सुना ही होगा जहाँ पे बड़े बड़े क्लबें खेलते हैं, तो एशियन चैंपियंस लीग भी है और बहुत यू नो कोई नई बात नहीं है, AFC चैंपियंस लीग सालों साल होते आ रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा तारुफ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि AFC यानी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एशिया में भी चैंपियंस लीग है और इसमें कल असद का पहला मैच था, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है अल सद को हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट ईरान का क्लब है इस्तेग्लाल। इस्तेग्लाल के अगेंस्ट में 3-0 से डिफीट अल सद टीम को, अल सद क्लब को, और ये दैट वाज नॉट अ ग्रेट बिगिनिंग फॉर द अल सद क्लब। एनीवे नेक्स्ट मैचेस में देखेंगे क्या होता है, ये ग्रुप बी का मैच था। वहीं दोस्तों टीम कतर एशियन गेम्स जैसे मैंने बताया 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा, और 19 सितंबर से पहले ही कतर की टीम जो है टीम कतर 243 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो स्क्वाड है वो जापान तक ये लोग पहुंच गए हैं एंड ये एशियन गेम्स का 20th एडिशन है। और यहां पर इस एशियन गेम्स में उम्मीद है कि कतर की जानिब बहुत सारे मेडल्स आएंगे एंड आई बिलीव कि फुटबॉल में एक चांस है एंड बास्केटबॉल में 3x3 जो बास्केटबॉल है उसमें कतर काफ़ी स्ट्रांग है, और बीच वॉलीबॉल में कतर के यू नो दो जो खिलाड़ी हैं शरीफ और यूनुस जो है, ये दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर पे रैंकिंग करते हैं, टॉप 10 पर हैं, और आई थिंक मुझे उम्मीद है, देखिए इंशाल्लाह कतर विल गेन अ गोल्ड मेडल। इफ नॉट अ गोल्ड मेडल तो मैं कहता हूँ कि पोडियम फिनिश तो है ही है, बिकॉज वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड जो है शूटिंग है, शूटिंग में कतर इज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम कतर हैज, एंड साथ ही साथ फुटबॉल में भी हम उम्मीद कर सकते हैं. टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस में भी देर इज अ चांस दैट कतर कैन गेट इन द नॉकआउट स्टेजेस. और आज जो है एक और जो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो है एक अनाउंसमेंट अभी कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने अभी उन्होंने किया था, और 13 नवंबर ये डेट जो है थोड़ा सा कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा. 13 नवंबर में जासिम बिन हमाद स्टेडियम में कतर की सीनियर टीम, फुटबॉल टीम जो है ना जिसको अल नवी हम कहते हैं, तो उनका सामना होगा ऑस्ट्रेलिया का. और ये मैच जो है बेसिकली एक फ्रेंडली मैच है, और अगले साल AFC एशियन जो कप है जो सऊदी में होने जा रहा है उसके लिए एक पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है टू सी हाउ कतर इज रियली प्रिपेयर्ड. और आज से AFC चैंपियंस लीग 2, AFC चैंपियंस लीग 1 यानी जो टॉप टीयर AFC चैंपियंस लीग तो कल शुरू हो गया, आज से AFC चैंपियंस लीग 2 का आगाज होने जा रहा है. और ये एशिया के इस सेकेंड टीयर मेन्स क्लब कॉम्पिटिशन में 32 क्लबें विनिंग स्टार्ट के लिए मैदान में उतरेगी. तो दोस्तों आप अपना जो है ये तो आपको मैंने आज का स्पोर्ट्स हाइलाइट्स हमने बता दिया है, और जो सवाल था वो भी आपको बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ. और सुन लीजिएगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भाई लोग आप लोग अपना मोबाइल चालू कर लीजिए और रेडियो ऑन कर लीजिए और सुनते रहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ. एक क्रिकेट से मुतालिक एक सवाल है, एक क्विज है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन तीनों ममालिक के वो पहला खिलाड़ी कौन था, क्रिकेटर कौन था, वो बल्लेबाज कौन था जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किया था अपने कंट्री के लिए. तो आप लोगों से मिलूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद क्रिकेट के खबरों के साथ आप लोगों के साथ मैं हाजिर होता हूं. और टिल देन कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी.

0: Sports Roundup.
1: Sports Roundup
0: with our sports journalist Mohammad Amin. Sirf FM 107 par. Dil se desi.
2: Welcome back. Sports Roundup mein aap sabhi ka istiqbal hai. Main hoon aapka mezban Mohammad Amin aur aap sun rahe hain Sports Roundup show. Aur Sports Roundup jo hai अपडेट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, मैचेस हैं, क्या क्या होने जा रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे. और अभी क्रिकेट से मुतालिक कुछ अपडेट्स हैं. मैं आपको बता दूं कि कल इंग्लैंड में, इंग्लैंड के साउथम्पटन में इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के दरमियान तीन मैचों की T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला होने जा रहा है. और दोनों टीमें सीरीज़ का आगाज़ जीत के साथ करना चाहेंगी. बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स. अभी इंग्लैंड हाल ही में इंडियन टीम को T20 सीरीज़ की बात करूँ, नॉट द टेस्ट सीरीज़ जो पाकिस्तान को इंग्लैंड टीम ने क्लीन स्वीप से किया था, उसमें आई डोंट थिंक कि T20 सीरीज़ में श्रीलंका इज़ इतना मजबूत है. एंड इंग्लैंड टीम इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट. एंड देखना है कि क्या श्रीलंकन टीम विल स्टॉप द वाइट बॉल टीम ऑफ इंग्लैंड जो कि T20 मैच कल खेलने जा रही है. एंड अपने ही ग्राउंड पर है तो देयर विल बी अ फैन सपोर्ट, एक एडवांटेज तो हमेशा रहता है. और वहीं कल माफ कीजिएगा आज मेज़बान इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ के दूसरे मैच में आज आमने सामने होंगे. और इंडिया को तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी जो है हासिल है. और पिछला गेम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और आज भी दिल्ली में ही होने जा रहा है. अभिषेक शर्मा उस मैच में एक धुआंधार पारी खेलकर सबको मुतासर किया, 82 रन्स ही स्कोर्ड. और अफगानिस्तान इज़ एन अपकमिंग साइड T20 में. अफगानिस्तान इज़ थोड़ा सा तजुर्बा चाहिए अफगानिस्तान टीम को. ODI में दे आर रियली गुड. ये सारे मैचेस इसलिए हो रहे हैं कि एशियन गेम्स में क्रिकेट है इस बार. ताज्जुब मत होइएगा, चौंकिए मत, एशियन गेम्स में T20 क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है और इसीलिए ये मैचेस हो रहे हैं. पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान भी है, इंडिया है और साथ साथ मलेशिया, बहुत ऐसे ममालिक हैं जो कि क्रिकेट, जापान, इमेजिन करिए कि जापान भी विल प्ले क्रिकेट. और पाकिस्तान जो है 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड टीमों की मेज़बानी करेगा. और इस दौरान एक बायलैटरल सीरीज़ भी है, ट्राई सीरीज़ भी है. मौसम आ रहा है, क्रिकेट का मौसम है. अभी तो 365 दिन में क्रिकेट ही चलते रहते हैं. लेकिन ये जो जब भी विंटर और सर्दियों की बात करते हैं तो पहले होता था कि भाई जो ऑरेंजेस है, नारंगी, संतरे जो है ना, जब ऑरेंजेस, ये ज़्यादातर विंटर सीजन में या सर्दियों का ही एक ये जो फ्रूट है वो उस टाइम ही आता था. एंड उसमें हम लोग ये सोचते कि चलो नारंगी संतरे आ गए तो चले अब क्रिकेट भी है. और उस ज़माने में टेस्ट क्रिकेट, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा वॉज मच पॉपुलर दैन ODI. ODI तो धीरे धीरे आफ्टर 1983 के बाद, 85 के बाद ODI सीरीज़ भी जुड़ने लग गया इसी सीरीज़ के साथ कि टेस्ट क्रिकेट के साथ ODI भी है. तो आज की तारीख में अगर देखें तो क्रिकेट एनी फॉर्मेट, T20, ODI, टेस्ट क्रिकेट, ये तो ऐसा है कि बस जैसे कि आप कभी भी निकलें किसी शॉप पर, निकलें दोहा के किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो मजबूत आपको मिल ही जाता है, नारी रोटी मिल ही जाता है, पाए भी मिल जाते हैं. तो ऐसा ही है, 365 डेज. पहले पाया तो विंटर्स में ही हम देखते थे, अभी तो पाया जो है गर्मियों में भी, हर टाइम में भी आपको अवेलेबल है. वैसे ही क्रिकेट हर टाइम अवेलेबल है दोस्तों. सो ये है क्रिकेट से कुछ अपडेट्स. हाँ, एशिया कप वीमेंस क्रिकेट फाइनल अभी हुआ था एंड उसमें इंडियन टीम की जीत हुई अगेंस्ट श्रीलंकन टीम. हम बढ़ते हैं थोड़ा सा रीजनल और वर्ल्ड स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं. Formula 1 रेस हमें देखने को मिला. फॉर्मूला 1 में चैंपियंस लीग लीडर किमी आंतोनेली ने इस सीजन की अपनी 8वीं जीत हासिल की जब उन्होंने इतवार को मैड्रिड में स्पेनिश ग्रां प्री में अपनी मर्सिडीज को शानदार अंदाज में विक्ट्री तक पहुंचाया. उसके साथ साथ दोहा 2026 वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा जो कि 1 से 14 नवंबर तक लुसेल शूटिंग कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होगी. Under-17 वर्ल्ड कप इज कमिंग दोस्तों, 19 नवंबर तारीख जो है वो मार्क कर लीजिए. मैं बहुत सारे डेट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग शुड मार्क इट ऑन योर कैलेंडर, ऑन योर मोबाइल, क्योंकि ये जो मैचेस हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट मैचेस. और कतर का पहला गेम जो होगा वो 22 नवंबर को होगा अगेंस्ट इजिप्ट. गर्ल्स क्लब चैंपियंस लीग 2026-2027 का तीसरा एडिशन जो है 13 अक्टूबर इसी साल शुरू होने जा रहा है और 30 अप्रैल 2027 तक शेड्यूल है. इंडियन फुटबॉल के हवाले से एक न्यूज़ है, इंडिया जो है पनामा के अगेंस्ट में एक फ्रेंडली मैच खेलेगी, वो 25 सितंबर को बेंगलुरु शहर में श्री कांतिरावा स्टेडियम में। और अभी अभी हाल ही में यूएस ओपन टेनिस हमें कल ही फाइनल, परसों देखा जाए तो परसों फाइनल हुआ था, और इस फाइनल में, मेंस फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। अब मैं ज़वरेव के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक मज़ीद कुछ कहना चाहूँगा। ज़वरेव का एक कोट आया, कोट मीन्स इंटरव्यू, पोस्ट मैच इंटरव्यू, और क्या खूबी इस इंसान के अंदर है, इस खिलाड़ी के अंदर है, मैं आपको बता नहीं सकता। नॉर्मली होता है कि जीतने के बाद खिलाड़ी जो है वो सेल्फी ले लग जाते हैं, बहुत सारे बातें करने लग जाएंगे, लेकिन इस खिलाड़ी ने, अलेक्जेंडर ज़वरेव ने, उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए कि क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बाकी खिलाड़ियों के जैसे मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, जैसे कि यानिक सिनर है और कई ऐसे टॉप जो यंगस्टर्स हैं उनके आसपास जो हैं, उनसे भी वो अपने आप को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि मैं तो बहुत ही बैक रूम, जो कहते हैं क्लास के बैक बेंचर्स हैं, वो हूँ मैं, और मैं सिर्फ एक चीज़ पर भरोसा करता हूँ, वो है हार्डवर्क। मैं अपने मेहनत पे भरोसा करता हूँ और शायद यही रिजल्ट मुझे जो भी मिला है, यूएस ओपन चैम्पियन टाइटल जो मिला था या मिला है, तो वो दैट्स बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, यानी बहुत मेहनत करने के बाद, शदीद मेहनत के बाद, ही हार्ड वर्क के बाद उन्हें ये टाइटल मिला। देखिए, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैं टैलेंटेड हूँ। दिस इज कॉल्ड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, दिस इज कॉल्ड आप कितने ही ऊपर तक जाए आप अपने आप को छोटा ही दिखाइए कि मैंने कुछ नहीं किया। दैट सॉर्ट हम्बलनेस, दैट सॉर्ट आपकी जो ग्रेटिट्यूड है वो आप हमेशा दिखाते हैं कि अल्लाह के सामने आप छोटा ही हैं। तो जो भी कुछ मिला है ऊपर वाले की नेमत है और अल्लाह ताला ने आपको दिया है, एंड दैट्स वॉट ही सैड, एंड कि मैं तो मेहनत करता हूँ एंड जस्ट मेहनत करता हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास। सो ये एक बड़ी बात है फ्रॉम अ चैम्पियन कमिंग फ्रॉम अलेक्जेंडर ज़वरेव। वहीं वुमेन्स फाइनल में रिबाकिना, एलेना रिबाकिना जो कजाकिस्तान की हैं, उन्होंने अरीना साबालेंका को शिकस्त दी एंड वर्ल्ड नंबर वन पर पहुंच गई हैं इन द रैंकिंग ऑफ WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के रैंकिंग पर। तो दोस्तों, ये सारे अपडेट्स आप लोगों से मैंने शेयर किया है। और एक बात और, एक चीज़, हाँ, बास्केटबॉल से एक अपडेट्स हैं, अभी जो बता दूं आपको, कातर बास्केटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया कि मेंस जनरल लीग चैंपियनशिप जो है उसका शेड्यूल उन्होंने अनाउंस कर दिया और 9 क्लब जो है 10 अक्टूबर से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सो दैट इज द अपडेट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स राउंड अप। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों ममालिक के उस खिलाड़ी का नाम बताइए, उस बैट्समैन का नाम बताइए जिन्होंने अपने ही मुल्क के लिए फर्स्ट सेंचुरी स्कोर किया था। मुझे लगता है कि बहुत से लोग आज कई जगह पे बिजी हैं और कुछ लोगों के जवाब आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने सही जवाब दे पाया है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि थोड़ा सा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मैंने इसलिए पूछा क्योंकि भाई हमारे देसी लोग हैं और देसी लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, तौफिक साहब कुछ मैसेज लिखने जा रहे हैं और उन्होंने एक जवाब तो दिया है, एंड आई थिंक इट इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया के लिए फर्स्ट सेंचुरी वॉज लाला अमरनाथ का था, एंड लाला अमरनाथ वॉज फर्स्ट बैट्समैन जो इंडिया के लिए फर्स्ट एवर सेंचुरी उन्होंने स्कोर किया था। सो लाला अमरनाथ के बाद अगर कोई पाकिस्तान से कोई बता पाएंगे कि हाँ, पाकिस्तान के लिए फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट सेंचुरी किसने किया था, या बांग्लादेश के कोई हैं तो बांग्लादेश के भी जो लिसनर्स हैं, मौजूद हैं, वो बता पाएंगे, तो मैं वेट कर रहा हूँ। और अगर नहीं आता, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन यानी सख्त सवाल हो गया होगा। एनीवे, आज जो एक न्यूज़ आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, पाकिस्तान के ही एक साहब है, उन्होंने नाम उन्होंने नहीं दिया है। एनीवे, जो बात हो रही है कि अबाउट द सेंचुरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सेंचुरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान, लारा अमरनाथ इज़ द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर।

फॉर दिस सेंचुरी फॉर इंडिया। और कोई एक साहब लिख रहे हैं ईमान खान, नहीं कौन है भाई साहब अपना नाम, वेलकम नाम उनका वेलकम है, आई डोंट नो। पाकिस्तान फर्स्ट सेंचुरी सैयद अनवर, अच्छा आपका नाम हसन है, हसन साहब है आपका। मोहम्मद हनीफ सोहेल लिख रहे हैं, मोहम्मद हनीफ यानी हनीफ मोहम्मद के बारे में आप बता रहे हैं। नहीं अभी भी आपके पास चांस है, चांस है अभी भी बता सकते हैं। पाकिस्तान कम ऑन गेट अप, पाकिस्तान का फर्स्ट सेंचुरियन कौन है, यानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख का फर्स्ट सेंचुरी, उस बल्लेबाज का नाम आपको बताना है। इंडिया का एक सही जवाब तौफीक साहब ने बता दिया है, लाला अमरनाथ। और क्या तौफीक साहब आप लाला अमरनाथ के ज़माने के हैं क्या? बांग्लादेश से कोई नहीं है, बांग्लादेश से कोई भी नहीं जवाब दे पा रहे हैं दोस्तों। एनीवे मैं और एक अपडेट दे दूं, अभी एक मैच जारी है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान, एक मुकाबला चल रहा है, ओडीआई है, एंड ऑस्ट्रेलिया चूजेस टू बैट आफ्टर विनिंग द टॉस। और 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन 40 ओवर्स पर बैटिंग है, और ये मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे हो रहा है, एंड जिम्बाब्वे पे जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब है हरारे में हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान मिचेल मार्श 36 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, ट्रेविस हेड 4 रन, क्रिस कोलोली 51 रन 40 गेंदों पर वो भी आउट हो गए, सिकंदर रजा के गेंद पर, और विकेटकीपर बैट्समैन इंग्लिश वो भी आउट हो चुके हैं 4 रन बनाकर, बोल्ड बाय कॉट बाय ब्रेंडन टेलर एंड बोल्ड बाय न्यूमैन यामहुरी, सिर्फ 4 रन उन्होंने स्कोर किया। सो अभी जो बैटिंग कर रहे हैं वो है रेनशॉ जो 75 रन बनाकर नॉट आउट है, 70 गेंदों पर 75 रन 4 बाउंड्रीज एंड 3 सिक्सेस, और उनके साथ हैं पीक जो 29 गेंदों पर 19 रन 1 चौकों की मदद से। तो एनीवे अभी जवाब आ रहे हैं रिकी कौन है पाकिस्तान फर्स्ट सेंचुरियन, नज़र मोहम्मद सदात अफरीदी साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दिए दिया, एंड आप ही हैं जो इस क्वेश्चन को सही तरह से आपने सुना पढ़ा और आपने सही जवाब दिया है। लेकिन आपने पाकिस्तान के बारे में बताया, इंडिया बांग्लादेश के बारे में कोई है तो बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाला अमरनाथ, नज़र मोहम्मद, अमीनुल इस्लाम अब तो मेरा नाम ले रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, सही जवाब आपका नाम शेख इरफान, शेख इरफान बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया है, एंड इट्स अ राइट आंसर एक्चुअली, लाला अमरनाथ अगेंस्ट इंग्लैंड, नज़र मोहम्मद अगेंस्ट इंडिया, और अमीनुल इस्लाम बुलबुल बांग्लादेश के कप्तान रह चुके हैं अगेंस्ट इंडिया सन 2000 में। सो ये आज के जितने भी जवाब थे उनमें से ये तो एकदम मुकम्मल सही जवाब आपने दिया है, एंड आई थिंक दैट अदर्स विल ऑल्सो ट्राई टू यू नो से और राइट देयर करेक्ट आंसर्स, एंड पाकिस्तान फर्स्ट सेंचुरी नज़र मोहम्मद, नहीं नहीं तौफीक साहब आप क्या कर रहे हैं, ये सही जवाब नहीं है। इन अक्टूबर नज़र मोहम्मद, गुड आफ्टरनून, नज़र मोहम्मद इज़ द फर्स्ट सेंचुरियन फॉर पाकिस्तान इन अक्टूबर 1952 अगेंस्ट इंडिया, आप कौन है हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब के लिए। तो दोस्तों ये थे डिफरेंट यू नो बैट्समैन, और पाकिस्तान के लिए नज़र मोहम्मद, और नज़र मोहम्मद के बेटे मुदस्सर नज़र भी पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर्स थे 1970s एंड 80s में। तो नज़र मोहम्मद के पास ये एक यू नो रिकॉर्ड है जो कि आई मीन ये रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली जो पहली दफ़ा कोई करता है तो उन्हीं के नाम रह जाता है, एंड नज़र मोहम्मद जो है ये एक रिकॉर्ड होल्डर हैं। वहीं लाला अमरनाथ अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी स्कोर किया था। लाला अमरनाथ की फैमिली में क्रिकेट ही क्रिकेट है, मोहिंद्र अमरनाथ सुरेंद्र अमरनाथ ये दोनों बेटे उनके इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एंड दैट्स एन अ मार्वेलस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड क्रिकेट। और साथ ही साथ अगर बांग्लादेश की बारे में बात करूँ तो बांग्लादेश को जब ICC टेस्ट स्टेटस मिला था सन 2000 में तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने एक सेंचुरी स्कोर करके इंडिया के अगेंस्ट में, दैट मैच वाज हैपेंड एट अगेंस्ट इंडिया, तो उस मैच में अमीनुल इस्लाम ही स्कोर अ सेंचुरी, यानी बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है, परसों मुलाकात होगी इट्स अ गोल प्रोग्राम में। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं हमेशा कहूँगा, स्पोर्ट्स को अपनाइए, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाइए, पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, पार्टिसिपेशन मैटर्स अ लॉट, और क्योंकि स्पोर्ट्स इज

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 1:31।
4: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर,
5: एनर्जी आर
4: आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
5: दिल से देसी।
6: राइट दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर सर्वर और नाजिया। हम दोनों
3: कैसी नाजिया करियर से? कल तो आपने बहुत माशाल्लाह रंग जमाया महफिल में, मैंने सुना
6: माशाल्लाह। कल तो मैं बहुत खुश थी।

0: हाँ नहीं, मुझे सुनने में भी आया और मुझे पता भी चला. तो क्या वजह थी एक्चुअली उसके पीछे खासम खास ऐसी इतनी खुशी की आपकी, जो आप खुशी से फूले नहीं समा रही हैं अभी तक?
1: फूलते तो आप हैं, मैं तो बस समा गई सही से.
0: हाँ तो क्यों क्यों क्या वजह थी?
1: उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग किसी की आमद से खुश होते हैं और कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की गैर
0: जामत से खुश होते हैं. क्या चेयर सुनाया आपने, तो इसका मतलब ये कहना चाहती हूँ कि
1: बहुत ज्यादा जो है वो फायदा भी उठाते हैं. और सर में दर्द भी होता है.
0: आपने ये बात मेरे लिए नहीं कही, अगर ये सबके लिए कह रही मैं ना दिया, कबीर साहब, महवेश, सफा, फजील और भी और कौन कौन है हमारे पास, जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं.
1: सब में आप ही आते हैं. सब ठीक है, मतलब आप ठीक है, आपको एक नहीं हमें काम.
0: बहुत अच्छे यार, मुझे यही उम्मीद थी कि आप मेरे लिए कभी ऐसा नहीं कहेंगी. और ये जरा नवाजी है, ये मोहब्बत है आपकी, अब इसमें क्या कहा जाए भाई. बहुत बहुत शुक्रिया नादिया.
1: नहीं ये बताइए आपकी वसूली कैसी रही?
0: वसूली
1: तो कल आप वसूली के लिए नहीं कहते.
0: अच्छा कुछ और भी तोहमतें और इल्जाम लगे हैं, इसका मतलब मेरे पीछे
1: हैं. नहीं नहीं नहीं नहीं, आपके बारे में मैंने कहा कि आप वसूली
0: भाई, वसूली भाई याद आ गए.
1: तो लोगों ने पूछे किस बात की वसूली, मैंने कहा वो दावतों की वसूली. वो कह रहे थे सर्वर भाई कि सारी दावतें एक्सपायर हो जाएंगी, आउटडेट हो जाएंगी.
0: मैं जुड़ा था मगर तकरीबन एक 15-20 मिनट के लिए, आखिर में जब प्रोग्राम ही एक्सपायर होने वाला था जब ही जुड़ा था मैं.
1: तो मतलब खा पी के आप जा रहे थे?
0: हाँ मैं वापस लौट रहा था उस वक्त जब मैंने आपको सुना था, आप तारीफ के पुल बांध रही थी.
1: तो माशाल्लाह वो तो मैं आपकी भरपूर करती
0: हूं. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, मोहब्बत नवाजिश करम. तो भाई फिलहाल आप भी हमारी और नाजिया की तारीफ के पुल बांध सकते हैं और वो कुछ आसान से तरीके हैं उसके, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. आप 666-22-107 पे आप मैसेज कर सकते हैं. और वहीं कॉल करने के लिए क्या करना नाजिया?
1: बिल्कुल, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 4434377.
0: हम आप FM 107 आपका और हमारा साथ, क्या है हमारी बात और ये इनकी सुनेंगे बात. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक
0: भाई हैं हमारे साथ. यस अहलन व सहलन तौफीक भाई, कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, कल आपकी तारीफ बहुत सुना यार, बहुत बहुत सुना तारीफ आपकी.
0: कल मेरी बहुत तारीफ सुनी आपने यही इसी प्रोग्राम में? नाजिया के जरिए.
2: और नाजिया बहन बहुत खुश भी थी, बहुत बहुत खुश थी, पहली बार मैंने खुशी देखी.
0: अल्लाह ताला इनकी खुशी पे नजर जो है वो किसी की ना लगे, बरकरार रहे. और
2: अच्छा
0: मगर
2: एक बात बोलूं,
0: हाँ
2: कितने घरों में दावत के लिए गए, ब्रेकफास्ट दोपहर रात को कितने बार?
0: यार 3-4 ही घर निपटा पाया तौफीक भाई, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब हो नहीं पाएगा, पेट ज्यादा भर गया, कम कम खाना चाहिए था. अरे कम कम भाई याद आ गए, कम कम भाई वेयर आ रही हो यार, याद आ गया. आप देखिए
2: आपका पेट भरता है क्या? वो तो मशीन है, जूस का मशीन है.
0: मैं और कुछ नहीं कह सकता. तौफीक भाई कैसे, खैरियत से हैं और तबीयत कैसी है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: रब्बिल आलमीन. अभी अभी सुबह हुई है लग रहा है, एज यूजुअल बिस्तर पे खुलते ही एफएम 107 को याद किया.
2: नहीं वो तो 6 बजे से याद किया हुआ है.
0: अच्छा से पिछली बार ऐसी कुछ हो रहा था ना, आवाज भी ऐसी हो रही थी. चलिए अच्छी बात
2: है, तो मैं आवाज चेंज किया था ना इसलिए.
0: अच्छा कितने की लगवाई थी वो वाली? मैं समझ गया. तो भाई नादिया क्या कहती हैं तौफीक भाई से, आज के मौजू का भी आगाज कर दिया जाए, शीशा छोड़ दिया जाए. अच्छा इधर है क्या
1: मौजू आपके बगल पे?
2: देख लो
0: डेट सही है आज.
1: अभी इन्हें समझने में, अच्छा खुद ही बना के लाते हैं फिर भी समझने पढ़ने में बड़ा वक्त लगता है.
0: आज हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करने वाले हैं और वो ये कि जो सोशल मीडिया की फेम है उससे आप कितना खुश हैं. क्या कह रहे हैं?
2: बादाम खाया करो थोड़ा, खुद ही लिखा ही भूल जाते हो.
0: हाँ नहीं तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से जो उस पे फेम मिल रही है, क्या आप चाहते हैं कि आपको लोग पूछें और उस पे आपको देखें और आप उस पे अपना कंटेंट डालें और आप मतलब बस उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है आपकी जिंदगी में या कितना आप इस चीज को चाहते हैं? क्या आप चाहते भी हैं या नहीं चाहते?
2: बिल्कुल मैं, ये तो मेरी जिंदगी है, मैं चाहता हूँ.
0: नादिया सुन रही
2: है, मारू हंसू सब चीज, साथ खाएं बैठे चाय पिए, आपके साथ किया ना सब कुछ ऐसा सबके साथ.
0: अच्छा नहीं वो तो ठीक है दोस्त वगैरह आपके बने, बट सोशल मीडिया पे जितने भी
2: क्यों नहीं जितने भी हो सबके साथ मेरे भाई जैसे दोस्त हो करना चाहता हूँ,
0: करना चाहते हैं तो फेम भी हासिल करना, कहीं ना कहीं आप पॉपुलर होना चाहते हैं, आप मशहूर होना चाहते हैं।
2: हाँ ना आपने मुझे हीरो नहीं बोला था उस दिन, भूल गया।
0: मैंने हीरो का अच्छा मैं वहाँ कहीं कुछ भूल गया अगर ऐसा भी है।
1: अच्छा
0: अच्छा ही है, चलिए तौफीक भाई हीरो हो गए तो बड़ी अच्छी बात यार, बड़ी ही सच्ची बात। तौफीक भाई
1: हीरो तो है, तौफीक भाई से तौफीक भाई मिले तो है।
0: अरे ऑलवेज अ हीरो एंड
1: वंस अ हीरो
0: ऑलवेज अ हीरो तौफीक भाई, अपना ख्याल रखिए।
2: पराठे देखो भेज दिया हुआ है।
0: अच्छा फोटो भेज दिया होगा आपने, अभी देख लेते नाजिया को खिला देता हूँ फोटो में निकाल के। बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक भाई आज प्रोग्राम के आगाज में ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे इसी तरीके से, आपकी सारी परेशानियां दूर हों। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: तो दिस इज तौफीक भाई, और कहते हैं कि भाई बड़ा शौक है मुझे, मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर होना चाहता हूँ, जिस तरीके से नाजिया मैम भी इस
1: होना चाहती हैं। आपकी अटक गई।
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
0: अहलेन कौन है हमारे साथ?
3: पहले एक बात बोल दीजिए।
0: क्या कह रहे हैं? पहले एक बात बोल दूं?
1: एक बात बोलेंगे,
0: चलिए एक ही बोलिएगा। तो यहीं पे एक बात हो गई भाई, और ये कुछ बोलती नहीं कह रहे तो अब आगे बात हो नहीं पाएगी लग रहा है, ऐसे ही है क्या? नहीं
3: कल आपकी नाजियाबान बहुत बुराई कर रहे हैं।
1: अरे कब करी मैंने, बताइए सर कब की बताइए।
0: सारे पर्चे
1: बताइए।
3: सर्वर भाई का सर्वर डन हो गया।
0: आए हाय हाय।
1: अरे ये तो मैंने मैसेज पढ़ा था, किसी ने लिख के भेजा था तो वो पढ़ दिया था मैंने।
0: नाजिया आप मेरे पीठ पीछे ये चल रहा था
1: ये तो मैं मुंह पे भी कह देती।
0: अच्छा तो चलिए भाई,
1: मुझे पीठ की जरूरत नहीं है,
0: इनको इतनी मैंने छूट दे रखी है, कोई बात नहीं, इन पे इनके साथ ये मसला कोई है नहीं, हलाल है इन पे, कोई मसला नहीं, ये कर सकती है इतना। जब अरे भाई जरूरत जब तो हो रही है, जरूरत कब की जाती है बताइए, जब कह रही हो।
1: हाँ ये कितना अच्छा सवाल है
0: आपकी,
1: जरूरत कब होती है, जब शेयर दी जाए।
0: बनाएंगे इसका भी, बनाएंगे ये भी टॉपिक आप लोग की तरफ लाएंगे। तो नसीम भाई क्या कहते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, कितना मशहूर होना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, या बिल्कुल नहीं है, शौक है नहीं है आपको?
3: नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है,
0: ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होना चाहते, मशहूर ही नहीं होना चाहते।
3: मैं अपना फोटो भी नहीं डालता।
1: फोटो भी नहीं डालते,
0: उसके पीछे वजह क्या है?
1: नहीं चाहते।
0: फोटो खिंचवा नहीं पाए कभी, क्या था मतलब, पुराना है फोटो?
1: खिंचवाया है लेकिन डाल नहीं पाए कभी,
0: वक्त नहीं मिला अपलोड करने,
1: हाथ नहीं पहुंचा।
0: बताओ तो नसीम भाई कुछ तो बताओ, कितने सवाल हमने डाल दिए, एक दर्जन?
1: मैं कुछ नहीं कहूंगा, बोले मैं चुप रहूंगा।
0: फोटो से भी ये कह दिया जब वहाँ पे अपलोड करने का आया ऑप्शन, कह रहे मैं नहीं अपलोड करूंगा, इसीलिए आज तक अपलोड ही नहीं किया।
1: वो फोटो खड़ा है, कह रहा है मैं अपलोड कर दो, चला
0: कर दो भाई हाँ, किसी तरीके से। चलिए साहब अच्छी बात है ये भी तो। नसीम भाई इसके दूसरी तरफ
3: जवाब मैं देता हूँ।
0: अच्छा शायरी में,
3: किसी को नफरत है मुझसे, किसी को
0: लंबा है
3: और कोई प्यार करके बैठे है, किसी को यकीन नहीं है मुझ पे, कोई एतबार करके बैठा
0: है। ये देखिए क्या बात है,
1: क्या लैंडिंग हुई है,
3: कितनी अजीब है दुनिया।
0: हाँ और भी है, और भी है भाई, जल्दी क्यों निकाल दी हमने, कितनी अजीब है दुनिया।
3: कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार करके बैठा
0: है। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय। मैं कुछ नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
1: अब बाकी कुछ नहीं,
0: अब कुछ कहने को रह भी नहीं गया। बहुत अच्छे साहब, बहुत बढ़िया, और आपने अपना पूरा इजहार किया शायरी में अपनी, और सही है, अच्छा है, दोनों ही पॉइंट मिल गए हमें, दोनों शुरू के कॉलर्स ने दोनों ही चीजें अपनी बता दी अलग अलग, एक दूसरी तरफ, दूसरे दूसरी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भैया क्या आप भी सोशल मीडिया के जरिए मशहूर होना चाहते हैं, या मेरी तरह कहीं एक कोने में खामोशी से पड़े रहना चाहते हैं?
1: सरवर मिर्ज़ा आप हो खामोश।
0: ये तो अखबार हैं जो हमें बदनाम कर देते हैं नादिया, वरना हमें कहाँ शुक्र। अभी अभी बनाया देखिए मैंने, आहा क्या शायरी हो रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं आप?
0: मेरे ख्याल में जावेद भाई हमारे साथ हैं, है नादिया?
1: लग तो रहा है। पहले तो मुबारकबाद दो।
0: अच्छा क्या कुछ खास खबर?
1: खास खबर की?
0: अच्छा ये हमें नहीं मालूम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये भी नहीं मालूम कि यहाँ पे कहना है या नहीं।
1: हम लोगों को मिठाई भी मांगनी चाहिए।
0: नहीं मिठाई, मिठाई से क्या मतलब है? दावत देंगे
1: वो मिलेगी नहीं आपको।
0: अच्छा चलिए भाई मिठाई
1: आप अभी वसूल करके।
0: जावेद भाई कहाँ किस बात पे माने?
1: अब ये बताएंगे जावेद भाई खुद।
4: अच्छा पहले तो मैं जरा सांस ले लूं, जरा
0: लीजिए बैठिए बैठिए, पानी वानी पानी पिलाओ नादिया जी।
4: अच्छा बात यह है कि नादिया आप कैसी हैं, सरोर भाई आप कैसे हैं?
0: मोहब्बत मोहब्बत भाई और आपका इंतजार और वो मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला।
4: मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तौफीक भाई की मैं कॉल सुन रहा था, उन्होंने मुझे भी पराठे भेजे, परसों भी तस्वीर भेजी पराठों की मुझे माशाल्लाह उन्होंने।
0: तो ये गायबाना पराठे जो हैं सोशल मीडिया वाले पराठे, ये कब तक भेजते रहेंगे? तौफीक भाई कभी असली भी खिला दो जावेद भाई को और हमें भी इंशाल्लाह ताला।
4: नहीं बहुत उन्होंने इंसिस्ट भी किया हुआ है और बहुत दफा उन्होंने कहा।
0: अच्छा अच्छा क्या कह रहे हैं, सर्वर को साथ में लेके आइए
1: जी? नहीं
4: नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नाजिया ऐसा जरूर ना ढाए। सरवर भाई आपके बगैर तो महफिल मतलब वो दिखेगी नहीं।
0: मेरा भाई कैसा ये म्यूजिक अलग से जावेद भाई के लिए। अच्छा तो
1: दावत के लिए वैसे जावेद भाई क्या कर सकते हैं?
0: जैसे नादिया ने खबर दी है तो ये हम क्या जान सकते हैं या नहीं जाने भाई?
4: बिल्कुल मेरे ये मेरे फैमिली का हक है पूरा, मुझे बल्कि जानना नहीं बल्कि मुझे झिझोड़ के
0: बताना है,
4: पूछने का हक है आप सबको।
0: वाह
4: तो वो ये कि वो मतलब है कि मेरे जो छोटा बेटा है उनकी शादी थी।
1: ठीक है माशाल्लाह।
0: वाह वाह वाह, तो इसी सिलसिले में आप
1: मसरूफ थे?
0: मसरूफ और गए भी थे कल पिछले दिनों?
4: नहीं नहीं नहीं शादी यहीं पर की है, मतलब एक टूरिस्ट एंड क्राउन प्लाजा में यहाँ पर ही दो इवेंट्स किए हमने
1: माशाल्लाह।
4: और आज तो फिर मुझे दोबारा चांस मिल गया क्योंकि अभी आधे घंटे के बाद मीटिंग है, तो मैंने कहा कि चुप कॉल में आ लेता हूँ, अदरवाइज आपको पता मैं अवेलेबल नहीं होता इस वक्त।
1: और
4: हाँ 17 को इंशाल्लाह मैं ट्रेवल कर रहा हूँ मैं।
0: अच्छा फिर जा रहे हैं?
1: अच्छा
4: पाकिस्तान जा रहा हूँ, मतलब अपनी वो छुट्टी काफी 8 माह के बाद छुट्टी जा रहा हूँ।

0: क्या क्या ख्वाहिशात है
1: भाई, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है,
0: क्या क्या ख्वाहिशात है, देखिए
1: भाई मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, देखिए आ गया लग रहा है।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी, देसी।
0: हाँ जी, वेलकम बैक, हेलन व सेलन हुई हम दोनों की वापसी और यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं नाजिया, उसके साथ वेदर का हाल और फिर बातचीत भी जारी रहेगी। तौफीक भाई जुड़ गए हमारे साथ, कॉल पे भी दिए सर्वर नाजिया अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ पर पराठों के उनके फोटो। शहजादा सलीम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कहें अस्सलाम वालेकुम, हो सकता है कॉल जरूर करूँ? शहजादा सलीम बिल्कुल करिए, और इंशाल्लाह ताला नहीं होगी तो हम कर लेंगे। सर्वर भाई कल आपके नाम की तारीफ हुई है
1: बहुत, लगाइए भाई,
0: ये कौन है, कौन है, कौन है यार, नाम भी तो लिखा करिए। मोहम्मद है हमारे साथ, ओके यहाँ पर वॉइस नोट है, एंड हम अदील है हमारे साथ, अदील भाई यार सुन नहीं पाऊंगा अभी, इंशाल्लाह ताला ब्रेक होगा तो सुनेंगे। नाजिया वसुलू भाई आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून, एमबीबी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, किफ हाल एमबीबी अंता कोइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, गुड आफ्टरनून नादिया जी और सरूर भाई, कैसे हैं आप दोनों, होप वेल, वेलकम टू एनर्जी आर, दिल से देसी। यूसुफ खान हमारे साथ ट्यूसडे आफ्टरनून सबको विश करते हुए कहते हैं, कल सरूर भाई कहां रह गए थे, आपके फैंस याद कर रहे थे। यूसुफ भाई क्या बताऊं मैं, इन्होंने लॉक लगा लिया था स्टूडियो का, दरवाजा बंद कर लिया था, और चाह ये नहीं थी कि बोलेंगे एक दिन तो मैं अकेले करना चाहती हूँ प्रोग्राम। मैंने ठीक है भाई आप करिए, मगर फिर भी मैं कोशिश करी, मैंने उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, कल से कहाँ गायब थे, निहारी देखची में सड़ रही है। ओके नहीं देख रहा आजकल, तबीयत तो ठीक है आपकी। हमारे साथ तारिक जमील साहब, अल्लाह ताला इनको सेहतियाब रखे, शेख इरफान कासमी साहब, इरफान भाई, इरफान भाई आपसे मुलाकात जहाँ मेरी हुई थी वहाँ मेरे कभी कभार आना होता है, तो इत्तेफाक से उस दिन मेरी आपसे मुलाकात हो गई थी। ये मेरा ये बैग कैसे जाते हैं इसमें, जरा सा करिएगा वापस, कैसे जाते हैं?
1: ये तो हालत है
0: हमारी, समझ तो ऊपर हो गया, हमारी तारीफ से आगे निकल गया,
1: देखिए आपकी इतनी।
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम,
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, और जनाब खैरियत से हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारे साथ जैस भाई हैं या तला भाई हैं?
3: जी भाई
0: जैस भाई हैं
3: जी।
0: कैसे हैं जैस भाई, खैरियत से?
3: बस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। अच्छा हुआ भाई साहब कल नहीं आया
0: है ना।
1: मतलब क्यों, क्या मुझे तो पता ही है इसलिए नहीं आए।
3: सरवर भाई देखो सबको, जितने भी कॉलर थे ना सबको बोल रहे हैं, देखो आज मैंने सरवर को कैसे चुप करा दिया, कैसे बिठा लिया।
0: अच्छा ये भी कहा गया है, अच्छा बैठे हुए है और खामोश करा दिया। यार ये कैसे पॉसिबल,
1: हमेशा कहा है कि जब सोचो अच्छा और बड़ा सोचो, तो मैं सोच ही रही हूँ तो मैं उसमें भी कंजूसी करूँ, तो मैं बड़ा सोच रही थी।
3: इतना बड़ा सोचो कि बड़े
0: यार, मुझे सोचना है तो फिर सोच भी बड़ी रखनी पड़ेगी।
1: बड़ा
0: जी आपने जो कल मेरी तारीफ के पुल बांधे,
1: लेकिन मैंने जो कंट्रोल किया था आपको सिर्फ एक छोटे से क्लिक से।
0: अच्छा मुझे कैसे, मतलब यहाँ पे वॉइस नोट चल रहा था।
3: सरवर भाई किधर है, सरवर भाई किधर है, सरवर भाई को चुप करा के बिठा दिया, सरवर भाई को

0: बिरयानी खिलाने भेज दिया, बिरयानी ठंडी हो रही थी।
1: यही आज इन्होंने कल मेरी तारीफ, हम मैंने सुना है ऐसा कुछ, मैं इसका हिसाब चुकता करूंगा जरूर इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के बाद, बस मैं गवाही लेना चाह रहा था। तो अब गवाही मिल गई है तो अब गुना भी सर नहीं होगा अगर एक आध मेरे हाथ से,
2: अभी मेरी तरफ से भी तो एक दो लोग आएंगे,
1: जाया भी हो गया कोई तो। मैंने बताया ना दो गहरी लकीरें हैं, एक सुबह वाले की वो आता है जो कितने 6 बजे से 9 बजे तक, और एक इनकी।
0: अच्छा वो कल एक चीज और है भाई साहब, कल कैम होने वाला था आपके साथ नहीं आया, अच्छे वो बच गए।
1: अच्छा क्या था ऐसा, क्या
2: ये भी ना
1: क्या क्या कर दिया,
2: आग लगा
1: दिया एक दिन में, क्या क्या कर दिया
2: भाई आपने, कॉल ही आग लगाने के लिए की क्या? टॉपिक इनसे टॉपिक से कोई लेता नहीं,
1: कह रहे जी जी जी जी
2: मैं आए ही आग लगाने, भाई आप
1: ओह माय गॉड
2: क्या खाते क्या
1: नहीं, वैसे आप कामयाब रहे और मैं इंशाल्लाह जरूर बदला लूंगा इस बात का, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। चलो खुशी हो गए, तो क्या कहते हो जैस भाई,
2: मतलब दूसरों का तकलीफ देके आग लगा के आपको अच्छा लगता है?
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बस तारपीन के तेल का काम करते हैं, उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करते, आग नहीं लगाते, उसमें थोड़ा सा घास ले तारपीन का तेल, जो चीज सस्ती मिल जाए वो लेके डालते हैं, आप देखिए वो अंगारे वो शोले भाई क्या बात।
2: अच्छा उसके बाद इन्होंने सीखे भी अपनी तैयार कर रखी हैं,
1: उसमें बारबेक्यू भी होता है। अच्छा अच्छा है, तो जैस भाई क्या कहते हैं सोशल मीडिया के हवाले, मुझे लगता है जैस भाई सोशल मीडिया पे
2: हैं।
1: हाँ,
2: है, जैस भाई कह रहे हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं टॉपिक से, मैं तो आज नया काम हो गया।
1: तो क्या कहते हैं जैस भाई, जाते जाते हम बताइए कितने ज्यादा आप मशहूर होना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या कितनी
0: नहीं, ज्यादा नहीं भाई सब थोड़े रहे, बस अपने जान पहचान के लोगों के दरमियान रहे तो वो ही अच्छा है।
1: ये भी तो एक कैटेगरी है ना जो सिर्फ राब्ते के लिए सोशल मीडिया के ऊपर है, कि
2: इनका दिल ही बस आपस में ही लग रहा है, कहने का मतलब है कि आपस में आग वाग लगाओ दूसरे की समझ जाओ।
1: अच्छा खुद ही चला,
0: अरे नाजिया बाजी आप मैसेज देखना, मैंने आपको मैसेज कर रखा ना, मैं और ज्यादा आग लगाऊंगा उधर जाके।
2: अरे भाई मुझे यकीन है आप लगाएंगे ही लगाएंगे।
1: नहीं नहीं आपको कोई मैसेज कर रखा आपने, वो नहीं चेक करा, वो मैसेज चेक करिए पहले, कह रहे हैं उसके हिसाब से
2: कह रहे हैं कि मैं आग लगाऊंगा, दोनों तरफ बेफिक्र रहिए, इधर भी उधर भी
1: लगा दो आग चिलवन में। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया जैस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, और आप बड़े अच्छे नेचर के आदमी हैं, इसी तरीके से रहिए, दूसरों को खुश रखिए और इसी तरह
2: चिंगारी लगाते रहिए।
1: चिंगारी लगाते
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेली लगाऊंगा, टेंशन मत लो।
1: वो जो सुबह एक आते हैं ना भाई साहब, उनसे जरा मेरा और नादिया का सलाम पहुँचाइएगा खुसूसी, ठीक है?
0: बिल्कुल
1: खुसूसी कहिएगा कि वो नाजिया और सरोना आपको खुसूसी सलाम पहुंचाया है, बस उनके आटा खत्म हो गया है। तो अब आगे आगे वो खुद बताएंगे क्या करना है, ठीक है?
0: नहीं हमने हमने जो है ना एक बैंक स्टार्ट कर दिया, अगर बताओ सेविंग वेविंग करनी है तो बता दियो भाई साहब।
1: क्या बैंक स्टार्ट कर दिया?
2: बैंक ने ले रखा है
1: ये बात मैं ऑन एयर नहीं कर सकता।
0: बता दियो
1: है,
0: अरे बता दियो हमने, कबीर भाई ने जो है ना बैंक चालू कर लिया।
1: वाह यार बहुत पैसे आ रहे हैं, कबीर भाई लग रहा दोस्ती करनी पड़ेगी, दुश्मनी
2: लकीर मिटाओ, लकीर मिटाओ।
1: चलिए भाई जैस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत नवाजी, बात तो करने का दिल करता है बहुत, बट वक्त की भी कमी रहती है और दूसरे लोग नाराज भी होने लगते हैं।
2: हाँ।
1: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये थे जैस भाई हमारे साथ, और यहाँ पर
2: बात है ना टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं,
1: नहीं उन्होंने कहा मैं दरमियानी, ये भी एक कैटेगरी निकल के आई, रास्ता अख्तियार करता हूँ कि बस सलाम दुआ और जो कनेक्टेड रह सकते हैं मुझसे वो लोग कनेक्टेड रहे, बाकी उनका कोई इसके पीछे स्वार्थ नहीं है कि वो मशहूर हों और मजीद या इसके अंदर कोई और चीज मिले। सरोज भाई कल से, अच्छा ये तो हो गया भाई, भाई कैसे कहा गायब थे, अच्छा ये तो हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आज आए आपके लिए, अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई, अदील ये भेजा है।
2: वाह खाना,
1: खाने में क्या था ये तो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई, वी आर मिसिंग यू स्पेशल, प्लीज टेक केयर, हैं अल्लाह रहम करे। मकसूद भाई अभी तो मैं हूँ, अभी भी मिस कर रहे हैं, मतलब बात सुनते हुए भी, मुझसे करते हुए भी, कहते हैं ए वल्लाह मुबीन बुखारी क्या कहना चाहते हो भाई, आज मत लग आग मत लगवाओ, गर्मी हो रही है। आसिफ हमारे साथ और यहाँ कोई हमारे साथ जुड़ गया, ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात भी कर लेते हैं।
2: हाँ जी हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम
2: अस्सलाम,
3: कैसे हैं।

0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: भूल गए भूल गए ना मैं कह नादिया और और और
0: भाई सरवर उन्होंने कहा
1: और अच्छा कहा सरवर
2: भाई
1: कैसे हैं आप और कौन है हमारे साथ
2: मैं अब्दुल समद बात कर रहा हूँ
0: अब्दुल समद
2: फर्स्ट टाइम आप लोगों से बात कर रहा
1: हूँ ओह यार देखो ये मोहब्बत है
0: अब सुन लीजिए उनकी बात
1: अच्छा नहीं मैं तारीफ तो कर दूँ मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि अब्दुल समद से पहली बार बात हो रही है यार मुझे अभी भी नहीं लगा
0: अभी हुई कहाँ है बात अब होने वाली थी
1: अब्दुल समद
0: चले गए डर गए
1: जी समद भाई यार कैसे हैं यार और कहाँ थे यार मतलब इतने दिनों बाद क्यों
2: बस सुनता था आप लोगों का प्रोग्राम पर कॉल बहुत मेरे ख्याल में उनके क्या नाम है दूसरी जो है उनके साथ मेरे ख्याल में बात हुई है जो पहले आप लोगों के शेड्यूल चेंज हुआ है ना मेरे ख्याल में
0: जी जी पहले तो मॉर्निंग में तो मैं थी
2: अच्छा
0: सफा
1: अरे वो उनके सर पे चोट लग गई उनके सर पे चोट लग गई चलते फिरते अभी वो दस बजे मेरे ख्याल में सफा की बात कर रहा हूँ अच्छा आपसे बात हो चुकी है तो चलिए इस प्रोग्राम में पहली बार आमद हो रही है भाई मोस्ट वेलकम समद भाई कहाँ हैं अभी किस तरफ हैं आप पहले तो ये बताइए
2: मैं हूँ अलरियान
1: में अच्छा सब ट्रैफिक वगैरह सब सेट ऑल ओके
2: जी अभी
1: आपकी सेहत तंदुरुस्ती और जॉब वगैरह सब ओके रिपोर्ट है ओके रिपोर्ट है चलिए साहब एलन और सैलन तो क्या कहना चाहते हैं आज के मौजू के हवाले से
2: सोशल मीडिया मेरे ख्याल में तो जो यूज करता है और जो भागना चाहता है वो अब भाग नहीं सकता जो यूज करता है वो अब मजबूरी में कर रहा है
0: जो है वो मजबूरी में यूज कर रहा है कह रहे हैं और ऑप्शन नहीं मजबूरी है सबको आना ही आना है सोशल मीडिया दिस इज
2: व्हाट भाग नहीं सकता सोशल मीडिया क्योंकि ये
1: तो मसला ही नहीं है फिलहाल अब्दुल समद भाई हम ये पूछ रहे हैं कि अपनी ललक होती है चाहत होती है आप कितना उस पे मशहूर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे
2: नहीं मैं बिल्कुल इस चीज में बिल्कुल मेरा ये नहीं है मैं बस एज ए देखने का है भाई यहाँ चल के आ रहा है वो उतना तक अच्छा, बस है
1: अच्छा
2: कनेक्ट रहना है दुनिया के साथ चल के आ रहा है
1: कनेक्ट रहना है, मगर खुद, है। खुद की कोई ख्वाहिश नहीं है चलिए ये भी अच्छी बात है
0: ये भी बड़ी बात है
1: ये भी अच्छी बात है चलिए साहब और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं कहना चाहते हैं
2: बस शेयर ये करना चाह रहा आप लोगों का जो पहला शो था ना क्या कहते हैं एक तरीके का शेड्यूल था ज्यादातर रिपीटेड प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल
1: रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप शायद कभी आपने सुना होगा तो वो रिपीट होते हैं हफ्ते में दो बार
0: लेकिन हमारे सारे नए शोज हैं जितने भी हैं
1: नए शोज भी हैं और वो रिपीट भी होते हैं हफ्ते में समझ भाई माइट भी कुछ पहले के सीजन के भी आपने सुने हो वो कभी कभार फिल करने के लिए वो भी चलाए जाते हैं ऐसा ही है नहीं मैं आपको बताऊं कि क्या है आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप हमारे वेब एड्रेस पे जा सकते हैं विच इज www.urduradio.qa यहाँ पर जाने के बाद आपको तमाम मालूमात जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं और सब हमारा सीजन चेंज ही इसी वजह से होता है कि खूब सारे प्रोग्राम होते हैं हमारे पास साल में अलग अलग नौइयत के प्रोग्राम जाने होते हैं तो वो सीजन चेंज भी हर 3-4 महीने में इसलिए हो जाता है ताकि नए प्रोग्राम आए और बोरियत ना हो और नए शफल भी किए जाएं प्रोग्राम में आरजे वगैरह तो आप हमारी वेब एड्रेस पे जाके ये तमाम चीजें देख सकते हैं
2: आप दोनों का और आपके दोस्त कबीर भाई का देखना और सुनता हूं
1: अच्छा ये तो आपकी मोहब्बत है भाई अल्लाह ताला आपको और वक्त दे के आप दूसरे प्रोग्राम भी सुने हम सभी की कोशिश यही रहती है कि आप लोगों का अच्छा वक्त गुजरे और कुछ ना कुछ हमसे आप सुने और आपसे हम सीखें तो कोशिश तो ये रहती है तो समद साहब खैर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम सुबह और दोपहर में अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह आप वक्त निकाल सकें हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समद भाई और आगे भी कनेक्ट होते रहिए ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अब तो समझ साहब से बात करने के बाद हम दोनों यूं गए और यूं वापस आए

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107, टाइम चेक।
2: जी साहब, 2:05 है रहे हैं घड़ी में, जहां पर हम और नादिया आपके साथ मौजूद हैं।
0: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: ये जो हम बता, तो सभी को पता है कि इस वक्त नादिया और सरवर साथ में, हम खुद भी बता रहे होते हैं कि नादिया और सरवर साथ में, बट इस आदमी की जब आवाज मेरे कानों में पड़ती है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मुझे कोई परेशान करे, मुझे कोई सताए।
3: अरे तो मैं हूँ उस वक्त, मैं हूँ।
2: नहीं तो दो लकीरों का काम लेना ना, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं। दो लकीरें। मैसेज या कॉल या वेदर, क्या कहती है नादिया आप? पहले क्या नौशो तनावल फरमाएंगी?
3: सर भाई, आप जो कहें वो ही करना पड़ेगा।
2: अच्छा, तो मैसेज पे आ जाते हैं। चलिए पहले बल्कि वेदर ले लेते हैं, जरा हाल तो बताइए ना भाई।
3: चलिए तो मौसम की बात कर लेते हैं, और आज मौसम कैसा रहने वाला है। ऑफकोर्स सनी और गर्म ही रहेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर काफ़ी बेहतर हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हवा जो है वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चल रही है, और इसकी स्पीड है 15 से 22 किलोमीटर पर आवर की, एंड ह्यूमिडिटी आज अगेन थोड़ा हाई ही है, लेकिन शाम होते होते काफ़ी बेहतर मौसम, जैसे मैंने आपसे कहा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, हल्की हवा भी चलेगी और भी मौसम बेहतर होगा, बारिश के दूर दूर तक कोई भी चांसेस नहीं है। एंड बाकी अगर आप आफ्टरनून में निकल रहे हैं किसी वजह से, तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, डायरेक्ट सनलाइट से बचिए, और अगर पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिए जो पीक आवर्स हैं आफ्टरनून के, उन्हें अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि इस वक्त यूवी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर सन ब्लॉक्स, अम्ब्रेलास, कैप्स हैं, हर तरीके के जितने भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो सारे के सारे आप लीजिए।
2: भाई क्या वेदर आपने सुनाया है, और क्या ही बात आपकी। यूसुफ भाई कहते हैं जैस भाई का कि यही काम था दोनों को आग लगा के लड़ाने का। कहते हैं ना भाई, मैं तो सोशल मीडिया से ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फेमस वगैरह नहीं होना। यूसुफ भाई कह रहे हैं बस
3: भाई, हमारे आप वैसे बहुत माशाल्लाह फेमस हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। कोई है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है हमारे साथ?
4: मंसूरा से बहुत सलाम और आदाब।
3: अच्छा, मंसूरा से। सर भाई आपके
2: पड़ोसी हमारे, और कबीर भाई के पड़ोसी मुदस्सिर भाई हमारे साथ जुड़ गए। कैसे हैं मुदस्सिर भाई, खैरियत से?
4: अल्लाह के करम है, शुक्र है सर। और भाई आप कैसे हैं, और बहन आप कैसे हैं नाजिया?
3: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से हैं, उम्मीद करें आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे।
4: बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का करम है
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
4: सरोज भाई आपने
2: हम लोगों
4: को पागल बना दिया।
2: अजी हाँ, अल्लाह ना करे तोबा तोबा तोबा तोबा। एक तो मेरे साथ बैठी हुई है, आगे कैसे हो ये मामला और कैसे आगे बढ़ गया?
3: हाँ
4: सरोज भाई, बात इतने आपको पता है, पागल बंदा जो होता है ना, पागल लोग वो दो।
2: अरे मैं गिरा हुआ हूँ मैं, यार मुदस्सिर भाई मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो गिरा हुआ हूँ उनसे,
3: खुद से
2: सुबह दोपहर।

0: मेरे साथ है आगे
1: ठीक है फिर ऑलरेडी आप एक बंदे के साथ और काम गुजारा करेंगे
2: क्या कहा
1: नहीं मेरा कुछ नहीं
0: तारीफ कर रहे मेरी
1: सरल भाई मेरा कहने का जो मतलब था वो ये था मतलब बाटा जो बंदा है वो दो दो दो का वो हंसता है एक वो जब कोई बात करे वो ना समझे फिर हंसता है जब वो समझे फिर दो दूसरी जगह हंसता है आप जब हम लोग आपको सुनते हैं तभी वैसे हंसते हैं गाड़ी में आपकी वीडियो आपकी फोटोग्राफ बात ना कर हम लोग वैसे साथ सुनते हैं
2: आपका नाम सुन के ही हंस देते हैं
0: मैं बहुत संजीदा हो गया ये बात सुन के और
2: इसी बात पे गुजर जाए
0: देख रहे देख रहे बर्दाश्त
2: अरे इधर से गुजर जाए
0: यार मुदस्सिर भाई आप लोगों की मोहब्बत है और हमारी कोशिश यही होती है भाई कि ये जो वक्त है इसमें आके जब बोरियत शुरू हो जाती है आदमी का दिन जो है वो भारी लगने लगता है बोझल होने लगता है तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग
2: वजन की वजह
0: फिर शाम तक का रास्ता देखे और
1: आपकी तारीफ आप जो बात कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है मैं हम लोग खुद आपसे ये बात करने जा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं ये हमारी जरूरत है हमारी मजबूरी है क्योंकि हम लोग सारा दिन काम वगैरह करते हैं हम लोग दुनिया से कामों से मुश्किलों से परेशानों से बहुत थके होते हैं ये जो एक घंटा होता है ना ये हमारे इंटरटेनमेंट होते हैं हम इसमें रिफ्रेश हो जाते हैं इसमें हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं थोड़ा सा सुकून मिलता है आप लोगों को सुन के आप लोगों से बात करने के तो ये जो एक घंटा है ना बिली में हम मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ और दूसरा एक मतलब भी है सरो भाई आप लोगों से
0: जी सर
1: सरो भाई आप लोगों से और आपकी जो पूरी टीम है इन लोगों से हमारा एक मतलब है हम आवाम का आप लोग नुमाइंदे हम आवाम है हम आवाम का ये मतलब है कि ये जो एक घंटे इसको बढ़ा देना चाहिए दो घंटे तक ये होना चाहिए
0: नादिया
2: इंशाल्लाह सरवर भाई आपको मिलेंगे पूरे दो घंटे के लिए इंशाल्लाह आने वाले
1: वो तो है वो तो करूँ चाहिए सरवर भाई कि हम 24 घंटे हाजिर है लेकिन
2: अरे अरे रेडियो पे आपको दो घंटे के शो में इंशाल्लाह सरवर भाई मिलेंगे
0: बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आगे अगले सीजन में ऐसा हो सकता है मसला ये है मुदस्सिर भाई के ये सब ऊपर से आते हैं प्रोग्राम्स वगैरह ऊपर से हमारा मतलब जो हमारी अपर चेयर
2: इनके ऊपर से निकल जाते हैं
0: डिजाइन करती है
2: के ऊपर से निकल जाते हैं
0: उसमें हमारा कहीं अमल और दखल नहीं है बस यही कि ये जो हमें टाइम मिल जाता
2: है
0: हम हाजिर हो जाते हैं तो क्या कहते हैं इतनी प्यारी प्यारी बातों के बाद सोशल मीडिया के हवाले से क्या उस पर आपको मशहूर होने का शौक है और उसको इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं कि आप उस पर मशहूर हों और ऑब्वियसली उस पर कमाई भी हो या दूसरी चीजें भी ध्यान में आती हैं इंसान जब ऐसा चाहता है
1: सरल भाई जो भी बंदा बात करता है हमें सच बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए मैं जो बात करता हूँ हमेशा दिल से और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ लेकिन मुझे मैं यूज करता हूँ ऐसा नहीं कि मैं टिकटॉक भी यूज करता हूँ फेसबुक सोशल मीडिया सब कुछ एप्लीकेशन यूज करता हूँ लेकिन बिलीव में मुझे मशहूर होने का फेम होने का कुछ शौक नहीं है मैं जब यूज करता हूँ सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए और थोड़ा सा मालूम के लिए मतलब न्यूज वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे मशहूर हो गया फेम होने का बिल्कुल शौक नहीं है बाकी लोगों का है हो सकता है कुछ लोग मशहूर भी हो गई उसको भी फेम भी मिल गई लेकिन मैं जो सोच है मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ बस इंटरटेनमेंट के लिए और न्यूज वगैरह के लिए मैं यूज करता हूँ
0: बहुत अच्छी बात है और हर तरीके की कहना चाहिए पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं और ये तो हमारे ऊपर होता है कि भाई हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं जो भी टेक्नोलॉजी है या जिस तरीके से भी पहले लोग दूसरे तरीके से मशहूर होना चाहते थे आज दूसरे तरीके हैं बट ये तो अपनी अपनी बात है आप नहीं चाहते हैं ऐसा तो ये भी अच्छा
1: जी जी सर भाग्य रही बात मशहूर होने के फेम होने के वो जो रियल जो बंदा होता है ना जो मतलब रियल का जो बंदा होता है जो हकीकी बंदा जो सच का सच्चा बंदा होता है वो अगर सोशल मीडिया पर जैसी भी हो अगर वो मतलब वो सोशल मीडिया पर भी वही होगा रियल में भी वही होगा उसको मशहूर होने में उसको सोशल मीडिया यूज करने में कोई फायदा नहीं है वो जैसा होगा वैसा ही होगा मैं वैसा बंदा हूँ जैसे मैं रियल में हूँ चाहे मैं सोशल मीडिया इंटरटेनमेंट वगैरह यूज करता हूँ या नहीं करता मैं जैसे हूँ बस वही हो बस
0: बहुत अच्छी बात और बहुत ही अच्छी बातें हैं सारी की सारी बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुदस्सिर भाई वक्त निकालने के लिए और जुड़ने के लिए
1: बहुत शुक्रिया आप लोगों का आप लोग हमने इतना टाइम देते हैं वैसे तो हम इतने बड़े लोग नहीं है आप लोग है बड़े सर वैसे आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर भाई
2: आपसे कह रहे हैं आप बड़े
1: नहीं
0: उम्र में बड़ी है ना तो इसलिए
2: भाई जान ज्यादा बड़े
0: ऑलराइट मुदस्सिर भाई।

0: na thia इतना प्यार इतना प्यार और कहां हम कैसे
1: पेट भर लीजिए अब
0: नहीं भरेगा यार मुझे नहीं लगता ये
1: फिर ये निकलेंगे अगली वसूली
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: ज़्यादा जी आ गए क्या बात है कैसे हैं आप
2: My friend, server sir.
0: My friend. My
2: so many missing you. All studio inside the very silent.
0: खरीदनी पड़ेगी अब खत्म हो गई जितनी थी
1: निकल गई झड़ गई
0: आज सारी की सारी खत्म हो गई सुबह तक की सारी आज ऑफिस में मौका नहीं लगा लग रहा है शहजादा भाई आज कोई मिला नहीं है
2: यकीन करें कल है ना बिल्कुल साइलेंस था पूरा स्टेडियो
0: अच्छा
2: हंगामा हाँ हंगामा बिल्कुल नहीं था और बहुत
0: क्या कहना चाहते हो
1: क्या कहना चाहते हैं मतलब आप
0: मैं कह रहे हैं मतलब शोर शराबा नहीं था ये कहना चाहते हैं मेरी तरफ इशारा है इनका चलो भाई ऐसी बात है अच्छी बात नहीं थी अगर शोर शराबा नहीं था
2: अरे बिल्कुल एकदम से मतलब ऐसा रहा ना कि सरवर भाई के कुर्सी पे बिठा के मैडम ने दोनों हाथ और मुंह पे पट्टी लगा दी हो
0: मैं नहीं था यहाँ पे यार ये गलत वो इन्होंने फैलाई हुई है खबर
2: तो
0: आप यकीन कर रहे हैं इस बात पे
2: बहरहाल यानी आप दोनों की एक मतलब एक जो कॉम्बिनेशन और एक जो जबरदस्त जो जोड़ी है ना इस प्रोग्राम में वन आवर की तो इसको डेफिनेटली है ना बढ़ना चाहिए टाइम बढ़ना चाहिए
0: अच्छा ये वाला मुद्दा लेके आए मुद्दा भाई की
1: आज हम अपना मुद्दा आप बोलिए ही मत साइड में रखिए जरूरत ही नहीं है सर भाई आज जरूरत ही नहीं है
0: अल्लाह ताला भाई आप लोगों को खुश रखे और बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आप हमारे साथ जुड़े भी सोशल मीडिया के हवाले से क्या कहना चाहते हैं शहजाद भाई कितना मशहूर होना चाहते हैं आप उसके जरिए और कितना आपको मशहूर किया है उसने
2: अरे सरोवर भाई और कितना मशहूर होना है 1960 में रिलीज हुई और जब भी नाम मेरा आया तो फिर वापस से नई रिलीज हो गई मुगले आजम
0: वाह वाह वाह वाह ओ माय गॉड अच्छा है स्टार कास्ट में से कोई भी आज हयात नहीं है वरना ये बात सुन के रुखसत हो जाता अच्छा
2: बिल्कुल अभी इतना फेमस जहाँ जहाँ ये नाम पुकारा जाता है वहाँ वहाँ से
0: मेरा भाई क्या कह रहे आप हैं भी इस लायक यार असल में कुछ लोग होते हैं जो इस लायक नहीं होते आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है मैं कर भी रहा हूँ इशारा कोई नहीं देख रहा देख नहीं रहा मुझे
1: देख लीजिए लोग आपकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे
0: माय गॉड चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी बातें शहजादा भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कहाँ है अभी कहाँ तशरीफ फरमा है
2: अभी इस वक्त तो ये भी एकदम कंफर्टेबल होके तो कॉल किया सुबह तो मेरे दो प्रोग्राम तकरीबन मिस हुए कबीर भाई के भी मिस हुए टूटा फूटा सुनने मिला फिर सफा मैम और मैमी मैम का भी ऐसे ही हो गया
0: अच्छा
2: तो देखो मोहब्बत यहाँ तक खींच रहा है आखिरकार
0: मोहब्बत नवाजिश करम अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे और इसी तरीके से आप वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ते रहें बहुत बहुत शुक्रिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चाहता था भाई थैंक यू सो मच
1: अल्लाह
0: हाँ जी नाजिया जी तो क्या कहती हैं आप कॉल ले लूं या मैसेज पढ़ दूं क्या कहती जो आप कहेंगी वो करने के लिए मैं तैयार हूं मतलब मैसेज या कॉल के दरमियान जो भी आप कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं कहते हैं सरोवर भाई आपका निकनेम माइकल है
1: क्या मैं बता दूं
0: जीशान शरीफ है हमारे साथ
1: जीशान शरीफ मैं बता दूं
0: शराफत भरा सवाल
1: बता दूं
0: इतना शराफत भरा सवाल नहीं इसके अंदर भी कोई शोशा होगा मुझे लग रहा है ये काम उसका हो सकता है सुबह वाले का भाई क्या हाल है वैसे आज मौसम बहुत गर्म है 44 डायरीज लिखते हैं आसिफ भाई क्यों 44 डायरी लेके टहल रहे हो यार इसको रद्दी वद्दी में दे दो दो चार ही रखो अपने पास आसिफ भाई सुनो आदा 44 डिग्री है भाई और आसिफ भाई और तमाम ख्याल रखें समद भाई की तरह मैं भी यही सोच रहा था प्रोग्राम के बारे में काफी दिनों से वैद भाई वैद भाई सैफुर रहमान साहब इन सब का प्रोग्राम नहीं आ रहा है इमरान खान साहब एक्चुअली ये लोग अब हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं मतलब जुड़े हुए तो हैं मगर हमारे साथ अब नहीं है दे ऑल मूव्ड फॉर गुड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके साथ खैर आफियत का मामला करे तीनों लोग अब हमारे साथ

0: काम नहीं कर रहे हैं, बाकी जुड़े हुए तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको सेहतयाब रखे, उबैद भाई को भी, वेद को भी, और सैफ और रहमान साहब को भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्त रखे। और जो जो भी जिंदगी है, दुनिया है, लोग छूटते जाते हैं, लोग मिलते रहते हैं, कल को शायद नाजिया भी हमारे साथ ना रहे, मतलब प्रोग्राम में अल्लाह ताला आपको सेहत दे, नाजिया खुश रखे। Oh my God, जरा भारी हो गया था टॉपिक, तो हमने कहा उसको लाइट करा जाए। और ओके, सोशल मीडिया जिस भूत का नाम है उसे मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ, सबका दिमाग खराब कर रखा है, फेमस के लालच देखा कर, फेमस तो क्या नहीं और भाग गया दुख देख के।
1: क्या तोड़ बोल,
0: समझ नहीं क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कासमी भाई
1: ने जो बात की, बात तो सही की है कि है तो परेशानी।
0: सरवर अंकल बिरयानी की पार्टी दे रही हूँ, आइए। कौन दे रही हैं? मोहम्मद दिलशाद हैं यहाँ पर, मगर
1: उनकी बीटी दे रही होंगी।
0: हाँ, मगर नाम तो लिखते यार, दे रही हूँ, आइए।
1: आपको कौन सा नाम से पता करना होता है? आप नहीं, तो घर का एड्रेस पूछिए।
0: हाँ, हमें तो बिरयानी से पता करना, एड्रेस हाँ शेयर कर दीजिए,
1: नाम बताइए, कोई भी हो, एड्रेस बताइए,
0: कोई भी हो। हाय ए के सरवर भाई, बाबू भैया से सीधे बाबू, आई एम मिसिंग यू यस्टरडे सरवर भाई, प्लीज इंक्रीज शो टाइम, मेक इट एटलीस्ट 10 आवर्स। कौन है मकसूद भाई? ये जो बाकी के पैसे हैं वो कौन देगा? इतने पैसों में इतना ही चल रहा है भाई, ये कौन देगा बाकी के पैसे?
1: तो बहुत अनकरीब आप सरवर भाई को जो है वो सुनेंगे।
0: अच्छा, 10 घंटे
1: लंबा सुनेंगे।
0: अच्छा,
1: और सरवर भाई को ही सिर्फ सुनेंगे।
0: कुछ हो रहा है क्या? ऐसा कुछ पक रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह कह रही है अल्लाह तौबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई,
2: क्यों?
0: वालेकुम सलाम, कैसे हैं? हां, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था सलाम वहां तक, बीच में उठा लेती हैं सलाम को। हां भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से हैं। कौन है? मुदस्सर भाई गलबन।
2: जी,
0: एक मुदस्सर जाता है, दूसरा मुदस्सर आता है। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। मैं
2: आपसे ठीक है?
1: जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर भाई, ये नाज़िया मैम कल अपना सिर्फ खुशी मना रही थी और कुछ नहीं बोल रहा था, ऐसे लोग ऐसे।
1: अरे मेरा भाई देखो कितना प्यारा भाई है, आपको मेरी तरफ से बिरयानी, ठीक है, वो भी सरवर भाई को जो मिल रही थी वो मैं आपको पहुंचाऊं।
0: इसलिए मैं कहता हूं कि दिमाग पे असर है लोगों के।
1: असर नहीं है,
0: इशारा भी
1: असर नहीं है। देखिए, ये पहला बंदा, इसने किसी की तरह की आग नहीं लगाई, कितना प्यारा इंसान है भाई।
2: जो आदमी खुश होता है ना वो खुशी मनाएगा ना, वो सिर्फ बोला था कि मेरा खुशी है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये लोग ऐसे,
1: कितना प्यारा शख्स जुड़ा है सरवर भाई, मेरा दिल चाह रहा है बस अब लास्ट हो जाएगी, यही बात करते रहेंगे हम आखिर तक, बस तय कर लूँ अब ये सरवर भाई आखिर तक बात जाएगी। अब बताइए, मैंने कुछ ऐसा वैसा बोला था क्या?
2: मैं तो
1: अपनी खुशी बोल रही हूँ, अब बंदा अपनी खुशी भी ना पता वो जाहिर करे, हद हो गई। देखो कोई आया, मैं चाह रही थी कोई तो गवाही दे मेरी तरफ से, मैं बेचारी मतलब कोई बोल ही नहीं रहा मेरी तरफ से, गवाही नहीं दे रहा है।
2: कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन सिर्फ इतना बोला है कि ये स्टूडियो में बिल्कुल सन्नाटा है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, ये वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। तो मतलब सिर भाई क्या कहते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, मशहूर होना चाहते हैं उसपे आप?
2: मैं कह रहा हूँ कि मैं तो सोशल मीडिया के फेमस तो नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन हाँ सोशल मीडिया यूज करता हूँ,
0: यूज करता हूँ, मगर फेमस नहीं होना चाहता हूँ। उससे उसके जरिए से कुछ कमाना भी नहीं चाहते हैं?
1: नहीं,
2: कमाना वमाना कुछ भी नहीं है ना, सोचता हूँ ना इस बारे में सोचे, लेकिन वो सोशल मीडिया आजकल जरूरी है, लाजिम यूज करना है
0: ना। वो तो खैर चलिए, वो तो लाजिम है, यूज करना है ही किसी ना किसी वजह से। नहीं करना चाहता हूँ इससे, ना मशहूर होना चाहता हूँ, ना इससे आगे बढ़ के कुछ कमाना भी चाहता
1: हूँ। देखो बहुत सरवर भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह नहीं है लालची, लालची नहीं है। देखा देखा, ये बंदा आज पता चला, देखो उस बंदे में लालच नहीं।
0: क्या बात है भाई, मुदस्सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
1: और आते रहिए
0: और सच्ची बात करने के लिए
1: बहुत शुक्रिया। हाँ,
2: मैं एक बात बोल रहा हूँ, बस आपकी दोनों का लड़ाई मैंने खत्म किया, वो बस वो बात छोड़ दो।
0: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह, हॉल में तालियां,
1: आपके लिए तालियां।
0: हाँ वाकई साहब, मिठाई वगैरह भी लेके आइएगा इंशाल्लाह।
1: सीरियस नोट, ऐसे लोगों को हम

0: सैल्यूट करते हैं.
1: ओके बाय सी यू.
0: वैसे सर्वर ऐसे लोग सच में होना चाहिए,
1: होने चाहिए
0: जो बेचारे जिनका कोई लेना देना नहीं लेकिन फिर भी आते हैं दूसरों के बीच सलाह सुलह करवाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी बात है.
1: क्या बात है?
0: हमारी आपकी सुलह नहीं होती वो बात अलग है, लेकिन कोशिश तो की बेचारे अगले शख्स.
1: नाज़िया सुभान है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर्वर भाई. नाज़िया बहन कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैरियत मजे में हो? पैसे का और कोई कमाना चाह, मैं अभी कमाना चाह रहा हूँ लेकिन मशहूर नहीं होना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और पैसे भी कमाना चाह रहा हूँ वो भी हलाल यानी हराम नहीं, और हराम में उन्होंने कैटेगरीज वगैरह आगे बताई हुई है. चलिए खैर हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं.
0: बहुत अच्छा मैसेज है
1: आपका. कहते हैं सलाम दिलबर हमारे साथ. दिलबर दिलबर दिलबर वालेकुम सलाम. नसीम भाई हमारे साथ. सरोवर भाई का नाम, सरोवर भाई का नाम हसमुख है. नाज़िया बहन कहाँ जा रही हैं
0: भाई? अब मैं नहीं बताऊंगी जिससे वहां पे भी कोई आ जाए.
1: हसमुख बता रहे हैं. एक आखिरी कॉल जानते जाते. हेलो सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है भाई? ठीक
1: हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए कैसे?
0: खैरियत से?
1: नाज़िया भी ठीक है, हम दोनों भी ठीक है और नाज़िया भी ठीक है. आप बताइए.
0: आप अपने को दो मानते हैं?
2: लेकिन कल बहुत ज्यादा खुश थी.
1: आज बेचारी खुश नहीं है.
0: कल बहुत खुश
2: थी. कल आप खुश होंगे.
0: हाँ देखा, ये होता है बंदे की पॉजिटिविटी.
1: नाम नहीं बताया भाई ने.
0: मैं भी आज खुश, कल खुश थी. दोनों का उन्होंने कहा
1: कल आज और कल. फिल्म के डायरेक्टर ने नाम नहीं बताया भाई.
0: करण
2: अमान नाम.
1: अमान क्या बात है यार. अमान भाई कहाँ से ताल्लुक है आपका? तो क्या कहते हैं अमन भाई, सोशल मीडिया पे मशहूर होना चाहते हैं और उससे फिर आगे कमाना वगैरह भी चाहते हैं?
0: नहीं
1: सर, नहीं सोशल मीडिया से ना कमाना है ना मशहूर होना. इतने जबरदस्त लोग हैं माशाल्लाह,
0: किसी ने भी ऐसे निगाह की आपको लालच है कि मैं कमाऊं. नाज़िया आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं. देखिए कंपटीशन बहुत कम है.
1: अमीन भाई हम बिल्कुल ठीक हैं. अमान भाई हम बिल्कुल. अमीन भाई याद आ रहे हैं, अभी भी गए थे ना, तो जरा उनका वो रहता है. हाँ जी
2: हमारी दुआ है इंशाल्लाह हमेशा आप लोग.

0: 12 घंटे
1: मकसूद ये आपने इनको कहा था ये मैसेज करने के लिए?
0: नहीं मैं अच्छा। तो जानती नहीं, आपके पड़ोसी हैं, आप दोनों के पड़ोसी
1: मकसूद थोड़ी हमारे पड़ोसी है, तो कोई और ही है।
0: अच्छा कोई और,
1: ये बाकरा में रहते हैं वैसे मैं बता दूं। अच्छा भाई, तो इसी के साथ अब आज हुआ वक्त इजाजत लेने का।
0: हाँ जी, अब हमारा वक्त हो गया कि हम आपसे इजाजत लें, और इंशाल्लाह आपकी हमारी मुलाकात कल होगी 1:30 पर इसी शो में जिसका नाम है NOGR। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सुनते रहिएगा FM 107।
1: इस गाने के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको, स्वारा वर्मा और मिता रोर। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, गुस्सा नहीं होना भाई, इस पे काबू पाने की कोशिश सबने करनी है, इस पे काबू पा लिया तो हमारे न्यारे हैं। और कल तक हमें याद करते रहिए, इंशाल्लाह जब आ जाएंगे तो फिर मुलाकात हो जाएगी।
0: सर मतलब कोई क्यों याद करे आपको।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। अजान हो गई, इकामत शुरू होने वाली है या मस्जिद पहुंचते पहुंचते मालूम हुआ कि जमात खड़ी हो चुकी है। अब दिल में एक ही ख्याल आता है, जल्दी करो कहीं रकात न निकल जाए। फिर कदम तेज हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, दिल घबराहट में आ जाता है। कभी मस्जिद के अंदर भी जल्दी जल्दी सब की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक मुख्तलिफ तरबियत देते हैं कि नमाज की तरफ भाग कर नहीं, सुकून और वकार के साथ आओ। क्योंकि नमाज सिर्फ चंद हरकात का नाम नहीं, ये तो अपने रब के सामने खड़े होने का नाम है और इस मुलाकात की तैयारी भी सुकून के साथ होनी चाहिए। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मुझे न देखो नमाज के लिए खड़े न हों और तुम पर सुकून और इत्मीनान लाजिम है। मकसद ये है कि इमाम को देखकर लोग घबराहट और जल्दबाजी से न उठें, बल्कि रिफ्क

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाईलाइट में आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उन महान और मारूफ खिलाड़ी की जिनका नाम क्रिकेट की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा और एक ऐसा क्रिकेटर जो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता था और एक ऐसा नाम जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कई यादगार लम्हे दिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे रोशन सितारों में शुमार होता है। वो सिर्फ एक बेहतरीन बैट्समैन नहीं थे बल्कि उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनका जज्बाए मुकाबला। मियांदाद क्रिस पर आते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे वो सिर्फ बॉलर का सामना नहीं कर रहे बल्कि पूरे मुकाबले को चैलेंज कर रहे हों। उनका क्रिकेटिंग करियर 1970 में शुरू हुआ और बहुत जल्द उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपनी पहले ही टेस्ट सीरीज में दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान को एक नया स्टार मिल गया है। मियांदाद की बैटिंग में एक अजीब सी रवानी थी। वो टेक्स्ट बुक बैट्समैन जरूर थे लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने अंदाज को फौरन बदल सकते थे। तेज गेंदबाज के खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस और स्पिन बॉलर्स के सामने उनका कंट्रोल देखने का काबिल होता था। लेकिन जावेद मियांदाद की कहानी सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं दोस्तों, उनकी पहचान थी प्रेशर में परफॉर्मेंस, यानी दबाव में। जब पाकिस्तान टीम दबाव में होता था तब जावेद मियांदाद को आउट करना नामुमकिन था और इसलिए उनका नाम 1986 के शारजा के उस यादगार मुकाबले के साथ हमेशा लिया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ओडीआई फाइनल, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, आखिरी ओवर, पाकिस्तान को जीत के लिए 6 रन्स की जरूरत। बॉलिंग कर रहे थे इंडिया के फास्ट बॉलर चेतन शर्मा और सामने थे कराची के फाइटर जावेद मियांदाद। आखिरी बॉल पर 6 रन्स की जरूरत थी, फिर वो लम्हा आया जो क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन गया। चेतन शर्मा ने गेंद डाली, मियांदाद ने शॉट खेला और बॉल बाउंड्री के पार, और ये बाउंड्री यानी 4 रन्स नहीं थे बल्कि ओवर बाउंड्री 6 रन्स, और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। शारजा का वो लम्हा जावेद मियांदाद के करियर का सबसे मशहूर मोमेंट बन गया था। लेकिन मियांदाद की असल खूबी सिर्फ वो एक सिक्सर नहीं थी। उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान के लिए हजारों रन्स बनाए, मुश्किल हालात में इनिंग्स खेली और टीम को कई मर्तबा मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाला। अगर ओडीआई की बात करूं तो उन्होंने 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जो अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड था। 1992 का वर्ल्ड कप भी उनके करियर का अहम हिस्सा था। इट वॉज द एंड ऑफ हिज करियर अगर कहने, अगर वो आखिरी पड़ाव पे थे। लेकिन जावेद मियांदाद थोड़ा स्लो तो हो गए थे लेकिन रन बनाने में चूकते नहीं थे, स्पेशली द चीकी सिंगल्स। आपको समझ आया होगा चीकी सिंगल्स का मतलब ये होता है कि शॉट खेलकर दौड़ना, और इस तरह दौड़ना कि जैसे कि आगे कुछ है नहीं। Used to run for his life, used to run for Pakistan. Pakistan ने इमरान खान की क्यादत में वर्ल्ड कप जीता और मियांदाद उस टीम के तजुर्बेकार और अहम बल्लेबाज थे। और यहाँ पे एक अहम बात यह भी है कि उस वर्ल्ड कप कैंपेन के पीछे अगर किसी का दिमाग चला तो वो था जावेद मियांदाद का। यानी इमरान खान कप्तान तो थे लेकिन इमरान खान ने जावेद मियांदाद को इग्नोर नहीं किया, बिकॉज जावेद मियांदाद का एक्सपीरियंस भी वॉज समथिंग दैट वॉज एक्सेप्टेबल एट दैट मोमेंट। और वहाँ पर इमरान खान ने जावेद मियांदाद के साथ कोलैबोरेट करके, एक तरह से साथ मिलकर काम करके स्ट्रैटेजी बना, एंड स्ट्रैटेजी के साथ साथ पाकिस्तान को दिया अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप, बीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल 1992 आईसीसी वर्ल्ड कप। और उनकी बैटिंग की बात करूँ तो उनकी बैटिंग ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट में कई अहम मौक़ों पर सहारा दिया। अगर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे फॉलो करते हैं तो मियांदाद ने टेस्ट क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन्स और ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 से ज्यादा रन्स बनाए। लेकिन अगर आप किसी क्रिकेट फैन से पूछे कि जावेद मियांदाद की सबसे बड़ी पहचान क्या थी तो शायद जवाब होगा
उनका फाइटिंग स्पिरिट, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। वो मैदान पर कभी आसानी से हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं थे, वॉज अ स्ट्रीट फाइटर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस और बॉलर को जवाब देने का अंदाज उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से अलग करता था। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ रन्स नहीं दिए, उन्होंने एक सोच दी कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। इसीलिए जावेद मियांदाद का नाम आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के मारूफ सितारों में लिया जाता है। उनका करियर हमें ये सबक देता है कि क्रिकेट हो या जिंदगी, असल चैंपियन वो होता है जो प्रेशर के सामने झुकता नहीं। जावेद मियांदाद एक नाम, एक जज्बा और पाकिस्तान क्रिकेट की एक अजीम दास्तान। दोस्तों आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आज इतना ही। आप सुन रहे थे जावेद मियांदाद की कहानी। अगली बार एक और जबरदस्त स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे निमामत अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड टाइम फॉर अनदर टेक अपडेट। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा बहुत ही कमाल की और जरूरी वेबसाइट्स एंड देन हम मूव ऑन करेंगे खबरों की तरफ। तो बहुत जरूरी वेबसाइट नंबर वन जो वेबसाइट है ऑन द लिस्ट, ये आपके बहुत काम आएगी, जो आपको बताएगी कि कौन सी फोटो जो है वो असली है या फिर नकली है। हाँ, वेबसाइट का नाम है bitmind.ai, ठीक है, bitmind.ai। इस पे आप कोई भी इमेज जब अपलोड करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई साहब ये तो AI है, या आप किसने दिया आपको ये, ऐसे नहीं बताएगा लेकिन आपको बता देगा कि वो फोटो असली है कि नहीं है। एंड इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल आज की तारीख में जहां पर कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, और AI के फोटोज के जरिए कुछ भी बनाया जा रहा है, कुछ भी स्प्रेड आउट किया जा रहा है। तो और रूमर्स से और बचें और अपने ह्यूमर के लिए रूमर्स पे बिलीव ना करें, इसलिए वेबसाइट मैंने आपको बताई। ओके, नाउ वेबसाइट नंबर टू। तो ये जो वेबसाइट है ये उन लोगों के लिए है जो ड्राइंग करना चाहते हैं और अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, या फिर बच्चे जो ड्राइंग करना चाहते हैं एंड यू कैन सी द स्किल्स। तो वेबसाइट का नाम है animeoutline.com, ANIME, एनिमे आउटलाइन, OUTLINE.com, animeoutline.com। ये प्रिसाइसली एक एक स्टेप बाय स्टेप चल चल के सिखा सकती है कि एनिमे को कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली वेबसाइट, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल और काफी प्रोडक्टिव है और बहुत अच्छी है। तो सिर्फ बच्चों के लिए क्या, जो बड़े हैं भाई, जो बनाना चाहते हैं कोई एनिमे, आपने देख लिया और आपको लगता है यार काश मैं भी ड्रॉ कर सकता, पर आपकी मगर स्किल कम से कम 50% से अबव हो तो आपके लिए ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किल मेरे जैसी है तो ट्राई कर सकते हो भाई, कोई गारंटी नहीं दे रहा मैं मगर हाँ, जो ड्रॉ करना चाहते हैं देखते हैं कि एनिमे का स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई, यू कैन ब्रश अप ऑन योर ड्रॉइंग स्किल्स एंड आपके डेफिनेटली काम आ सकती है। अब थर्ड चीज जो बहुत काम आएगी और सबके काम आएगी, तीसरी वेबसाइट का नाम है फोटोस्कोप या photoscope.com। वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगी। फोटोज, PHOTOS फोटोज, KOP photoscope.com। इस वेबसाइट पे जाके आप लिटरली फ्री में फोटोग्राफी सीख सकते हैं, लाइटिंग क्या होती है, अपर्चर कैसे इस्तेमाल करते हैं, iOS कैसे, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप, इनफैक्ट आपको एग्जांपल देगा, आपको बताएगा कि भाई कोई भी फोटो आपने अपलोड कर ली मान लीजिए और आपने पूछा कि भाई इस फोटो में मैं कैसे ऐसे कैसे फोटो खींच सकता हूँ, इसमें क्या यूज किया गया है, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न फोटोग्राफी। इतनी बढ़िया चीज है एंड इट इज नॉट ओनली बढ़िया चीज जो मैंने कह दी वो बताने के लिए, सेंसेशन के लिए, मगर ये डेफिनेटली प्रोडक्टिव है। तो अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं और कुछ चीजों को ब्रशअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत काम आएगा और बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो photoscope.com, यूज इट एंड लेट मी नो कि आपके काम आई कि नहीं आई, आई एम प्रीटी श्योर आएगी तो जरूर। ठीक है, अब जरा खबरों की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि एप्पल ने जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन सैमसंग की तरफ से भी सैमसंग गैलेक्सी S27 की जो लीक्स हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, जगह जगह फैल रही हैं और अर्ली लुक दिखाने की कोशिश है कि नेक्स्ट फ्लैगशिप फोन ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे एक शिकायत है दोनों ही से, मतलब एक तो सैमसंग से भी और एप्पल से भी, एप्पल से थोड़ी ज्यादा है क्योंकि डिजाइन पे मेहनत करना अभी छोड़ दिया है, पर सैमसंग से अभी जो उम्मीद है वो बनी हुई है। सो लेट्स सी के S27 के जो लीक्स हैं वो कितने सच्चे होंगे कितने नहीं होंगे। और इसके अलावा एक और खबर है जो कि गूगल की तरफ से आ रही है। सो गूगल अपने जेमिनी मॉडल्स को अब बहुत ही ज्यादा डीपली इंटीग्रेट करने जा रहा है एंड्रॉयड के साथ। वो चाहते हैं कि हर एक चीज जो फीचर्स हैं उनके वो जेमिनी पावर्ड आइटम्स बने, ट्रैकिंग से लेकर मोशन असिस्ट, चैट की थीम्स। तो गूगल AI हर किसी के फोन का ऐसा हिस्सा बन जाए के लगे कि ये स्किन पहनी हुई है, ऐसा कोई अलग से सॉफ्टवेयर ना लगे, विच इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स कि एप्पल जब भी AI मॉडल पे काम करता है भाई मैं आंख मूंद के उन पे भरोसा करता हूँ। दिस टाइम ऑल्सो

0: hoping that they do something really, really good. So all the best to Google and all the best to me. I'm signing off. Milte hain agli update mein. Dil se Desi. Tech update. Tech update.
1: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है उनकी मेहनत उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल तो सुनिएगा जरूर एंबेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी
4: स्कैम अलर्ट अस्सलाम वालेकुम FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का मेरा नाम है फजील और ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस जहां पर हर रोज नए जमाने के नए फ्रॉड से आपको रूबरू कराता हूं और आज भी एक ऐसा ही फ्रॉड है जो इमरजेंसी फ्रॉड के नाम से जाना जाता है और आमतौर पे इस फ्रॉड में फंसाने के लिए ज्यादातर या तो बिल्कुल छोटे लोगों को या फिर बेहद जो बुजुर्ग होते हैं उनको टारगेट किया जाता है क्या है ये फ्रॉड चलिए जानते हैं दोस्तों ये फ्रॉड है फेक फ्रेंड इमरजेंसी स्कैम या कहें फ्रॉड ये स्कैम आजकल के डिजिटल जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं इस स्कैम का तरीका बहुत ही शातिराना होता है सबसे पहले एक साइबर क्रिमिनल या हैकर आपके किसी सच्चे और असली दोस्त का सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया पूरी तरह से हैक कर लेता है हैक करने के बाद वो हैकर उस प्रोफाइल का पूरा एक्सेस अपने हाथ में ले लेता है इसके बाद का स्टेप होता है आपको टारगेट करना यानी कि उसके जितने दोस्त हैं वो उसको टारगेट करता है जिसमें आप भी शामिल होते हैं वो हैकर आपके उस दोस्त के अकाउंट से आपको एक प्राइवेट या डायरेक्ट मैसेज भेजता है मैसेज की शुरुआत बहुत ही आम लगती है लेकिन तुरंत फौरन ही वो एक बहुत बड़ी और मुसीबत मेजर क्राइसिस जैसा जिक्र करने लगता है हैकर आपको बताता है कि आपका दोस्त किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है मतलब अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए कि वो लिखता है कि वो कभी हॉस्पिटल में है या एयरपोर्ट पे खड़ा है उसको पैसे की जरूरत है या उसका फोन टूट गया है उसका वॉलेट चोरी हो गया या फिर उसकी किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन उसकी दोस्त की हो गई है या फिर वो ऐसा कुछ सीन बनाएगा जिसमें इमरजेंसी उसको बताना होता है क्योंकि ये पूरा मैसेज आपके दोस्त के बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रोफाइल से आ रहा होता है इसलिए आपका दिमाग किसी भी तरह के फ्रॉड पर शक नहीं करता है ऐसे में आपको लगता है कि आपका अपना दोस्त सच में किसी बड़ी मुसीबत में है और आप एक सच्चे दोस्त के नाते इमोशनल होकर तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं स्कैमर इसी इमोशनल स्टेट का फायदा उठाता है और आपसे कहता है कि बिना वक्त बर्बाद किए किसी डिजिटल पेमेंट पे ऐप कर दो चाहे वो फोन पे हो यूपीआई हो अलग अलग तरीके होते हैं पेमेंट के जरिए वो कहता है कि इस पे कैश आप पेमेंट कर दो अगर आप बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं तो वो पैसा सीधा क्रिमिनल के अकाउंट में जाता है और फिर उसे रिकवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है कई बार कुछ हैकर्स ऐसा भी करते हैं कि वो किसी अकाउंट को हैक नहीं करते लेकिन आपके दोस्त की अगर कोई प्रोफाइल फोटो या कोई नॉर्मल फोटो भी पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे तो उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको एआई से डिस्टॉर्ट करते हैं एआई का इस्तेमाल करके उसे हॉस्पिटल में कहीं दिखा दिया कहीं एयरपोर्ट पे दिखा दिया तो ऐसे में आप और ज्यादा यकीन कर लेते हैं क्योंकि एआई पर भरोसा करना भी या कहें एआई का पता लगाना भी आसान नहीं है उस पर इंसान भरोसा कर लेता है उसको लोगों को पता नहीं होता कि ये एआई से वीडियो या फोटो बनाई गई है तो ऐसे में उससे बचने के कुछ सॉल्यूशन भी हैं क्या कुछ सॉल्यूशन है जरा उन सॉल्यूशंस पर भी नजर डालते हैं सबसे पहला सॉल्यूशन है डायरेक्ट वेरिफिकेशन कॉल दोस्तों जब भी आपको सोशल मीडिया पर किसी दोस्त या रिश्तेदार का ऐसा अर्जेंट मनी रिक्वेस्ट मैसेज आए तो सबसे पहले उन्हें उनके पुराने और पर्सनल मोबाइल पर कॉल करके कंफर्म करें दूसरा तरीका है क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर उनका नंबर नहीं लग रहा है तो चैट पर उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछे जो सिर्फ आप दोनों को पता हो आपके दोस्तों को आपके रिलेटिव को आपके माँ बाप को आपके बहन भाइयों को पता हो सिर्फ और सिर्फ और एक अनजान हैकर इस सवाल का जब जवाब नहीं दे पाएगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा तीसरा है जल्दबाजी बिल्कुल ना करें स्कैमर्स हमेशा आपको डराएंगे कि वक्त नहीं है जल्दी करो उनके

0: इस प्रेशर में बिल्कुल ना आए, ऐसे यानी कि इस तरह के प्रेशर से ही ज्यादातर स्कैम होते हैं। और चौथा तरीका है अकाउंट को रिपोर्ट करें। अगर आपको कंफर्म हो जाए कि आपके दोस्त का अकाउंट हैक हो गया है ना, या फिर किसी नए अकाउंट से आपके पास मैसेज आया है, तो उस अकाउंट को रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट में हमेशा हैक्ड या फेक के नाम पर ही रिपोर्ट करें, ताकि उस प्रोफाइल का और ज्यादा गलत इस्तेमाल वो हैकर ना कर सके। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, आपके दोस्त आपके रिलेटिव्स बच सकते हैं। और इस तरह के स्कैम जो मैं हर रोज लेकर आता हूं और आपको बताता हूं, इस तरह के स्कैम को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहा करिए। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, कल मुलाकात होगी एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्मार्ट मनी।
2: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया। और आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो। अक्सर लोग अपनी सैलरी इनकम और सेविंग्स पर फोकस करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, तो कैश फ्लो का मतलब है हर महीने आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितने पैसे जा रहे हैं। अगर आप अपना कैश फ्लो समझ लें, तो आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग अच्छी सैलरी अर्न करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के एंड में कमी पैसों की महसूस करते हैं, जो हमने बात की। इसकी बहुत सारी वजह है और उन्हें अपने कैश फ्लो को सही तरीके से जज करने का आइडिया भी नहीं होता। वो जानते हैं कि उनकी इनकम आ रही है, लेकिन ये नहीं जानते कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। मैं अब आपको समझाती हूँ कि कैश फ्लो समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। वैसे कैश फ्लो के ना दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, मनी इन मनी आउट यानी इनकम, और दूसरा एक्सपेंसेस। इनकम यानी वो पैसा जो आपको सैलरी बिजनेस फ्रीलांस वर्क बोनस या किसी और सोर्स से मिलता है। वही मनी आउट यानी एक्सपेंसेस यानी वो पैसे जो आप रेंट ग्रोसरीज यूटिलिटीज एजुकेशन ट्रांसपोर्ट शॉपिंग एंटरटेनमेंट और बिल्स में खर्च करते हैं। अगर आपकी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है तो कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसी शख्स की सैलरी 10,000 कतरी रियाल है, उसके मंथली एक्सपेंसेस इस तरह से हैं, फॉर एग्जांपल के रेंट 3,000, ग्रोसरी 1,500, ट्रांसपोर्ट 500, बिल 800 और शॉपिंग और एंटरटेनमेंट 1,200, यानी टोटल एक्सपेंसेस 7,000 कतरी रियाल। इसका मतलब है कि उनके पास हर महीने 300 कतरी रियाल बच रहे हैं, और ये पॉजिटिव कैश फ्लो है जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ फिर मान लेते हैं किसी की सैलरी है 10,000, लेकिन उनके एक्सपेंसेस 10,500 हैं और वो क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन शॉपिंग या फिर अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हैं, तो इस सूरत में उनका कैश फ्लो नेगेटिव है और हर महीने ये जो 500 का ये छोटा छोटा जो कर्ज है वो बढ़ता जाता है। देखिए, कैश फ्लो समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने पैसे पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। जब आप हर एक्सपेंस को ट्रैक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से गैर जरूरी। बहुत से लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस इसलिए फेस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जबकि असल मसला इनकम नहीं पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट है। रोज की कॉफी, फ्रिक्वेंटली फूड डिलीवरी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, इंपल्सिव शॉपिंग, ये धीरे धीरे बड़े एक्सपेंसेस बन जाते हैं। कैश फ्लो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ मैं आपको कुछ स्टेप्स भी बताऊंगी। सबसे पहले, हर महीने मैंडेटरी बजट बनाएं, हर एक्सपेंस को लिखते जाएं, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करें, सैलरी मिलते ही सेविंग्स अमाउंट अलग कर दें, क्रेडिट कार्ड को लिमिटेड और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करें, वहीं पर इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। ये भी याद रखें कि वेल्थ सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, वेल्थ तब बनती है जब आपके पास आने वाले पैसे समझदारी से मैनेज हो रहे हैं। कई लोगों की इनकम एवरेज है, लेकिन उनका कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए वो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि कैश फ्लो को अपने फाइनेंशियल हेल्थ का

ब्लड सर्कुलेशन समझिए। जिस तरह हेल्दी बॉडी के लिए ब्लड फ्लो जरूरी है, उसी तरह हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आपके पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों पे इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talks. अस्सलाम वालेकुम साथियों खुश आमदीद आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक ऑन FM 107 और मैं हूं आपकी होस्ट सफा साथियों हम में से कितने लोगों ने ये बात सुनी होगी एक पॉपुलर कोट है ना कहा जाता है कि लाइफ डजंट कम विद अ मैनुअल इट कम्स विद अ मदर लेकिन जनरेशन टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों जहां हम मुख्तलिफ जनरेशन के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं उनका हिस्सा जानने के बारे में कि भाई उनकी लाइफ कैसी गुजरी और नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या उनको नज़र आ रहा है यहाँ बात होती है एक्सपीरियंस की यहाँ बात होती है इनोवेशन की बात होती है सोच की और नए नज़रिए की चैलेंजेस की और ड्रीम्स की हमारा मकसद ये नहीं है कि हम डिफरेंसेस को हाईलाइट करें बल्कि उन डिफरेंसेस को समझना हमारा प्लेटफॉर्म का मकसद है और आज का ये एपिसोड एक ऐसे टॉपिक के बारे में है हमारा एपिसोड जिसके बारे में कहूँगी कि शायद ये आप कह लें कि हम सबके बचपन से जुड़ा हुआ है लेकिन आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कहीं पीछे छूटता जा यानी कि मैं बात आज करने लगी हूँ रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन यानी कि द लॉस्ट आर्ट ऑफ सिंपल चाइल्डहुड देखिए आज अगर देखा जाए ना तो बच्चों के पास टॉयज बहुत ज्यादा हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा है एक्टिविटीज बे इंतहा हैं, लेकिन क्या वो सिंपल सी खुशियां भी उतनी ही हैं उनकी जेब में जितनी बाकी सारी चीजें हैं गली में खेलना दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बोर्डरूम में क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करना चीजों को घर वालों के साथ बैठना और बिना किसी स्क्रीन टाइम के सिर्फ बच्चा होना भाई ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि क्या आज के बचपन का हिस्सा हैं ये चीजें और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं जब उन्हें हम उनको सिखा रहे होते हैं चीजों का तो कहीं ना कहीं हम अपना खोया हुआ बचपन भी दोबारा जीत ही लेते हैं या यूं कह लें कि जी लेते हैं अच्छा आज इसी खूबसूरत और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं राफिया फरूख चौहान देखिए राफिया जो हैं वो माशाल्लाह से मैरिड हैं और तीन बेटियों की मदर हैं जिनमें से सबसे छोटी बेटी उनकी मैं आपको बता दूं कि शी इज़ ओनली 1.5 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह से राफिया ने खुद बैचलर्स इन कॉमर्स किया हुआ है लेकिन आज उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग रोल पता है क्या है She is a homemaker. और उसको वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस भी कर रही हैं और निभा भी रही हैं माशाल्लाह से तो राफिया के लिए मदरहुड सिर्फ बच्चों की तरबियत का नाम नहीं है मैंने जब इनसे पूछा ना कि भाई कैसा गुजर रहा है मदरहुड तो उन्होंने कहा बच्चों की तरबियत नहीं होती इसके अंदर सिर्फ बल्कि एक ऐसा सफर है जहाँ वो अपने बच्चों के साथ साथ वो चीजें भी दोबारा सीख रही हैं जो वक्त के साथ उन्हें खुद भूल गई हैं और कुछ ना कुछ जो नया चल रहा है वो भी साथ साथ वो सीखती चली जा रही हैं और अपने बच्चों के साथ वो अपना बचपन फिर से दोबारा जी रही हैं तो भाई राफिया जनरेशन टॉक में आपको बहुत बहुत खैर मकदम है आप कैसी हैं पहले तो ये बताएं ठीक ठाक हैं
4: अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से पहले आपको बहुत
2: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ये बताएं राफिया कि माशाल्लाह से अब मैंने जैसा कब बोला अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए कि आपकी छोटी बेटी सिर्फ 1.5 साल की है
4: जी
2: तो भाई आप तो माशाल्लाह से फुल ऑन टिपी टोस पर होंगी अपने
4: बिल्कुल बिल्कुल

0: बड़ी वाली के डिफरेंट टास्क हैं, छोटी वाली के डिफरेंट चीजें हैं करने के लिए, तो हर वक्त कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है मेरे साथ। तो
1: मुझे माशाल्लाह से ये वो होता है जिनके माशाल्लाह से बच्चे छोटे हैं अभी और मल्टीपल बच्चे हैं उनके, तो मैं कहती हूँ क्या अम्मा जो हैं वो मल्टीपल जिंदगियां जी रही हैं और मल्टीपल माइंड रख के कैसे कैसे कोप अप करती हैं आप?
0: ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। ये एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि बड़े की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक तो डिफरेंट हो जाती हैं, काम भी डिफरेंट होते हैं, छोटे का डिफरेंट होता है। अब छोटे को समझाना करना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मैं अपनी बड़ी वाली को फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं काम करवा रही हूँ उसको, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब छोटी वाली कोई चीज चाहिए तो वो रो रही है, वो फिर वो चीज चाहिए उस टाइम पे, लेकिन वो नहीं समझेगी कि मामा कितनी इम्पोर्टेंट कोई चीज करी है, वो मेरी बहन को कितना कोई इम्पोर्टेंट काम करवा रही है।
1: सही।
0: तो मतलब ये वाली चीजें जो है ना एट टाइम से कहते हैं कि आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल देते हैं, कहते हैं, लेकिन
1: ये काम अम्मा ही कर सकती हैं।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मल्टी टास्किंग होती है कि कहते हैं कि उसको उसके मुताबिक चीज करवा के देना, कि कहते हैं बीच वाली जो है उसको उसके मुताबिक टास्क देना, बड़ी वाली को उसके मुताबिक टास्क देना, मतलब सबका एक वो मुझे करना पड़ता है, अगर सबको लेके बैठी हूँ तो मुझे सबका पैटर्न सेट करना पड़ता है।
1: सही सही सही, मल्टी टास्किंग करनी पड़ती है। अच्छा राफिया, आपने मुझे एक बड़ी मजे की बात बोली थी, बताई थी पहले अपने बारे में कि आप जो हैं एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू अ फेज, और जब आप मदरहुड के फेज से गुजरी तो इट इज अ टास्क, इट इज चैलेंजिंग। तो आपने कहा कि जब आप अपने बच्चों के साथ जो ना अब अपना चाइल्डहुड वापस से रीलिव कर रही हैं, तो आपको क्या चीज इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है जो आप इतनी प्यारी बात बोल रही हैं कि आई एम रीलिविंग माय चाइल्डहुड?
0: देखिए पहली बात तो देखिए अब बीइंग अ गर्ल आपको भी पता ही, कहते हैं हमारे बचपन में शौक डॉल वाली चीजें, अब जब मैं बच्चों को जब टॉय शॉप पे जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं ज्यादा उनसे ज्यादा एक्साइटेड हो गया,
1: हर चीज ले लो,
0: और मुझे इतनी अच्छी चीजें लग रही होती है, मतलब और मुझे वो एक चीज बहुत ही कहते हैं कि एक अट्रैक्ट करती है उनके साथ, मतलब उनको डिफरेंट चीजें लेके देना, फिर कपड़े बच्चों के ही कहते हैं
1: ये बोले पर्टिकुलरली बच्चियों के कपड़े,
0: बच्चियों के, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: सही,
0: बच्चियों के कपड़े, उनकी मैचिंग, उनके शूज, वो सब चीजें, वो मुझे एक बहुत ज्यादा उसमें बहुत मुझे मजा आता है। और फिर उनके साथ छोटी छोटी चीजें करना, कुछ ड्रॉइंग बना लेना, कोई डिफरेंट चीजें करना,
1: एक्टिविटीज करना उनके साथ, ठीक है,
0: बिल्कुल
1: ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी आपके टाइम पर जो उस वक्त तो आप कहती हैं बड़ी ऑर्डिनरी सी है, बचपन में कुछ चीजें ऐसी थी ना हमें इतनी ज्यादा नहीं लग रही होती कि हम कहते हैं भाई ये तो ऑर्डिनरी सी चीज है, लेकिन आज जब याद करती है ना तो आप कहती हैं भाई वो बड़ी बड़ी स्पेशल चीज थी।
0: मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अब आजकल लेकिन स्क्रीन टाइम तो है बच्चों के पास हर वक्त है मौजूद, हमारे टाइम पे था जैसे डिज्नी की कोई मूवी आ रही है, हम लोग वो हमारे लिए वो इतनी बड़ी बात होती थी कि हम लोग वो एक मूवी 2 आवर्स की मूवी हमने वॉच की है, तो मतलब वो हम लोग दूसरों को भी मतलब दूसरे बच्चों को भी जाके
1: अच्छा वो जो स्टोरीज चलती थी, हाँ वो जो ड्रामे और बच्चों की स्टोरीज वगैरह चलती थी, सही वो वाला
0: जी, नहीं अब वो तो एक चीज थी, लेकिन जैसे डिज्नी की कोई भी मूवी मौलान एक जो बचपन की मुझे एक मूवी जो याद है, मैंने जो अपने भाइयों के साथ जो बहुत हम लोगों ने बहुत दफा वॉच, लेकिन वो हमारी एक टीचर ने हमें गिफ्ट की थी और वो हम लोगों ने मतलब हम लोग कोई मंथ में एक दफा वो मूवी देखते थे, लेकिन वो एक हमें है कि मतलब हमें इतना ज्यादा नहीं मिलता था स्क्रीन टाइम, लेकिन जब हमें मिलता था तो हम लोग उसकी एक तो कदर
1: करते थे
0: और हमें मजा भी आता था, हम
1: सही
0: वो चीज मुझे अभी तक याद है, मैं उस चीज को अभी भी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मतलब वो मुझे अभी तक मेरे जहन में है कि हम लोग ऐसे बैठ के मैं मेरे भाई बैठ के हम लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, हम लोग जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये नहीं है कि हर वक्त ही हमारे पास अवेलेबल।
1: हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक और चीज, ये बात तो हो गई, ये बताएं जरा कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बच्चे जो अभी के बच्चे हैं उनकी जेनरेशन में और आपके बचपन में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है, इज देयर समथिंग विच इज मिसिंग, बिकॉज यू आर रेजिंग अ जेनरेशन, तो कुछ तो होगा ना ऐसा जो उनमें और आप में डिफर कर रहा है
0: मिसिंग। अब मैं आपको बताऊं मुझे जो चीज थोड़ी अफसोस जो मुझे होता है, जैसे अफसोस होता है इन बच्चों में इतना ये लोग ग्रेटफुल नहीं है, इनको माशाल्लाह हर चीज जो है वो बहुत पहले और बहुत आराम से मिल गई ये चीज़ें, हम लोगों के टाइम में हमें छोटी सी भी चीज़ मिलती थी तो हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी होते थे और बहुत ज़्यादा खुश होते थे, उस चीज़ को बहुत संभाल के रखते थे,
1: वैल्यू।

0: پاس ویلیو تھی مطلب اب پر اب آج کل ان کے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن یہ لوگ اس کے لیے گریٹفل نہیں ہے, یہ لوگ تھینکفل اس طرح سے تھینکفل نہیں ہے. مطلب یہ چیز دل
1: ہم چوم چاٹ کے رکھتے تھے چیزوں کو,
0: بالکل بالکل بہت سنبھال کے رکھتے تھے بہت زیادہ. ایک چیز میں بہت زیادہ وہ کرتی ہوں, کہتے ہیں کہ مس کرتی ہوں اپنے بچوں میں, مطلب میں وہ نہیں دیکھتی ہوں اتنا کہ اپنی چیز کو سنبھال کے رکھنا, اپنی چیز کو مطلب میرے
1: کیئرلیس ہو جاتی ہوں.
0: جی مطلب وہ مجھے چیز لینے کے بعد مجھے ایسا مجھے لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ان کے نزدیک شاید بہت زیادہ ویلیو رکھے گی, لیکن نہیں, دو دن بعد وہ چیز ادھر ادھر کہاں ہوتی ہے پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ چیز مجھے تھوڑی سی باڈر کرتی ہے, اور مطلب میں اپنے ٹائم سے اور یہ آج ریلیٹ کروں, صرف میرے بچوں کی بات نہیں ہے, بہت سے بچے میں ارد گرد بہت سے بچے دیکھوں اگر تو یہ سیم چیز ہے, بچوں کو آج کل ویلیو نہیں رہی ہے. دیکھیں صفا, ان کو ابھی آپ ایک چیز لے کے دیں گے, ہفتے بعد انہیں ایک نئی چیز چاہیے. مطلب ہمارے ٹائم میں اگر آپ سوچیں تو ہم لوگ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں ہر ہفتے کوئی نئی چیز مل رہی ہو.
1: اچھا اس میں جو ہے اس چیز میں, یہ جو آپ ایک مجھے فیکٹ بتا رہی ہیں, آئی وڈ کال اٹ اے فیکٹ, یہ ایک فیکٹ ہے آج کی جنریشن کا کہ ہمیں چاہیے, ہمیں ہم اس چیز سے بور ہو گئے. کیونکہ یہ دیکھیں the problem is I wouldn't say the problem, the thing is کہ آج کے دور میں نا ہر چیز بہت جلدی جلدی, ایوری تھنگ از ٹو مچ آن دا ٹوز, تو ان کے شاید موڈ اسپین بھی ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں جلدی جلدی, اور ان کو نا چیزوں سے دل بھی جلدی جلدی اٹھ جاتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر بچوں کا قصور چل رہا ہے, سوسائٹی کا قصور چل رہا ہے, اما ابا کا قصور چل رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بینگ آن اے ویری سیریس اینڈ اے ویری ڈیپ نوٹ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ یہ تو چھوٹے ہیں بھائی. اب جیسے میں آپ کے بچوں کے بارے میں بات کروں, آپ کے بچے, آپ کی بڑی بیٹی کتنے سال کی ہوگی؟
0: میری بڑی بیٹی جو ہے وہ ایک 8 سال کی ہے, ایک 6 سال کی, اور چھوٹی ہماری 8 سال.
1: ماشاءاللہ they're still young. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ معاملہ کہاں سے بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بچے کو دیکھیں, کیونکہ بچہ, ہم نے بھی اپنے بچپن میں ایسی چیزیں کی ہیں کہ ہمارا دل آتا تھا ہر چیز کے اوپر, لیکن وہ منہ سے نکلتا نہیں تھا اور ہم اس کے اوپر ضد نہیں کرتے تھے, بیکاز دیر واز پتہ نہیں وہ کیا تھا, وہ اما ابا کا احساس تھا, ڈر تھا, رسپیکٹ تھی, کیا تھا کچھ نہیں بول سکتے ابھی اسے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو بچوں کی یہ والی جو فیکٹر آ رہا ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دے وانٹ دیئر ہینڈز آن ایوری تھنگ اینڈ دے ڈونٹ ویلیو اینی تھنگ, ٹو مچ ایکسس ہو گیا نا, تو یہ کس کون پرابلم کہاں سے, روٹ کاز کیا ہے اس کی؟
0: دیکھیں میں ایسے تو ایسے بلیم نہیں کر سکتی ہوں, لیکن تھوڑا سا جہاں تک مجھے لگتا ہے, میں کم عقل ہو سکتی ہوں, لیکن تھوڑا سا اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے. کیسے؟ کیونکہ پیرنٹس کا اس لحاظ سے قصور ہے کہ بچہ جو بھی کہہ رہا ہے آپ فوراً سے مطلب پیار میں آ کے اس طرح سوچے سمجھے بس ہر چیز لیتے نہیں. اب یہی بات ہے کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں, اب میں اگر اپنی بیٹیوں کسی چیز سے منع کر رہی ہوں, لیکن بچے جب اسکول جاتے ہیں, بچے اس کے پاس تو یہ بھی ہے, اس کے پاس تو یہ بھی ہے,
1: کمپیریزن کا دور آ گیا نا,
0: کمپیریزن کی کہتے ہیں, اور پھر وہ والی چیز جو ہے وہ بچہ جب گھر آ کے آپ کو اس طرح کہتا ہے تو آپ بھی پھر ایک یو نو پیئر پریشر ایک ہو جاتا ہے, کہ کہتے ہیں آپ میں آ کے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کہتے ہو اچھا کیا چیز ہے, مطلب ایک چیز کوئی اسٹارٹ ہوتی ہے کلاس میں وہ بچہ لیتا ہے, وہ ساری کلاس میں وہ چیز ہو جاتی کہ اچھا یہ ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی چاہیے. کچھ پیرنٹس دیکھیں, کچھ پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں, کچھ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. ہر ایک کی جیب اجازت نہیں دیتی.
1: اب آج
0: کل بچے جو ہیں وہ اس چیز کو اتنا سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہم لوگ آپ خود ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ایک چیز دے دی ہے تو ہم لوگوں نے ابھی کوئی ایک دو مہینے کچھ نہیں,
1: بیگ وہ سال کے شروع میں بیگ لیتے تھے, جوتے لیتے تھے, پورا سال گزارنا ہے.
0: جی بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. ایسے آج دیکھیں ماشاء اللہ ان لوگوں کے پاس مطلب 10-10 جوتوں کے پیر ہیں
1: ماشاء اللہ. جی صحیح. تو سامعین میں چاہوں گی کہ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں, سنتے رہیے ایف ایم 107 پر جنریشن ٹاک وتھ صفا.
2: جین زی, جین ایکس, جین الفا, ملینیلز, یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں, یہ الگ الگ خیال, عادتیں, ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟
3: تو یہ جاننے کے لیے سنیے گا جنریشن ٹاکس. جنریشن ٹاکس.
1: اچھا ایک اور چیز, اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ بھائی دیکھیں آج کل کے بچوں کے پاس, اٹس پریٹی آبویس, آج کل کے بچوں کے پاس ایکسس ٹو ٹوائز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, ایکٹیویٹیز ہیں, انٹرٹینمنٹ کی بہت زیادہ آپشنز ہیں, इन शॉर्ट. तो अपने चाइल्डहुड में और आपके बच्चों के चाइल्डहुड में आपको क्या चीज बहुत सिमिलर नजर आती है, अलग नहीं? चलें AI और ये टेक्नोलॉजी तो ये हमें दूर से नजर आ रही है कि हमारे टाइम पर नहीं थी, लेकिन सिमिलैरिटी जॉयज में जो सिमिलैरिटी वो क्या नजर आती है
0: अपने बच्चों के चाइल्डहुड में? मैं अपने कंपैरिजन अपने बच्चों में तो एक चीज जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे इनमें फिजिकल एक्टिविटी का बहुत शौक है इनको फिजिकल, बट ये नहीं है कि कहते हैं कि इन लोगों को हर वक्त बैठ के स्क्रीन के सामने बैठना और वो सब चीजें. ये चीज पे मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इनको इस चीज का शौक है कि हम किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हों या खेलें और इस तरह करें. ये नहीं है कि हर वक्त हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे.
1: सही,
0: ये वाली चीज मुझे जी, क्योंकि ये मुझे भी साइकिलिंग का खेलने का, मैं अभी अपने भाइयों के साथ खेलना और मतलब स्कूल में भी स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव थी, तो इसी तरह मेरे बच्चों का ये मुझे एक सिमिलैरिटी अपने बच्चों में और मुझमें
1: आपके जो बच्चे हैं वो आप उनके साथ इन्वॉल्व रहती हैं इन एक्टिविटीज में?
0: जी बिल्कुल, अगर कहीं मतलब कहीं बाहर है, कहीं किसी सेंटर में लेकर जाना या कुछ भी है, उस तरह से भी इन्वॉल्व होती होंगे, बाहर भी खेल रहे हैं तब भी देख रही हूँ, मतलब घर में भी है तो मतलब हर वक्त नजरों के सामने ही होता है.
1: सही. अच्छा, आजकल ना ये भी बड़ा एक ट्रेंड आया हुआ है कि भाई बच्चे घर में बैठे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. एक दौर वो भी था कि हाँ गर्मी की शिद्दत होती है मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको गर्मी सर्दी कुछ एहसास नहीं होता. हम भी बहुत खेले नेबरहुड्स में, गलियों में खेले हैं, दोस्तों के साथ नए नए दोस्त बनाए हैं. और आप क्या लगता है कि पहले बच्चे अक्सर औकात नेबरहुड्स में फ्रीली खेला करते थे, घरों में जाते थे, नेचुरली फ्रेंडशिप उनकी डेवलप होती दूसरे बच्चों से, क्या सेफ्टी कंसर्न और मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने चाइल्डहुड फ्रीडम को चेंज कर दिया?
0: जी ये तो आया है, ये तो एक चीज आई है. आप खुद देखेंगे कहते हैं कि सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है.
1: सही.
0: और आप कहते हैं कि बच्चों को की प्रोटेक्शन के लिए पेरेंट्स ही कहते हैं अब अलाउ नहीं करते हैं किसी घर जाना या करना. पहले हम लोग तो अलाउ होते थे, हम लोग तो अपने नेबर्स में, मुझे जितनी जितनी याद है मेरे नेबर्स में मेरी फ्रेंड्स थी, हम लोग जाते तो वो हमारे घर आती थी, मैं उनके घर जाती थी, हम लोग खेलते थे. लेकिन अब जो है वो माहौल जो है वो डिफरेंट हो गया है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं. अब बच्चों को इस तरह भेजना सेफ नहीं है.
1: सही.
0: अब पेरेंट्स जो है जी
1: नजर रखनी चाहिए.
0: जी नजर रखनी चाहिए. और मेरे बच्चे भी जाते हैं करते हैं, लेकिन मैं अगर मैं साथ हूँ.
1: सही सही. अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह से आपके बच्चे हैं छोटे वाले बच्चे हैं, और ये बच्चे जो ना ये टिपी टोस पे रखते हैं, मुझे बता ये एज जो है ना इसके अंदर खासतौर पर जो हमारी 8-9 की जो एज होती है इसके अंदर, मुझे याद है मैंने डॉक्टर से पूछा था तो ये वो कहते हैं कि 6-8 की जो एज होती है ना इसको हम क्वेश्चन मार्क एज कहते हैं. इसके अंदर एक बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतने सवाल करता है, दे कैन लिटरली थ्रो मोर देन 3,000 क्वेश्चन एट यू एंड दे नीड अ प्रॉपर आंसर फॉर इट. तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपके बच्चे रैपिड फायर क्वेश्चन आपके साथ करते हैं?
0: आप अभी बात करें 6-8 ईयर्स की, आप मेरी बेटी छोटी 1.5 साल की, वो मुझसे हर जगह में व्हाट दिस पूछती है, तो आप बात कर रही
1: हैं. वो जो 6-8 की एज होती है वो उसके अंदर वो बड़े बेसिक नहीं, वो उसके अंदर बड़े हैवी क्वेश्चंस कर जाते हैं कभी कभी. तो
0: हाँ जी
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
0: ये तो है. ये
1: आप कैसे मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना बच्चों के हाथ मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चों के हाथ में कोई और चीज दे दी, डिस्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि उनके अपने पास जवाब नहीं है तो डिस्ट्रैक्ट कर दो इन्हें. आप इस चीज पे इस डिस्ट्रैक्शन पे बिलीव करती हैं? ये आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं ना नहीं भाई हमारा बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, उनको पता भी नहीं होगा, डायग्नोसिस नहीं होगा उनके पास, लेकिन उनके बस ये हाइपर एक्टिव बच्चा है, बहुत ज्यादा सवाल करता है, तो आप इरिटेट हो जाती हैं.
0: अगर बच्चे को जब तक सैटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा ना, अगर कमिस्ते को बच्चा को सवाल कर रहा है और मैं उसको जब तक उसके नजदीक उसका वो सैटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होगा ना, वो कभी भी उस सवाल को वहां पे खत्म नहीं करेगा, वो किसी ना किसी और से जाकर जरूर वो सवाल पूछेगा. वो बच्चा जरूर ही कहते हैं अपने मतलब अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए आंसर जो उसको चाहिए, जो उसको अपील करे वो आंसर वो लेने की कोशिश करेगा वो बच्चा.
1: सही सही.
0: तो
1: सही.
0: अब ये है कि इन बच्चों के पास आजकल नॉलेज जो है वो ज्यादा है. हम लोग ये बात, ये चेंज है हमारे बचपन में और इनके बचपन में. हम लोग इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते थे. हमारे पेरेंट्स हमें एक दफा कहते थे अच्छा मतलब कुछ भी हम लोग सवाल किए वो उन्होंने हमें लिमिटेड सा भी आंसर दिया ना हम उस पे
1: हाँ हम अग्री हो जाते थे क्योंकि पता है ऐसी बात तो डांट पिटेगी
0: जी बिल्कुल बिल्कुल उससे आगे हम नहीं पूछे थे लेकिन ये बच्चे इनके आगे से आगे आगे से आगे सवाल होते हैं और अगर आप नहीं सही से दोगे तो ये चुप नहीं करेंगे ये आपसे आगे करेंगे आपसे आर्ग्यू भी करेंगे और आपसे आगे सवाल भी करेंगे
1: सही
0: तो ये आपके इस दौर में मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव होना
1: ज्यादा जरूरी
0: है जी बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए अप टू डेट होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन
1: मतलब वही वाली बात आती है कि यू आर ऑल्सो लर्निंग अब जैसे बच्चों की किताबें होती हैं उसके अंदर नई नई चीजें आ रही हैं तो वो अम्मा अब्बा के लिए पढ़ना जरूरी है भाई
0: इवन हर चीज अब वो चीजें हमने की है बचपन में लेकिन ऑब्वियसली अब टाइम हम भूल गए ना वो चीजें लेकिन अब वही जैसे अब मेरी बड़ी बेटी है 8 years की जो है अब उसकी वो चीजें आ रही हैं जो मैंने की है लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से उनको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है फिर उसको समझाना पड़ता है तो मैं वो वापस सब चीजें
1: जैसे एक एक दौर था हमें हमें पढ़ाया गया था भाई देयर आर 9 planets इन द सोलर सिस्टम फिर बाद में जाके अब ये है कि 8 है और अच्छा मजे की बात ये 8 है तो इनको ये भी बताया जा रहा है कि वो जो 9th प्लैनेट था वो इसके अंदर सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में नहीं था कि उसको एक प्लैनेट प्रॉपर करार दे दिया जाए ये वो तो वो इन्हीं की बुक से हमें सीखने को मिल रहा है
0: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल अब हम लोगों ने तो बचपन से 9 line
1: पढ़े थे
0: बिल्कुल अब देखें चेंज कितना
1: सही अच्छा आपने कहा कि जो है ना आपने अपने बच्चों के साथ ना वो चीजें दोबारा सीख रही हैं अभी जो आप वक्त के साथ भूल चुकी थी तो कोई ऐसी चीज जो आपने भी रिसेंटली फिर से दोबारा सीखी हो
0: आपको अब सीरियसली
1: मैथ अच्छा ये मेरा भी एक इशू है आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू ये मेरा भी एक इशू है मैथ्स
0: I am learning again the fractions for her, how to explain it to her. Now, so kis tarah se explain karun? Easiest way mein, kis tarah se main usko explain karun? To wo fractions aaj kal meri, main khud dobara se.
1: Class le rahi hu fractions ki. Double degree honi chahiye, maaon ke paas double degree.
0: So wo main ki main usko kitna, kitne easy way mein main usko explain kar sakti hu wo cheez. तो मैं अब आज कल वो लर्न कर रही हूँ
1: बट द फैक्ट इज कि जब आप बच्चों को स्कूल से उठाते हो या बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनसे पूछा जाए हाँ भाई आज का दिन कैसा गुजरा टेबल पे बैठे हुए हो खाना खा रहे हो हाँ भाई खाना कैसा लगा अच्छा भाई मोबाइल साइड पे रखो अच्छा भाई तुम बताओ तुम्हारी किसी से लड़ाई तो नहीं स्कूल में अच्छा टीचर ने आज क्या कहा अच्छा फलाना टेस्ट हुआ था कैसा गया
0: बिल्कुल और पता है बच्चे बताना भी चाहते हैं बच्चे बताना चाहते हैं कहते हैं कि उनको कोई चाहिए होता है कि उनकी वो बात सुने
1: भाई उनके पास बहुत कुछ होता है बोलने को
0: बोलने के लिए बस वही लेकिन आजकल का दौर भी इतना फास्ट हो गया है हमारे भी इतने काम है कि हम लोगों के पास भी सुकून से थोड़ी देर बैठ के बात करना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन उनको बतानी होती है या आप बिल्कुल सही है उनको बताना होता है कैसे हमारे स्कूल में क्या हुआ किस किसके साथ हमारी दोस्ती हुई हमने क्या किया सब चीजें मतलब उनको ये बतानी होती है चीजें माँ को नहीं तो लाइक मतलब फादर को उनका होता है कि कहते हैं कोई उन सुनने वाला उनके पास हो
1: सही सही अच्छा भाई राफे हमारे पास ना टाइम बहुत कम है लेकिन मैं जाते जाते ना आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहूँगी दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट तभी मैं आपसे पर्सनल लेवल पर ही सवाल पूछ रही हूँ कि आप माशाल्लाह से एज अ मदर आप जो है वो दूसरी मदर्स को जो कि बेटियों की अम्माएं हैं उनको कोई भी कुछ भी ऐसी कोई एडवाइस कोई ऐसी अच्छी बात दो से तीन बातें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बच्चियों के बचपन को उनकी टीन एज को उनकी यंग एज को प्रिजर्व करने में मदद कर सकें कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगी
0: पहले तो मैं ये वाली चीज़ कहती हूँ कि आप बस पेरेंट्स को ये चाहिए स्पेशली मदर को अगर फादर अपने काम में मसरूफ हैं या कुछ भी किसी चीज़ में बिजी हैं वो मदर को चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर नहीं करना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना
1: सही
0: नो मैटर व्हाट
1: आई डोंट एग्री विद यू
0: जी पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं
1: सही
0: होता ये वाली चीज़ ही कहते हैं कि आपने कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना अपने बच्चों को अपने आप से दूर
1: फर्स्ट रूल देयर इज नो सेकंड रूल बस यही रूल है
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: सही
0: बिल्कुल ये वाली चीज है ही नहीं और ये वाली चीज हमने अपने बच्चों के साथ ही रोल बनाया जहाँ पे अगर मामा या बाबा में से कोई चाहेगा तो आप लोग अलाव हो जाना अदरवाइज नहीं
1: सही
0: कीप ओवर्स बिल्कुल भी नहीं
1: सही सही
0: और दूसरा ये कि जितना मैक्सिमम जितना हो सके आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, उनके साथ बातें करने की कोशिश करें, क्योंकि बेटियों का माँ के साथ एक अलग ही बॉन्ड होता है. अब जैसे हम लोगों का भी अपनी माँ के साथ एक अलग बॉन्ड होता है, वो मतलब उनके साथ बॉन्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि वो किसी और के पास नहीं जाए, वो कुछ भी

0: माइंडसेट ऐसा दें और कॉन्फिडेंस इतना दें कि उनको पता हो कि उनके साथ कौन खड़ा है, उनके पेरेंट्स खड़े हैं, ये कॉन्फिडेंस उन्हें दें. उन्हें डराएं नहीं दुनिया से, उन्हें नोन कीप देम अपडेटेड विद द वर्ल्ड.
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, नहीं डराने का नहीं जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं. ये कहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारे साथ कोई है, हमारे साथ कोई है.
0: डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए बच्चों के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और वो तभी आती है जब पेरेंट्स उन्हें एक स्पेस देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं. ये नहीं कि आप उनके ऊपर बिल्कुल मुसल्लत हो जाओ.
1: ये भी बिल्कुल सही. उनको उनके उनके फैसले खुद करने का होना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए और उनको उनके फैसले खुद करने का इख्तियार होना चाहिए. ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, बिल्कुल सही.
0: तो भाई जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आज की गुफ्तगू से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बचपन को हमेशा महंगी चीजों से, लेटेस्ट गैजेट से और बिजी स्केड्यूल्स की जरूरत नहीं होती. हमारे बचपन को, हमारे बच्चों के बचपन को, कभी कभी बचपन की सबसे खूबसूरत यादें वही होती हैं जो हमारे वालिदैन का, हमारे भाई बहनों का टाइम होता है, जो सिंपल होती हैं. क्योंकि लाइफ के साथ वक्त, दोस्तों के साथ खेलना, खाने खाना, बातें सुनाना, हंसना, कह के मारना, सीखना, और वो भी बिना किसी प्रेशर के, ये सबसे खूबसूरत चीज होती है कि नहीं राफिया?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही आप बात कह रही हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है. बचपन जो है ये कहते हैं कि किसी भी कोई बड़ी और एक्सपेंसिव चीज का मोहताज नहीं है. बचपन में वैसे आपको छोटी सी भी चीज ही कहते हैं, कुछ भी आपको खुश कर देती है. तो ये हम इन चीजों को अगर हम कहेंगे एक्सपेंसिव चीज हम बच्चे को लेकर जाए तो वो उसको खुश करेगी नहीं. आपने देखे बच्चे को, अब देखें छोटा बच्चा जो होता है उसको आप कितने एक्सपेंसिव खिलौने लेते, नहीं वो कोई छोटे से बैलून से या कोई भी छोटी किसी और घर की किसी चीज से खुश हो जाएगा, और वो अपना कोई महंगा खिलौना जो है वो खेलेगा. तो बच्चे जो है वो, बच्चों को बड़ी बड़ी चीजें या वो सब चीजों की जरूरत नहीं होती है. बच्चे सब चीजों में खुश हो जाते हैं, लेकिन सब सोसाइटी थोड़ा सा इस तरफ जा रही है, लेकर जा रही है.
0: नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो पास ऑन करेंगे हम बच्चों को, बच्चे वही सीखेंगे. राफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और हमें ये याद दिलाया कि पेरेंटिंग एक सफ़र है, एक जर्नी है. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वी ऑल डोंट कम विद अ मैनुअल, वी कम विद अ मदर. तो हमारी अम्माएं जब तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी की मदर्स, आप जैसी मदर्स हैं जो कि चीज़ों को समझती हैं और सब्र और तहम्मुल से चल रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बिल्ड अ बेटर सोसाइटी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और भाई पेरेंट्स के लिए शायद आज का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है कि बच्चों को परफेक्ट चाइल्डहुड देने की जरूरत नहीं है, उन्हें यादगार चाइल्डहुड देने की जरूरत है. और उन्हें मोहब्बत, लर्निंग, ऑनेस्टी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रो करने का मौका दें, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाएं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दें, उनके साथ बैठकर इन्फॉर्मेशन लें, खुद भी सीखें, उन्हें भी सिखाएं और एक दूसरे को बैकअप देते रहें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. और हमारे तमाम लिसनर्स को मैं बताती चलूं कि आप सुन रहे थे सफा के साथ जनरेशन टॉक ऑन FM 107. तो भाई अगली बार आपसे अगले टॉपिक पर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी. तब तक के लिए आपको याद दिला दूं कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं एट आवर सोशल मीडिया हैंडल विच इज @FM107Qatar, और चाहे तो मैसेज भी भेज सकते हैं अपनी कहानी का, जो कि है मैसेज नंबर 666-22107 पर. और साथियों याद रखिए, जनरेशन्स अलग हो सकती हैं लेकिन एक दूसरे को समझने की ज़रूरत हर जनरेशन को होती है. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सफ़ा को और हमारे साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाज़त. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जीने की कोशिश करें और सुनते रहें FM 107.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यस जरा वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपके ए फॉर अमिता और आज की जो थीम है वो हमारे दोस्तों के नाम है. स्पेशली जो स्कूल कॉलेज के दिनों में जो हमारे फ्रेंड्स होते थे ना और स्पेशली वो टाइम जो हम कैंटीन में उनके साथ गुजारते थे आलू बंडे या समोसे या चाय पीते हुए खाते हुए मतलब ये सारे जो मोमेंट्स रहे हैं ना ये जब भी हम याद करते हैं तो हम खो जाते हैं. और उस टाइम पर कुछ गाने ऐसे थे जो आपकी फ्रेंडशिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते थे या यूँ कहें कि आपकी फ्रेंडशिप को डिफाइन करते थे. तो वो गाने आप किसी खास के नाम डेडिकेट कर सकते हैं 6622107 पर 6622107 पर हमें मैसेज करके. वैसे अभी मुझे रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद की जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड अमजद को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं. हाँ मतलब तालियां बजाना बनती है बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक सॉन्ग अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की फ्रेंडशिप के नाम है. यस एंड द सॉन्ग इज अतरंगी यारी. इनका कहना है कि हमारी दोस्ती भी इस गाने की तरह बड़ी अतरंगी रही है. सो आई वांट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग. क्या बात है. एंड इस गाने का वीडियो भी बड़ा प्यारा है. मतलब अमिताभ बच्चन एंड फरहान अख्तर जब इस गाने का वीडियो कर रहे थे और गाना गा रहे थे तो एक दूसरे को जैसे टीज करते हैं अपनी आंखों से एक्सप्रेशन देते हैं. दैट्स सो अडोरेबल. सो यस ये गाना पूरा मैं आपको सुनाने वाली हूँ. और उसके बाद हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान एंड वन ऑफ आर लिसनर निज़ाम इन दोनों ने एक ही गाने की रिक्वेस्ट की है. दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना है तेरा यार हूँ मैं. वाओ मतलब कभी कभी ऐसे मौके आते हैं ना जब आपको अपने ही यार को बताना होता है कि भूल मत यार मैं तेरा यार हूँ. है कि नहीं. तो चले ये दोनों ही खूबसूरत गाने हम इन्जॉय करने वाले हैं हमारे द रिक्वेस्ट शो पर. आपका कौन सा दोस्ती वाला गाना है वो कैंटीन क्लासिक जो आप अपने किसी खास के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और क्यों ज़रूर हमसे शेयर करें 6622107 पर. और अभी इन्जॉय करें ये हिट गाने. बने रहिए एफएम 107 पर दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Absolute cinema.
3: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. गानों की पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका पसंद.

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप और आज की हमारे द रिक्वेस्ट शो की थीम है कैंटीन क्लासिक्स यानी स्कूल कॉलेज का वो दौर जब हम अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे स्नैक्स भी ऐसे इंजॉय करते थे कि बस पूछे ना और हर एक गाने को भी हाँ तो कोई ना कोई गाना किसी ना किसी दोस्त को डिस्क्राइब करता है या आपकी फ्रेंडशिप गैंग जो मतलब आपकी फ्रेंड्स की गैंग होगी आपका ग्रुप होगा उसके लिए स्पेशल रहा हो। कम ऑन शेयर इट अपनी स्टोरी शेयर करें 6622107 पर 6622107 पर और इस मोमेंट को ना बिल्कुल वो कहते हैं ना जिंदा दिली से थोड़ा जिए है कि नहीं। चलिए अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं एंड जीशान की रिक्वेस्ट है उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि अमिता क्या रिक्वेस्ट हम आपके शो के अलावा आपके सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मैं किसी चीज़ के लिए मना थोड़ी ना करूँगी लेकिन डेफिनेटली अगर आप हमारे शो के दौरान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा बट अगर आप सोशल मीडिया से भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। और इन्होंने रिक्वेस्ट की है जट ब्रदर्स फिल्म का ये गाना है एंड इट्स अ वेरी यूनिक सॉन्ग एंड द सॉन्ग इज यार मेरा जस मानक की आवाज छोड़ दे रिश्ता ये तोड़ दे। हाय हाय काफी डेप्थ वाला सॉन्ग लग रहा है जीशान बड़ी कमाल की चॉइस है आपकी। सो यस यार मेरा ये गाना पूरा पूरा सुनेंगे और उसके बाद बड़ी ही खूबसूरत सी रिक्वेस्ट आई है मुबशर मोबीन की और वो सुनना चाहते हैं 3 Idiots फिल्म का ये गाना। ओह ये तो मतलब वो स्कूल के कॉलेज के दौरान वो जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे एग्जाम्स होते थे मतलब वो चीज़ें याद आ जाती हैं जब हम इस गाने को सुनते हैं।
2: एक पल तो अब हमें जीने दो
1: है ना गिव मी सम सनशाइन। एक्चुअली यही उम्मीद होती थी कि कुछ तो ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम हर एक एग्जाम में पास हो जाए और हमारा दिमाग जोरों से चले। सच में उस दौर का जो प्रेशर था वो अलग ही था। तो ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं तो ज़रूर इन्जॉय करें और जो हमें सुन रहे हैं और अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को याद करना चाहते हैं किसी खास को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो 6622107 पर अपने नाम के साथ अपनी स्टोरी के साथ हमसे ज़रूर शेयर करें आपके डेडिकेशंस। और अभी स्टे ट्यून्ड FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. The request show पर आज हमारी जो थीम है that's canteen classics. And इसका मतलब ये है कि हम अपने स्कूल कॉलेज की उस दोस्ती को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें छोटी छोटी चीज़ों में ना बड़ी खुशियाँ देती थी. इनफैक्ट उस दौर में भी ना कुछ गाने ऐसे थे कि हमेशा हमें नॉस्टैल्जिक फील कराते हैं. इनफैक्ट आज के भी दौर के गाने हमें वो मोमेंट्स याद दिला देते हैं. तो वो गाने कौन से हैं जो कि आपकी दोस्तों को या आपकी दोस्ती को डिफाइन करते हैं, तो आप शेयर करें 6622107 पर 6622107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस, अपनी स्टोरीज. अभी हमें रिक्वेस्ट आई है वसीफ की जो कि सुनना चाहते हैं ये गाना. एंड मुझे लगता है कि दोस्तों की दोस्ती को इससे ज्यादा खूबसूरती से कोई गाना एक्सप्लेन नहीं कर सकता. हाँ, ओहो, दिल चाहता है का टाइटल ट्रैक. एंड ये गाना और इसका वीडियो और स्पेशली गोवा में जो छपोरा फोर्ट में इस गाने की शूटिंग हुई है, मतलब जब ये फिल्म रिलीज हुई ना तो उसके बाद हर कोई वेकेशन में गोवा जाना चाहता था. एंड देन उस छपोरा फोर्ट में जाकर बिल्कुल इसी दिल चाहता है के स्टार्स के स्टाइल में फोटो खिंचाता था. इनफैक्ट मैंने खुद भी किया हुआ है. चले ठीक है, तो दिल चाहता है का ये टाइटल ट्रैक कुछ ही देर में आप सुनेंगे. और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन सी रिक्वेस्ट आई है जो कि 90s के इंडी पॉप की याद दिलाएगी. सो रिजवान का मैसेज है जो कि उनके कुवैत के फ्रेंड्स के नाम ये गाना करना चाहते हैं अली हैदर की आवाज में, पुरानी जींस. देखो 90s का हर बंदा ना इस गाने को पहचानता है. ये एक डिफरेंट वर्जन है जो मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए. आई एम श्योर यू गोना लव इट. बट अभी हम दिल चाहता है कि राहों में जाएंगे, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
4: गेम चेंजर सीजन 2।
5: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
6: यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन द रिक्वेस्ट शो पर। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज का हमारा थीम बहुत ही क्यूट है। और वो क्यूट क्यों है, क्योंकि हम कैंटीन क्लासिक्स की बात कर रहे हैं। और जब हम अपने पुराने स्कूल कॉलेज के दिन की बात करते हैं ना, तो वो मोमेंट्स बड़े प्यारे प्यारे से, स्वीट स्वीट से, क्यूट क्यूट से हो ही जाते हैं, कि नहीं? तो आज कौन सा वो गाना है जो आपकी दोस्ती को पूरी तरह से डिफाइन करता है, या आपने किसी दोस्त को या आपके फ्रेंड्स ग्रुप को डिफाइन करता है, या उस टाइम पे पॉपुलर रहा हो आपके बीच? जरूर हमसे शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस। और अभी हमें रिक्वेस्ट आई है आसिफ की, कहते हैं अमिता ये गाना तो जरूर प्ले करना क्योंकि ये मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है।

उदित नारायण की आवाज है इस गाने में। कयामत से कयामत तक फिल्म का नाम और आमिर खान जूही चावला की डेब्यू मूवी, वाओ व्हाट अ हिट फिल्म। सो पापा कहते हैं डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा आपको मैं सुनाने वाली हूँ। उसके बाद मेरे इंस्टा प्रोफाइल में शर्मिला एंड नूरा की रिक्वेस्ट आई है, उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया अमिता हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड आप ये गाना प्लीज़ प्ले करो क्योंकि ये हमारे स्कूल टाइम फेवरेट सॉन्ग है। कौन सा गाना है भाई? कुछ कुछ होता है फिल्म का, कोई मिल गया। सो यस, ये दोनों ही गाने पापा कहते हैं एंड कोई मिल गया आपकी राहों में आ रहा है। एंजॉय कीजिए और अपने डेडिकेशंस जल्दी जल्दी हमसे शेयर कीजिए FM 107 पर दिल से देसी।

0: क्या बात है, मतलब कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गाना एंड दैट टू रानी मुखर्जी. पहली बार इस फिल्म में उन्होंने अपनी ओरिजिनल आवाज के साथ काम किया एंड शी वाज हिट. सो यस, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी एफएम अमिता, और आप क्या सुन रहे हैं?
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107. दिल से देसी.
0: सो यस माय देसी ऑडियंस, अब ये वक्त है आपके फिल्मी नॉलेज को चेक करने का.
1: क्विज टाइम.
0: तो क्विज टाइम पे आज एक ऐसा गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, जब दोस्ती में कभी दोस्त रूठ जाए या रास्ता भटक जाए तो कभी कभी इस तरह से उसे मनाना पड़ता है. इस गाने को सुन के मैं गुनगुनाने से कभी अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ. दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, फरहान अख्तर की आवाज़ है. आपको क्या करना है, आपको पहचानना है कि ये गाना कौन सी फिल्म का है. हाँ, ये गाना थ्री इडियट्स फिल्म का है, ये यारिया फिल्म का है, या रॉकॉन फिल्म का है. तो अगर आपने गेस कर लिया तो ये गाना पूरा पूरा आपके नाम हो जाएगा. सो 666-22-107 पर अपने नाम के साथ हमसे शेयर कीजिए अपने जवाब. और अभी एक रिक्वेस्ट को प्ले करने का टाइम है. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, अदील की रिक्वेस्ट है और गाना गुरु रंधावा एंड मिलिंद गाबा का है. और जब ये गाना आप सुनते हो ना, इसका वीडियो देखते हो, तो आँखें नम 100% होती हैं. सो ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, गाना है यार मोड़ दो. तो चलो इस गाने को एंजॉय करते हैं अपनी दोस्ती को याद करते हुए. स्टे ट्यून टू एफएम.

0: क्या बात है, मतलब एक चीज है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, प्यार भी छूट जाए, लेकिन यार कभी नहीं छूटना चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: वेलकम वंस अगेन। मतलब बात कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई। हाँ, दोस्ती की चीज ही ऐसी, अरे दोस्ती बात ही कुछ ऐसी है और दोस्तों की बात कुछ ऐसी है कि नहीं। वेल, क्विज टाइम पर मैंने एक गाना आपको सुनाया एंड द सॉन्ग वॉज हाँ, और मैंने कहा था कि गाना किस फिल्म का है ये आपको पहचान के मुझे बताना है। ये यारिया फिल्म का गाना है, थ्री इडियट्स का है, रॉक ऑन का है, किस फिल्म का गाना है? तो हमारे लिसनर्स ना थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं एंड ज़्यादातर लोगों ने यारियाँ लिखा है। सो आई शुड टेल यू इट्स अ रॉन्ग आंसर। सही जवाब है रॉक ऑन। येस, रॉक ऑन फिल्म का ये गाना है और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम है आफ्ताब, उमर, जीशान, मोहम्मद यूसुफ खान, फैजल ने भी हमें सही जवाब दिया है और इन जनाब का नाम क्या है, फलक। यस, फलक ने भी हमें सही जवाब दिया है। सो गुड जॉब गाइस। और ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है ये मैं आपके नाम करने वाली हूँ। एंड आई शुड टेल यू कि जब यहाँ द रिक्वेस्ट शो में करती हूँ तो इंडिया में मेरे फ्रेंड्स भी मेरा शो सुन रहे होते हैं, तो जो सब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे खुद के सारे फ्रेंड्स, उनके लिए भी मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। मेरे कतर के फ्रेंड्स और मेरे ऑफिस के स्पेशली फ्रेंड्स जो इस वक्त वॉल्यूम बढ़ाकर मेरा शो सुन रहे होंगे। सो येस, दिस सॉन्ग इज़ पर्टिकुलरली हर किसी के लिए। फरहान अख्तर की आवाज़ में ज़रूर इंजॉय करें, अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करें और यूं ही हमारे साथ बने रहें। और जाते जाते ये ज़रूर कहूँगी, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

ये है जज्बा, मेहनत और वो इरादा जो तारीख बदल देता है। यस, दिस इज द गेम चेंजर शो। ये एक सफर है उन स्पोर्ट्स हीरोज के साथ जिन्होंने ना सिर्फ अपना गेम बदला बल्कि दुनिया को नए अंदाज में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन गेम चेंजर शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। गेम चेंजर सीजन 2। असद ने कतर स्टार्स लीग के दूसरे हफ्ते में कतर स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ अहमद बिन अली स्टेडियम में खेले गए मैच में जबरदस्त 2-1 में 6 की शानदार जीत हासिल की और वहीं अल अरबी और अल दोहेल क्लब का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। कतर ने जॉर्डन में जारी एशियन मेंस अंडर 19 हैंडबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में पहुंचकर 2027 अंडर 19 वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कतर ने क्वार्टर फाइनल में होस्ट जॉर्डन को शिकस्त दी। दोहा में मुनाकिदा अंडर 17 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप दोहा 2026 के दूसरे एडिशन के फाइनल में फ्रांस को शिकस्त देकर ईरान ने टाइटल अपने नाम किया। और फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 की लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अल जनूब अरीना का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। यह उन 4 वेन्यूज में से एक होगा जहां फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 के मैचेस खेले जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं गेम चेंजर शो में, जहां आज हम बात करेंगे एक इंस्पिरेशनल एथलीट के बारे में। नाम अरशद नदीम। मिट्टी से ओलंपिक गोल्ड तक उनका ये सफर आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मुमकिन हुआ। गेम चेंजर सीजन 2। अरशद नदीम एक छोटा सा शहर मियां छन्नू, जी हाँ, पंजाब का वो इलाका जहां से दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक स्टेडियम तक का सफर किसी ख्वाब से कम नहीं था। लेकिन कभी कभी ख्वाब उन्हीं लोगों के सच होते हैं जो मुश्किलों के सामने रुकते नहीं। एक लड़का था जिसे क्रिकेट बेहद पसंद थी, लेकिन किस्मत ने उनके हाथ में बैट नहीं जैवलिन पकड़ा दी। और फिर उस लड़के ने सिर्फ एक जैवलिन नहीं फेंकी, उन्होंने पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हिस्ट्री बदल दी। जी हाँ, अरशद नदीम नाम तो सुना होगा। आज वो सिर्फ पाकिस्तान का ओलंपिक चैंपियन नहीं, वो साउथ एशियन एथलेटिक्स की एक पहचान है। लेकिन उस कहानी में सिर्फ 92.97 मीटर्स की एक थ्रो नहीं, इस कहानी में सालों की मेहनत है, इंजुरीज हैं, लिमिटेड फैसिलिटीज हैं, प्रेशर है और गिरकर दोबारा उठने का जज्बा है। यूं कह लीजिए, अरशद नदीम का सफर किसी वर्ल्ड क्लास एथलेटिक्स एकेडमी से शुरू नहीं हुआ, वो मियां छन्नू से निकला जहां रिसोर्सेज लिमिटेड थे और जैवलिन थ्रो पाकिस्तान में क्रिकेट के साये में एक छोटा सा स्पोर्ट समझा जाता था। अरशद ने बचपन में क्रिकेट भी खेली, लेकिन स्कूल एथलेटिक्स के दौरान एक कोच की नजर उन पर जाकर पड़ी और उस कोच ने उनके कद, स्ट्रेंथ और थ्रोइंग एबिलिटी में कुछ खास देखा और यहीं से एक नए सफर का आगाज हुआ। ना मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर, ना दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट, ना मिलियन डॉलर फैसिलिटीज, बस सिर्फ महज टैलेंट, मेहनत और एक जैवलिन। अरशद ने लोकल लेवल से अपना सफर शुरू किया, धीरे धीरे उनकी थ्रोज दूर होती गई और फिर पाकिस्तान के एथलेटिक सर्किट में एक नया नाम उभरने लगा, अरशद नदीम। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप किसी बच्चे से पूछें तुम क्या बनना चाहते हो तो जवाब अक्सर होता है क्रिकेटर, लेकिन अरशद का रास्ता अलग था। एथलेटिक्स में पाकिस्तान के एथलीट्स को अक्सर वो रिसोर्सेज नहीं मिलते जो दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग नेशंस में आम हैं, जैसे कि अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें। अरशद ने इसी कमी के दरमियान अपनी पहचान बनाई। 2016 साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स और हर कॉम्पिटिशन के साथ उनकी थ्रो और लंबी होती गई। 2019 में उन्होंने 86 मीटर से ज्यादा की थ्रो के साथ अपनी इंटरनेशनल एबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया और फिर आया टोक्यो, यानी ओलंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। अरशद नदीम पाकिस्तान की तरफ से जैवलिन कंपटीशन में उतरता है और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, फाइनल तक पहुंचता है और उनकी बेस्ट थ्रो 84.62 मीटर, पोजिशन 5th, मेडल

नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान को एक चीज मिल गई, यकीन। यकीन कि पाकिस्तान का एक एथलीट दुनिया के बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर्स के साथ खड़ा हो सकता है। टोक्यो के बाद अरशद ने रुकना नहीं था, उन्होंने अपनी वीकनेस को समझा, ट्रेनिंग इंप्रूव की, स्ट्रेंथ पर काम किया, टेक्निक पर काम किया और इंजरीज के बावजूद अपने जिस्म और जहन दोनों को अगले लेवल के लिए तैयार किया। इसके बाद 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम बर्तानिया में अरशद नदीम के सामने दुनिया के टॉप थ्रोअर्स में से एक एंडरसन पीटर्स, लेकिन फाइनल में अरशद ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार था। 90.18 मीटर्स यानी 90.18 मीटर पाकिस्तान का अरशद नदीम 90 मीटर की बैरियर क्रॉस कर चुका था और कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी बना दिया और इसके साथ गोल्ड मेडल। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था दोस्तों, ये सिग्नल था कि अरशद अब दुनिया के एलिट जैवलिन थ्रोअर्स में शामिल हो चुका है। अगले साल 2023 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स और ये हुआ था हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट शहर में। अरशद ने एक और माइलस्टोन अचीव किया, 87.82 मीटर और यहां मिला उनको सिल्वर मेडल। गोल्ड तो गया नीरज चोपड़ा के पास और यहां से इंडिया और पाकिस्तान की जैवलिन राइवलरी को दुनिया ने और गहराई से देखना शुरू किया। दो एथलीट्स, दो ममालिक, एक ही इवेंट, लेकिन राइवलरी के पीछे देयर वाज म्यूचुअल रेस्पेक्ट। नीरज और अरशद की कहानी सिर्फ कंपटीशन की कहानी नहीं, यह स्पोर्ट्समैनशिप की भी कहानी है। दोनों ने एक दूसरे की सक्सेस को अप्रिशिएट करते रहे और दोनों ने साउथ एशिया में जैवलिन को एक नई पॉपुलरिटी दी। 8 अगस्त 2024 पेरिस स्टेट डी फ्रांस, दुनिया के बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर्स का एक जगह और पाकिस्तान की नजरें एक एथलीट पर, अरशद नदीम। पहली अटेम्प्ट फाउल, लेकिन चैंपियन प्रेशर से नहीं टूटता। दूसरी अटेम्प्ट, अरशद रनवे पर आता है, स्पीड, रिदम, रिलीज और फिर 92.97 मीटर्स एक थ्रो और ओलंपिक रिकॉर्ड टूट गया। अरशद सीधा हिस्ट्री के सफे पर। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता 89.45 मीटर्स के साथ। एंडरसन पीटर्स ब्रॉन्ज पर रहे, ये वही एंडरसन पीटर्स, लेकिन रात पाकिस्तान की थी। अरशद नदीम का 92.97 मीटर्स का थ्रो ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया और वो पाकिस्तान का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बना। पाकिस्तान का एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल और मुल्क के लिए 32 साल बाद ओलंपिक मेडल। वर्ल्ड एथलेटिक्स के मुताबिक 92.97 मीटर्स उस वक्त मेंस जैवलिन में ऑल टाइम लिस्ट पर भी दुनिया की टॉप परफॉर्मेंसेस में शामिल था। और फिर आखिरी राउंड में अरशद ने एक और मॉन्स्टर थ्रो की 91.79 मीटर्स, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो यह सिर्फ एक लकी थ्रो नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, दैट वाज नॉट अ फ्लूक बाय विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल और उन्हें ये प्रूव किया, मुसलसल प्रूव करता रहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो या हॉकी, जैवलिन भी वन ऑफ द स्पोर्ट जहां पे कुछ कर सकता है।

फिर जैवलिन लिया। आज जैवलिन के वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, तो जाहिर सी बात है कि मियां छन्नू में जश्न तो होनी चाहिए। पाकिस्तान के शहरों में लोग सड़कों पर आ गए, ढोल बजने लगे, मिठाई बनती गई और एक ऐसा एथलीट जिसे कुछ साल पहले तक सिर्फ एथलीट्स के फैंस जानते थे, अब हर पाकिस्तान ही जानता था, अरशद नदीम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनकी जीत ने एक सवाल भी उठाया। अगर एक एथलीट लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद ओलंपिक चैंपियन बन सकता है तो पाकिस्तान के पास और कितने अरशद नदीम हो सकते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ओलंपिक गोल्ड के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, असल चैलेंज अब शुरू हुआ। अरशद को इंजुरीज का सामना रहा। एथलेटिक्स में, फिजिकल स्पोर्ट में, एथलेटिक्स, फिजिकल स्पोर्ट्स, कोई भी अब गेम उठा लीजिए, इंजुरी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट, एनी गेम। तो यहाँ अरशद को एल्बो, नी यानी कोनी, घुटने और बैक इश्यूज, सब कुछ धीरे धीरे सताने लगा। पेरिस ओलंपिक से पहले भी उनकी नी इंजरी ने प्रिपरेशन को अफेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने सर्जरी और रिहैब के बाद जबरदस्त कमबैक किया और पेरिस में दुनिया को जवाब दे दिया। लेकिन 2025 और 2026 ने एक और सबक दिया कि चैंपियन भी इंसान होता है दोस्तों। 2026 अरशद के लिए आसान साल नहीं रहा। सीजन के शुरू में उनकी परफॉर्मेंसेस उस स्टैंडर्ड की नहीं थी जिस स्टैंडर्ड का दुनिया ओलंपिक चैंपियन से इंतजार करती है, ना दे एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम एन ओलंपिक चैंपियन। तो ये अरशद को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। फिर आया कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में हुआ और यहाँ पर अरशद नदीम डिफेंडिंग चैंपियन था। 2022 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता था और इस बार फिर उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद ने सीजन बेस्ट 78.63 मीटर्स थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल एक नाइटमेयर बन गया। पहली थ्रो फाउल, दूसरी 77.41 मीटर्स, तीसरी 75.39 मीटर्स और रिजल्ट उफ, 9th पोजीशन। इवन उनके जो यू नो जो राइवल कॉम्पिटिटर वो भी ये समझते थे कि ये हुआ क्या, अरशद नदीम को हो क्या गया है। नीरज चोपड़ा जो उनके खास दोस्त हैं वो भी परेशान कि यार ये हो सकता है कि यू नो ओलंपिक चैंपियन, कॉमनवेल्थ डिफेंडिंग चैंपियन, वो 9th पोजीशन पर फिनिश करे। अरशद टॉप 8 में जगह नहीं बना सका और अपना कॉमनवेल्थ टाइटल डिफेंड नहीं कर सका। गोल्ड गया श्रीलंका के राइजिंग स्टार रुमेश तरंगा पथिरागे के पास। उनकी विनिंग थ्रो थी 89.75 मीटर्स और नीरज ने जीता सिल्वर और अरशद नदीम 9th पोजीशन पर। और होता यूं है कि जब ओलंपिक चैंपियन हो या वर्ल्ड चैंपियन हो, आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशंस, यू नो स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज देयर, और जब आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, तंकीद, सोशल मीडिया और पता नहीं क्या क्या यू नो लिखे जाते हैं कि ख़त्म हो गया। ओलंपिक चैंपियन होने के बावजूद अरशद को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर तो आजकल तो इट्स अ रूटीन जॉब, कोई भी उठाता है फ़ोन और अपना कमेंट लिखता है। नेगेटिव कमेंट्स तो आए, कुछ लोगों ने उनके परफॉर्मेंसेस पर सवाल उठाए, लेकिन अरशद ने कहा कि इन कमेंट्स ने उन्हें डीपली हर्ट किया। एक चैंपियन के लिए सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं होता जब आप हारते हैं, सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब दुनिया आपको सिर्फ आपकी एक हार से जज करने लगे। क्या खत्म हो गया। अरशद ने ग्लासगो की ठंड को भी अपनी परफॉर्मेंस का एक फैक्टर बताया। उनका कहना यह था कि शदीद इस ठंड में उनके यू नो जिस्म को स्टिफ कर दिया था और उनका नॉर्मल रन अप अफेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूजेस के पीछे छुपने के बजाय अगला टारगेट देखना शुरू कर दिया है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अरशद के पास एक चॉइस थी, कॉम्पिटिशन यानी या ट्रेनिंग कह लीजिए, और उन्होंने ट्रेनिंग को चूज किया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद वो क्या करते, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना था उन्हें, बिकॉज उनको अपने ही पुराने फॉर्म यानी बैक फॉर्म में अगर वापस जाना था तो उनको चाहिए थी ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग में आप अपने प्लस माइनस जो भी आपके यू नो ड्रॉबैक्स हैं उसको आप नोटिफाई कर सकते हैं, आपका कोच जो है वो आपको बता सकता है कि व्हाट आर द रॉन्ग्स दैट आर गोइंग ऑन इन हिज स्टिंट, इन हिज रन अप, इन

थ्रोज, सो उन्होंने ट्रेनिंग को चूज किया. यानी अरशद नदीम थॉट कि बेटर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके दोबारा ना इंजरी हो जाए, इससे बेटर है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग पे फोकस करें. अगस्त 2026 में अरशद ने लोसैन डायमंड लीग से विदड्रॉ करने का फैसला किया. दैट वाज अ मेजर डिसीजन बाय अरशद. और डायमंड लीग जो है एक स्टॉप ओवर इवेंट है, हर शहरों में होता है. दोहा में भी डायमंड लीग का आगाज होता है, एंड द फर्स्ट स्टॉप ओवर इज दोहा सिटी. सो डायमंड लीग में दुनिया के तमाम टॉप एथलीट्स दे कम एंड दे पार्टिसिपेट, जस्ट लाइक एन एटीपी टूर इन टेनिस में, ठीक है ना. तो यहाँ पे अरशद ने सोचा कि बेटर है, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग पे फोकस करा जाए तो बेटर है, कॉम्पिटिशन को छोड़ते हैं. और इनका मकसद क्या था? अपने अगले मेजर कॉम्पिटिशन के लिए पीक फॉर्म हासिल करना. उनके कोच सलमान भट्ट के मुताबिक अरशद साउथ अफ्रीका के प्रोचेस फ्रोम में ट्रेनिंग करने वाला था, जहां वो अपने कोच ट्रेसिस ल्यूमबर्ग और लोकल ट्रेनर्स के साथ काम करेगा. और ये बताता है कि चैंपियन का असली

of their own mindset. Because they want to prove to the world. एक गांव का लड़का एक यू नो मजबूत होते हैं और उनको ये लगता है कि यार हमसे क्या हो गया कि चला दुनिया वाले हमारे पीछे पड़ गए. ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, पाकिस्तान का यू नो इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, और यहाँ पर ही कुडंट परफॉर्म इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो. तो ही डिसाइडेड, उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था कि अब वो फोकस करेगा सिर्फ ट्रेनिंग पर. लेकिन अगस्त 2026 में अरशद का साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग ट्रिप एक नए कंट्रोवर्सी का सबब भी बना. और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग कैंप को लेकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से रिलेटेड सवाल उठे. अरशद ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच गया, लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन और परमिशन को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आ गई. एक बार फिर सवाल वही था, क्या पाकिस्तान अपने सबसे सक्सेसफुल इंडिविजुअल एथलीट को वो सिस्टम दे सकता है जिसकी उसे ज़रूरत है. एनीवे 2026 का अगला चैप्टर अब बहुत इम्पॉर्टेंट है. अरशद के सामने मेजर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैम्पियनशिप बुदापेस्ट यानी हंगेरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट शहर में, जो कि सितंबर में होने जा रहा है, इसी महीने में होने जा रहा है. और मेंस जैवलिन फाइनल्स का स्केड्यूल जो है 13 सितंबर को होगा. और अरशद नदीम इवेंट के कंफर्म स्टार एथलीट्स में शामिल हैं. उसके बाद एशियन गेम्स इन जापान यानी ग्लासगो की डिसअपॉइंटमेंट के बाद अरशद के पास कमबैक का बहुत ज़बरदस्त मौका है, और शायद यही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी है. अच्छा, आप चलते हैं कि अरशद वर्सेस नीरज चोपड़ा की जो ये राइवलरी है, ये राइवलरी के बारे में मीडिया ने काफ़ी कुछ इंटरेस्ट शो किया है. और यहाँ पर राइवलरी से ज़्यादा दोस्ताना दोस्ती, इसके बारे में काफ़ी कुछ हमें पढ़ने को मिला है, देखने को मिला है. तो अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों ने अपने मुल्कों की हिस्ट्री बदली. वहीं नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की बात अगर ज़रा आप सोचें तो ही क्रिएटेड हिस्ट्री. नीरज ने इंडिया के लिए ओलंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेके आया, और पाकिस्तान के लिए अरशद ने पेरिस में अरशद गोल्ड मेडल पर था, नीरज सिल्वर पर. लेकिन स्टेडियम से बाहर ये दोनों राइवल्स से ज़्यादा एथलीट्स और दोस्त हैं. अरशद ने खुद कहा था कि कॉम्पिटिशन के वक्त एथलीट अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, लेकिन ट्रैक के बाहर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स में हैं, और शायद इसीलिए उनकी राइवलरी इतनी खास है, क्योंकि ये राइवलरी जो है रेस्पेक्ट पर बनती है. सोशल मीडिया आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब अरशद नदीम मेडल जीतता है और यहाँ पर एक वीडियो वायरल हमें होने को देखा था, एक वीडियो वायरल भी हुआ था. वो वीडियो में नीरज चोपड़ा की जो अम्मी है उन्होंने बड़ा ही कॉन्ग्रेचुलेट, आई मीन बाखूबी अगर कहूँ, उनके जो अल्फाज वो बड़े इमोशनल, एक एक माँ अपने बेटे के लिए कह रहा है. तो उन्होंने ये कहा था कि अरशद भी मेरा बेटा है, नीरज जैसा मेरा बेटा है, और उसके इस गोल्ड मेडल जीतने पर उनको मतलब इंतहाई शी वॉज सो हैप्पी. और वही एक्चुअली यू नो इस वीडियो में इट ट्राइज टू पोर्ट्रे द ब्रदरहुड बिटवीन नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम. दोनों ज़बरदस्त परफॉर्मर्स, दोनों दो डिफरेंट कंट्रीज से साउथ एशियन एथलेटिक्स को ऊपर ले जाने में इन जैवलिन इन दोनों का ही बड़ा ही अहम नो किरदार रहा है. आने वाले वक्त में अगर 20 साल के बाद 25 साल के बाद आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट द स्टोरीज ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड यानी ऑन द ट्रैक एंड ऑफ द ट्रैक. इन दोनों की कॉम्पिटिशन्स राइवलरी, इन दोनों की दोस्ती, साथ ही साथ इन दोनों की परफॉर्मेंसेस. दोनों ही ओलंपिक चैंपियंस और वर्ल्ड चैंपियन. और देखिए क्या बात है कि जो इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट के बारे में लोग बातें करते हैं, क्रिकेट को छोड़कर जैवलिन में वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन एक बहुत बड़ी बात है. आई वुड से कि क्रिकेट से बहुत ज़्यादा है. अगर क्रिकेट में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है और पाकिस्तान एक ज़माना पहले वाज वर्ल्ड चैंपियन 1992 ODI वर्ल्ड चैंपियन, कितने ममालिक खेलते हैं, गिने चुने 9-10. और ओलंपिक के प्रेजेंस देखिए, ओलंपिक में दुनिया के तमाम ममालिक वहाँ पे मौजूद रहते हैं एंड दे कम्पीट. और वहाँ पे ओलंपिक चैंपियन बनना, मोर देन 200 नेशंस एंड पाकिस्तान और इंडिया, आई मीन सोचिए ज़रा कि क्रिकेट कहाँ और ओलंपिक कहाँ. सो इन दोनों के जो
परफॉर्मेंसेस हमने देखा है।

0: एंड दैट रियली यू फील प्राउड कि जैवलिन जैसे स्पोर्ट में इन दोनों एक अनजान दोनों एथलीट्स आकर एक स्पोर्ट को एक हाई लेवल यू नो हाई लेवल हाई डिग्निटी वाले बात जो अगर करूं मैं यहां पर उस जैवलिन को वहां तक ले जाते हैं. सो सल्यूट टू बोथ नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम उनकी इस कॉन्ट्रीब्यूशन पर इन जैवलिन को उस लेवल तक पहुँचाने पर. दोस्तों एक वक्त था जब अरशद नदीम मियाँ छन्नों के एक लड़के के तौर पर जैवलिन पकड़ता था. आज उनके नाम के साथ एक और लफ्ज जुड़ा है ओलंपिक चैंपियन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 92.97 मीटर्स एक नंबर. लेकिन उस नंबर के पीछे हजारों घंटे की ट्रेनिंग है, इंजरीज हैं, फेलियर्स हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, क्रिटिसिज्म भी है और सबसे बढ़कर एक एथलीट का यकीन है, यकीन कि अगर फैसिलिटीज कम हैं तो मेहनत ज्यादा होगी, अगर सपोर्ट कम है तो हौसला ज्यादा होगा और अगर एक दिन थ्रो सिर्फ 77 मीटर्स जाती है तो अगले दिन दोबारा रनवे पर आया जाएगा. क्योंकि चैंपियन वो नहीं जो कभी नहीं हारता, चैंपियन वो है जो हार के बाद दोबारा थ्रो करता है. अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक गोल्ड दिया लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा मेडल वो उम्मीद है जो उन्होंने पाकिस्तान के बच्चों के दिलों में डाल दी. आज कोई मियां छन्नू का बच्चा जैवलिन उठाता है, कोई पंजाब के स्कूल में एथलेटिक्स ट्राई करता है, कोई क्रिकेट बैट के बजाय थ्रोइंग टेक्निक सीखता है और शायद किसी के जहन में एक ख्वाब पैदा होता है, मैं भी अरशद नदीम बन सकता हूं. ये होती है लेगेसी. मेडल अलमारी में रखा जा सकता है, रिकॉर्ड एक दिन टूट सकता है, लेकिन इंस्पिरेशन जनरेशन तक जिंदा रहती है. मियां छन्नू का वो बच्चा जिन्होंने एक जैवलिन से दुनिया को हैरान कर दिया अब एक और मिशन पर है, कम बैक बुदापेस्ट एशियन गेम्स और एक नया टारगेट, शायद 93 मीटर, शायद 95, शायद उससे भी आगे हो. क्योंकि अरशद खुद कह चुका है 92.97 मीटर के बाद भी मैं और आगे जाना चाहता हूं. यह सिर्फ अरशद नदीम की कहानी नहीं दोस्तों, ये पाकिस्तान के हर उस एथलीट की कहानी है जो रिसोर्सेस की कमी के बावजूद ख्वाब देखता है, हर उस माँ बाप की कहानी जो अपने बच्चे को कहता है मेहनत करो, हर उस कोच की कहानी जो एक अननोन टैलेंट में चैंपियन देख लेता है और हर उस इंसान की कहानी जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता है. अरशद नदीम मियां छन्नू से पेरिस तक और पेरिस से अगली मंजिल तक पाकिस्तान का जैवलिन किंग, ओलंपिक चैंपियन और एक ऐसा गेम चेंजर जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कभी कभी सबसे दूर थ्रो सबसे छोटी जगह से आती है. अरशद नदीम द चैंपियन फ्रॉम मियां छन्नू. अच्छा आप लोग सोचते होंगे कि गेम चेंजर में अरशद नदीम क्यों, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता ही है कि गेम चेंजर में क्रिकेटर हो, गेम चेंजर में कोई फुटबॉलर हो. लेकिन हमारा फोकस थोड़ा इस तरह है FM 107 की जानिब से कि आई ट्राई टू पुट इन उस खिलाड़ियों को, उस एथलीट्स को जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जो हमारे देसी लोग हैं और इस ममालिक से जो छोटे छोटे गांव से आकर दे बिकम एन इंस्टेंट स्टार, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन. क्रिकेट की बातें तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बताते रहते हैं, क्रिकेट में ये हुआ, यू नो विराट कोहली ने ये कर दिया, यू नो सचिन ने ये किया था, गावस्कर ने वो किया था, जावेद मियांदर ने वो किया था, सबको पता है. क्रिकेट इज लाइक एवरीडे नॉलेज. लेकिन जैवलिन हॉकी कौन याद करता है, कौन याद करता है आज के डेट में अरशद नदीम को, कौन याद करता है यू नो ऐसे एथलीट को जो कि एक नॉन डिस्क्रिप्ट विलेज, जिस गांव का कोई नाम पता किसी ने सुना भी नहीं था, मियां छन्नू पंजाब में. और आज हर कोई बच्चा जानता है, हर कोई जर्नलिस्ट लिखता भी होगा, राइटर लिखता भी होगा कि ही हेल्स फ्रॉम, या ये अरशद नदीम जो है इस गाँव से है, मियाँ छन्नू से है. तो FM 107 की जानिब हमारा ये जो एक ये कह लीजिए कैंपेन, कह लीजिए एक कोशिश है कि वी विल हाईलाइट दोज गेम चेंजर्स, मोस्टली कोशिश हम करेंगे, निकालेंगे रिसर्च करके कि जो कि हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो और एक मोटिवेशन लेवल तक ले जाए। आई मीन सबके लिए मोटिवेशन है, यू नो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके आपके पास नहीं हो, तब भी आप कर सकते हैं मेहनत के साथ, एक इरादे के साथ और वो एक ड्रीम के साथ। एक हदफ रखिए कि नो वी हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, दिस इज़ माई गोल। एंड अरशद नदीम इज़ अ गेम चेंजर इन एवरी वे। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये गेम चेंजर शो ऑन अरशद नदीम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर हैंडल है यानी एक्स प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी है, आप वहां पर जाके कमेंट कर सकते हैं और अपने रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि मुझे फलाने एथलीट्स के बारे में सुनना है। सो वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू पुट इन दैट काइंड ऑफ यू नो एथलीट्स जिनके परफॉर्मेंसेस से आने वाले जनरेशन काफ़ी मुतासर होते हैं या होंगे। इसी के साथ मुझे निवामुद अमीन और साउंड डिज़ाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाज़त। कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: चाय कढ़ाई में चाय का टाइम है चाय ले आओ आई कोई चाय ले आओ जान जान जान आएगी जान निकल गई है यार आज तो कुछ ज्यादा ही सुबह उठ गया मैं तब से लेकर अभी तक ऐसा लग रहा है कि चाय ही चाय चाहिए अब मुझे भी लग रहा है कि यार वो उम्र आ गई है कि कॉफी चाहिए अब पहले क्या था कॉफी नहीं अच्छी लगती ला ला ला ला कॉफी में मजा नहीं है यार चाय में मजा अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे भाई उम्र निकल रही ना जैसे जैसे अब लग रहा नहीं चाय भी मिल जाए तो चलेगा फिलहाल टाइम चेक कर लो हमारे स्टूडियो के घड़ी में हो रहा है 6:02 सलाम अलैकुम
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का मेरा नाम है फजील और रबी से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है वेल क्या है हालचाल उम्मीद है कि बेहतर बेहतरीन हो रहे होंगे और यार आज फिर से गर्मी गर्मी सा लग रहा है यार आज अजीब सी उमस सा लग रहा है वो वाली आज बहुत दिनों बाद फील हुई है चिपचिपी वाली यार या तो हो सकता है कि एसी से एकदम से निकलो ना तो होता है हाथ वात में ऐसा पसीना आ जाता है तो मेरे को आज फील हुआ है हमें लगा हो सकता है भाई कि मौसम सही होगा मौसम चेंज होगा मैं तो हर रोज़ यही में रहता हूँ कि यार सुबह उठता हल्के हल्के बादल दिखते तो मेरा खुशी हो जाती कि कहीं शायद क्योंकि हो रहा था ना 26 से 28 अगस्त में होगा तो मैंने कहा वो उधर बारिश होने का था कोई मसला नहीं है बादल थोड़ा आसपास चले गए होंगे इधर उधर लेकिन अभी आएंगे लेकिन हर रोज़ बना के चले आ रहे हैं पर कोई नहीं यार हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इसी सोच में कि कभी ना कभी तो होगी दिसंबर के महीने में 3 साल तक हुई शुरुआत में जब मैं आया था लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो गया दिसंबर महीने में नहीं हो रही अभी तो सितंबर आ गया है सितंबर में हो जाओ भाई साहब इंडिया में तो इतनी हो रही कि वहाँ पर पानी भर जा रहे हैं लोगों के सीनों तक आ जा रहे हैं भाई वो चाह नहीं रहे लेकिन उनके घरों में स्विमिंग पूल बन जा रही है उनका इतना मस्त स्विमिंग पूल बना हुआ है कि वो फ्रिज तक जाते हैं तो वो आधे पानी तक हो जाते हैं फ्रिज से उन्होंने अपना बढ़िया ठंडा पानी उठाया फिर पानी में तैर के अपने बेड पे आ गए क्या मस्त चल रहा उनका और भी कहीं जगह मस्त चल रहा है बात नहीं करेंगे लेकिन अभी हम एफएम 107 पे तो 6:04 सवाल पर आते हैं हर रोज़ एक सवाल होता है और आज का सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का सवाल हमारे नेचर को लेकर है भाई कि हर इंसान बहुत ही ज़्यादा जल्दी ट्रिगर हो जाता है अपने घर वालों से तो मैंने सोचा यार ये भी सवाल हो सकता है और मेरे साथ भी ऐसा बहुत ज़्यादा है कि अपनों से जितना जल्दी मैं चढ़ जाता हूँ उतना जल्दी मैं बाहर वालों से नहीं चढ़ रहा हूँ अब वो वाली एज नहीं आई है वो भी आएगी अभी तो वो आला है ना कि बाहर वालों से अच्छे से रह रहे हैं घर वालों से चढ़ जा रहे हैं फिर वो आएगी कि बाहर वालों तो चिढ़ ही रहे हैं अपने घर वालों से भी चढ़ रहे हैं दोनों से चढ़ रहे हैं लेकिन अभी हाल ही में मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो हमारे अपने मुल्क की हैं या फिर कतर में भी है ना बहुत जल्दी लोग ट्रिगर हो जाते हैं कार चला रहे हैं तो ट्रिगर हो गए दूसरों से घर पे हैं और कोई बगल में कुछ बैठा हुआ कुछ कर रहा है बच्चा कुछ कर रहा है तो ट्रिगर हो गई अब्बा कुछ कह रहे हैं तो ट्रिगर हो गए तो मेरे मन में सवाल आया कि क्या ये बात सही में ऐसा है कि लोग जो हैं वो बढ़िया प्रेशर हैंडल कर लेते हैं जब वो बाहर होते अपने घर से लेकिन जब अपनों के साथ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं लोगों की गलतियों को हैंडल नहीं कर पाते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं अनोइंग हो जाते हैं तो ऐसा आपके साथ भी हो रहा है क्या क्योंकि मेरे साथ ऐसा थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ है मेरे को लग रहा है कि ये वही स्टेज है जहाँ पर इंसान जो है ना मैं वो बूढ़ा आदमी हो रहा हूँ भाई धीरे धीरे जो लाठी लेकर चलता है बगैर किसी बात के फट से दे देता किसी को अगला आदमी कहता अरे अंकल मैंने आपसे रोड का मतलब पार कराने को पूछा था रास्ता ही तो पूछा था आपने सूद दिया लाठी से मैं वो वाला आदमी बन रहा हूँ वैसे लेकिन आप बताएं क्या ऐसा है ये सही है इज़ इट ट्रू और फॉल्स कि लोग बढ़िया तरीके से बाहर प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं बजाय अपने घर में जो अपने लोग होते हैं उनसे नहीं कर पाते हैं उनसे अनॉयड हो जाते हैं जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं गुस्सा आ जाता है खून खोल जाता है तो मैं सोच रहा हूँ यार ये वाला आपकी तरफ डाल दूं। और ये कौन है 15-17 नंबर है भाई, इतना लंबा नंबर है, कौन है, कौन कॉल कर रहा है, 390 वाला +966। अच्छा ठीक है, तब ये वाला मैं मान लेता हूँ। फिलहाल एफ एम 107 के व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मैं। 666-22-107 हमारा वो कहाँ है, मोबाइल मोबाइल।
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
2: मोबाइल भाई साहब, मैं इशारा कर रहा हूँ कोड़े वाले भैया, क्योंकि मोबाइल का वो इशारा कर रहा है इधर है। कोड़े वाले भैया सलाम अलैकुम, बड़े आदमी है ये भी हमारा। ओके, मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, इसी बहाने में मैसेज देख लेता हूँ, मोबाइल ढूंढ लेता हूँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा भाई नाम क्या है? नाम तो लिख दिया करो यार, क्यों मेहनत करवाते हो यार? पता है मेरे अंगूठे के 6 packs बन जाएंगे सिर्फ इस चक्कर में कि तुम प्रोफाइल अपनी चेक करवाते हो, तब मेरे को नाम पता चलता है, लेकिन आपने तो प्रोफाइल पर भी नहीं लिखा है। फजील भाई रजिस्टर में नाम चढ़ा दो। अच्छा नहीं भाई, रजिस्टर में क्या, हमारे तो व्हाट्सएप पर नाम चढ़ा हुआ है, सारी डिटेल्स आ जाती हैं नंबर के साथ, नाम के साथ। तुम्हारी भी प्रोफाइल ही खोलकर देखनी पड़ती है, लेकिन कुछ प्रोफाइलें ऐसी होती हैं जो दिमाग में चढ़ जाती है, याद हो जाता है मुझे। मैंने तो नंबर भी याद कर लिए, किसके उठाने किसके नहीं नहीं, इतना ख़राब आदमी नहीं हूँ मैं। आसिफ भाई आपकी पता चल गया आपका, आपने ज़्यादा कूटा होगा, इलायची की बात कर रहे हैं, अदरक की बात कर रहे हैं, क्या कूटा होगा आपने, क्या समझ लिया भाई, क्या मैंने कूटा होगा, ये कोई सेंस नहीं बन रहा यार। नसीम भाई थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी लिखने में, ऐसे नहीं चलेगा। बाकी यूसुफ भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग। फिर उसके बाद मैसेज है, इंसान घर से बाहर निकलता है रोटी कमाने, तो रोटी के खातिर झेल लेता है पर जिनके लिए रोटी कमा रहे हैं वो अगर कहे झेलने, तो फिर कंट्रोल मिस हो जाता है कभी कभी। क्या बात कही है, आपका कभी कभी होता है, मेरा रेगुलर बेसिस पे हो रहा भाई लेकिन आप देखें कई बार ऐसा भी होता है ना कि जिनसे रोटी का मतलब ऐसा सामने से डायरेक्ट मतलब नहीं है, उनसे भी आपकी झेल लेती है, मतलब उनसे भी ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है यार, कोई नहीं, इट्स ओके, जान दे यार, अरे पराए हैं, कितने ही देर मिलेंगे, लेकिन दूसरे से नहीं हो पाता है। बाकी माज का मैसेज है, लिखा है लीना सिंह, फजील चाचू सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? भाई समझ रहा हूँ, कोड़े वाला आदमी को सलाम, आपको संभाल के रखा हमारे लिए अरे यार देखो, ये कोड़े वाला आदमी हर रोज़ बैठता है, मैं इसे हर रोज़ इग्नोर करता हूँ, लेकिन क्या है ना कि वो इसीलिए बैठा कि किसी दिन फजील गलती करे तो कोड़े का इस्तेमाल हो। उसकी तेल की डिबिया हर रोज़ ख़त्म होती है क्योंकि वो तेल या कोड़े में लगाता रहता है फिलहाल सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई क्या नाम है आपका? हसन साहब। टाई वाई लगा के एकदम खतरनाक लगते हैं। हसन भाई को कभी कभार देख लेता हूँ ना, मुझे लगता कहीं हसन ये मेरा बॉस बन जाए आगे आके, तो इसीलिए हर बार भाई लगा देता हूँ बात यह है कि ये सब पछतावे के बायस बनते हैं। भाई साहब इतनी खतरनाक लाइन, पहली ही लाइन मुझे बहुत भारी भारी लग रही है। बाकी लिखा है, बाज़ दफ़ा हम तो भले के लिए बोलते हैं, लेकिन जाने अनजाने में दूसरे के दिल की आज़ारी होती है। सिर्फ एक बात से चढ़ता हूँ, जब कोई बगैर तहकीक के कुछ भी ग्रुप में शेयर कर दे। भाई थोड़ी इंफॉर्मेशन गलत तो आ जाती है, अब उसको सही करना तो आप पर है, ये आप पर भी लाजमी होता है, तभी तो इन्फॉर्मेशन हासिल करने का मज़ा है कि अरे मैं करेक्ट करता हूँ इसको, रुक जाओ। क्योंकि बड़े हो के आपको भी तो व्हाट्सअप का वो वाला चाचू बनना है जो आपको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के मैसेज शेयर करेगा फेक वाले, फिर आपको कोई छोटा बच्चा कहेगा अरे अंकल ऐसा नहीं है, फिर आप उससे लड़ जाएंगे, है ना फिर आप कहेंगे अरे वो शकील का लड़का बड़ा ख़राब है यार जबान लड़ाता है, बदतमीज़ है, है ना। तो इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखिए, बाकी तो ठीक है, जान दो मेरा भाई, जो ग्रुप में शेयर करे उसकी बात पे और हाँ कह दो कि हाँ ये बात तो सही है, उसको फिर देखो, जब गलत बात पे आप हाँ कह दो ना, या किसी की गलत इन्फॉर्मेशन पे हामी भर दो, वो और बढ़ा चढ़ाक बताता है, जैसे उसको सारी नॉलेज है। मेरे को तो तब मजा आता है, मैं उसके गलत पे हाँ कह देता, हाँ सही तो कह रहा वो चच्चा और स्मार्ट बनने लगते हैं। आसिफ भाई कहते हैं, वो कोड़े वाला आदमी मारता कहाँ है आपको? अरे हम भी यार अकलमंद आदमी है, मुझे पता है कैसे बचना है। पता नहीं ये मेरा एक दोस्त था, आपको बताता हूँ एक कहानी है ये छोटी सी। मेरे स्कूल में एक टीचर थे, वो बहुत ही मारते थे और ऐसी जगह मारते थे, वो ऐसा कहते थे कि मतलब ऐसे जांघों पर, पीछे जांघों पर बहुत ज्यादा मारते थे, ठीक है। तो एक बार मेरा एक दोस्त था और वो ऐसे नहीं मारते थे हाथों से, वो भयंकर वाला डंडा लेकर आते थे और वो भी आगे से चपटा होता था, चट से वो स्किन और चपटा डंडा चपक जाए ना भाई तो अलग से एक निशान आता था, कोड़े से ज्यादा मजबूत होता है वो। तो हमारा एक दोस्त वो लेदर का काम करता था, उनने एक दिन एक लेदर का बड़ा सा टुकड़ा जो है अपने दोनों जांघों पे लगा दिया। अब हमारे वो तो अकलमंद दोस्त, लेकिन हमारे टीचर जो है वो भी अकलमंद आदमी है, उसको पता है रोज मार रहा हूं तो जांघों से लोगों के, बच्चों के जांघों से अलग आवाज आ रही है। भाई जिस दिन उन्होंने वो रैक्सीन लगाई थी मेरे दोस्त ने, हमारे टीचर ने मारा वो अलग आवाज आई। भाई साहब देखिए, एक होता है पिटना, एक होता है बेशर्मी से पिटना। उस दिन फिर बेचारा वो बेशर्मी से पिटा है, क्योंकि फिर अलग से वो जो चमड़ा था ना वो हटवाया गया है, फिर असली चमड़े पे जो रौंदे गए भाई। हाय हाय। कभी आपको पेट दर्द हुआ है भयंकर वाला, जब आप याद करते ना तो आपको उसी वक्त और दर्द होने लगता, वैसा मुझे अभी फील हो रहा है कि उसको जब चमड़े पर मार पड़ी थी ना मुझे अभी फील हो रहा है कि आया क्या पड़ी थी उसको। बाकी आसिफ भाई कुछ लिखते हैं, भाई हमारे मुंबई में ना कोड़े वाले रोड के ऊपर अपने ऊपर कोड़ा मारते हैं। अच्छा हाँ, रोड पर चलने वाले कोड़ा मारते हैं, हाँ ये मेरे को याद है। तो मैंने एक दिन ट्राई करके देखा, बहुत ज़ोर से लगी थी पर मेरे को, इसलिए मैं पूछा क्या आपको कहाँ मारता। अच्छा, अरे नहीं यार, वो जो असली वाले होते हैं ना, तुमने असली वाला मार लिया भाई तुम बन गए हो, लेकिन वो असली में थोड़ी मारते हैं खुद को, उनकी ट्रिक होती है, तुम तो यार सब फर्जी सुत गए यार तुम लोगों को क्या मुंह दिखाओगे कि ट्राई करने करने में सुत गए ओके बाकी लोगों के मैसेज कुछ देर में हम लेते हैं। बाकी सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम फलाना राइडर, भाई मैं नाम नहीं ले सकता, कामरान साहब आप धीरे से प्रमोशन करवा लोगे क्या मेरे से। बाकी वालेकुम अस्सलाम, फिर अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, मैं अभी आया हूँ, क्वेश्चन क्या है। बस बाकी लोगों के मैसेज का रिप्लाई बाद में करेंगे, ख्वाजा साहब के सवाल का जवाब दे देते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। सवाल ये है, क्या ये बात सच है कि, या तो हो सकता मेरे साथ हो, क्या ये बात सच है कि इंसान जो है वो बाहर के लोगों का दिया हुआ प्रेशर एक बार को अच्छे से हैंडल कर लेता है, लेकिन जब वो घर पे होता है या अपने लोगों के साथ होता है तो वो थोड़ा सा भी प्रेशर या थोड़ा सा भी ना को सह नहीं पाता है। घर में अगर किसी ने ना कह दिया तो वो सह नहीं पाता है, घर में किसी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाता है, लोगों के साथ में गुस्से से हो जाता है वो बात करता है, लेकिन अपनों के साथ, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो बॉस हो, चाहे वो दोस्त यार हो या बाहर के लोगों के साथ काम करने वाले हो, तो उनके साथ हम प्रेशर को अच्छा हैंडल कर लेते हैं। क्या ये सच है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो भी बताओ क्यों। 666-22107 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, 666-22107। फिलहाल अरमान मलिक की आवाज में ये खूबसूरत सा अनप्लग्ड वर्जन का ट्रैक सुने, वापस आएंगे कुछ ही देर में और मजीद आप लोगों के मैसेज। FM 107 दिल से देसी।

0: सचिन जिगर प्रिया और सचिन संघवी की आवाज में गाना सुना आपने FM 107 पे, गाने का नाम वॉल्यूम।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। और आज का सवाल बड़ा ही साफ दिल वाला सवाल है, ईमानदारी से आपको जवाब देना है। सवाल यह है कि क्या यह बात सच है कि हम घरों में अपने लोगों के साथ जब रहते जल्दी चिड़चिड़े हो जाते, जल्दी परेशान हो जाते, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन जब बाहर के लोगों के साथ होते हैं तो बड़े आराम से बात करते हैं, उनकी अटपटी बात पे, उनकी गलत बात पे भी हामी भर देते हैं, ओके हो जाते हैं, ज़्यादा उनसे बहसबाजी नहीं करते, लेकिन घर पे छोटी बात पे भी हम ड्रामा कर लेते हैं, इतरा लेते हैं। और ख़ास तौर पे ये हम मर्दों के साथ तो ज़्यादा ही होता है भाई साहब, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला पार्टनर इसमें नहीं कर रहा है, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग गई है। करेंगे इस पर बात, कुछ

लोगों का मैसेज है और अभी टॉपिक बदलने के लिए हुमायूं साहब ने कुछ और ही कह दिया, कह रहे हैं कभी शतूत वाले पेड़ की लकड़ी से पिटे हैं, ये कोई बात हुई भाई? हम क्या मारपीट की बात कर रहे हैं? और रही बात यू नो पेड़ की लकड़ी से या शतूत, भाई साहब देखिए मैं हर एक उस चीज से मार खा चुका हूँ जिससे चोट लगती है। वो घर के बाहर जो पाइप होता है पतला वाला पाइप, वो बहुत बढ़िया मुड़ता है और असल में वो कोड़े से ज्यादा तेज दर्द देता है, मैं उससे सुत चुका हूँ। फ्लाइंग स्लीपर्स तो देखिए बड़ी आई हैं, फ्लाइंग चप्पल तो बहुत पड़ी है। दूसरा ये है अब्बा का हाथ, माशाल्लाह अब्बा हमारे जो है उनकी एज 30 अगर होगी तो उनका वजन 40-45 के बराबर था, एज वाले के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत सूते हैं, उनका हाथ बहुत तगड़ा पड़ता था। फिर उसके बाद घर में अगर ऐसी कोई लोहा लाड लंगड़ चीज मिल जाए जिससे फजील को ज्यादा चोट लगे, उनको एहसास ऐसा होता था कि मेरे हाथ से लड़के को तेज चोट नहीं लग रही, तो उनके हाथ में जो चीज आ जाती थी फिर माशाल्लाह उससे उन्होंने मेरा सत्कार खूब किया है, पीठ पर, सर पे, गाल पे, है ना, तो हर जगह माशाल्लाह निशानियां हैं हमारे पिताजी की। और मुझे लगता है जब मेरी जैसी औलाद हो, मैं खुद को यार अब जब उस नजर से देखता हूं ना इस उम्र में आके जब मैं उस फजील को देखता हूं जो पिटा है, तो मुझे कहीं कहीं एहसास होता है कि कम पिटे हो फजील भाई तुम जो हरकतें तुम करते थे, मैं यार पतंग के लिए एक सिंगल दीवार पर चलता था, दोनों तरफ इतना गहरा होता था कि किधर भी दाएं गिरे बाएं गिरे हड्डी पसली नहीं टूटेगी, मौत आएगी, है ना, तो उसमें सर्वाइव करने के चांसेस 90% खर्चे ज्यादा होंगे। अब्बू को और मारना चाहिए था, बेटा ये मत काम करो, मर जाओगे तो ठीक है लेकिन अगर हाथ पैर टूटा और ज्यादा नुकसान हुआ तो इलाज कराना पड़ेगा, उसमें खर्चे ज्यादा होंगे और इतने अमीर हम हैं नहीं बेटा, इंश्योरेंस ना लिया है हमने तो हाँ हुमायूं साहब मैं शतूत वाली लकड़ी से मार खा चुका हूँ बाकी यूसुफ भाई का कहना है फजील दोनों सिचुएशन अलग है, अगर बाहर हम गुस्सा करेंगे तो बहुत कुछ खोने का डर होता है, लेकिन घर में हम अपनों के साथ होते हैं, गुस्सा किए भी तो ज्यादा माफी मांग के बात को संभाल लिया जा सकता है। हाँ ये बात तो है कि माफी मांग के संभाल लिया जा सकता है, लेकिन कई बार हम गलत बातों को भी बाहर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, है ना, विच इज अगेन करेक्ट कि यार बाहर अगर हम उस गलत बात को या किसी ऐसे शख्स के सामने उस गलत बात को गलत कह दें जो हमारे लिए हमारे लाइफ में इमीडिएट इफेक्ट कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे इंडिया में जाके किसी एमएलए से लड़ लिया आप भाई साहब वहीं के वहीं इफेक्ट कर जाएगा, इफेक्ट छोड़ो आपको आप डिफेक्ट कर जाएंगे आप तो ऐसे मामले में तो चुप होना ही लिखा है। लेकिन आपने देखा कई बार घरों में अलग तरह से आप लोगों से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और इवन दे भी रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहीं खाना बाहर लेने गए, थोड़ा सा लेट हो गया, आप घर आए तो बीवी अलग से टोंट देती है कि खाना लेने गए थे कि खाना बनाने गए थे इतनी देर काहे लग गई, है ना, कभी आप ऑफिस से लेट हो गए, आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है, दूसरों का भी काम करने लग गया हो क्या, टॉन्ट देखिए आपको ऐसी आएगी। अब ऐसी आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, आपने बेगम को कहा अरे वो खाना लगा दो, थोड़ा सा लेट हुआ, खाना बना रही हो कि खाना लेने गई हो, टॉन्ट आ रहा है ना, कि और भी बहुत से टॉन्ट आते हैं कि सफाई कर रही हो कि पूरा खानदान की सफाई कर रही हो, क्या पूरा अपार्टमेंट साफ कर दोगी आज, क्या कितना टाइम लग रहा तुमको, तो अलग अलग तरह से टॉन्ट जो है वो आ रहे होते हैं। मर्द हजरात भी कम थोड़ी है ये सीन जो है वो होता है। बाकी रजा साहब हैं, आतिफ रजा इनका नाम है और भाई साहब ने अभी खत लिख दिया है, लिखते हैं हाय फजील, इट्स नेचुरल दैट वी समटाइम गेट मोर इरिटेटेड विद लव्ड वंस दैट विद अदर पीपल, द रीजन इज दैट वी आर इमोशनली कनेक्टेड टू देम एंड एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम। ये वाली लाइन की एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम ये तो गलत हो गया भाई साहब, क्योंकि हम तो मोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सामने वाला भी हमसे मोर एक्सपेक्ट करता है भाई, और हम उसे तीतर तक नहीं दे पाते बाकी लिखा है, इट वर्क इवन व्हेन समवन पुट्स प्रेशर ऑन अस, वी मे टेक इट एज मोटिवेशन एंड यूज इट टू गेट द जॉब डन, बट व्हेन द सेम प्रेशर कम्स फ्रॉम समवन क्लोज टू अस वी रिएक्ट डिफरेंटली बिकॉज देयर वर्ड्स अफेक्ट अस इमोशनली व्हेन आवर फैमिली रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स से समथिंग दैट गोज अगेंस्ट व्हाट वी थिंक और फील वी मे गेट अपसेट एंड समटाइम्स वेंट और फ्रस्ट्रेशन ऑन देम, दिस इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी स्पेशली व्हेन वी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड और इमोशनल टायर्ड। आतिफ भाई का ये कहना है काफी हद तक बात सही है आपकी, लेकिन फिर भी मुझे कई बार

0: आपको ही हैंडल करना है, आप दूसरे के ऊपर थोड़ी निकाल सकते हैं। ये अगर ऐसा सही है तो फिर तो इंसान, ये जो सोसाइटी में हर आदमी सही है क्या? अगर मैं अपना गुस्सा अपने बेगम पे, मैं अपना गुस्सा अपने दोस्तों पे, अपने फैमिली मेंबर पे, अब्बू पे, अम्मी पे निकाल दे रहा हूँ, तो फिर वो जब फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो वो हमारे ऊपर भी निकाल दे। लेकिन यही अगर सेम चीज जब बाहरी लोगों के साथ आती, तब हम बहुत आसानी से उस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। तो कर रहे हैं ना, एक जगह तो हम कर रहे हैं, एक जगह तो हम इंसान बन रहे हैं, चाहे बाहर चाहे घर के अंदर, एक जगह तो हम इंसान बन जा रहे हैं, तो दूसरी जगह हम फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? वहां पर भी बहुत ही सलीके से काम ले लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी क्योंकि इंसान का दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड है भाई यार, समझ पाना ही मुश्किल है। कई बार तो आप अपने यू नो बहुत इमीडिएट इफेक्ट करने वाले शख्स से भी भिड़ ही जाते हैं। आप देखिए इंडिया में तो कई बार आप उस आदमी से भी भिड़ जाते हैं जो बहुत ताकतवर हो, चाहे फिजिकली चाहे जैसे, कई बार पुलिस वाले से भी भिड़ते हुए लोगों को देखा ही होगा आपने, हैं एमएलए से भिड़ जा रहे हैं, वो पार्षद से भिड़ जा रहे हैं मेरा भाई। और ये सब क्या है यार, बड़े से बड़ा आदमी है यार, ईगो पे आ गई। तो खैर वही है कि दिमाग का तो इंसान का पता नहीं है कब वो भड़क जाए, लेकिन खैर ये बात भी काफ़ी हद तक सही भी है कि इंसान का ये जो इमोशनल कोर है ना, इमोशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब वो डील करता है अलग अलग लोगों से। हाँ मुबीन भाई का तो बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया है, सलाम के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊँगा। बाकी हाय फजील, हाय मेरा भाई, बना रही हो कि पाए, चाय बना रहे हो कि पाए बना रहे, हाँ हाँ ये वाली लाइन भी तो है, हमें चाय बना रहा है पाए, इतनी देर लग गई पाए बन रहे तुम्हारे। और एक और है लाइन, खैर वो लाइन तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो रसीद के जो फलाना नहीं हो गया, रसीद का ये हो गया है ना, जिनको पता है उनको पता है। और फिर बीरबल की खिचड़ी तो सबको ही है, तो वो तो ये लाइन तो मैंडेटरी है, हर इंसान को पड़ती है। खाना नहीं हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। बाकी सलाम, एक और भाई का मैसेज है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है मेरा भाई, नाम है इनका जमील साहब, जमील भाई को सलाम। मुबीन भाई फिर कुछ लिख रहे हैं, ऑडियो भेज डाली इन्होंने, अब हम ऑडियो तो बाद में ही पढ़ेंगे आपका, फिलहाल गाने की तरफ हम आते हैं। और ये गाने की तरफ आए उससे पहले एक ख़त के बारे में भी बात करनी है, और ये ख़त उनके लिए आज आपको लिखना है जो मतलब जिनको या जिनके लिए आपको हैंडल करना चाहिए था प्रेशर बहुत ही स्मार्टली।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: तो आज एक खत उनके नाम आपको लिखना है जिन्होंने आपके प्रेशर को बहुत सही समझा और आपके चिड़चिड़ेपन को अच्छा समझा और उन्होंने अच्छा हैंडल किया आपको। आप किसी बात से नाराज हैं, है ना, अब्बा पे झुंझला गए आप, अम्मा पे झुंझला गए आप, बेगम पे, बच्चों पे, है ना, या आपने अपने से छोटे ऑफिस वर्कर पे, कलीग पे, अपने कजिन पे आप झुंझला गए हों, या फिर यू नो आप अपने अपने ऑफिस में हैं और कोई ऑफिस बॉय है उस पर आपने यू नो चढ़ाई कर दी हो किसी बात पे गुस्से में, लेकिन उन लोगों ने, इन सब ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल करा, जवाब नहीं दिया, बदतमीजी नहीं करी आपसे, लेकिन आपके प्रेशर को, आपके इमोशन को वो समझे और बहुत कायदे से उन्होंने हैंडल भी किया। तो डियर वॉट एवर, आप अगर नाम लिखना चाहते हैं तो नाम, और अगर इन लोगों का प्रोफेशन लिखना चाहते हैं तो प्रोफेशन लिखने के बाद एक खत लिखिए, और जिस तरह से भी आप कहना चाहें, थैंक यू कहना चाहें, या जो बात आपके दिल में है कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, जिन्होंने आपका दिया हुआ प्रेशर बेहतरीन तरीके से संभाला हो। व्हाट्सएप नंबर है 6622107, 6622107, खत लिखिए डियर वॉट एवर और फिर भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। फिलहाल बी प्राक और निखिल विनय की आवाज़ में एक बेहतरीन सा गाना आ रहा है आपके लिए एफएम 107 पे। वापस जब आएंगे तो हम आपके खत और आपके बाकी मैसेज पर भी बढ़ेंगे। ये गाना कोई फरियाद कुछ ही देर में आपके लिए।
1: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, दिल से देसी।
2: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। गेम चेंजर
1: सीजन 2। म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है,
3: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है, बस मेरे लिए है।
1: कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: हाँ जी दिल सदेसी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। फिलहाल 6:46 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और वक्त आ गया है कि आपके खत को पढ़ लिया जाए। इमोशन जो है वो हल्के हल्के भरे हुए हैं, लेकिन आज का सवाल एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज का सवाल बड़ा सिंपल सा था कि क्या ऐसा है, क्या ये बात सच है या गलत है कि हम अपने घर वालों के साथ थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उनके किसी भी बात को लेकर, लेकिन हम बाहर उसी प्रेशर को बहुत ही आसानी से संभाल लेते हैं, है ना। बाहर हम बहुत ही आला दर्जे के इंसान बन जाते हैं और घर में कुछ और होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो टॉन्ट का सिलसिला चलता है माशाल्लाह घर में बड़ा सटीक चलता है, लेकिन घर का ये जो टॉन्ट का सिलसिला है ये घर को लाइवली बनाता भी है, वरना कितना बोरिंग हो जाए। नहीं तो अरे खाना बन रहा है कि बीरबल की खिचड़ी बनी, जल्दी लेके आओ भाई। अरे नमक लेकर कूद ही पड़ी थी क्या तुम आज? ये कुछ लाइनें हैं, है ना, जिसमें आपका आपके घर का जो माहौल है वो बहुत बढ़िया बना रहता है। अरे सही से बैठो, ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर बैठा है। तुम सही में जैसे बैठते हो ना बहुत अजीब तरीके से बैठते हो, मेरे घर वाले भी कह रहे थे यही है। तुम्हारे घर वाले तो बड़ा दमाद दमाद कह के बुलाते हैं मुझे। ये हो रहा होता है, अरे पापा कब चलोगे बाहर घुमाने के लिए? अरे बेटा रुक जाओ। मैं भी इंसान हूँ। तो बच्चों को भी इंसान टॉन्ट जो है आजकल मारे दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज आपको खत लिखना था उन लोगों को जिनका जो आपका प्रेशर एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभालते हैं। तो अगर हम मैसेज की तरफ बढ़े, एक का भाई का सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम, और नाम है इनका खल्लू। अरे खलील भाई बहुत दिनों बाद किधर थे? अच्छा नहीं वही वाले, कोई और वाले, यार ये भी बड़ा डर लगता है। लोग प्रोफाइल पिक्चर भी तो बदलते हैं। खैर लिखा है डियर अब्बा थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मेरा लोन वाला डिसीजन। मैं ये वाला समझ नहीं पाया, मैंने भाई को दोबारा मैसेज भी किया कि यार ये कौन सा डिसीजन है जो आपने लिया था और आपने लोन ले लिया और उसके बाद भी अब्बा ने समझ लिया, ये वाली बात समझ नहीं आई। लेकिन मैं ये तो मानता हूँ कि आपके घर वालों ने बहुत ही उम्दा तरीके से आपके इस लोन वाले डिसीजन को लिया होगा, अच्छा फैसला था बढ़िया। और फिर जैसे कि हर शख्स का आना चाहिए था जिसकी जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था वो भी आया है, और ये ख़त जो है आया है वाजिद भाई की तरफ से। और वाजिद भाई लिखते हैं डियर वाइफ मेरी ऑफिस की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए कभी शुक्रिया। अच्छा कभी गुस्से में जो कहा वो पता नहीं क्यों निकलता है, मैं तुम्हें वैसे नहीं कहता। ये तो देखो एक लाजमी वाला आना ही चाहिए था। वो आ भी गया। और लेकिन नहीं यार, मैं तो कहता हूँ कि कई ऐसे मर्द हजरात हैं जो घर पे जाने पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऑफिस पे बॉस चाहे जितना उल्टे सीधे बकवास कर ले, ये जी सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, हाँ हाँ और क्या, ऐसा ही होता है। लेकिन घर पे ज़रा सा भी कुछ गलत हो जाए तो भाई ये गॉडज़िला बन जाते हैं, और यही गॉडज़िला बाहर अंडे की शक्ल में होता है। बाकी एक और ये मैसेज है, और इनका नाम है अब्दुल साहब, अब्दुल भाई क्या लिखते हैं, डियर फजील मेरा भाई, इन्होंने मेरा ही नाम लिख दिया, ये कोई बात हुई? डियर फजील भाई, अरे अपने वाइफ को लिखो। इनने लिखा है कि मैं अपनी वाइफ को थैंक्स बोलूँगा क्योंकि मैं उसे यहाँ नहीं ला पा रहा हूँ और मुझसे कहती रहती है साथ रहने को। आए हाय कितनी प्यारी बात है। लेकिन इंशाल्लाह भाई एक दिन जो है वो ज़रूर आएगा जब आपको ये ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह वो आपके साथ ही रहेगी। लेकिन होता है ना कि फिर वो वीज़ा का जो सिस्टम है वो आप कराएं, स्पॉन्सर जो है वो अगर आप करा लें तो फिर तो लाइफ आसान हो जाती है। फिर जैसे जैसी वो आ जाएंगी ना फिर यही होगा कि अरे खाना लाओ भाई, कितनी देर हो गई तुम खाना बना रहे हो, पूरे खानदान का खाना बना रही हो, पूरे घर को साफ कर दो कि क्या, आज ही काम करना है। हाँ तो वो जो टॉन्ट है वो टॉन्ट वाला भी हिसाब जो है वो चलता रहेगा, एक बार आ तो जाए। फिर वो होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। एक भाई का और मैसेज है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाम क्या लिखा था आपने? देखो यार मेरे अंगूठों की वर्जिश करा लेते हैं ये लोग, भाई नाम नहीं बताते हैं, ऊपर भी कहीं नहीं लिखा, सॉरी भाई, सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम ले लीजिए। बाकी ख़त लिखने के लिए भी आपने देरी कर दी है, इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी कल। शाम को 6 बजे एफएम 107 पे। अगर आज आप घर जाइएगा तो फ्रस्ट्रेशन मत निकालिएगा, लेकिन अगर नमक ज्यादा हो भाई कह देना। ये नमक पर तो काबू होना चाहिए ना यार, अब इतना थोड़ी मसाला ज्यादा हो गया तो थोड़ा तो चलता है कभी कभी, नमक पे अब तक तो काबू हो जाना चाहिए कि कितना नमक खाते हो कितना नहीं, तो है ना। बाकी अनप्लग्ड वर्जन का ये गाना एक मुलाकात मीत ब्रोज और आयुष्मान खुराना की आवाज में, एंजॉय करें। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे, और अपना ख्याल रखिए। दिल से देसी।

0: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, Dil Se Desi. Dil Se Desi.

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजर से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द एपिसोड टीम, फ्रॉम एम्प्लॉय टू द इम्पैक्ट मेकर। हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कैसे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ KPIs और टारगेट्स तक लिमिटेड ना रहें बल्कि अपनी वैल्यू क्रिएट करें बियॉन्ड नंबर्स, क्योंकि असल सक्सेस वो होती है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। थिंक अबाउट इट, हर दिन हम अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉलो करते हैं, अपने टारगेट्स अचीव करते हैं, लेकिन क्या यही हमारी आइडेंटिटी है या हम इससे ज्यादा कर सकते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो जर्नी फ्रॉम बीइंग जस्ट एन एम्प्लॉय टू बिकमिंग एन इम्पैक्ट मेकर। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक एचआर मैनेजर जो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन अरेंज करता है, ये उसकी KPIs का पार्ट नहीं, लेकिन उसने एक कल्चर क्रिएट किया जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और वेल बीइंग को इम्प्रूव करता है। दैट्स इम्पैक्ट बियॉन्ड जॉब टाइटल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अक्सर हम अपनी आइडेंटिटी को अपनी जॉब टाइटल से डिफाइन करते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बैंकर हूं, वगैरह वगैरह, लेकिन असल सवाल ये है Who are we beyond work? क्या हम सिर्फ अपनी डेजिग्नेशन है या हमारी वैल्यू इससे ज्यादा है? सोसाइटी का प्रेशर होता है, लोग आपको

एक आईटी प्रोफेशनल जो अपने फ्री टाइम में स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाता है, वो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं एक नर्स जो अपने ऑफ डेज पर एल्डरली केयर होम्स विजिट करती हैं, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी ह्यूमैनिटी को एक्सप्रेस कर रही हैं। सोच के देखिए, अगर आप अपनी स्किल्स को यूज करके किसी को हेल्प करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी इंस्टेंटली एक्सपेंड हो जाती है। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक चेंज एजेंट बन जाते हैं। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप।

0: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ
1: कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स समझते हैं। भाई स्टार्ट स्मॉल, अपनी स्किल्स को यूज करके किसी को हेल्प करना शुरू कीजिए। वॉलंटियर फॉर अ कॉज, एजुकेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ, इन तमाम शोबों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रिएट माइक्रो इम्पैक्ट, जैसे अपने ऑफिस में ही सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस प्रोमोट कीजिए, कोई हर्ज नहीं। दोस्तों ये सब चीजें एक माइंडसेट शिफ्ट डिमांड करती हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ पेचेक तक लिमिटेड करते हैं तो आप अपनी पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने सर्कल से बाहर जाकर कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी लाइफ और करियर दोनों एनरिच्ड हो जाते हैं। बढ़ते हैं अब इसके पर्पस और ग्रोथ की जानिब। यहाँ हम बात करेंगे कैसे अपनी हिडन स्किल्स और पैशन को डिस्कवर किया जाए। ख्वातीनों हजरात, असल ग्रोथ वो होती है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, ना कि सिर्फ एक बेहतर एम्प्लॉय। भाई KPIs और सैलरी इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि इनके ऊपर से बिल्कुल ही फोकस हटा दें, लेकिन अगर आप अपनी पैशन को एक्सप्लोर करते हैं तो आपकी लाइफ और करियर दोनों इसमें बेहतरीन सबक पाते हैं। दोस्तों हर इंसान के अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स होते हैं जो शायद जॉब के प्रेशर में इग्नोर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर का शौक रखते हैं, उन्होंने अपनी हॉबी को यूज करके चैरिटी इवेंट्स कवर करना शुरू किया। रिजल्ट, क्रिएटिविटी प्लस सोशल इम्पैक्ट। और वहीं अगर एक सक्सेस को सिर्फ पेचेक और प्रोमोशन से मेजर किया जाए एक आउटडेटेड अप्रोच के लिए, तो आज के जमाने में सक्सेस का मतलब है फुलफिलमेंट, पर्पस और पॉजिटिव इम्पैक्ट। वहीं रेजिलियंस को बिल्ड करने की बात करें तो फेलियर्स आएंगे, लेकिन रेजिलियंस वो स्किल है जो आपको हर चैलेंज से निकालती है। जब आप अपने गोल्स को सिर्फ मटेरियलिस्टिक रखेंगे तो फेलियर हर्ट करेगा, लेकिन जब आपका गोल इम्पैक्ट हो तो फेलियर एक लर्निंग बन जाता है। नेटवर्किंग फॉर इम्पैक्ट के हवाले से बात करें तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ कोलेबरेट करें, आपके आइडियाज मल्टीप्लाई होंगे। कतर में बहुत सारी कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जो एजुकेशन, एनवायरमेंट और हेल्थ पर काम करती हैं, तो ज्वाइन देम। और याद रखिए, योर जॉब इज व्हाट यू आर पेड फॉर, योर इम्पैक्ट इज व्हाट यू आर रिमेम्बर्ड फॉर। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: तो दोस्तों, तरह तरह की किस्में हैं अपने आप को समझने की, अपने आप पे रोशनी डालने की, और अपने अंदर जो मैं हूँ, मैं से मेरा मतलब वो तकब्बुर नहीं जो हम समझते हैं, मैं से मेरा मतलब जो मेरे अंदर इंसानियत छुपी है उसको मैं बाहर लाने की कोशिश करूं और दुनिया को कुछ ना कुछ करके दूं अपार्ट फ्रॉम माय वर्क। भाई जो मैं हूं, जो मेरा ओहदा है, वो सारी चीजें मेरी कंपनी तक महदूद हैं, सहमत हैं, महदूद हैं, सीमित हैं, लेकिन दुनिया के लिए क्या? खिदमत-ए-खल्क बहुत जरूरी है दोस्तों,

फैमिली के लिए भी करते हैं, रोजगार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। बट व्हाट अबाउट वर्ल्ड, भाई दुनिया भी आपकी खिदमत के लिए इंतजार कर रही है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है हमसे कुछ ना कुछ काम लेने के लिए, और वो काम हम जब ही करेंगे जब हम अपने अंदर की सलाहियतों को समझेंगे, इन्हें बाहर निकालेंगे और किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट योर वर्क, इट्स नॉट अबाउट योर जॉब टाइटल, इट्स बियॉन्ड जॉब टाइटल। भाई अपने आप को अपने पड़ोसियों के साथ ही बेहतर बनाना हमारे लिए बहुत कुछ सिखा जाता है, या वहीं हम जो दूसरी मखलूक हैं, परिंदे हैं, चरिंद हैं, इनके लिए भी अगर हम दाना पानी ही रख देते हैं तो ये भी अपने आप को कुछ समझाना है, कुछ सिखाना है कि हमने किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो किया है। तो अपने अंदर के इंसान को पहचानिए और उसको दुनियावी चीजों के लिए कुछ बेहतर करने की तरगीब दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि कैसे एक एम्प्लॉई अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज से बाहर जाके एक इम्पैक्ट मेकर बन जाता है। भाई जाते जाते मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़ जाता हूँ। आप अपनी लाइफ में किस तरह वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं बियॉन्ड योर जॉब, या आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, सिर्फ प्रमोशन या पॉजिटिव इम्पैक्ट? तो सोचिए और इसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए, आपकी वर्थ सिर्फ आपकी जॉब टाइटल से नहीं होती, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं जिसकी पोटेंशियल लिमिटलेस।

है। सोचना शुरू करें, एक्शन लेना शुरू करें और अपनी जर्नी को मीनिंगफुल बनाएं। और दोस्तों एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, हमारी वर्थ हमारे जज्बात, एक्शन और रिलेशनशिप से डिफाइन नहीं होती है। अपने आप से सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ। भाई आप अपनी जिंदगी में जितने भी रोल्स प्ले करते हैं, घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सब इम्पोर्टेंट हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। याद रखिए, आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से नहीं, आपकी इंसानियत से है। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: कोई शिकवा ना करेंगे ना आजमाएंगे, तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे। हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही प्यार लुटा

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज नए जमाने के नए फ्रॉड से आपको रूबरू कराता हूं। और आज भी एक ऐसा ही फ्रॉड है जो इमरजेंसी फ्रॉड के नाम से जाना जाता है। और आमतौर पे इस फ्रॉड में फंसाने के लिए ज्यादातर या तो बिल्कुल छोटे लोगों को या फिर बेहद जो बुजुर्ग होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। क्या है ये फ्रॉड, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये फ्रॉड है फेक फ्रेंड इमरजेंसी स्कैम, या कहें फ्रॉड। ये स्कैम आजकल के डिजिटल जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इस स्कैम का तरीका बहुत ही शातिराना होता है। सबसे पहले एक साइबर क्रिमिनल या हैकर आपके किसी सच्चे और असली दोस्त का सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया, पूरी तरह से हैक कर लेता है। हैक करने के बाद वो हैकर उस प्रोफाइल का पूरा एक्सेस अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद का स्टेप होता है आपको टारगेट करना, यानी कि उसके जितने दोस्त हैं वो उसको टारगेट करता है, जिसमें आप भी शामिल होते हैं। वो हैकर आपके उस दोस्त के अकाउंट से आपको एक प्राइवेट या डायरेक्ट मैसेज भेजता है। मैसेज की शुरुआत बहुत ही आम लगती है, लेकिन तुरंत फौरन ही वो एक बहुत बड़ी और मुसीबत, मेजर क्राइसिस जैसा जिक्र करने लगता है। हैकर आपको बताता है कि आपका दोस्त किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है। मतलब अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए कि वो लिखता है कि वो कभी हॉस्पिटल में है या एयरपोर्ट पे खड़ा है, उसको पैसे की जरूरत है, या उसका फोन टूट गया है, उसका वॉलेट चोरी हो गया, या फिर उसकी किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन उसकी दोस्त की हो गई है, या फिर वो ऐसा कुछ सीन बनाएगा जिसमें इमरजेंसी उसको बताना होता है। क्योंकि ये पूरा मैसेज आपके दोस्त के बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रोफाइल से आ रहा होता है, इसलिए आपका दिमाग किसी भी तरह के फ्रॉड पर शक नहीं करता है। ऐसे में आपको लगता है कि आपका अपना दोस्त सच में किसी बड़ी मुसीबत में है, और आप एक सच्चे दोस्त के नाते इमोशनल होकर तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्कैमर इसी इमोशनल स्टेट का फायदा उठाता है और आपसे कहता है कि बिना वक्त बर्बाद किए किसी डिजिटल पेमेंट पे ऐप कर दो, चाहे वो फोन पे हो, UPI हो, अलग अलग तरीके होते हैं पेमेंट के जरिए। वो कहता है कि इस पे कैश आप पेमेंट कर दो, अगर आप बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं तो वो पैसा सीधा क्रिमिनल के अकाउंट में जाता है और फिर उसे रिकवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ हैकर्स ऐसा भी करते हैं कि वो किसी अकाउंट को हैक नहीं करते, लेकिन आपके दोस्त की अगर कोई प्रोफाइल फोटो या कोई नॉर्मल फोटो भी पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, तो उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको AI से डिस्टॉर्ट करते हैं। AI का इस्तेमाल करके उसे हॉस्पिटल में कहीं दिखा दिया, कहीं एयरपोर्ट पे दिखा दिया, तो ऐसे में आप और ज्यादा यकीन कर लेते हैं, क्योंकि AI पर भरोसा करना भी, या कहें AI का पता लगाना भी आसान नहीं है। उस पर इंसान भरोसा कर लेता है, उसको लोगों को पता नहीं होता कि ये AI से वीडियो या फोटो बनाई गई है, तो ऐसे में

उससे बचने के लिए कुछ सॉल्यूशन भी हैं। क्या कुछ सॉल्यूशन है, जरा उन सॉल्यूशंस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है डायरेक्ट वेरिफिकेशन कॉल। दोस्तों, जब भी आपको सोशल मीडिया पर किसी दोस्त या रिश्तेदार का ऐसा अर्जेंट मनी रिक्वेस्ट मैसेज आए, तो सबसे पहले उन्हें उनके पुराने और पर्सनल मोबाइल पर कॉल करके कंफर्म करें। दूसरा तरीका है क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर उनका नंबर नहीं लग रहा है तो चैट पर उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछे जो सिर्फ आप दोनों को पता हो, आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव को, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को पता हो सिर्फ और सिर्फ। और एक अनजान हैकर इस सवाल का जब जवाब नहीं दे पाएगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। तीसरा है जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्कैमर्स हमेशा आपको डराएंगे कि वक्त नहीं है, जल्दी करो। उनके इस प्रेशर में बिल्कुल ना आए। ऐसे यानी कि इस तरह के प्रेशर से ही ज्यादातर स्कैम होते हैं। और चौथा तरीका है अकाउंट को रिपोर्ट करें। अगर आपको कंफर्म हो जाए कि आपके दोस्त का अकाउंट हैक हो गया है ना, या फिर किसी नए अकाउंट से आपके पास मैसेज आया है, तो उस अकाउंट को रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट में हमेशा हैक्ड या फेक के नाम पर ही रिपोर्ट करें, ताकि उस प्रोफाइल का और ज्यादा गलत इस्तेमाल वो हैकर ना कर सके। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स बच सकते हैं। और इस तरह के स्कैम जो मैं हर रोज लेकर आता हूं और आपको बताता हूं, इस तरह के स्कैम को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहा करिए। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। कल मुलाकात होगी एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।

0: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी ऐसा होता है ना, आप थके हुए फील कर रहे हो, थोड़ा सा इरिटेटेड हो, फोकस नहीं बन रहा और आप सोच रहे हो शायद नींद कम हुई है, पर कभी ये थॉट आता है कि पानी कितना पिया है आज दिन भर में, क्या एक ग्लास के ऊपर हमने पानी पिया है भी कि नहीं? वेल, आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एंड योर बॉडी की। पानी एक ऐसी चीज है जो हम रोज यूज करते हैं पर सीरियसली कम ही लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम भूख को तुरंत पहचान लेते हैं पर प्यास को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और बॉडी क्वाइटली एडजस्ट कर लेती है। पर डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं होता, कभी कभी डिहाइड्रेशन का सिग्नल होता है लो एनर्जी, हेडेक, ड्राई लिप्स, पुअर कॉन्सेंट्रेशन और बिना वजह का थकान। हमारी बॉडी का ज्यादा हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए पानी सिर्फ थर्स्ट क्वेंचर नहीं, बॉडी का फ्यूल होता है। पानी डाइजेशन को स्मूथ रखता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हाइड्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन मूड से भी होता है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो माइंड भी थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं चाय पी ली, कॉफी पी ली, काफी है, पर सच ये है कि चाय और कॉफी हाइड्रेशन का रिप्लेसमेंट नहीं होता, कभी कभी वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। वेल, हाइड्रेशन का बेस्ट तरीका ये है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए, सब तब नहीं जब प्यास लगे बल्कि इसे रेगुलर हैबिट बना ले। प्यास लगना ऑलरेडी एक लेट सिग्नल होता है कि बॉडी थोड़ा पीछे रह गई है। और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर वक्त बॉटल लेके साथ घूमे, बस अवेयरनेस चाहिए कि हाँ, हर आधे घंटे में मुझे कम से कम 4 सिप पानी के पीने ही पीने हैं। सो अपना स्केड्यूल सेट कर लीजिए, सुबह उठते ही एक ग्लास पानी, मील्स के बीच थोड़ा सा सिप, वर्कआउट या गर्मी के दिनों में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और रात में सोने से पहले भी एक ग्लास फुल पानी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाइड्रेशन को, पानी पीने को एक पनिशमेंट ना बनाइए, उसे रूटीन बनाइए। नींबू पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोकोनट वाटर, ये सब काउंट करते हैं। जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है ना तो एनर्जी नेचुरली बेटर होती है, स्किन फ्रेश लगती है और फोकस भी इम्प्रूव होता है। तो आज का एक सिंपल सा रिमाइंडर, नेक्स्ट टाइम जब आप लो फील करें पहले अपने आप से पूछिए मैंने आज कितना पानी पिया है। हो सकता है सॉल्यूशन आपके सामने ही हो, क्योंकि जब आप पानी का ख्याल रखते हो आप अपनी बॉडी से ये कह रहे होते हैं मैं तुम्हारी जरूरत को समझता हूँ। और जब बॉडी को समझ लिया जाए ना तो सेहत और सुकून दोनों साथ आ जाता है। इसलिए याद रखिए, हाइड्रेशन सिर्फ हैबिट नहीं, सेल्फ केयर का साइलेंट फॉर्म है। एंड योर हेल्थ मैटर।
0: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: रूम करे शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
4: गेम चेंजर Season 2
5: Maximum Music, Maximum Fun
6: on FM 107. Dil Se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाईलाइट में आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उन महान और मारूफ खिलाड़ी की जिनका नाम क्रिकेट की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा और एक ऐसा क्रिकेटर जो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता था और एक ऐसा नाम जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कई यादगार लम्हे दिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे रोशन सितारों में शुमार होता है। वो सिर्फ एक बेहतरीन बैट्समैन नहीं थे बल्कि उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनका जज्बाए मुकाबला। मियांदाद क्रिस पर आते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे वो सिर्फ बॉलर का सामना नहीं कर रहे बल्कि पूरे मुकाबले को चैलेंज कर रहे हों। उनका क्रिकेटिंग करियर 1970 में शुरू हुआ और बहुत जल्द उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपनी पहले ही टेस्ट सीरीज में दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान को एक नया स्टार मिल गया है। मियांदाद की बैटिंग में एक अजीब सी रवानी थी। वो टेक्स्ट बुक बैट्समैन जरूर थे लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने अंदाज को फौरन बदल सकते थे। तेज गेंदबाज के खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस और स्पिन बॉलर्स के सामने उनका कंट्रोल देखने का काबिल होता था। लेकिन जावेद मियांदाद की कहानी सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं दोस्तों, उनकी पहचान थी प्रेशर में परफॉर्मेंस, यानी दबाव में। जब पाकिस्तान टीम दबाव में होता था तब जावेद मियांदाद को आउट करना नामुमकिन था और इसलिए उनका नाम 1986 के शारजा के उस यादगार मुकाबले के साथ हमेशा लिया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ओडीआई फाइनल, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, आखिरी ओवर, पाकिस्तान को जीत के लिए 6 रन्स की जरूरत। बॉलिंग कर रहे थे इंडिया के फास्ट बॉलर चेतन शर्मा और सामने थे कराची के फाइटर जावेद मियांदाद। आखिरी बॉल पर 6 रन्स की जरूरत थी, फिर वो लम्हा आया जो क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन गया। चेतन शर्मा ने गेंद डाली, मियांदाद ने शॉट खेला और बॉल बाउंड्री के पार, और ये बाउंड्री यानी 4 रन्स नहीं थे बल्कि ओवर बाउंड्री 6 रन्स, और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। शारजा का वो लम्हा जावेद मियांदाद के करियर का सबसे मशहूर मोमेंट बन गया था। लेकिन मियांदाद की असल खूबी सिर्फ वो एक सिक्सर नहीं थी, उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान के लिए हजारों रन्स बनाए, मुश्किल हालात में इनिंग्स खेली और टीम को कई मर्तबा मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाला। अगर ओडीआई की बात करूं तो उन्होंने 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जो अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड था। 1992 का वर्ल्ड कप भी उनके करियर का अहम हिस्सा था। इट वॉज द एंड ऑफ हिज करियर अगर कहने, अगर वो आखिरी पड़ाव पे थे। लेकिन जावेद मियांदाद थोड़ा स्लो तो हो गए थे लेकिन रन बनाने में चूकते नहीं थे, स्पेशली द चीकी सिंगल्स। आपको समझ आया होगा चीकी सिंगल्स का मतलब ये होता है कि शॉट खेलकर दौड़ना, और इस तरह दौड़ना कि जैसे कि आगे कुछ है नहीं। Used to run for his life, used to run for Pakistan. Pakistan ने इमरान खान की क्यादत में वर्ल्ड कप जीता और मियांदाद उस टीम के तजुर्बेकार और अहम बल्लेबाज थे। और यहाँ पे एक अहम बात ये भी है

है कि उस वर्ल्ड कप कैंपेन के पीछे अगर किसी का दिमाग चला तो वो था जावेद मियांदाद का। यानी इमरान खान कप्तान तो थे लेकिन इमरान खान ने जावेद मियांदाद को इग्नोर नहीं किया बिकॉज जावेद मियांदाद का एक्सपीरियंस भी वॉज समथिंग दैट वॉज एक्सेप्टेबल एट दैट मोमेंट। और वहां पर इमरान खान ने जावेद मियांदाद के साथ कोलैबोरेट करके एक तरह से साथ मिलकर काम करके स्ट्रैटेजी बना एंड स्ट्रैटेजी के साथ साथ पाकिस्तान को दिया अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप बीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल 1992 आईसीसी वर्ल्ड कप। और उनकी बैटिंग की बात करूं तो उनकी बैटिंग ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट में कई अहम मौकों पर सहारा दिया। अगर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे फॉलो करते हैं तो मियांदाद ने टेस्ट क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन्स और ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 से ज्यादा रन्स बनाए। लेकिन अगर आप किसी क्रिकेट फैन से पूछे कि जावेद मियांदाद की सबसे बड़ी पहचान क्या थी तो शायद जवाब होगा उनका फाइटिंग स्पिरिट। ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। वो मैदान पर कभी आसानी से हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं थे, ही वाज अ स्ट्रीट फाइटर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस और बॉलर को जवाब देने का अंदाज उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से अलग करता था। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ रन्स नहीं दिए, उन्होंने एक सोच दी कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। इसीलिए जावेद मियांदाद का नाम आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के मारूफ सितारों में लिया जाता है। उनका करियर हमें ये सबक देता है कि क्रिकेट हो या जिंदगी, असल चैंपियन वो होता है जो प्रेशर के सामने झुकता नहीं। जावेद मियांदाद एक नाम, एक जज्बा और पाकिस्तान क्रिकेट की एक अजीम दास्तान। दोस्तों आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आज इतना ही। आप सुन रहे थे जावेद मियांदाद की कहानी। अगली बार एक और जबरदस्त स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
2: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
1: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
3: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM, आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में अरबी कहवे को खास मकाम हासिल है। ये सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि मेहमान नवाजी, मुलाकात और अपनाइत की खूबसूरत अलामत है। जब किसी मेहमान के लिए कहवा तैयार किया जाता है तो उसमें मेजबान की मोहब्बत, तवज्जो और खुलूस भी शामिल होता है। रिवायती तौर पे कहवे को खास तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें आम तौर पर कॉफी और पानी के साथ इलायची जैसी चीजें शामिल की जाती हैं। कुछ लोग जायके को बेहतर बनाने के लिए जाफरान या दूसरी खुशबूदार अशिया भी इस्तेमाल करते हैं। हर घर में तैयारी का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कहवे की खुशबू और उससे जुड़ी अपनाइत सब जगह महसूस होती है। कहवा तैयार करने के लिए रिवायती बर्तनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। कॉफी को खास बर्तन में उबाला और फिर आम तौर पर उसको प्याले में डाल के पेश किया जाता है। ये अपनी खूबसूरत शक्ल की वजह से आसानी से पहचाना जाता है। जब कहवा इसमें पेश किया जाता है तो मेहमान नवाजी के

0: सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: हाँ जी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है कतर 2026, जहां पर आपको मेजर अनाउंसमेंट से लेकर न्यू ओपनिंग्स तक, आने वाले कॉन्सर्ट से लेकर कि वीकेंड में क्या कुछ हो रहा है, फूड मॉल्स, हर एक चीज, यू नो, चाहे फैमिली इवेंट्स हो, एग्जीबिशन हो, सारी जानकारी आपको यहां मिलती है। और फिर चाहे वो स्पोर्ट्स के मैचेस ही क्यों ना हो, एंड देन हम कतर 2026 में सस्टेनेबिलिटी पर भी बात करते हैं, और कतर के नेशनल विजन 2030 पर भी फोकस पूरा रहता है। तो ये एक मुकम्मल शो है जहां पर आपको एक एक डिटेल के बारे में पता चलता है कि कतर में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर अनाउंसमेंट्स और न्यू ओपनिंग्स के बारे में कि कतर में क्या कुछ हो रहा है। Well, सबसे पहले तो बात होगी कतर म्यूजियम के बारे में। कतर म्यूजियम्स ने इंटरनेशनल आर्टिस्टिक एक्सचेंज और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक नया 5 साल का फ्रेमवर्क ऑफिशियली साइन कर लिया है। इकोनॉमिक फ्रंट पर कतर का नाम ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में काफी उम्मीद से ऊपर चल रहा है। इसके साथ ही स्टेट रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक्टिव डिप्लोमेटिक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है। लाइफस्टाइल एक्सपेंशन की बात करें तो ओल्ड दोहा पोर्ट का मीना डिस्ट्रिक्ट नए मैरिटाइम थीम रिटेल बुटीक्स, सी साइड ईटरीज और हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस के साथ ओपन हो चुका है। तो कई लोग, यू नो, पहले जब जाते थे दोहा पोर्ट में तो वहां पर सिर्फ बैठने के लिए, पार्किंग के बाद खूबसूरत से वेस्ट बे को एंजॉय करते हुए, जो समंदर पे उनकी जो लाइट थी ना वो गिरा करती थी और उस खूबसूरत नजारे को एंजॉय करने के लिए जाया करते थे। लेकिन एक शिकायत थी कि यार यहाँ पर अगर खाने पीने की चीज होती तो मजा आ जाता। वेल, सी साइड ईटरीज है, हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस वहां पर ऐड कर दिए गए हैं और अब दोहा पोर्ट और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है पार्किंग के साथ। थोड़ी भीड़ को भी कंट्रोल किया गया है। साथ ही इसके अलावा कटारा का कलर वर्स एक्सपीरियंस और लुसेल के प्लेस वेंडोम मॉल के नए डाइनिंग वेन्यूज लोगों के लिए बहुत ही बड़े अट्रैक्शंस हैं इस बार। तो मेजर अनाउंसमेंट्स में तो देखो यही है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सर्ट हैं और वीकेंड के अट्रैक्शंस हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा लुभाने वाले हैं। ये भी बड़ी गजब की और लाजवाब है। क्या है ये अपकमिंग कॉन्सर्ट या वीकेंड का अट्रैक्शन, इसके बारे में नजर अगर डाले तो सितंबर के तीसरे हफ्ते में, यानी कि जो आने वाला हफ्ता है या ये जो हफ्ता चल रहा है, इस पर अगर नजर डाले तो कतर का म्यूजिकल सीन काफी एनर्जेटिक होने वाला है, क्योंकि अब कतर के माहौल में यार एक गायकी है, एक सुंदरता है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ढलने लगा, हल्की हल्की हवा चलने लगी है जो कि गर्मी को थोड़ा दूर भगा रही है, उमस को थोड़ा दूर भगा रही है। और जब ये गर्मी हल्की छटती है ना तो ये म्यूजिक है ना आपको ऑटोमेटिक सुनाई देने लगता है, चाहे वो बर्ड्स की हो, चाहे वो शहर की एक अलग रफ्तार को लेकर हो, तो कतर में भी म्यूजिक होना चाहिए। वेल, सितंबर 14 को आपने कतर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा का एंजॉयमेंट तो लिया ही होगा, है ना, जो नंबर 1 कॉन्सर्ट प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इसके बाद आने वाले 18 तारीख को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में साउंड्स ऑफ मेक्सिको भी सुन सकते हैं आप, मेक्सिको भी सुन सकते हैं। वेल, साउंड्स ऑफ मेक्सिको कॉन्सर्ट जो है वो होगा, जो दोनों कंट्रीज के कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट करने वाला है। और ये हफ्ता, आने वाला जो यू नो वीकेंड है, ये भी बड़ा लाजवाब होगा। और वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिए अगर बात करें तो QNCC यानी कि कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में 17 को स्टैंड अप कॉमेडियन तहा दिसोकी अपना यूनिक ह्यूमर भी लेकर आ रहे हैं, जो ऑडियंस को बहुत एंटरटेन करेंगे। वेल, ऐसे कई लोग हैं जिनको म्यूजिक से ज्यादा हंसना पसंद है, जिनको म्यूजिक का पता है सब कुछ, या हो सकता है म्यूजिक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना हो लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत ज्यादा शौक रखते हो, चार जगह जाके ह्यूमर का इस्तेमाल करना और फिर दोस्तों के साथ कहीं पर बैठ के सुकून से स्टैंड अप कॉमेडी का एंजॉयमेंट लेना और खाते पीते, तो ये लोग भी ना इस तरह से मजे कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे शख्स हैं तो 17 सितंबर आपको QNCC में तहा

को जरूर सुनना चाहिए. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट कुछ एग्जीबिशन, फैमिली के इवेंट्स क्या है, फूड और मॉल्स को लेकर भी यार यू नो हमारे कतर में सब जो घूम फिर रहे हैं नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो फैमिली इवेंट को लेकर हो, या फिर नए एग्जीबिशन को लेकर हो. वेल, खाने पीने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए मीना डिस्ट्रिक्ट में वाटर फ्रंट पॉपअप्स, आर्टिसनल सी साइड फूड बूथ जो है वो लग गए हैं. फ्रेश सी फूड कॉन्सेप्ट वहां पर लेकर आया जा रहा है और लोकल कॉफी शॉप्स भी ओपन है. वेदर चेंज होते ही अलहजम और सिटी सेंटर दोहा जैसे बड़े इंडोर मॉल्स में इंटरेक्टिव रिटेल स्पेसेस, फैमिली फोटो स्पॉट्स और एक्सक्लूसिव डाइनिंग डील्स भी शुरू हो गई हैं. फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए मुशायरे में क्लाइमेट कंट्रोल्ड दोहा क्वेस्ट चल रहा है, जहां 30 से ज्यादा थ्रिल राइड्स और एडवांस्ड वीआर सिमुलेटर्स हैं. कल्चरल लवर्स के लिए भी हमारे खतर में बहुत कुछ अवेलेबल है. म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में उज्बेकिस्तान हेरिटेज इन मोशन और इक्तशिफ उज्बेकिस्तान एग्जीबिशन भी चल रहा है, जबकि अलहोश में तस्वीर फोटोग्राफी फेस्टिवल चल रहा है. तो आपके लिए कतर में देखने को, एहसास करने को, है ना, मजे करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. आप एंजॉय करते चले जाएं, आपका वक्त जो है वो मुझे लगता है कम पड़ जाएगा. कतर में इतने सारे इवेंट्स हैं. तो अगर खाना पीना है तो मीना डिस्ट्रिक्ट आपके लिए लोकेशन है, लेकिन अगर आपको म्यूजियम का या इस्लामिक आर्ट का शौक है तो आप जाइए उज़्बेकिस्तान के हेरिटेज इन मोशन के इस खास एग्जीबिशन में. और उसके अलावा अगर आप यू नो मुशायरे में क्लाइमेट कंट्रोल दोहा क्वेस्ट चल रहा है जो उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो भी आपके लिए चीजें अवेलेबल हैं. तो ओवरऑल हर एक जगह पे हर शख्स या हर तरह के इवेंट को चाहने वाले लोगों के लिए सब कुछ चल रहा है. एंड देन अगर हम बात करें स्पोर्ट्स मैचेस के बारे में या सीजनल एक्सपीरियंस के बारे में, जिनको ना कॉमेडी पसंद है, ना यू नो म्यूजिक पसंद है, ना ही मॉल में जाने का मन कर रहा है, लेकिन एक थ्रिलिंग मैच देखने का मन कर रहा है, तो उनके लिए है स्पोर्ट्स के अलग अलग मैचेस जो हमारे कतर में हो रहे हैं. कतर के माहौल को और भी ज्यादा लाजवाब और रंगीन बना रहे दोस्त. वेल, स्पोर्ट्स लवर के लिए है इस महीने बहुत कुछ. खलीफा इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स में क्यू टर्मिनल्स कतर क्लासिक स्क्वाश टूर्नामेंट हो रहा है, और जिनको स्क्वाश का पता है उनको पता है भाई, वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़े फैन है स्क्वाश के. मैं तो ये भी देख रहा हूँ अगर पैडल टूर्नामेंट भी होगा ना तो मैं भी ऐसे टूर्नामेंट में जरूर जाऊंगा, क्योंकि पैडल तो यहाँ पर बहुत जगह होते हैं, लेकिन पैडल इकलौता ऐसा मुझे टूर्नामेंट या कहें एक लौता ऐसा खेल लगता है जिस खेल को खेलते हुए ना आपका वजन भी कम होता है, आपको मजा भी आ रहा होता है, आप बहुत ज्यादा थक भी नहीं रहे होते क्योंकि ये सब इंडोर वाला है, आपको दूर दौड़ना भी नहीं पड़ता है ना. तो आपने वही छोटे से स्पेस में खेला, आपको मजा भी आया खूब, दो लोग तीन लोग का गेम है, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पैसे भी ज्यादा लग नहीं रहे, भाई मस्त गेम है. लेकिन अभी फिलहाल हम क्यू टर्मिनल्स कतर क्लासिक टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वाश टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां वर्ल्ड क्लास स्क्वाश देखने को आपको मिलेगा. डोमेस्टिक फुटबॉल की अगर बात करें तो सितंबर 10 को अल अहलिया स्पोर्ट्स क्लब और अलसद ने ये जो मैच खेला बड़ा ही लाजवाब रहा, कितनी भीड़ थी भाई साहब. आप स्टेडियम से अगर आ रहे हो, मतलब स्टेडियम की तरफ से आ रहे हो, तो आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा यार निकलने का. वेल, अब बात कर लेते हैं कुछ अलग एक्सपीरियंस की, सीजनल एक्सपीरियंस की. तो ये है आउटडोर एडवेंचर्स, और ये परफेक्ट टाइम है आउटडोर के एडवेंचर्स जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जहां लोग दोहा कॉर्निश पर ट्रेडिशनल अरबिक धाव क्रूज के जरिए स्काईलाइन का मजा ले सकते हैं. अगर आप कतर में नए हैं तो एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है वो है दोहा कॉर्निश पर ट्रेडिशनल अरबिक धाव पे बैठ के उसका मजा लेना. आप स्काईलाइन देखेंगे, एक तो वो दूर से वैसे बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब आप समंदर पे यू नो धाव पे बैठते हैं और वो थोड़ा दूर जाती है, हल्का म्यूजिक हो रहा होता है, भाई साहब वो जो मजा है ना, वो जो फील है, वो आप लेकर जाएंगे अपने शहर और आपको दोबारा यहाँ कतर आने का दिल करेगा. आपको ना एकदम फील आ गया ना कि आप बहुत ही बड़ी जगह पे हैं, तो बताइए, वैसे तो आप हैं बड़ी जगह पे ऑब्वियसली, लेकिन बड़ा ही लाजवाब लगता है. तो अरेबिक फील लेने के लिए ये सबसे स्पेशल जगह दोहा कॉर्निश का अरेबिक धाव का मजा लेना. वेल, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर डेजर्ट हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए ऑथेंटिक बिनाऊ फैल्कन ट्रेनिंग और कैमल ट्रैक एक्सपीरियंस भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि अलग अलग ऑपरेटर्स इस तरह की ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट पर जाना पड़ेगा थोड़ी सर.

0: सर्चिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एक आसान तरीका यह है कि फैल्कन की ट्रेनिंग और हंटिंग के बारे में सुवाकिक के जो हॉस्पिटल है वहां भी बहुत तरीके से यू नो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो अगर आप उस तरफ रुख कर रहे हैं, सुवाकिक की तरफ रुख कर रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल में जरूर जाइएगा। उस सुवाकिक के जो यू नो लोकेशन है, स्टोर है फैल्कन की, वहां पर जरूर जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा सुवाकिक में भी आपको सबसे जो लाजवाब जो जगह है मुझे लगती है वो है बर्ड मार्केट, जहां पर आप जाएंगे तो आपको सारे बर्ड के खाने पीने तो मिल ही जाते हैं और बड़े प्यारे प्यारे बर्ड भी मिल जाते हैं, मकाऊ भी आपको देखने को मिलेगा। वेल, अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सिटी के कुछ अपडेट्स के बारे में जो कतर के नेशनल विजन 2030 से अलाइन भी करते हैं। कतर अपनी सर्कुलर इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक पर धीरे धीरे दोस्तों ला रही है, जिसका टारगेट 2030 तक 35% इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज को सर्कुलर प्रैक्टिसेस पर शिफ्ट करना है। इस सिलसिले में दोहा 22 सितंबर 2026 को पांचवां रेट्रोफिट टेक एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स कतर सबमिट होस्ट करेगा। स्मार्ट सिटी के तहत गवर्नमेंट अपने $5.7 बिलियन तासमू प्लेटफॉर्म को लुसैल और मुशेरिब में स्केल कर रही है। इसमें AI पावर ट्रैफिक सिंक्रोनाइजेशन, ऑटोमेटेड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग और IoT एनवायरमेंटल सेंसर लगाए गए हैं, जो रियल टाइम में एयर फिल्टरेशन को एडजस्ट करके पब्लिक हेल्थ और एनर्जी एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं। और इसी के साथ एडुकेशन में कतर क्या कुछ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट और स्टार्टअप इकोसिस्टम, उस पर भी अगर नजर डालें तो एकेडमिक ईयर 2026-27 के स्टार्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन ने नया करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है, जो AI, डेटा साइंस और लाइफ स्किल्स पर फोकस करता है। कैंपसेस और ट्रांजिट के लिए होदोरी पाम रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है और 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए नए स्टेम स्कूल्स खोले गए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 3000 इको फ्रेंडली पब्लिक स्कूल बसेस चलाई गई हैं, जिसमें 122 बसेस डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए कस्टम इंजीनियर्ड हैं। इसके अलावा QNCC में होने वाला ऑटोनोमस ई मोबिलिटी फोरम नए ट्रांसपोर्ट फ्रेमवर्क को रिवील करेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम में QSTP और कतर फ्री जोन अथॉरिटी के सपोर्ट से साइबर सिक्योरिटी, ट्रैफिक एनालिटिक्स और स्मार्ट वाटर मीटरिंग पर काम करने वाले स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि SMEs को काफी बूस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का कतर 2026। फिलहाल आपसे इजाजत लूं उससे पहले आपको बता दे कि आज हमने क्या कुछ बात करी अगर आपने लेट ट्यून इन किया है। सबसे पहले हमने बात करी कतर के मेजर अनाउंसमेंट्स के बारे में, न्यू ओपनिंग्स के बारे में, जैसे कि कतर म्यूजियम ने इंटरनेशनल आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए नए 5 साल फ्रेमवर्क ऑफिशियली साइन कर दिया है। इकोनॉमिक फ्रंट पर कतर का नाम ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में काफी उम्मीद से ऊपर आ रहा है। साथ ही ओल्ड दोहा पोर्ट की तरफ अगर आप अभी तक जाते थे तो अब यहां पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। मीना डिस्ट्रिक्ट नए मैरिटाइम थीम्ड रिटेल बुटीक्स, सी साइड ईटरीज और हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस के साथ ओपन हो चुका है। एंड देन कटारा का कलर वर्स एक्सपीरियंस और लुसेल के प्लेस वेंडोम मॉल में भी नए डाइनिंग वेन्यूज आ गए। उसके अलावा अपकमिंग कॉन्सर्ट के बारे में अगर हम देखें तो 18 तारीख को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में साउंड्स ऑफ मेक्सिको कॉन्सर्ट होगा, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। और उससे पहले 17 सितंबर को स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहे हैं ताहा दिसोकी, उसका भी आप एंजॉयमेंट लुत्फ उठा सकते हैं। उसके अलावा जिनको बहुत ही ज्यादा खेल का शौक है तो स्क्वॉश कंपटीशन चल रहा है क्यू टर्मिनल कतर क्लासिक 2026, जो 12 सितंबर से शुरू हो चुका है और 18 सितंबर तक खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में जारी रहेगा। बाकी अगर आपको इसके टिकट्स वगैरह लेने हैं तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, या तो आप वहां पर लोकेटेड बूथ यानी कि खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स के बूथ से ले सकते हैं, या फिर टिकी टू के वेबसाइट से भी, प्लेटफॉर्म से भी आप टिकट ले सकते हैं। वेल, ये जो खास या कहें बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट है, इसमें जो प्राइज मनी है भाई साहब वो $2,42,000 है मेंस के लिए, और विमेंस के लिए भी सेम अमाउंट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। इसी के साथ जो हमने बात करी सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सिटी के बारे में, उम्मीद है वो तो आप सबने जान ही और सुन ही लिया होगा। वेल, इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कतर 2026 के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर 2026 RJ फजील के साथ। रहिए अपडेटेड।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइक्लिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइक्लिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस अहम हलके में आप सबका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सामने कराम, चंद अरसा कबल भारत में डज गॉड एग्जिस्ट यानी क्या खुदा वाकई मौजूद है इस उनवान के तहत एक नहायत अहम और तवज्जो हासिल करने वाला मुनाजरा मुनक़िद हुआ। एक जानिब मारूफ अदीब और मुल्हिदाना फिक्र के नुमाइंदा जावेद अख्तर थे, जबकि दूसरी जानिब इस्लामी मुफक्किर मौलाना शमाइल नदवी साहब मौजूद थे। इस मुनाजरे ने इल्मी हलकों में काफ़ी बहस गुफ्तगू को जन्म दिया और बहुत से मुबसरीन के मुताबिक मौलाना शमाइल नदवी ने अकली और फलसफियाना दलाइल की बुनियाद पर नहायत मजबूत मौकफ पेश किया। इस गुफ्तगू के दौरान एक अहम मौजू कॉन्टिनजेंसी आर्ग्यूमेंट या दलील इम्कान वजूब भी था, जो सदियों से फलसफा और इल्म कलाम में खुदा के वजूद पर पेश की जाने वाली मजबूत तरीन अकली दलीलों में शुमार होता है। मुनाजरे के बाद इस मौजू पर मुख्तलिफ तबसरें और एतराज़ात भी सामने आए, खुसूसन सोशल मीडिया पर बाज़ हलकों ने इस दलील पर सवालात उठाए और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर एतराज़ात पेश किए। आज की इस नशिस्त में हम तासुबात की बुनियाद पर नहीं बल्कि अक़ल मंतक और कुरान की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंटिनजेंसी या इम्कान क्या है, दलील इम्कान किस बुनियाद पर कायम है और इसके खिलाफ पेश किए जाने वाले मशहूर एतराज़ात का इल्मी जायज़ा क्या बनता है। सबसे पहले हम उस सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो सदियों से फलसफियों, साइंसदानों और आम इंसानों के जहन में गर्दिश करता रहा है। ये सवाल है, आखिर ये कायनात कहाँ से आई? क्या ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई? क्या ये हमेशा से मौजूद थी या फिर इसके पीछे कोई खालिक, कोई मुदब्बिर और कोई हकीम हस्ती मौजूद है? सामने किराम, 1400 साल पहले कुरान मजीद ने इंसान से एक ऐसा ही सवाल पूछा था। सूरह तूर में इरशाद खुदावंदी है, अम खुलिकु मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या वो बगैर किसी चीज के पैदा हो गए या वो खुद अपने खालिक हैं? कितना मुख्तसर सवाल है मगर कितनी गहरी बात अपने अंदर समोए हुए है। गोया इस आयत में इंसान के सामने तीन इम्कानात की बात कही गई। पहला इम्कान, इंसान और कायनात बगैर किसी सबब के वजूद में आ गए। दूसरा इम्कान, उन्होंने खुद अपने आप को पैदा किया। और तीसरा इम्कान ये है कि उनका कोई खालिक है। अब आइए इन इम्कानात का जायजा लेते हैं। पहला सवाल, क्या कोई चीज बगैर सबब के पैदा हो सकती है? सामने किराम, अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन मैं घर में आया और देखा कि मेरे कमरे में एक खूबसूरत कंप्यूटर रखा हुआ है, आप पूछें ये कहां से आया और मैं जवाब दूं कहीं से नहीं आया, खुद ब खुद बन गया, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी अकल कहती है कि हर वजूद

0: रखने वाली चीज के पीछे कोई ना कोई सबब होता है। अगर एक मोबाइल फोन के लिए डिजाइनर चाहिए, एक गाड़ी के लिए इंजीनियर चाहिए, एक इमारत के लिए मैमार चाहिए, तो फिर पूरी कायनात के लिए कोई सबब क्यों नहीं। 20वीं सदी के मशहूर मुल्हिद फलसफी बर्ट्रेंड ने कहा था, द यूनिवर्स इज जस्ट देयर एंड दैट्स ऑल, कि कायनात बस मौजूद है और बात खत्म। वो कह रहे थे कि कायनात के वजूद की कोई वजाहत तलाश करने की जरूरत नहीं, ये बस है। अब आते हैं फलसफे की इस्तेलाह की तरफ जो काफी इस्तेमाल की जाती है, और वो है ब्रूट फैक्ट, यानी ऐसी चीज जिसके बारे में कहा जाए इसकी कोई वजाहत मत मांगो, ये ऐसा ही है बस। लेकिन सवाल ये है, अगर हम हर चीज के बारे में यही कहने लगे तो साइंस का वजूद ही खत्म हो जाएगा। सामने कराम न्यूटन ने सेब को जमीन पर गिरते देखा, अगर वो कह देते सेब गिरा, अच्छा ये एक ब्रूट फैक्ट है बस, तो क्या ग्रेविटी दरियाफ्त हो सकती थी? हरगिज नहीं। साइंस दरअसल सवाल पूछने का नाम है। साइंस अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यह समझने की कोशिश करती है कि बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों चमकती है, बीमारियां क्यों पैदा होती है। साइंस हर जगह सबब तलाश करती है। लेकिन यही मुल्हिद जब पूरी कायनात के बारे में बात करते हैं तो अचानक ये कहने लगते हैं, कह रहे भाई इसकी वजह मत पूछो, तो गोया कि आप खुद साइंसी रवैया के मुखालफत कर रहे हैं। अब बाज साइंसदान जो वाकई समझते थे कि कायनात हमेशा से मौजूद है, यानी अगर कोई चीज़ हमेशा से मौजूद हो तो शायद कोई ये कह सकता है कि उसे किसी आगाज की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बात भी गलत साबित हुई जबकि जदीद साइंस ने एक हैरान कन हकीकत दरियाफ्त की। जैसे कि 20वीं सदी में हमने ये सुना कि मुशाहदात और तहकीकात से मालूम हुआ है, साइंसदानों ने यह नतीजा निकाला कि अगर वक्त को उल्टा चलाया जाए तो तमाम मादा और तवानाई एक नुक्ते पर जमा हो जाती है। इसी नज़रिए को वो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो आज साइंस का गालिब मौकफ ये है कि कायनात का एक आगाज़ है, तकरीबन 13.8 अरब साल पहले कायनात वजूद में आई। यानी अगर कायनात का आगाज़ है तो वो अजली नहीं, और अगर अजली नहीं तो सवाल पैदा होता है इस आगाज़ का सबब क्या था। और यही सबब की तलाश हमें उस ज़ात की तरफ ले जाती है जो अजली है। सामने कलाम, अब हम आते हैं कॉन्टिनजेंसी उसूल की तरफ, कॉन्टिनजेंसी आर्ग्यूमेंट की तरफ, जिसे फ़लसफ़ा और इल्म कलाम की ज़बान में मुमकिनुल वजूद या इन्हिसार रखने वाली चीज़ कहते हैं। मसलन एक प्लास्टिक की गेंद, ये खुद से वजूद में नहीं आई, इसके लिए खाम माल चाहिए था, फैक्ट्री चाहिए थी, मजदूर चाहिए थे, सबब चाहिए था। इसी तरह पहाड़, दरिया, दरख्त, सूरज, ज़मीन और हम खुद, हम सब किसी न किसी सबब पर मुनहसर हैं। इस तरह पूरी कायनात भी मुनहसर है, यानी कायनात के अंदर मौजूद हर चीज़ किसी सबब पर मुनहसर है, ये तो हर कोई मानता है। तो क्या पूरी कायनात भी किसी सबब पर मुनहसर है? अगर जवाब हाँ है तो फिर सवाल ये किया जाता है कि इस सबब का सबब क्या है, फिर उसका सबब क्या है, और फिर उसका सबब क्या है। तो यही है इन्फिनिट रिग्रेस, जिसे लामुतनाही सिलसिला कहते हैं। यानी अगर हर चीज़ का सबब किसी और चीज़ को मान लिया जाए और ये सिलसिला कभी ख़त्म ही ना हो तो कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। तो इन्फिनिट रिग्रेस आर्ग्यूमेंट के बिना पर आपको गॉड कॉन्सेप्ट की तरफ जाना ही पड़ेगा। फ़र्ज करें कि 10 टाइलें खड़ी हैं, पहली दूसरी को गिराती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, और यूं सिलसिला चलता है। लेकिन अगर पहली टाइल ही कभी गिरी ना हो तो बाकी सब कैसे गिरेंगी? लिहाजा सिलसिले के आगाज़ में कोई ऐसी हकीकत होनी चाहिए जो खुद किसी और पर मुनहसर ना हो। फलसफे की ज़बान में इसे कहते हैं नेसेसरी बींग, यानी ऐसी हस्ती जिसका वजूद किसी और पर मुनहसर ना हो, जो खुद कायम हो, जो अजली हो, जो हमेशा से मौजूद हो और जिसके बगैर बाकी सब कुछ मुमकिन ना हो। अब बाज़ साइंसदान या मुल्हिदीन ये कहना चाहते हैं कि वो नुक्ता आगाज़ ज़रूरी नहीं कि गॉड कॉन्सेप्ट ही हमें इस पर एतमाद यकीन करना पड़ेगा, बल्कि वो तवानाई भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो खुदा हो, शायद कोई अबदी तवानाई हो, एनर्जी हो, कोई अजली मादा हो। तो उसका जवाब ये है सामिन किराम, अगर हम सिर्फ डार्क एनर्जी की बात करें जिसका कोई इरादा नहीं, तो हाउ शुड इट पॉसिबल कि कायनात में इतनी नज़म है, कानून है, मालूमात है, तवाजुन है, शऊर है, अखलाक है, एक अंधी ताकत, एक डार्क एनर्जी ये नज़म पैदा नहीं कर सकती। अंधी कुव्वत कवानीन नहीं बनाती, अंधी तवानाई मकसद नहीं देती। लिहाजा सिर्फ मौजूद होना काफ़ी नहीं, बल्कि साहिब इल्म, साहिब इरादा और साहिब कुदरत भी होना चाहिए। यही वजह है कि कुरान सिर्फ खालिक का जिक्र नहीं करता, बल्कि उसकी सिफात भी बयान करता है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह सबसे बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है और न किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और इस जैसा कोई नहीं। तो सामने कराम प्रोग्राम तफ़हीमुल कुरान के आज के इस हलके में जितनी बुनियादी बातें सामने आ गई वो ये कि कायनात का आगाज़ हुआ है। इसी तरह हमने कहा कि जिस चीज़ का आगाज़ हो उसका सबब होता है। कायनात खुद अपनी खालिक नहीं हो सकती, कायनात बग़ैर सबब के वजूद में नहीं आ सकती। और इन्फिनिट रिग्रेस, लामुतनाही इलल का सिलसिला, ये मंतिकी तौर पर मसला पैदा करता है। यानी ये इन्फिनिट रिग्रेस आर्ग्यूमेंट दरअसल ये बताता है कि गॉड गेंस पर आपको जाना ही पड़ेगा, और एक ऐसी अज़ली अबदी और ख़ुद कायम हकीकत का होना ज़रूरी है जिस पर बाकी सब कुछ कायम हो। कुरान इसी हकीकत की तरफ रहनुमाई करता है। तो प्रोग्राम तफ़हीम कुरान के आज की इस आयत यानी अम खुलिकु मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, इसी तरह सूरतुल इखलास की जो चंद आयत हमने इसकी तिलावत की है, तो इनकी हकीकत तक पहुँचने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। सामने कराम कुरान इसी तरह हमें सोचने की दावत देता है, सवाल करने की दावत देता है, गौर व फिक्र की दावत देता है। और जब इंसान खलूस के साथ कायनात अपनी ज़ात और वजूद के असरार पर गौर करता है तो वो इसी नतीजे तक पहुंचता है जिसे कुरान ने सदियों पहले बयान कर दिया था। अम खुलिकु मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या वो बग़ैर किसी सबब के पैदा हो गए या वो खुद अपने खालिक हैं। ये सवाल इस वजह से है कि भाई खुद बग़ैर सबब के नहीं पैदा हो सकते, ना वो अपने आप अपने खुद अपनी ज़ात के खालिक हैं, बल्कि अल्लाह ताला ही ने उन्हें पैदा किया है। अल्लाह ताला हमें हक को पहचानने, उस पर यकीन रखने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद तफसीली हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। और आपको ये बताते चलूँ कि ब्रेक के बाद जो अहम मौजू जिस पर हम बात करने वाले हैं वो ये कि कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट, ये जो एक मशहूर एक इस्तिलाह है, तो इस आर्ग्यूमेंट पर जो इतराजात पेश किए जाते हैं इनका हम जायज़ा लेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के उस बाद।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम है तफ़हीमुल कुरान के आज के इस मुबारक और अहम हलके में, जिसमें हमने सूरह तूर की एक बहुत ही अहम आयत उसकी तलावत की और उस पर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आयत सूरह तूर की ये है, अम खुलिकु मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, जिसका मतलब ये है क्या वो बग़ैर किसी चीज़ के पैदा हो गए या वो ख़ुद अपने खालिक हैं। तो इस आयत का हकीकी पैगाम ये है कि दरअसल खालिक व मालिक कौन है हमारा, अल्लाह ताला। तो सामने कराम ब्रेक से पहले हमारी जो बातें जारी थी उसी को हम अभी मुकम्मल करेंगे। तो कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट या दलील इम्कान पर हमारी गुफ्तगू जारी थी। हमने समझा था कि इस कायनात में मौजूद है हर चीज़ किसी न किसी चीज़ पर मुनहसर है। इंसान ऑक्सीजन पर मुनहसर है, दरख्त सूरज और पानी पर, बारिश बादलों पर, बादल सूरज की हरारत पर। तो सवाल अब ये बनती है कि अगर हर चीज़ किसी और पर मुनहसर है तो आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। प्रोग्राम के इस मरहले में ہم اس بحث کے حوالے سے جو چند اعتراضات ہیں اس کا جائزہ لیں گے بإذن اللہ تعالی. ملحدین کی طرف سے ایک اہم سوال یہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی جزیرے میں ایک گلابی رنگ کی پلاسٹک کی گیند پڑی ہو تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کسی نے بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ گیند مصنوعی چیز ہے. لیکن اگر ہم ایک پہاڑ دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی انسان نے اسے بنایا ہے, وہ تو قدرتی چیز ہے. لہذا مصنوعی چیز سے خالق ثابت کرنا اور قدرتی چیز سے خالق ثابت کرنا ایک جیسی بات نہیں. ملحدین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیمیکل سے بنائے ہوئے اس بال کے قیاس پر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ بھئی پہاڑ کے بھی خالق ہیں تو یہ بات ایک نہیں بنتی. تو چلے ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں. اب سوال کی وضاحت کے لیے ایک اور سوال کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کیا پہاڑ واقعی خود بخود موجود ہے, یعنی وہ ہمیشہ ایسا ہی تھا؟ پلاسٹک کی گیند کس چیز سے بنی ہے؟ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کیمیائی مادوں سے, پلاسٹک سے. تو اچھا پہاڑ کس چیز سے بنا ہے, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. چٹانوں سے, معدنیات سے, ایٹموں سے. تو یہ پہاڑ کیسے وجود میں آیا؟ کہا گیا کہ زمین کی پرتوں کی حرکت سے, ٹیکٹونک پلیٹوں کے دباؤ سے, ارضیاتی عوامل سے. اچھا تو بات یہی بنی کہ گیند بھی کسی سبب پر قائم ہے اور پہاڑ بھی کسی سبب پر قائم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک سبب انسانی ہے اور دوسرا قدرتی. لیکن سوال پھر بھی باقی ہے, یہ قدرتی نظام خود کہاں سے آیا؟ یعنی اب اصل سوال یہ ہے کہ پہاڑ موجود کیوں ہے, اس کے وجود کی آخری بنیاد کیا ہے؟ اگر پہاڑ زمین پر منحصر ہے, زمین سورج کے نظام پر, سورج کائناتی قوانین پر, تو آخر یہ سارا نظام کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ یعنی دیکھیں ہم اس بات کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ کس نے بنایا, کس نے بنایا, یہ تو ہماری عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ تو واضح ہے. لیکن اب ہم کانٹنجنسی دلیل کی بنیاد پر, کانٹنجنسی دلیل کا جو مرکزی سوال ہے کہ بھائی یہ سارا نظام کس بنیاد پر کھڑا ہے, پہاڑ کس بنیاد پر موجود ہے؟ اگر سوال کو ہم اس طرح پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی واضح ہے, جس طرح ہم نے بتایا کہ اس کے اپنے اپنے اسباب ہیں. پہاڑ کے وجود میں کیسے آیا کہ زمین کے پرتوں کی حرکت سے وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ بات واضح ہو گئی کنٹنجنسی اصول کی بنیاد پر کہ گیند بھی کسی سبب پر قائم ہے اور پہاڑ بھی ایک بنیاد پر قائم ہے, کسی سبب پر قائم ہے. یعنی یوں ہی اچانک ہم ہر ہمیشہ وہ ازلی طور پر ایسا ہی تھا, بات ایسی نہیں. اگرچہ آپ کو ایک نظر میں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ارے بال کی بنائی ہوئی بات تو یہ کلیئر ہے, لیکن یہ عظیم پہاڑ کیسے وجود میں آ گیا, اس کو سمجھنے میں ہمیں ذرا دقت محسوس ہوتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف کہ اگر سب چیزوں کو خالق چاہیے تو خدا کو بھی خالق چاہیے. اس طرح کی بات بعض کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مشہور اعتراض ہے معاذ اللہ. ملحدین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو خالق چاہیے تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس میں ایک بنیادی غلط فہمی موجود ہے اس سوال میں. کانٹنجنسی دلیل کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے, بلکہ یہ کہتی ہے کہ ہر کانٹنجنٹ یا منحصر چیز کا سبب ہوتا ہے. یہ دونوں جملے مختلف ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہوں ہر بیمار شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر بھی بیمار ہونا چاہیے؟ نہیں, کیونکہ حکم صرف بیماروں کے بارے میں تھا. اسی طرح کانٹنجنسی دلیل صرف ان چیزوں کے بارے میں ہے جو محتاج ہیں, جو قائم بذات نہیں ہیں, جو وجود میں آ سکتی بھی تھیں اور نہ بھی آ سکتی تھیں. تو اب کانٹنجنسی دلیل کی بنیاد پر جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کو اگر آپ یہ کہیں کہ تو کانٹنجنسی دلیل کی بنیاد پر جو سمجھ میں آئی کہ ہر چیز ہر کانٹنجنٹ یا منحصر چیز کا سبب ہوتا ہے, تو اگر ہر کسی دوسری چیز کا ایک دوسرا سبب ہو اور اس کا بھی ایک سبب ہو اور اس سبب کا بھی ایک سبب ہو, تو آپ کو ایک حد تک جا کے یہ بات بتانا پڑے گا کہ ایک ہستی جو ہے نا اس کا وجود ضروری ہے, وہ کسی دوسرے پر منحصر نہیں, اس کا کوئی سبب نہیں, جسے کسی نے پیدا نہیں کیا, جس کا نہ آغاز ہے اور نہ انجام. اسی لیے قرآن فرماتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اب مزید

0: सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: दोस्तों इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम और जरूरी नंबर है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें फौरन मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो हमेशा हमारी मदद के लिए दस्तयाब हो तो हम खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 का मतलब है कि अगर आप किसी भी खौफनाक या खतरनाक हालत में फंस गए हैं तो आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके फौरन मदद हासिल कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 की अहमियत को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। जब भी आपको मदद की जरूरत हो आपको बस ये नंबर डायल करना होता है। इस नंबर से आप बहुत सी मुश्किलात से निकल सकते हैं और आपकी जानो माल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और याद रखिए, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हर किस्म के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर्स और कोई खौफनाक सिचुएशन जो आपके लिए खतरा बन सके। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।

وَلَوْ